FM वेव 103.1 MHz पर यह आकाशवाणी का बैतूल केंद्र है। आज बुधवार है, शक संवंत 1948 के वैशाख मास की 30वीं तिथि, तदनुसार 20 मई 2026। इस वक्त सुबह के 5:57 और 34 सेकंड हुए हैं। अब हमारी आज की सभा आरंभ होती है। आकाशवाणी सुन रहे हमारे सभी श्रोताओं का हम हार्दिक स्वागत करते हैं।

FM वेव 103.1 मेगाहर्ट्ज पर यह आकाशवाणी का बैतूल केंद्र है। सुबह के 6:01 हुए हैं। लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम भक्ति धारा। कार्यक्रम भक्ति धारा सुन रहे हमारे सभी श्रोताओं का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। आइए आपको सबसे पहले सुनवा रहे हैं बाबला मेहता की आवाज में ये भक्ति गीत।

अभी आपने सुना अनुराधा की आवाज में ये भक्ति गीत। लीजिए, अब आपको सुनवा रहे हैं अगली भक्ति रचना उदित नारायण की आवाज में।

0: अभी आप सुन रहे थे बाबला मेहता की आवाज में ये भक्ति रचना। इसी के साथ हमारा भक्ति धारा कार्यक्रम यही संपन्न होता है। सुबह के 6:30 हुए हैं। लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम चिंतन।
1: हमारा वर्तमान आतंक के दोहरे संतरास से जूझ रहा है। निसंदेह विज्ञान ने हमारी बाहरी दुनिया को जगमगा दिया है और आज का आदमी उससे इतना सम्मोहित हो गया है कि बाहरी चकाचौंध के प्रभाव में पड़कर वो अपनी आत्म ज्योति को भूल गया है। इतना ही नहीं, बाहर का उजाला इतना अधिक हो गया है कि उसे सह पाना कठिन हो रहा है। बाहर की आंखें चाकचिक्य के उलझाव में संवेदनाहीन हो रही हैं और दृष्टि मंदता का खतरा मंडरा रहा है। मोबाइल के मायाजाल में उलझकर हम सामने उपस्थित व्यक्ति को तुष्ट करने के बजाय दूर के किसी व्यक्ति को उत्तर भेजने में व्यस्त होते हैं। कैसी विडंबना है कि सामने बैठा या खड़ा आदमी पास होते हुए भी दूर है। मोबाइल किम्मा अधुना विज्ञान सुविधा का दुष्फल है कि संवाद तो बहुत हो रहा है किंतु संवेदनशीलता गुम हो रही है। यहाँ विज्ञान द्वारा की जा रही नित नवीन खोजों का विरोध नहीं किया जा रहा है, बल्कि ये अपेक्षा की जाती है कि जिन हाथों में जो वैज्ञानिक सुविधा हो तो वो उसके सम्यक उपयोग के काबिल हो। ज्ञातव्य है कि भौतिक विज्ञानी आइंस्टीन ने मनुष्य को अणुशक्ति से अलंकृत कर दिया, लेकिन अमेरिका के मतिभ्रष्ट राजनयिकों ने हिरोशिमा और नागासाकी को मिनटों में तबाह कर विज्ञान की सुविधा का भयावह दुरुपयोग किया। अधूना जीवन की यह नितांत आवश्यकता है कि विज्ञान और टेक्नोलॉजी की सभी सुविधाएं पूरी दुनिया को मिले, लेकिन उनके नियंता मतिभ्रष्ट राजनेता न हो, बुद्ध जैसे प्रज्ञा पुरुष उसके नियामक हो तो सारी धरती स्वर्ग में रूपांतरित हो जाए। संप्रति हम सर्वसाधारण मनुष्य तमाम वैज्ञानिक सुविधाओं के उपभोक्ता होते हुए भी दोहरे आतंकवाद के साये में जीने को विवश हैं। एक प्रकार के आतंकवादी सत्ता सिंहासनों पर आरूढ़ है तो दूसरी तरह के आतंकवादी प्रतिक्रिया में खुले विचरण कर रहे हैं। दुनिया के लिए दोनों अविश्वसनीय हैं और इन्हीं दो पार्टों के बीच पिस रही है दुनिया। विचारणीय बात यह है कि सत्ता की दौड़ में जिसने पूरा जीवन लगा दिया वो उसे बचाए रखने के लिए अपना जीवन दांव पर या तो लगा देगा या अपने वर्चस्व को दिखाने के लिए लाखों करोड़ों का जीवन नष्ट कर देगा। इतिहास के पृष्ठों में दर्ज सिकंदर, नेपोलियन, नादिर शाह, चंगेज खान, हिटलर और मुसोलिनी आदि ने यही किया और कमोवेश इराक में बुश ने यही दोहराया है। और अब अफगानिस्तान, पाकिस्तान, इराक, इजराइल, वजीरिस्तान, कश्मीर के दर्रों या 26/11 जैसे मुंबई में घटित हो रही आतंकवादी घटनाएं निरीह मनुष्यों का जिस बेदर्दी और बेकसी से खून बहा रही हैं, वो हमारी समग्र मानवता को लगातार शर्मसार कर रही हैं। आतंकियों ने, उनके दुष्कृतियों ने मानव प्रतिष्ठा को जमींदोज कर दिया है। इस विनाश का श्रेय केवल राजनेताओं के नाम ही नहीं होगा, उन वैज्ञानिकों के नाम भी होगा जिनकी वजह से विनाश की यह विपुल टेक्नोलॉजी उपलब्ध हुई है। विज्ञान अपरिसीमित विनाश का कारण बनता है और बनाया जाता है। विज्ञान सृजन का अपूर्व कारक है और रहेगा। ये सब उसके धारक हाथों के विवेक पर निर्भर होगा कि वो ध्वंस करेगा या निर्माण करेगा। आज बुद्ध पुनः प्रासंगिक हो रहे हैं कि उनके द्वारा बताए गए मध्यम मार्ग की ध्यान, प्रेम, अहिंसा, करुणा और मुदिता, मैत्री की सद्भावनाएं लोकव्यापी हों ताकि विज्ञान ध्वंस का नहीं मानव उत्थान का पुनीत कर्म कर सके।
2: सुनिए कार्यक्रम महिला जगत सोमवार से शनिवार सुबह 10:30 पर, जिसमें होगी मुलाकातें नित नए मेहमानों से सोम, बुध, गुरु और शनिवार को।
3: हमारी मुलाकातें हमेशा यूं ही चलती रहे।
2: साथ ही किचन टिप्स, पाक विधियां,
4: प्रेरक व्यक्तित्व और जीवन शैली।
2: मंगलवार और शुक्रवार को सखियों की पसंद,
4: जिसमें आपको सुनवाएंगे आप ही की पसंद के चंद गीत।
5: पंछी बनूं उड़ती फिरूं मस्त गगन में, आज मैं आजाद हूँ दुनिया के चमन में।
2: सुनिएगा जरूर आपका अपना कार्यक्रम महिला जगत
4: FM 103.1 MHz और NewsOn AIR ऐप पर।
0: FM वेव 103.1 मेगाहर्ट्ज पर यह आकाशवाणी का बैतूल केंद्र है। सुबह के 6:35 हुए हैं। लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम श्री रामचरित मानस गान, जिसमें आज आपको सुनवा रहे हैं ए हरिहरण और श्रीकांत पारगावकर और साथियों की आवाज में श्री रामचरित मानस गान।

स्त्री तथा राज्य पाकर सुग्रीव विषय भोग में ऐसा रत हुआ कि उसे अपने उद्धारकर्ता के अनुरोध की भी सुधि न रही। राम का क्षोभ देख लक्ष्मण कुपित होकर पूरी किष्किंधा नगरी को जलाकर राख कर देने को उद्यत होते हैं। हनुमान से अपनी विस्मृति की बात सुनकर सुग्रीव भयभीत हो जाते हैं। वानर सैनिकों को बुलाकर 15 दिनों की अवधि के भीतर जनक नंदिनी सीता की खोज खबर लाने का आदेश देते हैं। क्रुद्ध लक्ष्मण के सम्मुख सिर नवाकर बालीपुत्र अंगद अपने राजा की निष्क्रियता के लिए क्षमा याचना करते हैं।

अभी आप सुन रहे थे श्री रामचरितमानस गान ए हरिहरन और श्रीकांत पारगावकर के स्वरों में। सुबह के 6:45 हुए हैं। लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम लोक रंजनी।

अभी आपने सुना बिहारी लाल राव और साथियों की आवाज में ये लोकगीत। इसी के साथ हमारा लोक रंजनी कार्यक्रम अब यहीं संपन्न होता है। कुछ ही देर में आप सुनेंगे हिंदी में समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। कृपया प्रतीक्षा कीजिए।

7 डिग्री अधिक रहा। मौसम विभाग ने अगले 3 दिनों तक प्रदेश में भीषण गर्मी और तापमान में 2 से 3 डिग्री तक की और बढ़ोतरी का अनुमान जताया है। कई शहरों में लू जैसे हालात बने हुए हैं और फिलहाल राहत के संकेत नहीं है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। शिवपुरी जिले में युवा संगम जिला स्तरीय रोजगार मेले का आयोजन 28 मई को शासकीय आईटीआई झांसी रोड में किया जाएगा। सतना के शासकीय आईटीआई कॉलेज बिरला रोड में आज 11 बजे से 2 बजे तक

चलाया जा रहा है। मैहर, अमरपाटन और रामनगर के 35 ग्रामों में पीएम जनमन एवं धरती आबा जनजाति ग्राम उत्कर्ष अभियान के तहत विशेष शिविरों में हितग्राहियों को विभिन्न शासकीय योजनाओं का लाभ दिया जा रहा है। जनजातीय कार्य विभाग मंत्री डॉ. कुंवर विजय शाह आज खंडवा के ग्राम रोशनी में कृषि मत्स्य एवं पर्यटन के समेकित मॉडल का शुभारंभ करेंगे। नीलेष कलेक्टर ने कल साप्ताहिक समीक्षा बैठक में मातृ स्वास्थ्य उपार्जन और ईंधन आपूर्ति व्यवस्था बनाए रखने के निर्देश दिए हैं। हरदा में कल विधिक साक्षरता और जागरूकता शिविर में छात्र छात्राओं को नालसा और सालसा की विधिक सहायता योजनाओं की जानकारी दी गई। इंदौर आरटीओ और जिला प्रशासन की टीम ने कल बसों में इमरजेंसी एग्जिट, फायर सेफ्टी सिस्टम, आपातकाल में सुगम निकास व्यवस्था की जांच के दौरान 8 बसों से 2,26,000 रूपये का जुर्माना वसूला और झाबुआ कलेक्टर डॉ. योगेश टुकाराम भरसक ने कल पेट्रोल पंप संचालकों की बैठक में पंपों के नियमित निरीक्षण के निर्देश दिए। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, भारत में नॉर्डिक देशों का निवेश 200% तक बढ़ा। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की आज गूगल की टीम के साथ उच्च स्तरीय रणनीति बैठक। नक्सल प्रभावित क्षेत्र के लिए 330 करोड़ रूपये की माइक्रो डेवलपमेंट योजना और मध्य प्रदेश भीषण गर्मी की चपेट में नौगांव में 47 डिग्री सेल्सियस पर पहुंचा तापमान। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगला बुलेटिन सुनिए दोपहर 2:10 पर। नमस्कार।

एफएम वेव 103.1 MHz पर यह आकाशवाणी का बैतूल केंद्र है। लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम यादों के झरोखे से।

दो के झरोखे से। लीजिए अगला गीत, फिल्म आदमी और इंसान से महेंद्र कपूर और आशा भोसले की आवाज में।

आप सुन रहे हैं कार्यक्रम यादों के झरोके से। कार्यक्रम में अगला गीत फिल्म बसंत बहार से लता मंगेशकर और आशा भोसले की आवाज में।

कार्यक्रम यादों के झरोके से मैं अगला गीत महेंद्र कपूर की आवाज में फिल्म चिंगारी से।

कार्यक्रम यादों के झरोखे से मैं अगला गीत फिल्म डिटेक्टिव से हेमंत कुमार और गीता दत्त की आवाज में।

अभी आप सुन रहे थे यादों के झरोखे से। सुबह के 7:50 होने वाले हैं। लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम सुबह सवेरे।

Saveri. कार्यक्रम सुबह सवेरे में आप सभी श्रोताओं का स्वागत है। आइए अब आपको कुछ जनउपयोगी सूचनाएं बता दें। लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा राज्य मंत्री श्री पटेल ने वंदे भारत ट्रेन से किया सफर। मध्य प्रदेश शासन के लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा मंत्री तथा बैतूल जिले के प्रभारी मंत्री नरेंद्र शिवाजी पटेल ने मंगलवार को अपने प्रभार के जिले बैतूल पहुंचने के लिए वंदे भारत ट्रेन से यात्रा कर मितव्ययता एवं सार्वजनिक परिवहन के उपयोग का संदेश दिया। उल्लेखनीय है कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा देशवासियों से ईंधन की बचत तथा सार्वजनिक परिवहन के अधिकाधिक उपयोग की अपील की है। इसी क्रम में प्रभारी मंत्री श्री पटेल ने भोपाल से बैतूल रेलवे स्टेशन तक वंदे भारत ट्रेन में यात्रा की। इस अवसर पर मंत्री श्री पटेल ने कहा कि सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था न केवल ईंधन बचत में सहायक है बल्कि यह पर्यावरण संरक्षण और यातायात दबाव कम करने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। उन्होंने आम जन से भी दैनिक जीवन में सार्वजनिक परिवहन को अपनाने की अपील की। राज्यपाल श्री मंगू भाई पटेल बुधवार को भीमपुर में आयोजित राष्ट्रीय सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन मिशन 2047 के कार्यक्रम में शामिल होंगे। राज्यपाल श्री मंगू भाई पटेल बुधवार 20 मई को भीमपुर के पुलिस ग्राउंड में आयोजित राष्ट्रीय सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन मिशन 2047 के अंतर्गत जांच जागरूकता एवं जन भागीदारी महाअभियान कार्यक्रम में शामिल होंगे। कार्यक्रम में सिकल सेल एवं थैलेसीमिया जांच मशीन का शुभारंभ किया जाएगा और विभिन्न विभागों द्वारा लगाए स्टॉल का भी निरीक्षण किया जाएगा। राज्यपाल के कार्यक्रम के अनुसार प्रातः 10:15 पर भीमपुर हेलीपैड पहुंचेंगे जहां उनका स्वागत किया जाएगा। इसके पश्चात वे प्रातः 10:25 पर पुलिस ग्राउंड पहुंचकर कार्यक्रम में शामिल होंगे। प्रातः 10:45 पर राज्यपाल श्री पटेल द्वारा सिकल सेल एवं थैलेसीमिया जांच मशीन का उद्घाटन किया जाएगा और विभागीय स्टालों का अवलोकन किया जाएगा। राज्यपाल श्री पटेल प्रातः 11

0: पैतालीस बजे जनसमूह को संबोधित करेंगे। तो ये थी कुछ जनउपयोगी सूचनाएं।
1: फुलवारी, बच्चों की मनोहारी, आकाशवाणी बैतूल की प्रस्तुति, जिसमें रविवार की सुबह महत्वपूर्ण विषयों पर रहती है चर्चा जारी। नहीं भूलते हम चर्चा के बीच सुनवाना बच्चों को मीठे मीठे गीत। इतना ही नहीं है काफी, नन्हे मेहमान में लेकर आते किस्से कहानियाँ हमारे नन्हे साथी। देश दुनिया में हमने है ठाना, बच्चों को बताना है दुनिया का ताना बाना। फुलवारी, बच्चों की मनोहारी, आकाशवाणी बैतूल की प्रस्तुति, रविवार सुबह 8:30 बजे।

0: प्रिय किसान भाइयों, जरूर सुनिए अपना मनपसंद कार्यक्रम किसान वाणी, आकाशवाणी बैतूल FM 103.1 MHz पर रोज शाम 7:20 से 8 बजे तक, जिसमें आपके लिए है कृषि, पशुपालन, उद्यानिकी और ग्राम विकास पर ढेर सारी जानकारियाँ।
1: 12 से ज्यादा प्रतिशत अगर नमी का होगा तो वो बीज आपका खराब हो।
2: प्राकृतिक खेती में हमें विभिन्न प्रकार की फसलों को लेना चाहिए।
3: डेयरी फार्म में दूध में फेट का परसेंटेज यदि बढ़ाना है।
0: स्थानीय लोकगीत, किसानवाणी ट्यून करें आकाशवाणी बैतूल 103.1 MHz पर, या डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर से न्यूज ऑन AIR ऐप।
4: सुबह सवेरे
5: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम सुबह सवेरे। कुछ ही देर में आप सुनेंगे समाचार प्रभात आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से, कृपया प्रतीक्षा कीजिए।
6: आज का हम है राही प्यार के कार्यक्रम संपन्न हुआ। अपने दोस्त राजेश को आज्ञा दीजिए।

0: मेरा एक जिद्दी पड़ोसी है, पूरी कॉलोनी ने सोलर पैनल लगवा लिए हैं, पर वो मानने को तैयार ही नहीं था कि सच में बिल जीरो आ सकता है। मैंने कहा बेटा, नाम ही है पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। फिर एक एक करके सबका बिजली बिल जीरो आने लगा, तब बोला अब लगवा ही लेता हूँ। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
1: घर घर सूर्य घर।
2: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं विशाल शर्मा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज रोम में इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी से वार्ता करेंगे। दोनों नेता भारत पश्चिम एशिया यूरोप आर्थिक गलियारे के लिए सहयोग बढ़ाने पर चर्चा और वर्ष 2025 से 2029 तक संयुक्त रणनीतिक कार्रवाई योजना की समीक्षा करेंगे। पश्चिम बंगाल सरकार 25 से 60 वर्ष की महिलाओं के लिए प्रतिमाह 3,000 रुपए की आर्थिक सहायता वाली अन्नपूर्णा योजना 1 जून से शुरू करेगी। एक राष्ट्र एक चुनाव की संयुक्त संसदीय समिति ने कहा, लोकसभा और विधानसभा चुनाव एक साथ कराने से लगभग 7,00,000 करोड़ रुपए की बचत और भारत के सकल घरेलू उत्पाद में 1.6% की वृद्धि होगी। नागर विमानन महानिदेशालय ने इस वर्ष के शुरू में तकनीकी गड़बड़ी के बाद एयर इंडिया के बोइंग 787-8 विमान के ईंधन नियंत्रण स्विच की आगे की जांच के आदेश दिए। और आईपीएल क्रिकेट में राजस्थान रॉयल्स ने लखनऊ सुपर जायंट्स को 7 विकेट से हराया। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज रोम में इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी से वार्ता करेंगे। दोनों नेता भारत पश्चिम एशिया यूरोप आर्थिक गलियारे के लिए सहयोग बढ़ाने पर चर्चा और वर्ष 2025 से 2029 तक संयुक्त रणनीतिक कार्रवाई योजना की समीक्षा करेंगे। इस यात्रा के दौरान दोनों देशों के बीच व्यापार, रक्षा, परिवहन, समुद्री सुरक्षा, बंदरगाह संबंधी सहयोग और स्वच्छ ऊर्जा सहित प्रमुख क्षेत्रों में समझौतों पर हस्ताक्षर होने की संभावना है। इटली से हमारी संवाददाता की रिपोर्ट।
3: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज कुरिनोल पैलेस में इटली के राष्ट्रपति सर्जियो मत्तारेला से मुलाकात करेंगे, जहां उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर प्रदान किया जाएगा। आज के कार्यक्रमों में प्रतिनिधिमंडल स्तरीय वार्ताएं, प्रेस वक्तव्य, समझौता ज्ञापनों का आदान प्रदान, द्विपक्षीय बैठकें और खाद्य एवं कृषि संगठन का दौरा शामिल है। प्रधानमंत्री मोदी मोरस निग्रा ब्लैक मलबेरी का पौधा भी लगाएंगे। ये एक ऐसी प्रजाति है जो अपने पाक, औषधीय और सांस्कृतिक महत्व के कारण भारत और इटली को प्रतीकात्मक रूप से जोड़ते हैं। रोम से सुपर्णा भाटिया।
2: प्रधानमंत्री मोदी इटली की अपनी पहली द्विपक्षीय यात्रा पर कल रात रोम पहुंचे। इटली के विदेश मंत्री एंटोनियो ताजानी ने हवाई अड्डे पर उनका स्वागत किया। इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने श्री मोदी के सम्मान में रात्रि भोज का आयोजन किया। अनंतारा प्लाजो नायबी होटल पहुंचने पर प्रवासी भारतीय समुदाय ने श्री मोदी का उत्साहपूर्वक स्वागत किया। प्रधानमंत्री मोदी ने भी गर्मजोशी से समुदाय के सदस्यों से हाथ मिलाया। हाल के वर्षों में भारत इटली संबंधों में अभूतपूर्व प्रगति हुई है और अभी संबंध निर्णायक मोड़ पर पहुंच गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी के संयुक्त लेख में दोनों नेताओं ने कहा है कि दोनों देशों के बीच संबंध सौहार्दपूर्ण मित्रता से विकसित होकर एक विशेष रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक पहुंच गए हैं। इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी ने नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में तीसरे भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि नॉर्डिक देशों के साथ भारत की भागीदारी को पर्यावरण अनुकूल प्रौद्योगिकी और नवाचार रणनीतिक भागीदारी के स्तर तक ले जाने का निर्णय लिया गया है।
4: इस ग्रीन टेक्नोलॉजी पार्टनरशिप से हम आइसलैंड की जियो थर्मल और फिशरीज, नॉर्वे की ब्लू इकोनॉमी और आर्कटिक और सभी नॉर्डिक देशों की मैरिटाइम और सस्टेनेबिलिटी की एक्सपर्टीज भारत के स्केल के साथ जोड़कर पूरे विश्व के लिए एक बेहतर भविष्य सुनिश्चित करेंगे।
2: नॉर्वे की 2 दिन की यात्रा के दौरान श्री मोदी ने नॉर्वे के प्रधानमंत्री जोनास गहर स्टोरे के साथ द्विपक्षीय बैठक की। ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
5: ऑस्लो दौरा में हुए बहुपक्षीय और द्विपक्षीय बैठकों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हरित परिवर्तन, नीली अर्थव्यवस्था, जहाज निर्माण, स्वास्थ्य और रक्षा जैसे क्षेत्रों में निवेश के लिए नॉर्डिक देशों को आमंत्रित किया। नेताओं ने पहलगाम में हुए आतंकवादी हमले सहित सभी प्रकार के आतंकवाद की स्पष्ट और कड़ी निंदा की। सारे प्रधानमंत्रियों ने भारत नॉर्डिक देशों के सहयोग को और गहरा करने की अपनी प्रतिबद्धता दोहराई। अगला शिखर सम्मेलन फिनलैंड में हेलसिंकी में आयोजित किया जाएगा। संगीता गुरबोले, आकाशवाणी न्यूज, ओस्लो, नॉर्वे।
2: केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने जिनेवा में 19वें विश्व स्वास्थ्य सभा में सभी के लिए स्वास्थ्य कल्याण, डिजिटल स्वास्थ्य नवाचार और वैश्विक स्वास्थ्य एकजुटता के लिए भारत की प्रतिबद्धता दोहराई है। वैश्विक स्वास्थ्य का पुनर्निर्माण एक साझा दायित्व विषय पर आयोजित सभा में श्री नड्डा ने संपूर्ण सरकार और संपूर्ण समाज के दृष्टिकोण पर आधारित सभी के लिए स्वास्थ्य कल्याण की दिशा में भारत की प्रगति का उल्लेख किया।
6: India is accelerating towards universal health coverage.
7: भारत गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवा तक पहुंच का विस्तार करके सभी के लिए स्वास्थ्य कल्याण की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। इसके लिए हमने 1,85,000 आयुष्मान आरोग्य मंदिर स्थापित किए हैं। इसके अलावा हम महामारी की तैयारी और आपातकालीन राहत के लिए मजबूत और सुदृढ़ सार्वजनिक स्वास्थ्य और बुनियादी ढांचा विकसित करने के लिए प्रतिबद्ध
6: हैं। Pandemic preparedness and emergency responses.
2: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNews हिंदी को फॉलो कर सकते हैं।
8: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा, अटल पेंशन योजना, मोदी जी का संकल्प।
9: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
10: अब तक इस योजना से 8,85,00,000 से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित 3 गारंटीड फायदों के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
2: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। पश्चिम बंगाल सरकार ने महिलाओं के सामाजिक आर्थिक उत्थान के लिए 3,000 रूपये की मासिक वित्तीय सहायता की अन्नपूर्णा योजना अधिसूचित कर दी है। महिला और बाल विकास तथा समाज कल्याण विभाग की यह योजना 1 जून से प्रभावी होगी। एक रिपोर्ट।
7: इस योजना के अंतर्गत राशि पात्र लाभार्थियों के आधार से जुड़े बैंक खातों में प्रत्यक्ष लाभांतरण के माध्यम से भेजी जाएगी। इस योजना के लिए 25 से 60 वर्ष की महिलाएं पात्र हैं। पात्र महिलाएं आयकर का भुगतान नहीं करती हो और किसी भी स्थायी सरकारी नौकरी में कार्यरत न हो। नए आदेश के अनुसार लक्ष्मी भंडार योजना के सभी वर्तमान लाभार्थी स्वतः ही अन्नपूर्णा योजना में स्थानांतरित हो जाएंगे। नए आवेदकों के लिए अन्नपूर्णा योजना का ऑनलाइन पोर्टल 1 जून 2026 को शुरू किया जाएगा। कल्याण लाहा की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से अर्जुन शर्मा।
2: एक राष्ट्र एक चुनाव पर गठित संयुक्त संसदीय समिति ने कहा है कि लोकसभा, विधानसभा और स्थानीय निकाय चुनाव एक साथ कराने से करीब 7,00,000 करोड़ रुपए की बचत हो सकती है। इससे देश के सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि दर में 1.6% की बढ़ोतरी हो सकती है। समिति के अध्यक्ष और लोकसभा सांसद पीपी चौधरी ने कल शाम गुजरात के गांधीनगर में पत्रकारों को ये जानकारी दी।
11: मैं जो इनपुट मिला है उसमें हमने और कहा इसको और इम्प्रूव करो और एक रोल मॉडल के रूप में हम पूरे देश में सारे सरकार को हम भेजेंगे भाई इस रूप में आप हमें अपनी रिपोर्ट प्रिपेयर करके दो। जैसे इंडस्ट्रीज डिपार्टमेंट करे इंडस्ट्रीज में क्या लॉस होता है, प्रोडक्शन का कितना लॉस होता है, लेबर एक तरह से दूसरे तरह माइग्रेट करती है, सबको कहा अपनी रिपोर्ट प्रिपेयर करें और उसका संकलन करके आगे दे सके।
2: नागर विमानन महानिदेशालय ने एयर इंडिया के बोइंग 787-8 विमान के ईंधन नियंत्रण स्विच

0: की जांच मूल उपकरण निर्माता केंद्र पर महानिदेशालय के अधिकारियों की उपस्थिति में करने का निर्देश दिया है। महानिदेशालय के अनुसार एयर इंडिया के बोइंग 787-8 विमान का संचालन इस वर्ष 2 फरवरी को लंदन के हीथ्रो हवाई अड्डे से बेंगलुरु के लिए उड़ान AIC-132 संचालित करने के बाद रोक दिया गया था। एक रिपोर्ट।
1: यह कार्रवाई पायलट डिफेक्ट रिपोर्ट में दर्ज एक प्रविष्टि के बाद की गई थी। इसमें कहा गया था कि बायां ईंधन नियंत्रण स्विच थोड़ा सा दबाने पर रन से कट ऑफ स्थिति में फिसल जाता है और चयनित स्थिति में ठीक से लॉक नहीं होता है। महानिदेशालय ने कहा कि एयर इंडिया ने मूल उपकरण निर्माता की निर्धारित प्रक्रियाओं के अनुसार और महानिदेशालय के अधिकारियों की उपस्थिति में ईंधन नियंत्रण स्विच का निरीक्षण और कार्यात्मक परीक्षण किया। निरीक्षण परिणामों और उपलब्ध साक्ष्यों की समीक्षा के बाद निष्कर्ष निकाला गया कि ईंधन नियंत्रण स्विच यांत्रिक रूप से डिजाइन के अनुसार कार्य कर रहा था और इकाई को सेवा योग्य घोषित किया। हालांकि महानिदेशालय ने निगरानी के अंतर्गत निर्देश दिया है कि ईंधन नियंत्रण स्विचों का भविष्य में निरीक्षण किया जाए। अनुपम की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से कृष्णकांत।
0: भारतीय रेल ने ब्रॉड गेज नेटवर्क का 99.6% विद्युतीकरण पूरा कर महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। इस वर्ष मार्च तक ब्रॉडगेज रेलवे लाइन का 69,873 किलोमीटर से अधिक मार्ग विद्युतीकृत हो चुका था। इस उपलब्धि के साथ भारत ने यूरोपीय संघ, ब्रिटेन और अमेरिका सहित कई प्रमुख देशों को पीछे छोड़ दिया है। नई दिल्ली के प्रधानमंत्री संग्रहालय में आज से महात्मा गांधी का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से संचालित 3D अवतार आगंतुकों के लिए खोल दिया जाएगा। आगंतुक महात्मा गांधी के 3D अवतार के साथ संवाद कर सकेंगे और अत्याधुनिक तकनीक के माध्यम से बापू की आत्मा को जीवंत कर सकेंगे। और अब खेल समाचारों के साथ है आनंद पाठक।
2: आईपीएल क्रिकेट में राजस्थान रॉयल्स ने कल रात लखनऊ सुपर जायंट्स को 7 विकेट से हरा दिया। इसके साथ ही राजस्थान की प्लेऑफ में पहुंचने की संभावना भी बनी हुई है। राजस्थान रॉयल्स ने 221 रन का लक्ष्य 7 विकेट के नुकसान पर 5 गेंद शेष रहते हासिल कर लिया। वैभव सूर्यवंशी ने 93 रन की शानदार पारी खेली। वैभव को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। प्रतियोगिता में आज कोलकाता नाइट राइडर्स का मुकाबला मुंबई इंडियंस से होगा। यह मैच कोलकाता में शाम 7:30 बजे से शुरू होगा। वरिष्ठ भारतीय क्रिकेटर विराट कोहली ने भारतीय हॉकी खिलाड़ियों के फिटनेस स्तर की सराहना करते हुए इसे खेल के लिए समर्पण की पहचान बताया है। कोहली ने कहा कि क्रिकेटरों की फिटनेस भारतीय हॉकी खिलाड़ी की फिटनेस के 15% के बराबर भी नहीं है। सैफ महिला फुटबॉल चैंपियनशिप 2026 के लिए भारतीय दल की पहली सूची की घोषणा कर दी गई है। यह प्रतियोगिता इस महीने की 25 तारीख से 6 जून तक गोवा में आयोजित की जा रही है। उधर राष्ट्रीय डोपिंग रोधी एजेंसी ने सर्विसेज स्पोर्ट्स कंट्रोल बोर्ड के अंकित और रेलवे के जयेश पाटिल पर 3 वर्ष का प्रतिबंध लगा दिया है। दोनों खिलाड़ियों का डोपिंग टेस्ट पॉजिटिव आया था। अंकित ने राष्ट्रीय क्रॉस कंट्री चैंपियनशिप में 3रा स्थान जबकि पाटिल ने 5वां स्थान प्राप्त किया था। दोनों खिलाड़ियों ने आरोपों को स्वीकार कर लिया जिसके परिणाम स्वरूप उनकी अयोग्यता अवधि में 1 वर्ष की कमी हुई है।
0: और अब बात मौसम की। मौसम विभाग ने उत्तर प्रदेश में अगले 2 दिन भीषण गर्मी का रेड अलर्ट जारी किया है। प्रदेश में बढ़ता तापमान हर दिन नए रिकॉर्ड बना रहा है। एक रिपोर्ट।
3: राज्य के बुंदेलखंड इलाके का बांदा जिला लगातार 3रे दिन भी देश का सबसे गर्म क्षेत्र बना हुआ है, जहां अधिकतम तापमान 48.2 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया। राज्य के अन्य हिस्सों में भी भीषण गर्मी से राहत नहीं मिली है और कई स्थानों पर दिन का अधिकतम तापमान 44 से 47 डिग्री सेल्सियस के बीच बना हुआ है और रात के समय भी तापमान 30 डिग्री के आसपास पहुंच रहा है। पारा बढ़ने से आम जनजीवन पर तो असर पड़ा ही है, पशु पक्षी भी सबसे ज्यादा प्रभावित हुए हैं। मौसम विभाग ने अगले 2 दिनों के लिए राज्य में भीषण लू का रेड अलर्ट जारी किया है। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
0: मध्य प्रदेश भी भीषण गर्मी की चपेट में है। राज्य में पहली बार पारा 47 डिग्री तक पहुंच गया है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध है। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ है आकर्षिता सिंह।
4: धन्यवाद विशाल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नॉर्वे यात्रा लोकसत्य सहित कई अखबारों में है। भारत नॉर्वे के बीच अंतरिक्ष, हेल्थ, डिजिटल क्षेत्रों सहित 12 समझौते। भारत नॉर्डिक समिट में पीएम मोदी के शब्द, नवभारत टाइम्स में है। आतंकवाद पर हो एक रुख, कोई समझौता नहीं, कोई दोहरा मापदंड नहीं। प्रधानमंत्री मोदी की इटली यात्रा पर दोनों देशों के प्रधानमंत्रियों का साझा लेख, दैनिक जागरण में है। रणनीतिक साझेदारी के युग में भारत और इटली शीर्षक से छपे लेख के अनुसार भारत का तेजी से बढ़ता नवाचार तंत्र और कुशल पेशेवरों की बड़ी संख्या तथा इटली की उन्नत औद्योगिक क्षमता दोनों देशों के सहयोग

0: को स्वाभाविक और रणनीतिक सहयोगी बनाती है। आवारा कुत्तों पर सर्वोच्च न्यायालय का आदेश सभी अखबारों के मुख पृष्ठ पर है। हिंदुस्तान की सुर्खी है, खूंखार कुत्तों को सजाए मौत। शीर्ष न्यायालय ने कहा, बच्चों और बुजुर्गों के जीवन को भाग्य के भरोसे नहीं छोड़ सकते। राजस्थान पत्रिका ने सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी को दिया है, भयमुक्त जीवन लोगों का अधिकार। नक्सलवाद की तरह 3 वर्ष में हर केस खत्म करने का लक्ष्य, गृह मंत्री अमित शाह का ये बयान दैनिक भास्कर में है।
1: धन्यवाद आकर्षिता। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज रोम में इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी से वार्ता करेंगे। दोनों नेता भारत पश्चिम एशिया यूरोप आर्थिक गलियारे के लिए सहयोग बढ़ाने पर चर्चा और वर्ष 2025 से 2029 तक संयुक्त रणनीतिक कार्रवाई योजना की समीक्षा करेंगे। पश्चिम बंगाल सरकार 25 से 60 वर्ष की महिलाओं के लिए प्रतिमाह 3000 रुपए की आर्थिक सहायता वाली अन्नपूर्णा योजना 1 जून से शुरू करेगी। एक राष्ट्र एक चुनाव की संयुक्त संसदीय समिति ने कहा, लोकसभा और विधानसभा चुनाव एक साथ कराने से लगभग 7 लाख करोड़ रुपए की बचत होगी। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज़। Good morning, I am Abhishek Mukhopadhyay. The headlines. Prime Minister Narendra Modi to hold talks with his Italian counterpart Giorgia Meloni in Rome today. Two leaders to discuss ways to boost cooperation on India-Middle East-Europe economic corridor and review joint strategic action plan 2025-2029. West Bengal government to roll out Annapurna scheme providing 3,000 rupees per month to women aged 25 to 60 years from June 1st. Joint Parliamentary Committee on One Nation, One Election says simultaneous Lok Sabha and Assembly elections can save nearly 7 lakh crore rupees and increase India's GDP growth by 1.6%. DGCA orders further inspection of fuel control switch of an Air India Boeing 787-8 aircraft following technical snag earlier this year. And in IPL cricket, Rajasthan Royals beat Lucknow Super Giants by 7 wickets in Jaipur. Prime Minister Narendra Modi arrived in Rome last night on an official visit to Italy. Mr. Modi was received at the airport by Italy's Deputy Prime Minister and Minister of Foreign Affairs and International Cooperation, Antonio Tajani. Later, Italian Prime Minister Giorgia Meloni hosted a dinner in honor of Mr. Modi. After the dinner, PM Modi reached Anantara Palazzo Nayadi
3: at the Kurumin Palace today, where he will be budget a part of honor. The day's engagements include delegation level talks, press statements, exchange of memorandum of understanding, bilateral meetings, and a visit to the Food and Agriculture Organization. Prime Minister Modi will also plant a Morris Nigra black mulberry tree, a species that symbolically connects India and Italy through its culinary, medicinal, and agricultural significance. This is Suparna Bhatia.
2: Earlier yesterday, Indian Nordic nations comprising Norway, Sweden, Denmark, Finland and Iceland elevated the bilateral ties to a green technology and innovation strategic partnership. Mr. Modi made the announcement while addressing a joint press meet with leaders of Nordic nations after attending the third India-Nordic summit in the Norwegian capital Oslo.
4: आज हमने भारत और नॉर्डिक संबंधों को ग्रीन टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का स्वरूप देने का निर्णय लिया है। इस ग्रीन टेक्नोलॉजी पार्टनरशिप से हम आइसलैंड की जियोथर्मल और फिशरीज, नॉर्वे की ब्लू इकोनॉमी और आर्कटिक और सभी नॉर्डिक देशों की मैरिटाइम और साइंसिटिविटी में एक्सपर्टीज को, सस्टेनेबिलिटी की एक्सपर्टीज को भारत के स्केल के साथ जोड़कर पूरे विश्व के लिए एक बेहतर भविष्य सुनिश्चित करेंगे।
2: Prime Minister Modi said investments from Nordic countries in India rose by 200% in the past decade.
4: 10 वर्षों में हमारा बायलेटरल ट्रेड लगभग 4 गुना बढ़ा है। नॉर्डिक देशों के इन्वेस्टमेंट फंड भी भारत की रैपिड ग्रोथ में अहम साझेदार बन रहे हैं। पिछले 1 दशक नॉर्डिक देशों से भारत में निवेश में लगभग 200% की बढ़ोतरी हुई है। तेजी से बढ़ते ट्रेड

0: उमंग CIET प्रस्तुत करता है
1: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: स्वागत है आप सभी श्रोताओं का कार्यक्रम उमंग में। मैं हूँ विमलेश, नमस्कार।
0: और मैं हूँ अजीत। नमस्कार श्रोताओं, कस्बा बराड़ा, जिला अम्बाला हरियाणा से रवि कुमार राहुल, रंजीत कौर, जयप्रकाश राहुल, प्रियंका, नूर, नमन, सिमरत, गुरकीरत राहुल और गुरशब्द सिंह जी ने सुविचार भेजा है। लिखते हैं,
2: आप कौन हैं, आपकी क्षमताएं क्या हैं और आपके संस्कार क्या हैं? इन सब का निर्धारण आपके द्वारा किए गए कार्यों के संचय से होता है। आपकी सफलता, आपका व्यवहार और आपके कार्यों का समाज पर प्रभाव ही वो स्वर है जो आपकी अनुपस्थिति में भी आपकी पहचान की घोषणा करता है।
0: बहुत बहुत धन्यवाद आपके सुंदर विचार के लिए। आइए अब सुनते हैं श्रोताओं के नाम और उनके संदेश। तो पहला संदेश हमें मिला है राधेनगर अकोला महाराष्ट्र से राजेश पी कारिया जी का। लिखते हैं,
2: 14 अप्रैल 2026 का उमंग प्रोग्राम बेहद पसंद आया, जिसमें आपने हाथ से लिखने की आदत के बारे में बताया। ये सही है कि इस डिजिटल युग में हाथ से लिखना बहुत कम हो गया है। ऐसे तो हाथ से लिखने से बहुत से फायदे हैं, जैसे कि याददाश्त तेज होती है, दिमाग शांत होता है, रचनात्मकता बढ़ती है, एकाग्रता सुधरती है, समझ गहरी होती है और हाथ की कसरत भी होती है।
0: आपका बहुत बहुत धन्यवाद आपके सुंदर संदेश के लिए। अगला संदेश हमें मिला है ग्राम नागर कोहरा, जिला राजनांदगांव छत्तीसगढ़ से। संदेश भेजने वाले हैं बबलू साहू, जामुन देवी साहू, पूजा, प्रेम, दुष्यंत, प्रांजल, समीक्षा और बेबी आराध्या साहू।
2: केंद्रपाड़ा उड़ीसा से देशदीप दास जी।
0: और चंडीगढ़ से सतीश अनेजा और बिमला अनेजा।
2: कृष्णा पार्क दिल्ली से याकूब आसमा फकीर, यूसुफ आसमा फकीर, असलम आसमा फकीर और अकरम आसमा फकीर।
0: आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद संदेश भेजने के लिए। आप सबका स्वागत है श्रृंखला ये भी जानिए में। तो आइए श्रोताओं, सुनते हैं इस श्रृंखला की अगली कड़ी। श्रोताओं, जैसा कि आप जानते हैं, इस सप्ताह हम चर्चा कर रहे हैं वर्षा वन यानी रेन फॉरेस्ट की।
2: जी,
0: तो विमलेश जी अब श्रृंखला को आगे बढ़ाते हैं।
2: जी जी जी श्रोताओं, कल हमने ली थी वर्षा वन की सामान्य जानकारी। आगे हम आज चर्चा करेंगे क्षेत्रफल के आधार पर दुनिया के प्रमुख वर्षा वनों की। तो करते हैं शुरुआत अमेजन वर्षा वन से।
0: जी जरूर श्रोताओं, आपने टीवी चैनलों में अमेजन वर्षा वन के रोमांचकारी दृश्यों को जरूर देखा होगा। समाचार पत्रों या अन्य संचार माध्यमों के द्वारा भी इसके बारे में कुछ न कुछ जानकारी तो अवश्य प्राप्त की होगी।
2: जी,
0: आइए इसके बारे में थोड़ा और विस्तार से जानते हैं।
2: श्रोताओं, अमेजन वर्षा वन दुनिया का सबसे बड़ा वनस्पति और जीव समृद्ध वर्षा वन है। ये लगभग 55 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। और हाँ, इसे समुद्र के बाद पृथ्वी का सबसे बड़ा फेफड़ा भी कहा गया है।
0: ऐसा इसलिए कहा गया है श्रोताओं कि धरती की कुल ऑक्सीजन का लगभग 20% ऑक्सीजन हमें इसी वर्षा वन से मिलता है।
2: जी,
0: जहाँ तक इसके स्थान की बात है तो यह दक्षिण अमेरिका या लैटिन अमेरिका में फैला हुआ है, मुख्य रूप से ब्राजील में।
2: लेकिन इसके कुछ भाग पेरू और कोलम्बिया में भी फैले हुए हैं। यहाँ भारी वर्षा होती है, लगभग 2000 मिलीमीटर प्रति वर्ष से भी अधिक।

0: अब श्रृंखला को आगे बढ़ाते हैं।
1: जी जी जी श्रोताओं, कल हमने ली थी वर्षावन की सामान्य जानकारी। आगे हम आज चर्चा करेंगे क्षेत्रफल के आधार पर दुनिया के प्रमुख वर्षावनों की। तो करते हैं शुरुआत अमेजन वर्षावन से।
0: जी जरूर श्रोताओं, आपने टीवी चैनलों में अमेजन वर्षावन के रोमांचकारी दृश्यों को जरूर देखा होगा। समाचार पत्रों या अन्य संचार माध्यमों के द्वारा भी इसके बारे में कुछ न कुछ जानकारी तो अवश्य प्राप्त की होगी।
1: जी
0: आइए इसके बारे में थोड़ा और विस्तार से जानते हैं।
1: श्रोताओं, अमेजन वर्षावन दुनिया का सबसे बड़ा वनस्पति और जीव समृद्ध वर्षावन है। ये लगभग 55 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। और हाँ, इसे समुद्र के बाद पृथ्वी का सबसे बड़ा फेफड़ा भी कहा गया है।
0: ऐसा इसलिए कहा गया है श्रोताओं कि धरती की कुल ऑक्सीजन का लगभग 20% ऑक्सीजन हमें इसी वर्षावन से मिलता है।
1: जी
0: जहाँ तक इसके स्थान की बात है तो यह दक्षिण अमेरिका या लैटिन अमेरिका में फैला हुआ है, मुख्य रूप से ब्राजील में।
1: लेकिन इसके कुछ भाग पेरू और कोलंबिया में भी फैले हुए हैं। यहाँ भारी वर्षा होती है, लगभग 2000 मिलीमीटर प्रति वर्ष से भी अधिक।

आपने ट्यून किया है भारत का नंबर वन मनोरंजन चैनल विविध भारती और कार्यक्रम चल रहा है चित्रलोक। लीजिए सुनिए शशांक त्रिपुति की आवाज में बी केयरफुल फिल्म का गाना, कुमार के हैं बोल और सिद्धार्थ सुहास की है तर्ज।

अभी आप सुन रहे थे बांके की क्रेजी बारात फिल्म का गाना। दोस्तों आज 20 मई है, आज है विश्व मधुमक्खी दिवस यानी वर्ल्ड बी डे। तो विश्व मधुमक्खी दिवस प्रत्येक वर्ष 20 मई को मनाया जाता है। इस दिवस का उद्देश्य मधुमक्खियों और अन्य परागण करने वाले जीवों के महत्व के प्रति लोगों को जागरूक करना है।

मधुमक्खियां प्रकृति के संतुलन को बनाए रखने में अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। वे फूलों से पराग एकत्र कर पौधों के परागण में सहायता करती हैं, जिससे फलों, सब्जियों और अनाजों का उत्पादन बढ़ता है। और लेकिन दोस्तों, आज प्रदूषण, कीटनाशकों का अत्यधिक उपयोग, जलवायु परिवर्तन और जंगलों की कटाई के कारण मधुमक्खियों की संख्या लगातार घट रही है। ये चिंताजनक बात है ना? अतः हमें अपने पर्यावरण की रक्षा करनी है, तभी मधुमक्खियां सुरक्षित रहेंगी और हमारी खाद्य श्रृंखला भी सुरक्षित रहेगी। इस वर्ष की थीम है बी टुगेदर फॉर पीपल एंड द प्लैनेट, अ पार्टनरशिप दैट सस्टेन्स अस ऑल। तो चलिए चित्रों कार्यक्रम में आगे बढ़ते हुए इंग्लिश फिल्म का ये गाना आपको सुनवा रहे हैं।

आपने ट्यून किया है भारत का नंबर वन मनोरंजन चैनल विविध भारती और कार्यक्रम चल रहा है चित्रलोक। लीजिए अब सुनिए कनिष्क सेठ और कविता सेठ की आवाजों में जुग जुग जियो फिल्म का गाना। एक पारंपरिक रचना है जिसे संगीतबद्ध किया है कनिष्क सेठ और कविता सेठ ने।

0: जैसे कि आप जानते हैं विविध भारती हर महीने करता है अपनी एक महफिल सृजन भारती। इस बार सृजन भारती लेकर आ रहा है लोक संगीत की भीनी खुशबू और कुछ दिलचस्प बातों का गुलदस्ता। और ये कार्यक्रम होगा एक मुक्ताकाशी रंगमंच पर 21 मई शाम 6:30 पर। लोक संगीत और कुछ दिलचस्प बातों से सजा रंगारंग कार्यक्रम। आयोजन स्थल है ज्ञान सागर मुक्ताकाशी ऑडिटोरियम रघुनाथ टावर के सामने देवीदास लेन बोरीवली पश्चिम मुंबई। प्रवेश बिल्कुल मुफ्त। आप सभी खुद आएं और अपने दोस्तों को लेकर आएं।
1: विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन से भी आप सुन रहे कार्यक्रम चित्रलोक। लीजिए अब सुनिए शशि और डीजे खुशी की आवाजों में लक्ष्मी फिल्म का गाना। गगन आहूजा हैं गीतकार और संगीतकार हैं शशि और डीजे खुशी।

0: आज के इस प्रोग्राम की आखिरी पेशकश राजा हसन देव नेगी, प्रवेश मलिक और मोनाली ठाकुर की आवाजों में। गीतकार हैं शबीर अहमद और तनिष्क बाग्ची, संगीतकार हैं तनिष्क बाग्ची। फिल्म का नाम जवड़िया जोड़ी।
1: तोहरी लचके जब कमरिया हसा।

0: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना। जरा सुनिए कैसे बना ये गाना।
1: कमाल साहब कहने लगे खयाम साहब जो मेरा हीरो है वो सिंगर नहीं है, उसने गाना सीखा नहीं, मुझे ऐसी आवाज।
0: संगीतकार खयाम।
1: पूरे हिंदुस्तान भर से आवाजें इकट्ठी की गई, यहाँ बुलाया गया, सजेशन आई कि साहब एक आवाज है कब्बन मिर्जा साहब, बुलाया उनको, सुना आवाज तो यही है जो चाहिए कमाल साहब को, बेमिसाल गा गए वो, आई जंजीर की झनकार खुदा खैर। तो उसमें जो रिदम है जंजीरों का,
0: ऐसी अद्भुत यादें आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती, आपका जीवन संगीत।

कुछ कलाकार ऐसे होते हैं जिनका कार्य उन्हें जीते जी अमर कर देता है। फिल्मों में गिरीश कर्नाड को हमने चरित्र अभिनेता के रूप में देखा, निशांत, स्वामी, मंथन, अपने पराये, मेरी जंग, सुर संगम के तो वे नायक थे, परंतु मूलतः गिरीश सच्चे साहित्यकार और रंगकर्मी थे। गिरीश कर्नाड का जन्म 19 मई 1938 को महाराष्ट्र के पर्यटन स्थल माथेरान में हुआ था, मगर उनकी मां कृष्णाबाई और पिता डॉ. रघुनाथ कर्नाड कन्नड़िगा थे, अर्थात कर्नाटक के रहने वाले थे। प्राथमिक शिक्षा मराठी में हुई। आगे जब वो परिवार कर्नाटक के सिरसी गांव में रहने लगा, तब गिरीश नाटक मंडलियों के संपर्क में आए। वहां के लोक नाट्य यक्षगान के तो वे जबरदस्त प्रशंसक थे। गिरीश जब 14 बरस के थे, तब उनका परिवार धारवाड़ में आ बसा, जहां उन्होंने बीए तक की पढ़ाई पूरी की और फिर वे इंग्लैंड चले गए। ऑक्सफोर्ड के मैग्डलिन शहर में रहकर उन्होंने फिलोसॉफी, पॉलिटिकल साइंस और इकोनॉमिक्स विषयों को लेकर एमए की डिग्री हासिल की।

1963 में भारत लौटने के बाद गिरीश कर्नाड चेन्नई में ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस के लिए काम करने लगे। अब भी नाटकों और लोक कलाओं के प्रति उनका आकर्षण कम नहीं हुआ था। चेन्नई में रहते हुए गिरीश कर्नाड द मद्रास प्लेयर्स नामक नाटक मंडली से जुड़ गए। विदेश जाने से पहले ही 1961 में गिरीश कर्नाड ने जब लिखना शुरू किया था, ये वो समय था जब कन्नड़ साहित्य पर यूरोपीय साहित्य की छाप देखने को मिलती थी। कमोबेश सभी भारतीय भाषाओं के साहित्य की स्थिति यही थी। सी राजगोपालाचारी द्वारा रचित महाभारत का संस्करण गिरीश कर्नाड ने पढ़ा और उन्होंने अनुभव किया कि महाभारत के पात्र उनके मस्तिष्क में विचरण कर रहे हैं और उन पात्रों के संवाद कानों में गूंज रहे हैं। आगे एक साक्षात्कार में उन्होंने बताया कि मैं तो मात्र लेखनी हूं, एक एक कर सभी पात्र मेरे कानों में बोलते गए और मैं लिखता गया। नाटक तैयार हुआ ययाति। पांडवों के पूर्वज ययाति पर केंद्रित यह नाटक बहुत सफल हुआ और अन्य भाषाओं में इसके अनुवाद भी हुए। 1964 में गिरीश कर्नाड ने अपना अगला नाटक लिखा तुगलक। 14वीं सदी के दिल्ली के इस सुल्तान की कहानी के माध्यम से तत्कालीन प्रशासन के महत्वाकांक्षी आदर्शवाद का बुलबुला बड़ी सहजता से दर्शाया गया था इस नाटक में। गिरीश कर्नाड को एक नजरिया मिल गया था, कहानी के स्रोत इतिहास या पुराणों से लेना और समकालीन विषयों तथा आधुनिक मानव की अस्तित्व के लिए चल रही लड़ाई के साथ उसे जोड़ देना। मात्र 26 वर्ष की आयु में गिरीश कर्नाड एक उदीयमान प्रतिभाशाली लेखक के रूप में स्थापित हो चुके थे। सन 1971 गिरीश कर्नाड के कला जीवन की दो महत्वपूर्ण घटनाएं, एक और 11वीं सदी के संस्कृत ग्रंथ कथा सरित सागर से ली गई एक कहानी पर आधारित नाटक हैवदन का निर्माण और दूसरी ओर SL भैरप्पा के उपन्यास पर बनी फिल्म वंश वृक्ष का निर्देशन। लोकनाट्य यक्षगान के सांचे में ढलकर नाटक हैवदन का सफल मंचन हुआ और खूब सराहना मिली। ये नाटक जर्मन भाषा में भी अनुवादित हुआ, उसका निर्देशन किया जानी मानी निर्देशिका विजया मेहता ने। यूं तो 1970 में ही गिरीश कर्नाड का पदार्पण हो चुका था फिल्म संस्कार के पटकथा लेखक के रूप में। इस फिल्म को राष्ट्रपति के स्वर्ण कमल से सम्मानित किया गया था। निर्देशक के रूप में गिरीश कर्नाड की पहली फिल्म थी वंश वृक्ष, जिसके लिए राष्ट्रीय फिल्म समारोह में सर्वोत्कृष्ट निर्देशक का पुरस्कार उन्होंने साझा किया BV कारंत के साथ। आगे कई कन्नड़ फिल्मों का उन्होंने निर्देशन किया। जहां तक हिंदी फिल्मों की बात है, 1977 में गिरीश कर्नाड ने जिस फिल्म का निर्देशन किया वो फिल्म थी गोधूली और 1984 में शशि कपूर निर्मित फिल्म उत्सव।

मृदंग मन में और क्यों न खनके मंजीरा अंग अंग में, जब लेखन और निर्देशन के साथ साथ गिरीश कर्नाड के नाम का डंका अभिनय के क्षेत्र में भी बजने लगा। तब्बलियु नीनदे मगने, ओंदनंदु कलदल्ली, चेलुवी, काडू, कोन्नुरु हेगदित्ती, ये हैं कुछ प्रमुख कन्नड़ फिल्मों के नाम जिनमें गिरीश कर्नाड ने अभिनय किया है। उनके अभिनय से सजी हिंदी फिल्मों की तो एक लंबी फहरिस्त है। जादू का शंख, निशांत, मंथन, स्वामी, जीवन मुक्त, संपर्क, रत्नदीप, बेकसूर, आशा, मनपसंद, अपने पराए, क्षमा, तेरी कसम, आनंद भैरवी, एक बार चले आओ, तराना, जमाना, मेरी जंग, सुरसंगम, सूत्रधार, आकर्षण, मिल गई मंजिल मुझे, चैतन्य, ब्रह्म, अंतरनाद, गुना, प्राणदाता, आतंक, चाइना गेट, AK-47, पुकार, इकबाल, डोर, 8x10 तस्वीर, आशाएं, लाइफ गोज ऑन, एक था टाइगर, शिवाय, चौक इंडस्टर और टाइगर जिंदा है। फिल्म सुरसंगम, जो तेलुगु में शंकरा भरणम के नाम से बनी थी, इसके नायक पंडित शिवशंकर शास्त्री की भूमिका में थे गिरीश कर्नाड। वो जानदार शानदार अभिनय कैसे भुलाया जा सकता है।

0: 1980 के दशक में कलाकारों के लिए एक और मार्ग प्रशस्त हुआ, दूरदर्शन का। नई नई श्रृंखलाएं बनने लगी। अंग्रेजी के मशहूर साहित्यकार आर के नारायण की कहानियों पर आधारित हिंदी सीरियल बना मालगुड़ी डेज, जिसका नायक था एक नन्हा सा नटखट बालक स्वामी। इस श्रृंखला में स्वामी के पिता की भूमिका की थी गिरीश कर्नाड ने।
1: पिताजी कॉफी, मुझे आपका कमरा चाहिए।
2: किस लिए?
1: मेरा एक दोस्त आ रहा है।
2: तो तुम्हारा अपना कमरा है, वही ले।
1: राजम को वहाँ कैसे ले जाऊँ?
2: ये राजम है कौन, इतना बड़ा आदमी?
1: डीएसपी का बेटा है, बहुत बड़ा आदमी है वो।
2: अच्छा ठीक है, तुम ये कमरा ले सकते हो, लेकिन मेज पर रखी हुई चीजों को हिलाना नहीं।
1: बिल्कुल नहीं हिलाऊंगा पिताजी, आप अच्छे पिताजी हैं।

1971 से लेकर 1990 तक गिरीश कर्नाड द्वारा लिखित नागमंडल, अग्निमट्टू माले और तालेदंड, इन नाटकों को अनुवादित रूप में राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपार सफलता मिली। भाषा साहित्य की सेवा के लिए गिरीश कर्नाड को 1972 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार, 1974 में पद्मश्री पुरस्कार, 1992 में पद्मभूषण पुरस्कार से गौरवान्वित किया गया। 1992 में ही उन्हें कन्नड़ साहित्य परिषद का पुरस्कार प्रदान किया गया। 1994 में साहित्य अकादमी अवार्ड दिया गया। 1998 में कालिदास सम्मान तथा ज्ञानपीठ पुरस्कार से गिरीश कर्नाड को सम्मानित किया गया। फिल्मों में उनके योगदान को अन्यान्य पुरस्कारों से प्रतिष्ठा मिली। 1971 में बेस्ट डायरेक्टर फिल्म वंश वृक्ष के लिए, 1977 में बेस्ट फीचर फिल्म इन कन्नड़ा तब्बलियु नीनदे मगने के लिए, फिल्म भूमिका की पटकथा के लिए 1978 में बेस्ट स्क्रीन प्ले का पुरस्कार उन्होंने साझा किया श्याम बेनेगल और सत्यदेव दुबे के साथ।

नंदू कलदल्ली। कन्नड़ भाषा में बनी इस फिल्म के लिए बेस्ट फीचर फिल्म का उन्हें पुरस्कार मिला 1978 में। कन्नड़ भाषा के एक संत कवि कनक पुरंदर पर उन्होंने एक वृत्त चित्र का निर्माण किया था। इसके लिए बेस्ट डॉक्यूमेंट्री का पुरस्कार उन्हें दिया गया 1989 में। साथ ही साथ कर्नाटक राज्य सरकार के कई सम्मान उन्हें मिले तथा कई अंतर्राष्ट्रीय सम्मान भी गिरीश कर्नाड को मिले साहित्य एवं फिल्म

10 जून 2019 भारतीय रंगमंच और सिनेमा तथा कन्नड़ साहित्य जगत के आकाश से एक चमकता सितारा अस्त हुआ।

0: आज के फनकार कार्यक्रम आज केंद्रित था लेखक निर्देशक एवं अभिनेता गिरीश कर्नाड पर।
1: आज के फनकार।

0: सेल्यूलॉइड के सितारे।
1: हमारी जनगणना हमारा विकास के संदेश के साथ नागरिकों को जागरूक करने, जन सहभागिता सुनिश्चित कराने और जनगणना 2027 को सफल बनाने के उद्देश्य से विभिन्न गतिविधियां संचालित की जा रही हैं। इसी कड़ी में जनगणना प्रचार रथ के माध्यम से जिले में नागरिकों को जनगणना के महत्व से अवगत कराया जा रहा है। प्रचार रथ नागरिकों को वीडियो फिल्म एवं जन जागरूकता संदेशों के जरिए जनगणना प्रक्रिया की जानकारी दे रहा है। बुरहानपुर में प्रस्तावित निमाड़ इंडस्ट्रियल मीट के आयोजन को लेकर मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने उद्योगपतियों और निवेशकों से बीते दिनों चर्चा की। इस दौरान उन्होंने औद्योगिक विकास के नए क्लस्टर बनाने, निवेश आकर्षित करने और रोजगार के अवसर बढ़ाने पर जोर दिया। अधिकारियों ने तैयारियों का प्रेजेंटेशन देकर भरोसा जताया और उद्योग जगत से सुझाव आमंत्रित किए, जिससे साझेदारी पर आधारित विकास रणनीति पर मंथन हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ईंधन बचत की अपील को बुरहानपुर जिले के जनप्रतिनिधि और आमजन अमल में लाए हैं। सांसद ज्ञानेश्वर पाटिल सुबह बुरहानपुर रेलवे स्टेशन से महानगरी एक्सप्रेस पकड़कर खंडवा के लिए रवाना हुए। गांव बोहरडा से स्टेशन तक ईवी कार से पहुंचे और फिर रेल यात्रा की। उन्होंने निजी गाड़ी छोड़कर सार्वजनिक यातायात अपनाकर ईंधन बचत का संदेश दिया है। बुरहानपुर जिले की खकनार पुलिस ने यातायात सुरक्षा अभियान के तहत थाना प्रभारी अभिषेक जाधव और उनकी टीम ने शादी समारोह में पहुंचकर दूल्हा दुल्हन को हेलमेट भेंट करने का अभियान शुरू किया। ऐसे ही क्षेत्र की दर्जनों शादियों में पहुंचकर पुलिस बारातियों को यातायात सुरक्षा का संकल्प दिला रही है। बुरहानपुर में ताप्ती नदी डैम रोमांच और रेस्क्यू की असली पाठशाला बन गया है। आपदा प्रबंधन के 3 दिवसीय जिला स्तरीय प्रशिक्षण के दूसरे दिन दूसरे सत्र में SDERF, होमगार्ड और सिविल डिफेंस के 32 जवानों ने पानी के बीच जीवन बचाने की बारीकियां सीखी। तेज धूप और लहरों के बीच जवानों ने तैराकी, बोट संचालन, डूबते व्यक्ति तक फुर्ती से पहुंचने और सुरक्षित बाहर निकालने की तकनीक का अभ्यास किया। दूध की धार बढ़ाने के उद्देश्य से क्षीरधारा योजना के तहत पशुपालन विभाग की टीम गांव-गांव पहुंच रही है। पायलट प्रोजेक्ट के तहत टीकाकरण, नस्ल सुधार और आय दोगुनी करने का लक्ष्य लेकर बुरहानपुर जिले में पशुपालन को रफ्तार देने के लिए मध्य प्रदेश सरकार की महत्वाकांक्षी क्षीरधारा योजना ने जोर पकड़ लिया है। जिले में पायलट प्रोजेक्ट के तहत पशुपालन विभाग की टीमें अब गांव-गांव दस्तक दे रही हैं। वहीं बांझपन से जूझ रहे पशुओं के लिए विशेष शिविर, संक्रामक बीमारियों से बचाव के लिए नियमित टीकाकरण और कृत्रिम गर्भाधान से बेहतर नस्ल तैयार करने पर खास फोकस किया जा रहा है। बुरहानपुर का करीब 195 वर्ष पुराना स्वामी नारायण मंदिर इन दिनों पुरुषोत्तम मास में भक्ति से सराबोर है। यहाँ रोजाना प्रभु लक्ष्मी नारायण देव का सैकड़ों लीटर दूध, दही, केसर, पंचामृत और पवित्र जल से अभिषेक हो रहा है। मान्यता है कि सन 1882 से यह परंपरा बिना रुके चली आ रही है। भीषण गर्मी और लू के थपेड़ों को देखते हुए बुरहानपुर के लालबाग रेलवे स्टेशन पर महिलाओं द्वारा प्रतिदिन रेल यात्रियों को ठंडा पानी उपलब्ध कराया जा रहा है। विप्र नारी शक्ति सेवा संस्था की समाजसेवी महिलाएं रोजाना समूह बनाकर स्टेशन पहुंचती हैं और ट्रेनों में सवार यात्रियों को ठंडा पानी पिलाकर सुकून का एहसास कराती हैं। धरती आबा जनजाति ग्राम उत्कर्ष अभियान के अंतर्गत जिले के चयनित जनजाति बाहुल्य 116 ग्रामों के आदि सेवा केंद्रों पर जन भागीदारी सबसे दूर सबसे पहले अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान के अंतर्गत चयनित ग्रामों के आदि सेवा केंद्रों पर विशेष संतृप्ति शिविर आयोजित किए जा रहे हैं। इस अभियान में शासन की

योजनाओं का हितग्राहियों को लाभ दिलाया जा रहा है। कृषि विभाग द्वारा किसानों को शासकीय योजनाओं की जानकारी उपलब्ध कराने और उन्हें लाभान्वित करने के उद्देश्य से गांव-गांव कृषि चौपालों का आयोजन किया जा रहा है। इसी क्रम में ग्राम दवाटिया में आयोजित कृषि चौपाल में किसानों को शासन की हितग्राही मूलक योजनाओं की जानकारी दी गई। अधिकारियों ने किसानों की कृषि संबंधी समस्याओं एवं जिज्ञासाओं का समाधान करते हुए योजनाओं का अधिक से अधिक लाभ लेने के लिए प्रेरित किया। इस अवसर पर किसानों को जैविक खेती अपनाने के लिए प्रोत्साहित किया गया। जन जागृति संस्था बुरहानपुर द्वारा नर्सेस डे के उपलक्ष्य में बुरहानपुर क्षेत्र के शासकीय एवं अशासकीय अस्पतालों में कार्यरत महिला एवं पुरुष नर्सेस का सम्मान समारोह जिला स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर LDS वंकवाल, जन जागृति संस्था के संरक्षक एवं संस्थापक महेंद्र जैन और संस्था अध्यक्ष डॉक्टर किरण सिंह की उपस्थिति में आयोजित किया गया। जिला कलेक्टर हर्ष सिंह ने टीएल बैठक में बीते दिनों निर्देश दिए कि नॉन अटेंडेड शिकायतें पाए जाने पर संबंधित अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही की जाएगी। उन्होंने कहा कि शिकायतों का निराकरण सर्वोच्च प्राथमिकता के साथ किया जाए। अधिकारियों को नियमित रूप से फील्ड विजिट करने, जमीनी स्तर पर समस्याओं की जानकारी लेने और शिकायतों का समयबद्ध निराकरण करने के निर्देश दिए। बैठक में खनिज राजस्व और पुलिस विभाग को अवैध उत्खनन तथा परिवहन के विरुद्ध संयुक्त रूप से प्रभावी कार्यवाही करने के निर्देश भी दिए गए। बुरहानपुर जिले की चिट्ठी समाप्त हुई।

0: अभी आप सुन रहे थे बुरहानपुर जिले की चिट्ठी, यह आकाशवाणी भोपाल है।
1: FM वेव 103.1 मेगाहर्ट्ज़ पर यह आकाशवाणी का बैतूल केंद्र है। लीजिए प्रस्तुत है प्रायोजित कार्यक्रम स्वस्थ तन स्वस्थ जीवन।
2: नमस्कार श्रोताओं, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एक बार फिर स्वस्थ तन स्वस्थ जीवन कार्यक्रम में। मैं हूं आपके साथ मनोज सक्सेना और हमेशा हमारे साथ रहते हैं डॉक्टर सचिन चित्तावार जी। डॉक्टर सचिन चित्तावार भोपाल के जाने माने डायबिटीज, थायराइड और हार्मोन रोग के विशेषज्ञ हैं। सर नमस्ते।
3: नमस्कार
2: सर। बहुत सारे लोगों ने सवाल पूछे हैं कि कई लोग हैं बहुत मेहनत करते हैं, काम भी कर रहे हैं, दवाएं नियम से ले रहे हैं और जो भी परहेज होते हैं वो सारे किए जा रहे हैं, लेकिन डायबिटीज है कि कंट्रोल होने का नाम नहीं ले रही, क्या करा जाए?
3: देखिए, एक ऐसा होता है कि आप डॉक्टर को दिखा लेते हैं, दवा लेते हैं, फिर भी कंट्रोल नहीं आता। उसके बहुत से कारण हो सकते हैं। सबसे पहला कारण हो सकता है कि हमने ध्यान नहीं दिया कि आपको पेशाब के रास्ते इन्फेक्शन है। दूसरा, या तो आप स्टेरॉइड की कोई दवा पे हैं, किसी कारणवश डॉक्टर ने दवा दी है, वो लेना तो जरूरी है, पर आप अपने मधुमेह रोग चिकित्सक को बताना ही भूल गए। तीसरा आपका ये कारण हो सकता है कि आप दवा तो लेकर आ जाते हैं पर आप अड़ोसी पड़ोसी मामा ताऊ भाई की बातें ज्यादा सुनते हैं। वो कहते हैं कि आपके गुर्दे फूक जाएंगे। दवा नहीं खाने से और शुगर नियंत्रित ना होने से गुर्दे खराब हो सकते हैं। दवा खाने से कैसे गुर्दे खराब होंगे? आप दो गोली लिखी है तो आप उसकी एक ही खाते हो, कभी कभार आप चौथाई करते हो और बड़े शान से बताते हो जब डॉक्टर के पास आते हो, हम तो आधी ही गोली खा रहे हैं। तो ये चीजें हैं। उसके साथ साथ फिर आप जैसा हमेशा अपन बात करते हैं, आपके जीवन में अगर तनाव ग्रस्त हैं तो जो ये हर पल आप चिंतित तनाव ग्रस्त रहते हैं वो भी एक बहुत बड़ा कारण है। फिर आप व्यायाम नहीं करते, आप बोलते हैं कि हम तो यार व्यायाम तो नहीं हो सकता हमसे, तो वही उसका भी कहीं ना कहीं प्रभाव पड़ता है। तो इस तरह की सारी बातों को अगर आप मिला लें, खान पान का तो ध्यान रखना ही पड़ेगा। अगर शुगर नियंत्रित नहीं है, वैसे मैं बहुत ज्यादा ध्यान नहीं देता खान पान पे, पर अगर शुगर नियंत्रित नहीं है, दवा भी खा रहे हैं फिर भी संघर्ष कर रहे हैं, तो आप अपने डॉक्टर से मिलें। अगर वो बोलते हैं कि इंसुलिन की आवश्यकता है तो उसके लिए कभी मना मत करिए, क्योंकि आपके जीवन में खाली पेट शुगर 100, भरे पेट 180 के अंदर और 3 महीने का एवरेज 7% होना नितांत आवश्यक है।
2: सर, कई लोग ऐसे हैं बड़े लापरवाह रहते हैं, यदा कदा दवा खा ली और अपना मनमौजी जीवन जी रहे हैं और डायबिटिक हैं, पर डायबिटीज उन पर कृपा बहुत बनाए रखती है, वो बढ़ती नहीं है, तो ऐसे लोगों के लिए कितना खतरनाक है ये?
3: देखिए, शुरुआती दौर की डायबिटीज जरूरी नहीं है कि हर आदमी को डायबिटीज उस पैमाने पे आ जाए जहां आपको खूब सारी दवा या इंसुलिन की आवश्यकता पड़े। पर शोध ये बताते हैं कि जब भी 6.5 के ऊपर होता तो हम डायबिटीज कहते हैं, और 7 के ऊपर जब भी HbA1c रहने लगता है, तो भले ही डायबिटीज नियंत्रित हो, आपके जीवन में दुख आ सकते हैं। आंखों का पर्दा खराब हो सकता है, गुर्दा खराब हो सकता है, पैरों की नसों खराब हो सकती हैं। इसलिए आपको इस बारे में सोचना चाहिए, भले ही आपकी डायबिटीज बहुत ज्यादा सर पे नहीं है, पर उसका

0: नियंत्रण में होना बहुत ज्यादा जरूरी है।
1: वाकई सर, ये चीज हमारे जो श्रोता सुन रहे हैं उनके जहन से ये चीज निकल चुकी होगी, ये गलत फहमी अगर उनको है कि हमारी नॉर्मल डायबिटीज रहती है, हम तो बहुत खुश हैं। सर, बहुत दिनों तक डायबिटीज अगर अस्थिर रहती है और व्यक्ति लापरवाह रहता है, तो जैसे आपने बताया कि गुर्दे खराब हो सकते हैं, आंखों का पर्दा खराब हो सकता है, और क्या क्या दिक्कतें हो सकती हैं?
0: देखिए, लंबे समय तक अगर शुगर नियंत्रित नहीं रहता है तो समय समय पे आपको छोटे फंगल इन्फेक्शंस, पेशाब में जलन, खुजली, कहीं पैर में खुजली, खाद, दांत की समस्या आ गई, आपको निमोनिया हो सकता है, टीबी हो सकता है, क्योंकि रोग प्रतिरोधक क्षमता तो आपकी कम रहेगी क्योंकि शुगर नियंत्रित नहीं है। अगर शुगर नियंत्रित नहीं है तो आप अपने घर के दरवाजे खुले करके सोएंगे तो मान के चले कि चोर तो आके चोरी करके चला जाएगा। तो ये जो अपॉर्चुनिस्टिक अवसरवादी इन्फेक्शन है, ये चोरों की तरह है, ये राह देख रहे हैं।
1: सर, ये डायबिटिक न्यूरोपैथी क्या होती है?
0: देखिए, जब भी नसों में असर आता है, लंबे समय तक शुगर अगर नियंत्रित ना रहे तो नसों के जो नैसर्गिक गुण है होते हैं वो खत्म होने लगता है। तो जो नसों के थ्रू जो एक चेतना प्रभावित होती है वो कहीं कहीं बैकफायर करती है, तो आपको झुंझुनी, पिंस, चमक ऐसा महसूस होने लगता है। इसके बहुत सारे प्रकार हैं। अगर एक नस में हो गया या खूब सारी नस में हो गया या केवल सिमेट्रिकल सेंसरी है, तो ये सारे प्रकार बहुत सारे हैं, पर इसका मुख्य कारण शुगर नियंत्रण ना होना है।
1: अभी हम बात कर रहे थे भोपाल के सुविख्यात डायबिटीज, थायराइड और हार्मोन रोग के विशेषज्ञ डॉक्टर सचिन चित्तावार जी से। यह कार्यक्रम आप प्रति बुधवार इसी समय सुनते हैं। आप अपने विचार हमें व्हाट्सएप के जरिए भी भेज सकते हैं। हमारा नंबर है 8878112343। नंबर पुनः सुने 8878112343। अब दीजिए मनोज सक्सेना और डॉक्टर सचिन चित्तावार को अनुमति, स्वीकार कीजिए। नमस्कार।
2: अभी आप सुन रहे थे प्रायोजित कार्यक्रम स्वस्थ तन स्वस्थ जीवन। सुबह के 10:10 हुए हैं। लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम आपकी फरमाइश। कार्यक्रम आपकी फरमाइश सुन रहे हमारे सभी श्रोताओं को लक्ष्मण चौकीकर का प्यार भरा नमस्कार। श्रोताओं, सबसे पहले हमारे पास आई है फरमाइश कनेरा मोहल्ला पटियाला से बत्ता परिवार, मुकेश बत्ता, नीलम बत्ता, नितिन पलक, करण, गीतू, निहारिका, वंश बत्ता, आप सभी सुनना चाहते हैं अमर प्रेम फिल्म से किशोर कुमार की आवाज में आनंद बख्शी का लिखा और राहुल देव बर्मन का संगीतबद्ध किया ये प्यारा सा गीत।

0: Loke app, website www.daily-law.in या toll free number 14454 से प्राप्त की जा सकती है।
1: अगली फरमाइश आई है पीपरपारा पालचुआ मुंगेली छत्तीसगढ़ से उत्तरा कुमार दिवाकर, परमेश्वरी, योगिता, नितिन, वंशिका दिवाकर और इनके परिवार के सभी सदस्य गांधी चौक रोपड़ पंजाब से सुनना चाहते हैं। हरदेव मिका, बलविंदर विरक, जैतेक और मिका विरक इसी गीत को सुनना चाहते हैं। बेरडी से राजेश सोनी, कंचन सोनी, गायत्री ढोमने, वैष्णवी ढोमने, चंचल, अर्जुन, धीरज सवासेरे और इनके परिवार के सभी सदस्य। आपने सुनना चाहा है एयरलिफ्ट फिल्म से अमाल मलिक, अरिजीत सिंह और तुलसी कुमार की आवाज में ये प्यारा सा गीत।

0: जीतने का मौका। वाओ, पापा को सरप्राइज दूंगी। बस थोड़ी सी तो उनकी डिटेल भरनी है।
1: रुक जा बुड्ढू।
2: व्हाट? ऐसे पॉपअप से सावधान रहो, स्कैमर्स पर्सनल डिटेल्स का गलत यूज कर सकते हैं।
0: तो समझ गई ना, रिलैक्स। पर कार्ड जीत जाते तो पापा होमवर्क नहीं कराते।
2: RBI कहता है स्मार्ट बनो, कूल रहो।
3: आप सुन रहे हैं कार्यक्रम आपकी फरमाइश, और अगली फरमाइश आई है लक्षणपुर छत्तीसगढ़ से विश्वनाथ साहू, पंकज तिरुपति, रिंगनी छत्तीसगढ़ से दिनेश वर्मा, लेवई से गुलाबदास मानिकपुरी और दत्तरेंगी से भागवत वर्मा। सारणी जिला बैतूल से इस गीत को सुनना चाहते हैं अमित खातरकर, निहारिका खातरकर, शिवपाल यादव, अनामिका, अवंतिका, शिवालिका, पारस मनी वाघ, पंजाबराव निम्बालकर, संदीप पाटिल और इनके सभी साथी। इसी गीत को सुनना चाहा है पटवारी कॉलोनी से हितेश गुजराती, हरीश आर्य, पूरनलाल रायपुरे, सलीम भाई धुआंवाला, ललित रायपुरे, दौलू सूरे, उमेश जैन और इनके सभी साथी। आप सभी ने सुनना चाहा है फिल्म सिलसिला से लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाज में जावेद अख्तर का लिखा और शिव हरी का संगीतबद्ध किया ये प्यारा सा नगमा।

0: में कौन सा प्लांट है?
1: टेंजरीन, बहुत मीठा होता है, तोड़ना नहीं है। फ्री फॉरेन ट्रिप, क्लिक ऑन द लिंक, अभी करता हूँ।
0: दादी रुको, लिंक में क्लिक मत करना।
1: क्यों?
0: ये SMS स्कैम है, क्लिक करोगे तो आपके बैंक डिटेल्स होंगे चोरी।
1: थैंक्स गप्पू, बचा लिया। ये ले तेरी समझदारी का फल।
2: आईडिया कहता है स्मार्ट बनो, कूल रहो।
3: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम आपकी फरमाइश। सुबह के 10:30 होने वाले हैं। लीजिए प्रस्तुत है महिलाओं का पसंदीदा कार्यक्रम महिला जगत।

नमस्कार सखियो, मैं हूँ आपके अपने रेडियो सखी पूजा लिलहोरे और स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने पसंदीदा कार्यक्रम महिला जगत में। सखियो, आज हम

करेंगे मधुमक्खी पालन से महिलाएं इस विषय पर, और साथ ही होगी हमारी बात सखियों के साथ, जिसमें हम आपसे बात करेंगे शक्ति और शालीनता का प्रतीक साड़ी पर। साथ ही रखते हुए आपके मनोरंजन का ध्यान, आपको सुनवाएंगे कुछ फिल्मी गीत। तो चलिए सखियों, अब चलते हैं हमारे आज के विषय की ओर, जो है मधुमक्खी पालन से महिला आय। सखियों, मधुमक्खी पालन महिलाओं के लिए आत्मनिर्भरता और अतिरिक्त आय का एक शानदार जरिया है। महिलाएं इसे समूह के रूप में या व्यक्तिगत रूप से अपनाकर शहद और मधुमक्खी मोम बेचकर आर्थिक सशक्तिकरण हासिल कर सकती है। सखियों, मधुमक्खी पालन एक प्राचीन प्रथा है जिसमें परंपरागत रूप से मधुमक्खी पालन किया जाता है। दुनिया भर के ग्रामीण इलाकों में महिलाएं तेजी से इस आकर्षक और संतोषजनक पेशे को अपना रही है, जिससे अनेक जीवन और समुदायों में सकारात्मक बदलाव आ रहा है। मधुमक्खी पालन सिर्फ आय का स्रोत नहीं है, बल्कि यह महिलाओं को आर्थिक स्वतंत्रता, बेहतर सामाजिक स्थिति और प्रकृति के साथ गहरा जुड़ाव प्राप्त करने का एक सशक्त मार्ग प्रदान करता है। सखियों, यदि मधुमक्खी पालन की बात करें तो प्राचीन काल से मधुमक्खी अपना छत्ता प्राकृतिक रूप से पेड़ के खोखले, दीवारों की दरारें, छत के छज्जों, मिट्टी के घरों, लकड़ी के संदूकों में बनाती रही है, जिससे शहद निकालने के लिए छत्तों को काटकर निचोड़ा जाता था, जिससे शहद के साथ साथ अंडा लार्वा भी शहद में आ जाता था और छत्ता टूट जाने से उनका वंश भी खत्म हो जाता था। इस प्रकार शुद्ध शहद भी प्राप्त नहीं होता था और वंश भी नष्ट हो जाता था। तो इससे बचने के लिए वैज्ञानिकों ने शोध और अध्ययन करके मधुमक्खियों को पालने के लिए मौन ग्रह अर्थात लकड़ी के बक्सों और शहद निकालने के लिए मशीन का आविष्कार किया, जिससे मधुमक्खी को आसानी से पाला जा सके और उसके वंशों को क्षति भी ना पहुंचे। मधुमक्खी पालन शुरू करने के लिए शुरुआती दौर में 5 बक्सों से शुरू कर सकते हैं। मधुमक्खी पालन या किसान मधुमक्खी पालन का कार्य 2 से लेकर 100 बक्से रख कर प्रारंभ कर सकते हैं। सखी, यदि मधुमक्खी पालन करते समय ध्यान रखने योग्य बातों की बात करें तो किसी प्रमाणित संस्था से ही मधुमक्खियों को खरीदना चाहिए। आसपास पुष्पीय पौधों की उपलब्धता के बाद ही उन बक्सों को रखें। इस बात का विशेष ध्यान रखें कि मधुमक्खियां 3 किलोमीटर तक पराग और पुष्प रस इकट्ठा कर सकती है। मधुमक्खियों को पराग और फूलों का रस नियमित रूप से मिलते रहना चाहिए, जिससे उनका जीवन यापन चलता रहे और आसपास बिजली के तार, मोबाइल के टावर आदि न हो, क्योंकि इनका बहुत सा काम होता है जो संसार के माध्यम से चलता रहता है, इसलिए मधुमक्खियां परेशान होती है। बरसात के समय मधुमक्खियों पर अधिक ध्यान देने की जरूरत होती है, क्योंकि उस समय बीमारियों का प्रकोप अधिक होता है और बरसात में पुष्पीय पौधों की उपलब्धता में कमी आ जाती है, तो मधुमक्खियों को अलग से फीडिंग कराई जाती है जिसमें चीनी का शीरा देते हैं, जिससे इनका जीवन चलता रहता है। और मधुमक्खी पालने की जगह के चारों ओर 1 से 2 किलोमीटर तक अमरूद, जामुन, केला, नारियल, नाशपाती व फूलों के पेड़ पौधे होने चाहिए। सूरजमुखी, गाजर, मिर्च, सोयाबीन, नींबू, आंवला और पपीता आम जैसे पेड़ वाले क्षेत्रों में मधुमक्खी पालन आसानी से किया जा सकता है। वैज्ञानिक तरीकों से मधुमक्खी पालन करने से सुनिश्चित परागण की सहायता से फसलों की उपलब्धता में बढ़ोतरी होती है, जिससे किसानों की आय में वृद्धि होती है। सखियों, आज विश्व मधुमक्खी दिवस है। विश्व मधुमक्खी दिवस 2026 इस बात पर केंद्रित है कि मनुष्य और मधुमक्खियां किस प्रकार मिलकर लोगों और पर्यावरण को पोषण और संरक्षण करते आ रहे हैं। यह दिवस हजारों वर्षों से विविध संस्कृतियों और भूदृश्यों में मधुमक्खी पालन के विकास को उजागर करता है, साथ ही मधुमक्खी उत्पादन और स्वास्थ्य में सुधार लाने वाले नवीन दृष्टिकोण को बढ़ावा देता है और महिलाओं और युवाओं सहित मधुमक्खी पालकों को आजीविका को सहारा देता है। सखियों, ये तो बात हुई हमारे आज के विषय पर, और रखते हुए आपके मनोरंजन का ध्यान, आइए सुनवाते हैं आपको ये गीत।

0: डेली लॉ के ऐप, वेबसाइट www.daily-law.in या टोल फ्री नंबर 14454 से प्राप्त की जा सकती है।
1: सखियों, कार्यक्रम में अब वक्त है हमारी बात सखियों के साथ का, जिसमें आज हम आपसे बात करेंगे शक्ति और शालीनता का प्रतीक साड़ी पर। भारतीय परंपरा का संकेत माने जाने वाली साड़ी आज न जाने कितने प्रकार और डिजाइन की आती है, लेकिन क्या आप जानती है सखियों, महिलाओं द्वारा पहनी जाने वाली 6 गज की यह साड़ी, इसका इतिहास क्या है? भारतीय परिधानों में साड़ी एक ऐसा कपड़ा है जिसका हमारी संस्कृति में बहुत ही ज्यादा महत्व है। खासकर जब महिलाएं साड़ी में आती है तो अनेक रूप को पारंपरिक रूप में ढालती है। लेकिन सखिया, क्या आप जानती हैं कि आज जिस साड़ी को अलग अलग प्रकार से आप पहन रही है, उसकी शुरुआत कैसे हुई या फिर वो कैसे चलन में आई? पहले के समय में पुरुष और महिलाएं अपने निचले शरीर पर छोटा कपड़ा लपेट कर रखते थे, जिसे आज धोती कहा जाता है। सखियो, आपको

बता दें कि साड़ी शब्द संस्कृत के सट्टिका शब्द से निकला है, जिसका मतलब होता है कपड़े की पट्टी। साड़ी का नाम ही नहीं बल्कि इसका इतिहास भी बहुत पुराना है, जिसके बारे में आज हम आपको बताने जा रहे हैं। सखियों, हम जानेंगे कि कैसे साड़ी हमारे जीवन का अहम हिस्सा बनती चली गई, लेकिन इस प्यारे से गीत के बाद।

0: को लेकर लोगों के अलग अलग मत और दावे होते हैं, और ऐसा ही कुछ साड़ी के इतिहास के साथ भी है। ऐसा माना जाता है कि यजुर्वेद में सबसे पहले साड़ी शब्द का उल्लेख मिला है। वहीं ऋग्वेद में बताया गया है कि यज्ञ या हवन के समय पत्नी को साड़ी पहनाने का विधान हुआ करता था, और धीरे धीरे ये भारतीय परंपरा का हिस्सा बनती चली गई। साथ ही साड़ी का इतिहास हमें हड़प्पा सभ्यता से और महाभारत काल से भी जानने को मिलता है। छोटे कपड़ों से लेकर धोती और फिर 6 गज की साड़ी तक का ये सफर बहुत ही लंबा है, लेकिन आज इसका पैमाना इतना बढ़ गया है कि आपको कई तरह की साड़ियाँ देखने को मिलती है, फिर चाहे वो हमारे मध्य प्रदेश की चंदेरी साड़ी हो या माहेश्वरी, असम की मूंगा रेशम की साड़ी हो या फिर गुजरात की पटोला साड़ी। आज हमें हर राज्य में खूबसूरत से खूबसूरत साड़ियाँ देखने को मिलती है। सखियो, बातों को यूं ही रखेंगे जारी, पहले कार्यक्रम में लेते हैं एक छोटा सा अंतराल।
1: दादी, कौन सा प्लांट है?
2: टेंजरीन, बहुत मीठा होता है, तोड़ना नहीं है। फ्री फॉरेन ट्रिप, क्लिक ऑन द लिंक, अभी करता हूँ।
1: दादी रुको, लिंक में क्लिक मत करना।
2: क्यों?
1: ये SMS स्कैम है, क्लिक करोगे तो आपके बैंक डिटेल्स होंगे चोरी।
2: थैंक्स गप्पू, बचा लिया। ये ले तेरी समझदारी का फल।
3: आज ये कहता है स्मार्ट बनो, कूल रहो।
4: बुद्धू, नई कार जीतने का मौका? वाओ, पापा को सरप्राइज दूंगी। बस थोड़ी सी तो उनकी डिटेल भरनी है।
5: रुक जा बुद्धू।
6: What? ऐसे पॉपअप से सावधान रहो, स्कैमर्स पर्सनल डिटेल्स का गलत यूज कर सकते हैं।
4: तो समझ गई ना, रिलैक्स।
7: पर कार्ड जीत जाते तो
8: पापा होमवर्क नहीं कराते।
3: RBI कहता है स्मार्ट बनो, कूल रहो।
0: आइए सखियो, अब हम जानते हैं हमारे मध्य प्रदेश की सुप्रसिद्ध साड़ियों चंदेरी और माहेश्वरी के बारे में। सखियो, चंदेरी साड़ी अपनी हल्की बनावट, पारदर्शी टेक्सचर और महीन जरी के काम के लिए प्रसिद्ध है। मध्य प्रदेश के चंदेरी कस्बे में हस्त करघे से बनी ये साड़ियाँ रेशम और सूती के धागों के अनूठे मिश्रण से तैयार होती है, जो इन्हें एक शाही और आरामदायक लुक देता है। मध्य प्रदेश की प्रसिद्ध चंदेरी साड़ी को वर्ष 2005 में भौगोलिक संकेतक GI टैग प्राप्त हुआ था। यह प्रमाणन चंदेरी साड़ी की पारंपरिक बुनाई कला को संरक्षित करने के लिए दिया गया है, जो अपनी विशिष्ट बनावट, महीन धागों और जरी के काम के लिए जानी जाती है। सखियों, ये साड़ियाँ बहुत हल्की और हवादार महसूस होती है। इसमें एक प्रकार की हल्की पारदर्शिता और रेशम के धागों की वजह से एक अनूठी चमक होती है। चंदेरी साड़ी की सबसे प्रमुख विशेषता उसके बॉर्डर पर किया गया शानदार जरी का काम होता है, जो कि सोने या चांदी का होता है। इसमें पारंपरिक रूप से मोर, कमल और ज्यामितीय पैटर्न का उपयोग किया जाता है। ये मुख्य रूप से 3 प्रकार की होती है, शुद्ध रेशम साड़ी, चंदेरी सूती साड़ी और रेशम सूती मिश्रण। और ये साड़ियाँ पूरी तरह से हाथ से बुनी जाती है, जिन्हें बनाने में 2 दिन से लेकर 1 महीने तक का समय लग सकता है। और यह चंदेरी साड़ी देखने में बहुत आकर्षक होती है। इसमें रंगों का मेल हमेशा सौम्य, उपयुक्त और मनमोहक होता है, जिसमें चंचलता, उल्लास, आकर्षण की हल्की सी झलक होती है।

सखियों, अभी हम बात कर रहे थे चंदेरी साड़ियों की और अब आपको ले चलते हैं माहेश्वरी साड़ियों की ओर। सखियों, माहेश्वरी साड़ी की उत्पत्ति मध्य प्रदेश में नर्मदा नदी के किनारे बसे छोटे से कस्बे महेश्वर से हुई है। यहीं पर होलकर वंश की रानी अहिल्याबाई होलकर ने एक ऐसी साड़ी बनाने का विचार किया जो हल्की, पहनने में आसान और फिर भी शाही शान का परिचय देती हो। अहिल्याबाई होलकर एक दूरदर्शी रानी थी जिनकी डिजाइन और सौंदर्य शास्त्र में गहरी समझ थी। माहेश्वरी साड़ियों का इतिहास लगभग 250 वर्ष पुराना है। माहेश्वरी साड़ियां पीटलूम यानी

जमीन में गड़ी हुई करघो पर बनाई जाती है। इसकी बुनाई सादी की जाती है, लेकिन चौकड़ी, धारी और अन्य धागों का प्रयोग इसमें डिजाइन ला देता है। सखियों, जब बात पारंपरिक भारतीय पहनावे की आती है तो माहेश्वरी साड़ी का एक खास स्थान है। माहेश्वरी साड़ी यानी भारतीय हथकरघा शिल्प का एक नायाब नमूना जो कि हमारे मध्य प्रदेश में आता है। पहले माहेश्वरी साड़ियां बेहतरीन सूती धागों से बनाई जाती थी, जिस पर महेश्वर, किले और मंदिरों पर उकेरी गई जटिल नक्काशी से प्रेरित रूपांकन होते थे। आज साड़ी में इस्तेमाल होने वाला कपड़ा कोयम्बटूर कपास और बेंगलोर रेशम के धागों के मिश्रण से बुना जाता है, जिस पर रुई, फूल, चमेली, हंस और हीरा कुछ नए और अधिक आकर्षक रूपांकन उकेरे जाते हैं। साड़ी में दोनों तरफ से पहनने योग्य बॉर्डर और पल्लू या आंचल पर बनी 5 अनूठी धारियां होती है। सखियों, माहेश्वरी साड़ियों की बॉर्डर आमतौर पर सूरत से मंगाई गई जरी के धागों से बनाई जाती है। बुनाई में इस्तेमाल होने वाले कुछ रंग गहरा भूरा, सुनहरा पीला और अंगूरी होता है। साड़ी को पूरा करने में डिजाइन के आधार पर 3 से 10 दिन लग जाते हैं। सखियों, माहेश्वरी साड़ियों की बुनाई में सबसे अधिक समय लेने वाला हिस्सा पल्लू या आंचल है, जिसमें अधिक बारीक डिजाइन होने के कारण 3 से 4 दिन लग जाते हैं।

सखियों, यदि पूरे भारत की बात करें तो यहाँ महाराष्ट्र की पैठनी और नौवारी साड़ियाँ, गुजरात की पटोला साड़ी, छत्तीसगढ़ की कोसा साड़ी, ओडिशा की बोमकई साड़ी और पश्चिम बंगाल की तांत साड़ी, इस प्रकार की अनेक साड़ियाँ प्रसिद्ध हैं। और यदि हम दक्षिण भारत की ओर चलें तो केरल की कस्बू साड़ी, आंध्र प्रदेश की कलमकारी और पोचमपल्ली साड़ी, कर्नाटक की इलकल साड़ी, तमिलनाडु की कोनराल साड़ी अपनी अनूठी बनावट और सुंदरता के लिए देश विदेश में प्रसिद्ध है। सखियों, कपड़ों की विभिन्न किस्मों के आधार पर भारत में ढेर सारे क्षेत्रीय हस्तशिल्प पाए जाते हैं। सखियों, ये तो बात थी हमारी बात सखियों के साथ, जिसमें हम बात कर रहे थे शक्ति और शालीनता का प्रतीक साड़ी पर। और अब आपको बता देते हैं कल के आकर्षण के बारे में। सखियों, हमारी अगली मुलाकात होगी कल यानी दिन गुरुवार को, जिसमें आपके साथ होगी हमारी सखी सीमा पवार। तो सुनना ना भूले कल का महिला जगत कार्यक्रम। और अब इसी के साथ आपकी अपनी रेडियो सखी पूजा लिलोरी को दीजिए अनुमति। नमस्कार।

अभी आप सुन रहे थे महिलाओं का पसंदीदा कार्यक्रम महिला जगत। ये आकाशवाणी का बैतूल केंद्र है। कुछ ही देर में आप सुनेंगे विविध भारती सेवा के कार्यक्रम आकाशवाणी के मुंबई केंद्र से।

जगजीत सिंह और चित्रा सिंह रॉयल अल्बर्ट हॉल लंदन में लाइव। ये नायाब रिकॉर्डिंग और इससे आगाज रंग तरंग का।

सरकना है, सरकती सरकती सरकती।

वक्ता पेश कर रहा हूं, जनाब अमीर मिनाई की गजल है, वो बेदर्दी से सर काटे अमीर, वो बेदर्दी से सर काटे अमीर, और मैं कहूं उनसे हुजूर आहिस्ता आहिस्ता, जनाब आहिस्ता आहिस्ता। तो इस मकते में हुजूर और जनाब का जो इस्तेमाल किया शायर ने, जहाँ तक मेरी समझ में आया है तो मैंने उसको कोशिश की है कि आपको बताऊं कि शायर ने क्या सोचा था। हुजूर और जनाब में वही फ़र्क है जो पंजाब में और लखनऊ में फ़र्क है।

0: जैसे कि आप जानते हैं विविध भारती हर महीने करता है अपनी एक महफिल सृजन भारती। इस बार सृजन भारती लेकर आ रहा है लोक संगीत की भीनी खुशबू और कुछ दिलचस्प बातों का गुलदस्ता। और ये कार्यक्रम होगा एक मुक्ताकाशी रंगमंच पर 21 मई शाम 6:30 पर लोक संगीत और कुछ दिलचस्प बातों से सजा रंगारंग कार्यक्रम। आयोजन स्थल है ज्ञान सागर मुक्ताकाशी ऑडिटोरियम रघुनाथ टावर के सामने देवीदास लेन बोरीवली पश्चिम मुंबई। प्रवेश बिल्कुल मुफ्त, आप सभी खुद आए और अपने दोस्तों को लेकर आए।
1: अपने हाथों की लकीरों में सजा ले मुझको, मैं हूं तेरा तू नसीब अपना बना ले मुझको।

जैसे कि आप जानते हैं विविध भारती हर महीने करता है अपनी एक महफिल सृजन भारती। इस बार सृजन भारती लेकर आ रहा है लोक संगीत की भीनी खुशबू और कुछ दिलचस्प बातों का गुलदस्ता। और ये कार्यक्रम होगा एक मुक्ताकाशी रंगमंच पर 21 मई शाम 6:30 पर लोक संगीत और कुछ दिलचस्प बातों से सजा रंगारंग कार्यक्रम। आयोजन स्थल है ज्ञान सागर मुक्ताकाशी ऑडिटोरियम रघुनाथ टावर के सामने देवीदास लेन बोरीवली पश्चिम मुंबई। प्रवेश बिल्कुल मुफ्त। आप सभी खुद आए और अपने दोस्तों को लेकर आए।

0: रात में आसमान चांद सितारों से फूल काटता है। रात हौले हौले धरती पर अपना आंचल फैलाती है।
1: अपनी आप रात में चिमनी सरकती है।
0: जब नींद कहीं दूर भाग जाती है तब विविध भारती बन जाती है एकाकीपन के साथी।
2: एक तेरा साथ हमको दो जहां से प्यारा।
0: विविध भारती से गूंजते हैं कुछ अनमोल नगमे।
2: तेरा जवाब नहीं
0: छिड़ता है मोहब्बत का राग।
2: प्यार का राग सुनो।
0: बजता है छाया गीत विविध भारती से।
2: सदा रही है।
0: तो सुनिए रोज रात 10 बजे छाया गीत सिर्फ विविध भारती पर।
3: जैसे कि आप जानते हैं विविध भारती हर महीने करता है अपनी एक महफिल सृजन भारती। इस बार सृजन भारती लेकर आ रहा है लोक संगीत की भीनी खुशबू और कुछ दिलचस्प बातों का गुलदस्ता। और ये कार्यक्रम होगा एक मुक्ताकाशी रंगमंच पर 21 मई।

शाम 6:30 पर लोक संगीत और कुछ दिलचस्प बातों से सजा रंगारंग कार्यक्रम। आयोजन स्थल है ज्ञान सागर मुक्ताकाशी ऑडिटोरियम रघुनाथ टावर के सामने, देवीदास लेन बोरीवली पश्चिम मुंबई। प्रवेश बिल्कुल मुफ्त, आप सभी खुद आए और अपने दोस्तों को लेकर आए।

आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। थोड़ी देर में आप सुनेंगे हिंदी में समाचार, जिन्हें हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे।

0: प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी से वार्ता करेंगे। दोनों नेता भारत पश्चिम एशिया यूरोप आर्थिक गलियारे के लिए सहयोग बढ़ाने पर चर्चा और वर्ष 2025 से 2029 तक संयुक्त रणनीतिक कार्रवाई योजना की समीक्षा करेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि प्रधानमंत्री की यात्रा के दौरान दोनों देशों के बीच व्यापार, रक्षा, परिवहन, समुद्री सुरक्षा, बंदरगाह संबंधी सहयोग और स्वच्छ ऊर्जा सहित प्रमुख क्षेत्रों में समझौतों पर हस्ताक्षर होने की संभावना है।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज क्विरिनल पैलेस में इटली के राष्ट्रपति सर्जियो मत्तारेला से मुलाकात करेंगे, जहां उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर प्रदान किया जाएगा। आज के कार्यक्रम

0: प्रमुमिन प्रतिनिधि मंडल स्तरीय वार्ताएं, प्रेस वक्तव्य, समझौता ज्ञापनों का आदान प्रदान, द्विपक्षीय बैठकें और खाद्य एवं कृषि संगठन का दौरा शामिल है। प्रधानमंत्री मोदी मोरस निग्रा ब्लैक मलबरी का पौधा भी लगाएंगे। ये एक ऐसी प्रजाति है जो अपने पाक, औषधीय और सांस्कृतिक महत्व के कारण भारत और इटली को प्रतीकात्मक रूप से जोड़ती है। रोम से सुपर्णा भाटिया।
1: प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि वो इटली की प्रधानमंत्री के साथ होने वाली बैठक को लेकर उत्सुक हैं। उन्होंने आशा व्यक्त की कि दोनों के बीच बातचीत में मुख्य रूप से भारत इटली संबंधों को मजबूत करने पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि रोम पहुंचने पर उन्हें प्रधानमंत्री मेलानी के साथ रात के खाने पर मिलने का अवसर मिला, जिसके बाद उन्होंने मशहूर कोलोसियम का दौरा किया। उन्होंने कहा कि दोनों नेताओं ने कई विषयों पर अपने विचार साझा किए। प्रधानमंत्री ने इटली के प्रसिद्ध चित्रकार जियांपोलो टोमासिट्टी की भारतीय संस्कृति पर किए गए कार्यों की सराहना की है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि कलाकार ने इटली के रोम दौरे में वाराणसी पर बनी अपनी विशेष पेंटिंग प्रस्तुत की। प्रधानमंत्री ने कहा कि श्री टोमासिट्टी का भारतीय संस्कृति के प्रति प्रेम 4 दशकों से अधिक पुराना है। एक अन्य पोस्ट में श्री मोदी ने भारतीय नृत्य शैलियों के प्रति 5 इतालवी कलाकारों के प्रेम की भी प्रशंसा की। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज सियोल में दक्षिण कोरिया के रक्षा मंत्री आन ग्यू बैक से मुलाकात की। दोनों नेताओं ने क्षेत्रीय शांति, स्थिरता और तकनीकी सहयोग में साझा प्रतिबद्धता व्यक्त की। उन्होंने भारत दक्षिण कोरिया रक्षा उद्योग और रणनीतिक सहयोग को और मजबूत करने पर चर्चा की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री सिंह ने कहा कि दोनों देशों ने रक्षा साइबर सहयोग को बढ़ावा देने के लिए समझौतों का आदान प्रदान किया। इससे पहले श्री राजनाथ सिंह ने राष्ट्र की सेवा में सर्वोच्च बलिदान देने वाले वीर सैनिकों को श्रद्धांजलि दी। चीन के राष्ट्रपति शी जिनफिंग और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने आज बीजिंग में द्विपक्षीय संबंधों, ईरान यूक्रेन संघर्ष और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार सहित प्रमुख वैश्विक मुद्दों पर बातचीत की। चीन के विदेश मंत्रालय ने कहा है कि वार्ता से बीजिंग और मॉस्को के बीच रणनीतिक साझेदारी को मजबूती मिलेगी और संयुक्त राष्ट्र, दक्षिण अफ्रीका परिषद और ब्रिक्स जैसे मंचों के माध्यम से समन्वय बढ़ेगा। ये बैठक अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की चीन यात्रा के कुछ ही समय बाद हुई, जहां उन्होंने शी जिनफिंग से क्षेत्रीय और वैश्विक घटनाक्रमों पर चर्चा की थी। पश्चिम बंगाल सरकार ने महिलाओं के सामाजिक आर्थिक उत्थान के लिए 3,000 रूपये की मासिक वित्तीय सहायता की अन्नपूर्णा योजना अधिसूचित कर दी है। महिला और बाल विकास तथा समाज कल्याण विभाग की ये योजना 1 जून से प्रभावी होगी। पंजाब पुलिस ने दुबई स्थित एक अंतर्राष्ट्रीय मादक पदार्थ तस्करी मॉड्यूल का भंडाफोड़ किया है, जो सीमावर्ती राज्य पंजाब और राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में मादक पदार्थों की तस्करी के लिए अबू धाबी से काम कर रहा था। अभियान के दौरान पुलिस ने 14 किलोग्राम मादक पदार्थों के साथ 2 तस्करों को गिरफ्तार किया है। आगे की जांच जारी है। मौसम विभाग ने उत्तर पश्चिम भारत में भीषण गर्मी को देखते हुए दिल्ली, पंजाब और हरियाणा के कई हिस्सों में लू का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और विदर्भ में भीषण गर्मी का रेड अलर्ट जारी किया गया है। घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक में आज 0.35% की गिरावट दर्ज की गई। सेंसेक्स 75,157 पर जबकि निफ्टी 23,611 पर कारोबार कर रहा था। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। प्रस्तुत है कार्यक्रम यादों की महफिल। सभी सुनने वालों को प्यार भरा नमस्कार। प्रोग्राम की शुरुआत कर रहे हैं लता मंगेशकर की आवाज में शबाब फिल्म के गाने के साथ। शकील बदायनी है गीतकार और संगीतकार हैं नौशाद।

0: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे मोहम्मद रफी और आशा भोसले की आवाजों में गंवार फिल्म का गाना। गीतकार थे राजेंद्र कृष्ण और संगीतकार थे नौशाद। विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन से अभी आप सुन रहे कार्यक्रम यादों की महफिल। आइए सुनते हैं संदेश।
1: अरे सुनो, आजकल ये क्या हर रोज तुम रेडियो सुनती रहती हो, पढ़ाई लिखाई नहीं करती क्या? घड़ी देखो जरा, 3 बज रहे हैं। 3
2: वो क्या है ना कि आजकल मैं हर रोज दिन में 3 बजे सुनती हूँ सखी सहेली।
1: सखी सहेली?
2: हाँ, हर रोज दो सखियाँ 3 बजे बड़ी मजेदार बातें करती हैं। और तो और, पढ़ाई, करियर, इंटरनेट, सोशल मीडिया और दुनिया भर की दिलचस्प जानकारियाँ भी देती हैं।
1: अच्छा, तो मुझे भी बताना जरा, मैं भी सुनूंगा सखी सहेली।
2: हाँ हाँ, क्यों नहीं, सखिया ही नहीं सखा भी सुनते हैं सोमवार से शुक्रवार दोपहर 3 बजे
3: सखी सहेली।

0: आनस भरी सुबह जैसे चाय में घुल जाए चीनी, आपके जीवन में घोलते हैं संगीत, भूले बिसरे गीत।
1: मैं तेरा राग, तू मेरी रागनी।
0: गुजरे दौर की आवाजें, धुनों की अनूठी परवाज, सुनहरे गानों का अंदाज, आपकी सुबह को बनाए खास, भूले बिसरे गीत। हर रोज सुबह 7 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: यादों की महफिल कार्यक्रम जारी रहेगा एक छोटे से अंतराल के बाद।

चैनल विविध भारती और कार्यक्रम चल रहा यादों की महफिल। लीजिए अब सुनिए लता मंगेशकर और मुकेश की आवाजों में राज हट। इस फिल्म का गाना हजरत जयपुरी है, गीतकार और संगीतकार है शंकर जयकिशन।

अभी आप सुन रहे थे अजीज कश्मीरी का लिखा और ओपी नेयर का संगीतबद्ध किया गाना। आवाजें थी आशा भोसले और मीनू पुरुषोत्तम की, फिल्म का नाम ये रात फिर ना आएगी। लीजिए अब सुनिए आशा भोसले और मोहम्मद रफी की आवाजों में मजरूह सुल्तानपुरी का लिखा और ओपी नेयर का संगीतबद्ध किया गाना।

0: जुल्फों वाले आते हैं घेरा डाले, मेरी क्या बात है।
1: भारतीय राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन से भी आप सुन रहे हैं कार्यक्रम यादों की महफिल। लीजिए अब सुनिए मोहम्मद रफी और लता मंगेशकर की आवाजों में बैजू बावरा फिल्म का गाना। इसे लिखा है शकील बदायूनी ने और संगीत से संवारा है नौशाद ने।

0: रात में आसमान चांद सितारों से फूल काटता है। रात हौले हौले धरती पर अपना आंचल फैलाती है। जब नींद कहीं दूर भाग जाती है तब विविध भारती बन जाती है एकाकीपन की साथी।
1: एक तेरा साथ हमको दो जहां से प्यारा।
0: विविध भारती से गूंजते हैं कुछ अनमोल नगमे।
1: तेरा जवाब नहीं
0: छिड़ता है मोहब्बत का राग।
1: प्यार का राग
0: बजता है छाया गीत विविध भारती से। तो सुनिए रोज रात 10 बजे छाया गीत सिर्फ विविध भारती पर।
2: जैसे कि आप जानते हैं विविध भारती हर महीने करता है अपनी एक महफिल सृजन भारती। इस बार सृजन भारती लेकर आ रहा है लोक संगीत की भीनी खुशबू और कुछ दिलचस्प बातों का गुलदस्ता। और ये कार्यक्रम होगा एक मुक्ताकाशी रंगमंच पर 21 मई शाम 6:30 पर। लोक संगीत और कुछ दिलचस्प बातों से सजा रंगारंग कार्यक्रम। आयोजन स्थल है ज्ञान सागर मुक्ताकाशी ऑडिटोरियम रघुनाथ टावर के सामने देवीदास लेन बोरीवली पश्चिम मुंबई। प्रवेश बिल्कुल मुफ्त। आप सभी खुद आए और अपने दोस्तों को लेकर आए।
3: आपने ट्यून किया है भारत का नंबर 1 मनोरंजन चैनल विविध भारती और कार्यक्रम चल रहा है यादों की महफिल। लीजिए सुनिए किशोर कुमार और आशा भोसले की आवाजों में कमर जलालाबादी का लिखा और ओपी नैयर का संगीतबद्ध किया गाना। फिल्म का नाम रागिनी।

आप सुन रहे थे महोत्सव। आशा भोसले की आवाजों में राम और श्याम फिल्म का गाना। शकील बदायनी थे गीतकार, संगीतकार थे नौशाद। आइए अब आपको सुनवा रहे हैं शकील बदायनी और नौशाद की जोड़ी का ही लता मंगेशकर का गाया हुआ फिल्म का नाम मदर इंडिया।

हमारी अगली पेशकश सावन की घटा फिल्म से आवाज मोहम्मद रफी की, लिखा है सच बिहारी ने और संगीतबद्ध किया है ओपी नैयर ने।

0: जैसे कि आप जानते हैं विविध भारती हर महीने करता है अपनी एक महफिल सृजन भारती। इस बार सृजन भारती लेकर आ रहा है लोक संगीत की भीनी खुशबू और कुछ दिलचस्प बातों का गुलदस्ता। और ये कार्यक्रम होगा एक मुक्ताकाशी रंगमंच पर 21 मई शाम 6:30 पर। लोक संगीत और कुछ दिलचस्प बातों से सजा रंगारंग कार्यक्रम। आयोजन स्थल है ज्ञान सागर मुक्ताकाशी ऑडिटोरियम रघुनाथ टावर के सामने देवीदास लेन बोरीवली पश्चिम मुंबई। प्रवेश बिल्कुल मुफ्त। आप सभी खुद आए और अपने दोस्तों को लेकर आए।
1: विविध भारतीय राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन से भी आप सुनिए कार्यक्रम यादों की महफिल। लीजिए आप सुनिए लता मंगेशकर की आवाज में गंगा जमुना फिल्म का गाना। इसे लिखा है शकील बदायूं ने और सुनिए से समारा है नौशाद ने।

0: शानदार शख्सियत।
1: मैंने रंगमंच पे कम से कम 10 साल जयपुर में थिएटर किया, एक लड़कपन का दौर था हमारा।
0: विविध भारती परिवार के सदस्य राजेश रेड्डी।
1: वो मेरे पूरे करियर का स्वर्णिम दौर था, उस टीम का जवाब नहीं, जिसने मुझे इतने चेहरों से इन चीजों को संवारने और साकार करने का अवसर दिया।
0: कुछ बेमिसाल किस्से।
1: मेरे पास जाने की उड़ान रखी, इस परिंदे में जान रखी, और जी म्यूजिक के साथ शुरू हुए, ये किसी शायर के साथ नहीं हुआ।
0: आज के मेहमान राजेश रेड्डी 20 मई शाम 4 बजे और 21 मई सुबह 10 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

आइए सुने सुरीला सफर। सुनने वालों को यूनुस खान का नमस्कार। विविध भारती पर हमने सुरीला सफर की पोस्ट अब से 2 घंटे पहले ही जारी कर दी थी और उस पोस्ट में आज के सुरीला सफर कार्यक्रम का टेक्स्ट जारी किया गया है। इस इबारत को पढ़कर आपको अंदाजा लग गया होगा कि आज के गाने कौन कौन से हो सकते हैं। जब कमेंट बॉक्स देखा तो बहुत सारे लोगों की कमेंट्स हैं जिसमें आप सभी ने लगाया है गानों का अंदाजा। एक बार मैं टेक्स्ट आपको पढ़कर सुना देता हूं। इतनी गर्मी पर गुलमोहर को देखो कैसे मुस्कुरा रहा है, मन करता है इसे गले लगा ले। पर्वतों के पेड़ों को कभी गले लगाए, कभी उनसे अपने जिया की पीर कहे। जब शाम हो तो निकले बाहर किसी नदी किसी सागर के किनारे, पंछियों की चहक फूलों की महक महसूस करें, आसमान को निहारें। कभी कभी ऐसा भी तो करें, कितना खूबसूरत होगा तब जीवन। यह है आज की इबारत और इस इबारत में जैसे बहुत सारे अलग अलग शब्द अलग अलग गानों की तरफ इशारा कर रहे हैं, पर एक शब्द ऐसा है जो केवल एक ही गाने की तरफ इशारा कर रहा है। दरअसल गुलमोहर शब्द पर फिल्म उद्योग में कम से कम 2 गाने तो जरूरी तौर पर बने हैं, लेकिन एक गाना है जो आप सभी के जहन में आया, उसी से कार्यक्रम का आगाज करेंगे और इस गाने के बाद आप सभी के कमेंट्स शामिल करने की कोशिश करेंगे। फिर एक झलक गुलमोहर शब्द से दूसरे गाने की भी सुनाएंगे।

गुलजार साहब के बोल, गुल मुहर गर तुम्हारा नाम होता, क्या तो गाना है देवता फिल्म का। और अमूमन लोगों को गुलमोहर शब्द से यही एक गाना याद आता है, लेकिन ऐसा नहीं है, एक और गाना है गुलमोहर शब्द से। पहले वो सुनवाते हैं, फिर आपके कमेंट्स की बातें।

जी आशा भोसले की आवाज नीरज के बोल, और ये जो गाना है ये बहुत ही कम चर्चित गाना है। फिल्म का नाम मैं आपको फिलहाल नहीं बताऊंगा। बहुत सारे श्रोताओं के कमेंट्स हैं और वो कमेंट्स जो है अब आप तक पहुंचाते हैं। एक श्रोता लिखते हैं कि गुलमोहर शब्द के दूसरे गाने का इंतजार रहेगा क्योंकि हमें तो याद नहीं है, हमारे फिल्मी ज्ञान में वृद्धि होगी। इसके अलावा बहुत सारे श्रोताओं ने आज का टेक्स्ट पढ़ के ये अंदाजा लगाया है कि कौन कौन से गाने हो सकते हैं। एक श्रोता लिखती है कि गुलमोहर के लाल लाल फूल खिल गए, ये दूसरा गीत गुलमोहर शब्द पर आधारित है। ये किसी श्रोता के पिताजी ने उनको ये सजेशन दिया है। इसके अलावा कई श्रोता हैं जो अपनी बातें कह रहे हैं। जैसे एक श्रोता कहते हैं कि आज पंछी नदियां पवन के झोंके ये गाना जरूर सुनाई देगा। एक श्रोता लिखती है कि मेरे घर से कुछ ही दूरी पर एक नहीं दो गुलमोहर के पेड़ हैं, एक बगीचे में और एक सड़क के किनारे, सच मानो जैसे गले लगने के लिए तैयार हैं। आज सुबह देखा एक छोटा सा पंछी गुलमोहर पर अटखेलियां कर रहा था। जरा सोचिए कि गर्मी जैसे जैसे अपने शबाब पर होती है, दो ऐसे पौधे या पेड़ हैं जो ज्यादा ही खिल उठते हैं, एक तो गुलमोहर और दूसरा गुलाबी रंग का जो बोगनविलिया होता है। यूं लगता है जैसे कड़ी धूप का इन पर कोई असर नहीं है, मानो जिंदगी में हमें ये सबक सिखा रहे हों कि धूप कितनी भी तेज हो आपकी आपको अपनी चमक नहीं छोड़ना चाहिए, आपको अपनी मुस्कान नहीं छोड़नी चाहिए। चलिए कुछ और श्रोताओं के कमेंट्स पढ़ते हैं। एक और श्रोता है जिन्होंने ये लिखा है, इतनी शक्ति हमें देना दाता, ये गाना आज के इस कार्यक्रम में आ सकता है। उसके अलावा मन क्यों बहका आधी रात को, ये भी आ सकता है। एक श्रोता ऐसे जिन्होंने बिल्कुल लंबी सी रिसर्च कर डाली है, फूलों की महक, ये जो जुमला था ये हमारे आज के टेक्स्ट में शामिल था। तो कई

सारे गाने उन्होंने लिखे हैं। ए गुलबदन फूलों की महक, उसके अलावा इन्होंने फूलों के रंग से, और फिर और भी, अरे बाप रे, इतने सारे गाने लिखे हैं। बहुत लंबा ये कमेंट है जिसमें फूलों पर पूरी जैसे रिसर्च कर दी गई है, सुंदर बात। इसके अलावा एक श्रोता ऐसे हैं जिन्होंने शानदार तरीके से कुछ ऐसे गानों का जिक्र किया है जो आज के इस कार्यक्रम में बज सकते हैं, तो ये कमाल की बात है। और उसके अलावा अभी एक श्रोता लिखती है कि यूसी गर्मी वाकई इतनी तेज हो गई है, इस समय हम ट्रेन में सफर कर रहे हैं बड़ौदा से अजमेर की तरफ, कोच में तो एसी की ठंडक है लेकिन बाहर आग बरस रही है। ट्रेन जब साबरमती नदी के ऊपर से गुजर रही थी तो हमने देखा नदी लगभग सूखने की कगार पर पहुंच गई है। अहमदाबाद की शान साबरमती नदी इतनी ज्यादा सूख गई है पर किनारे पर पेड़ पौधे मुस्कुरा रहे हैं, गजब। ये बात हमारे एक श्रोता ने लिखी है। और इसके अलावा एक श्रोता है जिन्होंने लिखा है कि आज का जो आपने पैराग्राफ पोस्ट किया है उसमें पेड़, पहाड़, नदी, पंछी, सागर, फूलों की महक जैसे दिख रहे हैं, इन सब पर गाने सुनाई दे सकते हैं। इसके अलावा एक और श्रोता है जिन्होंने जिया की पीर पर अपनी बात लिखी है। जाहिर है टेक्स्ट में जब जिया की पीर शब्द हो तो आप पूरी तरह से अंदाजा लगा सकते हैं कि वो गाना कौन सा होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और अब आपको ये गाना सुनवाते हैं, साथ में ये सवाल कि फिल्म दस्तक के निर्देशक कौन थे, एक तो ये बात, और फिल्म दस्तक के लिए किस किस को नेशनल अवार्ड से सम्मानित किया गया था।

बेचारा जब खत्म हो जाता है तो लगता है अरे ये तो खत्म हो गया। इतना दिल की गहराई तक पहुंचने वाला गाना, मदन मोहन जी की ये आवाज और इस गाने को ज्यादा ऊंचाई पर ले जाती है ये आवाज। एक श्रोता लिखती है कि दस्तक राज

जिंदर सिंह बेदी ने निर्देशित की थी और ये उन्हीं के लिखे एक नाटक पर आधारित फिल्म थी। इसके अलावा एक और श्रोता हैं जो लिखते हैं कि 1 मई को सुरीला सफर कार्यक्रम का पहला एपिसोड आपने किया था और अब आप इस कार्यक्रम में दूसरी बार आ रहे हैं। इसके अलावा एक और श्रोता है जिन्होंने लिखा है कि दस्तक फिल्म के लिए संजीव कुमार और जया भादुड़ी को नेशनल अवार्ड दिया गया था। भाई जया जी इस फिल्म में कहां थी मैं आपको बताता हूं। दस्तक फिल्म के लिए नेशनल अवार्ड मिला था संजीव कुमार को, रेहाना सुल्तान को बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड मिला था, मदन जी को बेस्ट म्यूजिक डायरेक्टर का अवार्ड मिला था और एक शानदार अवार्ड था कमल बोस को बेस्ट सिनेमेटोग्राफर का अवार्ड। इसके अलावा एक और श्रोता है जो कहते हैं कि बी आर इशारा को अवार्ड मिला था, ये तो समझ में नहीं आया। चलिए आगे बढ़ते। गुलमोहर शब्द का जो दूसरा गाना आपने सुनाया वो मैं पहली बार सुन रही हूं। जी हां, बहुत ज्यादा चर्चित गाना नहीं है। इसके अलावा सही उत्तर कई श्रोताओं ने दिए हैं, नेशनल अवार्ड वाले जो दस्तक फिल्म से जुड़े हुए हैं। ये बताइए कि जिस भी शहर, जिस भी इलाके, जिस भी मोहल्ले में आप रहते हैं, किस किस के इलाके में गुलमोहर और उसके अलावा अमलतास इस समय बहुत खिल रहा है, बहुत ज्यादा खिल रहा है। अमलतास की झालरें कितनी खूबसूरत होती हैं। अगर कमेंट बॉक्स में आप फूल अमलतास की तस्वीर भी अगर आपके आसपास है वो कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकें तो भी बड़ा अच्छा लगेगा। और गुलमोहर और अमलतास से आपको कितना लगाव है। इसके अलावा चंपा, इन तमाम फूलों पौधों के बारे में हमें जरूर बताइएगा। और आपने अपने घर में, अगर आप फ्लैट में रह रहे हैं या अगर आप जमीन पर आपका घर है, तो अपने बगीचे में कौन कौन से पौधे और फूल लगा रखे हैं, इसका भी जिक्र जरूर कीजिएगा। कुछ और कमेंट पढ़ते हैं। एक श्रोता है कि व्यस्त होने के कारण मैं देर से इस कार्यक्रम में शामिल हुआ हूं। इसके अलावा एक और श्रोता है जो ये लिख रहे हैं कि आज गाने पर्वत सागर किनारा गुलमोहर नदी पंछी जैसे शब्दों पर आएंगे। बिल्कुल सही है। एक श्रोता लिखते हैं कि गुलमोहर की टहनियों पे ख्वाब सा बिछ गया है, दिल हमारा आज फिर से इश्क में गिर गया है। और इसके अलावा एक श्रोता और हैं जो ये लिख रहे हैं कि गुलमोहर शब्द वाला जो गुलजार साहब का गाना है उसका अंदाजा तो लगभग सभी श्रोताओं ने लगा लिया था। और भी तमाम श्रोताओं के कमेंट्स हैं जो हम आगे चलकर पढ़ेंगे, क्योंकि अब हो गए हैं 1:17 और विविध भारती पर गूंज रहा है ये गाना। तब तक आप बताइए कि आपने अपने घर में कौन कौन से पौधे लगा रखे हैं और आपके गमलों में कौन से फूल खिल रहे हैं।

इतना इंटेंस गाना है कि दिल की गहराइयों में उतर जाता है। बहुत सारे श्रोताओं ने ये लिखा है कि आपने गुलमोहर और अमलतास की तस्वीर तो मंगा ली, लेकिन विविध भारती के फेसबुक पेज पर जो कमेंट हम करते हैं उसमें तस्वीर पोस्ट करने का ऑप्शन नहीं दिख रहा है। मैं इस बात से वाकिफ नहीं था, मुझे पता ही नहीं था कि यहां तस्वीर पोस्ट करने का ऑप्शन है। कोई बात नहीं, आपने कोशिश की, आप सभी का धन्यवाद। एक श्रोता लिखती है कि हमारे घर में बोगनविलिया बहुत रंग के खिले हैं और इसके अलावा गुलाब के बहुत सारे फूल हैं। एक और श्रोता है जिन्होंने तुलसी का पौधा लगा रखा है और उनका फेवरेट फूल गुलाब है। वो कहती है कि हमारे शहर में गुलमोहर नहीं दिखता, लेकिन यात्रा करते समय रास्ते में जब गुलमोहर दिखता है तो बहुत अच्छा लगता है। एक और श्रोता है जो कहते हैं कि मॉर्निंग वॉक करते हुए मोहल्ले में गुलमोहर, अमलतास, पलाश और कचनार के बड़े बड़े पेड़ जब दिखते हैं तो बहुत सुकून मिलता है। इसके अलावा एक और श्रोता है जो लिखती है कि गुलमोहर और अमलतास के बहुत खूबसूरत पेड़ हमारे घर के आसपास हैं। एक और श्रोता है जिन्होंने गुलाब, जूही, रात की रानी और शेवंती लगा रखा है। एक श्रोता है जिनका कहना है कि गर्मी होने पर भी उनके यहाँ गुड़हल और गुलाब में बहुत फूल आ रहे हैं। और इसके अलावा अमलतास के पेड़ बहुत सारे श्रोताओं के शहरों में और उनके मोहल्लों में हैं। एक और श्रोता है जो कहते हैं कि मेरे घर पर आसो पालव, जासूद, बारामासी, गिलोय, तुलसी और ग्रीन टी लगे हुए हैं। इसके अलावा एक और श्रोता है जो कहते हैं कि हमारे यहाँ जहाँ हम रहते हैं वहाँ गुलमोहर बहुत ज्यादा खिला हुआ है। एक और श्रोता छत्रपति संभाजी नगर से लिख रहे हैं कि हमारे शहर में बहुत गुलमोहर है। एक और श्रोता है जिनके आसपास गुलमोहर और अमलतास के बहुत सारे पेड़ हैं और अमलतास के पीले पीले फूल और गुलमोहर के लाल लाल फूल बहुत सुंदर दिख रहे हैं। एक और श्रोता है जो कहती है मेरा पूरा पटना शहर अमलतास, गुलमोहर के पेड़ों से भरा हुआ है और पार्क में चंपा भी खिले हुए हैं जिन्हें देखना बहुत अच्छा लगता है। एक और श्रोता है जिन्होंने मनी प्लांट लगा रखा है। इसके अलावा एक और श्रोता है जो कहते हैं कि मेरे एक दोस्त के घर में बहुत सारे गुलमोहर के पेड़ हैं। एक और श्रोता कहते हैं कि हमारे यहाँ सड़क के दोनों तरफ अमलतास के वृक्ष लगे हैं और इनके पत्ते इस ऋतु में झड़ जाते हैं और उसके पीले फूलों से वृक्ष सज जाता है बड़ा ही

श्रोता है जो कहते हैं कि मेरे एक दोस्त के घर में बहुत सारे गुलमोहर के पेड़ हैं। एक और श्रोता कहते हैं कि हमारे यहाँ सड़क के दोनों तरफ अमलतास के वृक्ष लगे हैं और इनके पत्ते इस ऋतु में झड़ जाते हैं और उसके पीले वृक्षों से वृक्ष पीले फूलों से वृक्ष सज जाता है, बड़ा ही सुंदर दिखता है। कितने श्रोताओं ने गुलमोहर, अमलतास, सेवंती, चंपा, इन तमाम फूलों की बातें लिखी है। फूल कितने दिल के हमारे करीब होते हैं। अब आगे एक गाना आएगा जो फौरन नहीं आएगा, बल्कि इसके बाद दूसरे या तीसरे नंबर पर हम जो गाना बजाएंगे उसमें नदी की बात करेंगे। आपके आसपास कौन सी नदी है और उस नदी के किनारे कौन सी ऐसी जगह है जहां आपको वक्त बिताना बहुत अच्छा लगता है? किस नदी के किनारे वक्त बिताना आपको बहुत ज्यादा पसंद है, ये बात लिखिएगा। शगुन फिल्म की हीरोइन कौन थी ये भी बता सकते हैं आप।

जैसे कि आप जानते हैं विविध भारती हर महीने करता है अपनी एक महफिल सृजन भारती। इस बार सृजन भारती लेकर आ रहा है लोक संगीत की भीनी खुशबू और कुछ दिलचस्प बातों का गुलदस्ता। और ये कार्यक्रम होगा एक मुक्ताकाशी रंगमंच पर 21 मई शाम 6:30 पर। लोक संगीत और कुछ दिलचस्प बातों से सजा रंगारंग कार्यक्रम। आयोजन स्थल है ज्ञान सागर मुक्ताकाशी ऑडिटोरियम रघुनाथ टावर के सामने देवीदास लेन बोरीवली पश्चिम मुंबई। प्रवेश बिल्कुल मुफ्त। आप सभी खुद आए और अपने दोस्तों को लेकर आए। भाई सृजन भारती के इस आयोजन के बारे में हमने आपको सूचना दी। मुंबई के जो श्रोता हैं वो जरूर आए।

शाम 6 बजे एक बेहतरीन आयोजन और विविध भारती के सभी साथियों से मिलने का और सेल्फी लेने का मौका तो होगा ही होगा इस आयोजन में। तो जो मुंबई और आसपास के श्रोता हैं, अगर संभव है आपके लिए तो जरूर आइएगा। और इसके अलावा बहुत सारे श्रोताओं के कमेंट आ गए। मैं तो नर्मदा जी के किनारे महेश्वर घाट पर समय बिताना चाहूंगी, देवी अहिल्या की राजधानी में। ये एक श्रोता का कमेंट है। एक और श्रोता राजस्थान से हैं, कहते हैं कि बहुत ज्यादा गर्मी है और इतनी भीषण गर्मी में भी जो पेड़ हरा सघन छोटी पत्तियों से आच्छादित रहता है और मरुभूमि के सभी जीव जंतुओं को घनी छाया और भोजन देता है, इसकी फलियों से सुप्रसिद्ध और स्वादिष्ट सांगरी की सब्जी बनाई जाती है, वो है खेजड़ी, संस्कृत में से शमी वृक्ष कहते हैं। एक श्रोता है जो कहते हैं गोमती माँ बहती है हमारे शहर में और रिवर फ्रंट पर बहुत अच्छा लगता है। इसके अलावा एक और श्रोता है जो कहते हैं कि हम तो बनारस के हैं और 80 घाट के किनारे बैठकर गंगा नदी की लहरों को देखना बड़ा सुकूनदेह होता है। शगुन फिल्म की जो हीरोइन है उनके बारे में हमारे श्रोताओं ने लिख दिया है भाई कि वो वहीदा रहमान है। और इसके अलावा एक श्रोता है जो लिखती है कि फ्लैट में रहती हूं और सोसाइटी में बहुत सारे पेड़ पौधे लगे हैं, लोगों की बालकनी में भी बहुत सारे पौधे हैं, मैंने बहुत से अपने फ्लैट में गमले में पौधे लगाने की कोशिश की है। इसके अलावा एक श्रोता है जो सूरत से हैं और कहते हैं कि तापी नदी है लेकिन अफसोस है कि उस नदी में थोड़ी गंदगी हो गई है। एक और श्रोता है जो कहते हैं कि अहिल्या नगर में रहते हैं और यहां बहुत गुलमोहर के पेड़ हैं। एक और श्रोता के शहर के पास गक्कर नदी बहती है। एक श्रोता ऐसी है जो गंगा नदी के किनारे रहती है और मायके गई तो सोन नदी के किनारे और पटना शहर में गंगा नदी के किनारे घूमना बड़ा सुखद होता है, ये कह रही है। एक और श्रोता है जो कहते हैं कि मैं नागपुर में रहता हूं और कन्हान नदी चूंकि 15 किलोमीटर दूर है इसलिए बहुत दूर लगती है और वहां जाना मुश्किल होता है। एक श्रोता ऐसे हैं जिनकी घर से 100 मीटर की दूरी पर महानदी है और बैराज से शाम का नजारा बहुत ही सुंदर लगता है। एक और श्रोता है माधु मालती गुड़हल और बारामसी के पेड़ उन्होंने लगा रखे हैं। एक श्रोता ऐसे हैं जो कहते हैं कि अमलतास का पेड़ उनके घर के सामने वाले गार्डन में है और चाहे कितनी भी धूप हो इस पेड़ के नीचे खड़े हो जाएं तो बहुत ही ठंडी हवा मिलती है और राहगीर अक्सर इस पेड़ के नीचे गर्मी से राह पाने के लिए निजात पा लेने के लिए खड़े हो जाते हैं। एक और श्रोता है जो लिखते हैं कि गुलमोहर को फ्लेम ऑफ द फॉरेस्ट कहा जाता है और शानदार है। तो ये तमाम चीजें हैं और बहुत इतने कमेंट्स हैं कि मुझे लग रहा है कि ये सारे कमेंट्स पढ़ने में तो बहुत देर लग जाएगी। बात नदी के गाने की हो रही थी, कितने सारे श्रोताओं ने नदी के गानों की बात की, तो मैंने सोचा कि एक मोंटाज कर लेते हैं।

लेकिन लेकिन नदी का ये गाना भी क्या प्यारा है। और नदी के गानों का सरताज ये भी तो है।

लेकिन इन तमाम गानों के बावजूद आज के इस कार्यक्रम के लिए मैंने चुना है ये गाना जो नदी के किनारे की बात करता है। किसी नदी के किनारे सबसे यादगार पिकनिक आपका कौन सा था ये जरूर बताइएगा, हमें पढ़कर अच्छा लगेगा और कमेंट शामिल किया जाएगा।

क्या शानदार गाना है, नदी के किनारे पिकनिक की जो यादें हैं उसे ताजा कर देता है। बहुत सारे श्रोताओं के कमेंट्स आए हैं और कोशिश के सभी श्रोताओं के कमेंट शामिल किए जाएं। एक श्रोता लिखती हैं कि जीवन कभी बहुत धीरे धीरे अपने उत्साह वापस ले लेता है, तब उन धीमे दिनों में चटकती गर्मी में गुलमोहर को देखना और ऊंचे पहाड़ों को भी और एक कदम बढ़ाकर उनको गले लगाकर अपने जिया की पीर कह देना, ये पर्वत ये पहाड़ ये पेड़ आपका सारा दर्द सूख लेंगे, कभी ये करें तो जीवन महक उठेगा। शानदार बात आपने लिखी है। बस यही तो आज हमारे इस कार्यक्रम के लिए टेक्स्ट पोस्ट करने का मकसद था, कुदरत से जुड़े और उसके साथ अपने दुख दर्द साझा करें। एक श्रोता है जो लिखते हैं कि डबरा के पास धूमेश्वर महादेव का मंदिर, सिंध नदी अपने रौद्र रूप में थी, हम लोग गए थे पिकनिक पर, बेटा बैठा था, अचानक पानी बढ़ गया तो पुलिस ने एकदम अलर्ट किया और हम लोग एकदम हड़बड़ा के वहां से भागे थे। एक और श्रोता लिखती हैं कि इतनी भीषण गर्मी में नदी के गानों का जो मोन्टाज आपने प्रस्तुत किया उससे बहुत ही ठंडक महसूस हुई, शुक्रिया आपका, मकसद यही था। हरिद्वार और वाराणसी में गंगा नदी के किनारे वक्त गुजारने का मौका मिला था, बड़ा सुकून मिला था, ये एक श्रोता की बात है। एक और श्रोता है जो अमर प्रेम फिल्म के गाने को याद कर रहे हैं। श्रोता ऐसे हैं जो गुड़हल के बारे में अपनी बातें लिख रहे हैं कि ये बहुत ही फायदेमंद पौधा है और इसके तमाम तरह के फायदे के बारे में उन्होंने लिखा है। इसके अलावा एक श्रोता है जो लिखते हैं कि नागपुर से करीब 50 किलोमीटर दूर पींच नदी है, वहां हम पिकनिक मनाने गए थे, खाना पकाया था और बहुत मौज मस्ती की थी। इसके अलावा एक और श्रोता है जो लिख रहे हैं कि बहुत ही यादगार पिकनिक हमने ओंकारेश्वर में नर्मदा नदी के तट पर मनाई थी। और इसके अलावा एक और श्रोता है जो ये लिख रहे हैं कि अभी थोड़े दिन पहले अयोध्या में सरयू नदी के किनारे, बनारस में गंगा और प्रयागराज में गंगा नदी के किनारे जाने का मौका मिला था, बहुत अच्छा लगा। एक और श्रोता है जो कहते हैं कि आपका अंदाज निराला है, बहुत ही प्यारा मोन्टाज और नदी शब्द पर आपने एक साथ पांच गाने सुनाए, कितना अच्छा लगा, शायद ऐसा पहली बार हुआ है। एक और श्रोता है जो कहती है कि हमारे विशाखापट्टनम में नदी तो नहीं है लेकिन सागर

किनारा है जहां जाकर अच्छा लगता है। आप में से कौन कौन से ऐसे श्रोता हैं जिन्हें समुंदर का किनारा बहुत पसंद है? अगर समुंदर नहीं देखा तो वो भी बताइए। कौन कौन से ऐसे श्रोता हैं जो जिंदगी में अभी समुंदर देखने का इंतजार कर रहे हैं? कौन कौन से ऐसे श्रोता हैं जो समुंदर के किनारे जा चुके हैं या रहते हैं?

बहुत सारे श्रोताओं के कमेंट आए हैं। एक श्रोता लिखते हैं कि मुंबई में जुहू बीच और अक्सा बीच बहुत बार देखने का मौका मिला है और चेन्नई में मरीना बीच भी देखा है और लहरों के बीच जाकर आनंद लिया है। एक और श्रोता है जिन्होंने मुंबई में जुहू चौपाटी कई बार देखी है और शाम के समय डूबते सूरज को देखना दिल खुश कर देता है। इसके अलावा एक और श्रोता है जिन्होंने पुरी, गोपालपुर, चांदीपुर और पारादीप के समुद्र तट देखे हैं और बंगाल की खाड़ी के पास के इलाके में वो रहते हैं। एक और श्रोता जिन्होंने लिखा है कि मुंबई, पणजी, रामेश्वरम और कन्याकुमारी, इन तमाम जगहों पर जाकर देखा है समुद्र का किनारा। एक और श्रोता कहते हैं कि 2003 के आसपास वो मुंबई में रहते थे और जुहू और हाजी अली के किनारों पर जाने का मौका उन्हें मिला है। और इसके अलावा एक श्रोता लिखते हैं कि भारत में बंगाल की खाड़ी से जुड़े हुए कई राज्य हैं और कुछ इलाका अरब सागर से जुड़ा है, कुछ हिंद महासागर से जुड़ा हुआ इलाका भी है। फूलों के बारे में भी लगातार कमेंट आ रहे हैं। लाल गुलमोहर के अलावा जामुनी रंग के गुलमोहर, जिसे जकरांडा एवं नीला गुलमोहर कहते हैं, वसंत ऋतु में मार्च अप्रैल के महीने में इस पेड़ में बहुत फूल आते हैं। महाराष्ट्र के अमरावती के मेलघाट में तो बहुत ही आकर्षक गुलमोहर होते हैं। एक श्रोता है जो कहते हैं कि कन्हान नदी हमारे शहर के पास बहती है और इसके अलावा एक और श्रोता है जो कहते हैं कि हम तो भोपाल के हैं, चारों तरफ तालाब, जंगल और पहाड़ हैं, गुलमोहर के गोल्डन शावर की बहार है। और दिल्ली के एक श्रोता कहते हैं कि यमुना नदी है तो सही, लेकिन प्रयागराज जाते हैं और संगम में स्नान करते हैं। एक और श्रोता भेड़ाघाट को याद कर रहे हैं। आप सभी का बहुत शुक्रिया, इतने प्यार से आप नदियों को, सागर को, सबको याद कर रहे हैं। और अब चूंकि टेक्स्ट में हमने बहुत अलग अलग तरह के गानों का जिक्र किया था, तो अब ये गाना, इस गायिका का नाम बताइए।

मुबारक बेगम की आवाज सभी श्रोताओं ने पहचान ली। एक श्रोता का बड़ा प्यारा कमेंट आया है जिन्होंने लिखा है कि उन्होंने जिंदगी में अभी तक समंदर नहीं देखा और उन्हें समंदर देखने का इंतजार है। इसके अलावा कई श्रोता ऐसे हैं जिन्होंने समंदर देखा। जरा सोचिए कि ये पेड़ पौधे, ये नदियां, ये समंदर, ये खाड़ियां, ये गुलमोहर, ये अमलतास, ये तमाम फूल पौधे नहीं होते, कुदरत के ये नजारे नहीं होते तो ये दुनिया कितनी सोनी होती और हम कितने उदास होते। और अब जगजीत सिंह की आवाज में ये गाना बज रहा है, इसे लिखा किसने है ये बताइएगा। और साथ में ये भी बताइए कि अब तक इस कार्यक्रम में जो भी गाने बजे उसमें सबसे सबसे सबसे ज्यादा प्रिय गाना आपका कौन सा था।

अर्थ फिल्म का ये गीत कैफी आसमी का लिखा हुआ था। बहुत सारे श्रोताओं ने जवाब दिया। कई ऐसे श्रोता हैं जिन्होंने कहा कि वो अपनी जिंदगी के सारे सुख दुख ईश्वर से साझा करते हैं। कुछ श्रोता ऐसे हैं जो विविध भारती से अपने सुख दुख साझा करते हैं। कुछ श्रोता अपनी शरीक की हयात से अपने सुख दुख साझा करते हैं। एक श्रोता ऐसी हैं जिन्होंने लिखा कि बहनें होती हैं जिससे अपना सारा सुख दुख बांटा जा सकता है। बहुत ही कमाल के जवाब आप सभी ने दिए हैं। सुख दुख बांटने के लिए कभी विविध भारती, कभी बहन, कभी परिवार, सुंदर बात। और इसके अलावा नदी और समुद्र से जुड़ी आपकी यादों की तो इतनी बौछार है कि स्टूडियो में एक अलग ही ठंडक महसूस हो रही है।

बहुत ही प्यारा और बहुत पसंदीदा गाना इस वक्त आ रहा है। इस फिल्म की हीरोइन कौन थी ये बताइएगा।

क्या बात है, इतना सुंदर ये पंछी का गाना, बंदिरी फिल्म का गीत, और इस फिल्म में नूतन ने क्या गजब अभिनय किया था। इतने सारे श्रोताओं के समंदर और नदी पर कमेंट आ रहे हैं कि आज मुझे अलग से बैठकर ये सारे कमेंट्स पढ़ने होंगे। एक श्रोता लिखते हैं कि उड़ीसा में जो कटक शहर है दो नदियों के बीच बसा है, महानदी, और महानदी से एक शाखा निकलती है जिसे काठजोड़ी नदी कहते हैं। इन दोनों नदियों के बीच में कटक बसा है। शहर के चारों तरफ पुल है और कटक को पानी का शहर भी कहा जाता है। बहुत शुक्रिया इस जानकारी के लिए। बहुत सारे श्रोताओं के कमेंट्स, सोमनाथ, मुंबई, गोवा, तिरुवनंतपुरम, रामेश्वरम, विशाखापट्टनम और बंगाल का समुद्र देखा। कितने सौभाग्यशाली हैं हमारे ये श्रोता कि उन्होंने चारों तरफ जो भारत में समुद्र है वो सभी देख रखे हैं। इसके अलावा एक श्रोता है जो कहते हैं कि विविध भारती परिवार है और हम अपना सुख दुख यहीं से साझा करते हैं। इसके अलावा एक श्रोता है जो कहती है मैं अपने पति से, एक श्रोता है जो अपने बेटियों से अपने सुख दुख साझा करती है। बहुत शुक्रिया इन तमाम बातों के लिए। और इतनी सारी बातें हुई फूलों की, पंछियों की। मैंने बताया कि विविध भारती के कंपाउंड में बहुत सारे तोते आते हैं। आपके आसपास, आपके घर, आपकी खिड़कियों पर कौन से पंछी आते हैं जरूर बताइए। और अब आ रहा है फूलों का गाना, वो गाना जिससे सभी को बहुत प्यार है, पर आपको ये बताना है कि आपको किस फूल से सबसे ज्यादा प्यार है। किसी एक फूल का नाम लो।

कितनी सुंदर बात है, आपका साथ साथ फूलों का, आपकी बात बात फूलों की। कितने सारे श्रोता हैं जिन्होंने अपने पसंदीदा फूलों के नाम लिए हैं। किसी को गुलाब पसंद है, किसी को हरसिंगार बहुत पसंद आते हैं। एक श्रोता लिख रहे हैं कि हरसिंगार के फूल जब झड़ते हैं तो लगता है मानो जमीन पर तारे निकल आए हैं। इसके अलावा एक श्रोता लिखते हैं कि हमारे घर के आसपास गोरैया बहुत नजर आती है, और इसके अलावा बहुत सारे तोते और चिड़ियाएं आती हैं, कबूतर बहुत ज्यादा आते हैं, आजकल हम दाना पानी रखते हैं। एक श्रोता लिखते हैं कि एक बहुत छोटी सी प्यारी सी चिड़िया इनके घर में बहुत बार आती है। एक और श्रोता हैं जो लिखते हैं कि तोते, काबर, कोयल, कबूतर और कुछ अज्ञात पंछी नजर आते हैं। और इसके अलावा एक और श्रोता है जो लिख रहे हैं कि इतने सारे पंछी नजर आते हैं, सबको नाम से नहीं जानती पर मैना को पहचानती हूं। सभी श्रोताओं ने बहुत सारे अलग अलग पंछियों के नाम लिए हैं, और अब चूंकि कार्यक्रम से जाने का वक्त आ गया है, लेकिन एक गाने का सुराग मैंने अपनी आज की इबारत में रख छोड़ा था, वो आज का आखिरी गाना है। आज का सुरीला सफर कार्यक्रम आपको कैसा लगा, कमेंट करके जरूर बताएं।

दोस्तों ये आज का सुरीला सफर कार्यक्रम था और ये कार्यक्रम आज हमने कुदरत और अपने दिल की बहुत प्यारी और नाजुक बातों से सजाया था। उम्मीद है आपको ये कार्यक्रम पसंद आया होगा। चलते चलते एक दरखास्त है, जैसे कि आप जानते हैं विविध भारती हर महीने करता है अपनी एक महफिल सृजन भारती। इस बार सृजन भारती लेकर आ रहा है लोक संगीत की भीनी खुशबू और कुछ दिलचस्प बातों का गुलदस्ता, और ये कार्यक्रम होगा एक मुक्ताकाशी रंगमंच पर। 21 मई शाम 6:30 पर लोक संगीत और कुछ दिलचस्प बातों से सजा रंगारंग कार्यक्रम। आयोजन स्थल है ज्ञान सागर मुक्ताकाशी ऑडिटोरियम रघुनाथ टावर के सामने, देवीदास लेन बोरीवली पश्चिम मुंबई। प्रवेश बिल्कुल मुफ्त, आप सभी खुद आएं और अपने दोस्तों को लेकर आएं। बहुत बहुत शुक्रिया। आज का कार्यक्रम आपने यूनुस खान के संग सुना। अब दीजिए इजाजत। नमस्कार।

आज बुधवार का दिन है और तारीख है 20 मई। कैलेंडर की तरफ आप देखेंगे तो सोचेंगे ये कौन सा खास दिन है, लेकिन आज का दिन पूरी दुनिया में विश्व मधुमक्खी दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। अब आप सोच रहे होंगे कि मधुमक्खियों का दिन, मतलब इसका क्या मतलब है? तो मैं आपको बताता हूं कि मधुमक्खियां हमारी जिंदगी के लिए और इस दुनिया की सलामती के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि मधुमक्खियां परागण करती हैं और ये मधुमक्खियां हमारे इकोसिस्टम को बनाए रखने की कोशिश करती हैं। सन 2017 में संयुक्त राष्ट्र ने 20 मई को मधुमक्खी दिवस के रूप में घोषित किया था और ये दिन मनाया जाता है मधुमक्खी पालन के जन्मदाता एंटोन जांसा की जयंती के मौके पर। मधुमक्खियों को बड़ी तेजी से खत्म किया जा रहा है और इससे उनके अस्तित्व पर खतरा मंडरा रहा है। जाहिर है मधुमक्खियां नहीं होंगी तो फूल पौधे और फसलें नहीं होंगी। खैर, मधुमक्खियों के बारे में सोचिए, साथ में सोचिए मीठा बोलने के बारे में।

बचपन में हम सबको किताबों में ये पढ़ाया जाता है कि मधुमक्खियां फूलों का रस लेती हैं और पराग के कणों को यहां वहां बिखेर देती हैं। इस तरह से नए पौधे पैदा होते हैं और इसी तरह से दुनिया में हरियाली बढ़ रही है, फूल बढ़ रहे हैं, पौधे बढ़ रहे हैं। पर आजकल जिस तरह से ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है, कीटनाशकों का इस्तेमाल बढ़ रहा है, उससे मधुमक्खियों के अस्तित्व पर खतरा मंडराता चला जा रहा है और इसका सीधा सीधा असर हमारे यहाँ फूलों और पौधों की विविधता पर भी पड़ रहा है। आप अक्सर ही देखेंगे कि कॉलोनियों में या ऊंची ऊंची इमारतों में मधुमक्खियों के छत्ते पड़ जाते हैं और उन्हें हटाने के लिए लोगों को बुलवाया जाता है। उसके बाद आप राहत की सांस लेते हैं कि हमने मधुमक्खियों को हटा लिया, हमें सुकून मिल गया। पर जरा ये सोचिए कि ये मधुमक्खियां पर्यावरण के संतुलन के लिए कितनी जरूरी थी। उनकी जगहों पर आपने कब्जा कर लिया और इसलिए मधुमक्खियां आपके घरों के छज्जों पर अपने घोंसले बना रही हैं, अपने छत्ते बना रही हैं। वो कहां जाएंगी, इसके बारे में किसी ने सोचा? खैर, मधुमक्खियों के बारे में सोचिए और सोचिए फूलों को बचाने के बारे में, जो मधुमक्खियों की जीवन

0: नमस्कार, समाचारों के साथ मैं दीपा सिंह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इटली की अपनी पहली द्विपक्षीय यात्रा पर कल रात रोम पहुंचे। हवाई अड्डे पर इटली के विदेश मंत्री एंटोनियो ताराजी ने उनका स्वागत किया। इटली की पीएम जॉर्जिया मेलोनी ने उनके सम्मान में रात्रि भोज दिया। श्री मोदी ने सोशल मीडिया पर बताया कि इस यात्रा का मुख्य मकसद भारत और इटली के बीच संबंधों को और मजबूत करना है। प्रधानमंत्री ने लिखा है कि दोनों देशों के बीच 2025 से 2029 तक की संयुक्त रणनीतिक कार्ययोजना की भी समीक्षा होगी। इस दौरे में भारत मध्य पूर्व यूरोप आर्थिक गलियारे पर भी खास चर्चा होगी। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में आज मंत्रालय में कैबिनेट की बैठक हुई। बैठक में लंबे समय से अटकी तबादला नीति 2026 को मंजूरी मिली है। नई नीति में प्रशासनिक और स्वैच्छिक तबादलों को अलग अलग रखा गया है। इससे जरूरी फेरबदल आसान होंगे। कैबिनेट बैठक के संबंध में जानकारी देते हुए एमएसएमई मंत्री चैतन्य कश्यप ने मीडिया को बताया
1: कि इस वक्त भी मध्य प्रदेश में 1 जून से 15 जून तक तबादले किए जाएंगे और बड़े विभागों में अगर कोई नीति उनकी अपनी बनाना है तो वह जीएडी के ना सामान्य प्रशासन विभाग के माध्यम से मुख्यमंत्री की अनुशंसा से वह अपनी नीति विभाग बना सकेंगे और जो अभी वर्तमान में ए प्लस के जितने भी मुख्यमंत्री जी के निर्देश है उनको सारे विभागों को निर्देश दिया है वो 31 मई तक उनको पूर्ण कर ले जिससे बाद में विभागीय ट्रांसफरों के अंदर कोई दिक्कत भी आए।
0: मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव आज भोपाल में गूगल के वरिष्ठ अधिकारियों से मुलाकात करेंगे। बैठक में प्रदेश में एआई आधारित डिजिटल सेवाओं और क्लाउड तकनीक के इस्तेमाल पर रणनीतिक चर्चा होगी। सीवस 2028 के लिए स्मार्ट भीड़ प्रबंधन और एआई पुलिसिंग के साथ साथ स्वास्थ्य, कृषि और शिक्षा में तकनीक के उपयोग पर भी विचार किया जाएगा। बैठक में गूगल क्लाउड इंडिया और सिंगापुर से आए वैश्विक प्रतिनिधि भी शामिल होंगे। राज्यपाल नंदभाई पटेल आज बैतूल जिले के दौरे पर हैं। वे भीमपुर के पुलिस ग्राउंड में सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन मिशन के तहत आयोजित महाअभियान कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं। यहां सिकल सेल और थैलेसीमिया जांच मशीन का उद्घाटन किया जाएगा और जरूरतमंदों को हितलाभ भी बांटे जाएंगे। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघचालक डॉ. मोहन भागवत आज पहली बार शहडोल पहुंच रहे हैं। वे ट्रेन से कटनी आएंगे और फिर सड़क मार्ग से शहडोल पहुंचेंगे। 3 दिन के इस प्रवास में उनका मुख्य कार्यक्रम पांडव नगर के सरस्वती स्कूल में होगा जहां 300 से ज्यादा शिक्षार्थियों के साथ बौद्धिक शिविर आयोजित है। ऑनलाइन दवा बिक्री के विरोध में आज प्रदेश की हजारों दवा दुकानें बंद हैं। व्यापारियों ने कलेक्ट्रेट पहुंचकर ज्ञापन सौंपा और कहा कि ऑनलाइन दवाओं की ना कोई निगरानी है और ना ही कोई जवाबदेही। हड़ताल का सबसे ज्यादा असर उन मरीजों पर पड़ा है जो रोजाना की दवाओं के लिए पूरी तरह रिटेल दुकानों पर निर्भर हैं। इंदौर में आज से ब्रिक्स युवा उद्यमिता कार्य समूह की 2 दिवसीय बैठक शुरू हुई। कुटी मैरिट में हो रहे इस आयोजन में ब्रिक्स देशों के युवा उद्यमी और प्रतिनिधि अपने अपने देशों के स्टार्टअप और नवाचार मॉडल साझा कर रहे हैं। केंद्रीय मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया इस बैठक को वर्चुअली संबोधित करेंगे। कल बैठक के दूसरे दिन प्रतिनिधि क्रिस्टल आईटी पार्क और पीतमपुर की सिप्ला कंपनी का दौरा भी करेंगे। प्रदेश में गर्मी ने सीजन का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। कल नौगांव में तापमान 47 डिग्री और खजुराहो में 46.4 डिग्री पहुंच गया। वहीं प्रदेश के 22 शहरों में पारा 44 डिग्री के पार रहा और ग्वालियर में भी पहली बार 45 डिग्री तापमान रिकॉर्ड हुआ। मौसम विभाग ने अगले 4 दिन लू की चेतावनी जारी की है। आपको समाचार संक्षेप में। नर्मदापुरम जिले की डारसी स्थित डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी चिकित्सालय में निश्चय पोषण योजना के तहत 12 क्षय रोगियों को पोषण सामग्री वितरित की गई। नीमच में कल 21 मई शासकीय आईटीआई मनासा में युवा संगम कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। आगरमालवा जिले की सुस्तेर नगर परिषद ने लगभग 5 करोड़ रुपए की लागत से नगर में भव्य गीता भवन के निर्माण कार्य को स्वीकृति प्रदान की है। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगला बुलेटिन शाम 7:10 पर। नमस्कार।

आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं कनकलता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब से कुछ देर में रोम में इटली के प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी से वार्ता करेंगे। आर्थिक सहयोग को बढ़ावा देने पर चर्चा होगी। प्रधानमंत्री मोदी और जॉर्जिया मेलोनी ने एक साझा लेख में

0: भारत इटली महत्वपूर्ण रणनीतिक साझेदारी और आर्थिक पहलुओं का उल्लेख किया। डीआरडीओ ने मानव रहित ड्रोन मिसाइल यूएलपीजीएम MP3 का सफल परीक्षण किया। रक्षा मंत्री ने इसे महत्वपूर्ण उपलब्धि बताया। सर्वोच्च न्यायालय ने जाति आधारित जनगणना करने के केंद्र के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका खारिज की। उत्तर और मध्य भारत में लू का प्रकोप जारी, कई स्थानों पर तापमान 44 डिग्री के पार। और आईपीएल क्रिकेट में आज शाम कोलकाता नाइट राइडर्स का मुकाबला मुंबई इंडियंस से। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब से कुछ देर में रोम में इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी के साथ द्विपक्षीय वार्ता के साथ साथ मौजूदा वैश्विक परिदृश्य पर भी व्यापक बातचीत करेंगे। दोनों देशों के बीच आज कई महत्वपूर्ण समझौते होने की संभावना है। दोनों नेता कई विषयों पर अपने विचार साझा करेंगे। आज की बातचीत से भारत इटली की मित्रता को और बढ़ावा देने पर चर्चा की जाएगी। हमारे संवाददाता ने बताया है कि दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय संबंधों के महत्व को दर्शाने के लिए रोम में कई कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज क्रिमिनल पैलेस में इटली के राष्ट्रपति सर्जियो मत्तारेला से मुलाकात करेंगे, जहां उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर प्रदान किया जाएगा। आज के कार्यक्रमों में प्रतिनिधि मंडल स्तरीय वार्ताएं, प्रेस वक्तव्य, समझौता ज्ञापनों का आदान प्रदान, द्विपक्षीय बैठकें और खाद्य एवं कृषि संगठन का दौरा शामिल है। प्रधानमंत्री मोदी मोनस निग्रा ब्लैक मलबेरी का पौधा भी लगाएंगे। ये एक ऐसी प्रजाति है जो अपने पाक, औषधीय और सांस्कृतिक महत्व के कारण भारत और इटली को प्रतीकात्मक रूप से जोड़ती है। रोम से सुपर्णा भाटिया।
0: प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि वे इटली के प्रधानमंत्री के साथ होने वाली बैठक को लेकर उत्सुक हैं। उन्होंने आशा व्यक्त की कि दोनों के बीच बातचीत में मुख्य रूप से भारत इटली संबंधों को मजबूत करने पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। हाल के वर्षों में भारत इटली संबंधों में अभूतपूर्व प्रगति हुई है और अब ये संबंध निर्णायक मोड़ पर पहुंच गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इटली के प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने संयुक्त लेख में कहा कि दोनों देशों के बीच संबंध सौहार्दपूर्ण मित्रता से विकसित होकर एक विशेष रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक पहुंच गए हैं। दोनों नेताओं ने कहा कि ऐसे समय में जब वैश्विक व्यवस्था में गहन परिवर्तन हो रहे हैं, भारत इटली साझेदारी उच्चतम राजनीतिक और संस्थागत स्तरों पर नियमित आदान प्रदान से निर्देशित है। दोनों नेताओं ने कहा कि उनका सहयोग इस साझा समझ को दर्शाता है कि 21वीं सदी में समृद्धि और सुरक्षा राष्ट्रों के नवाचार करने, ऊर्जा परिवर्तन का प्रबंधन करने और कूटनीतिक संप्रभुता को मजबूत करने की क्षमता पर निर्भर करेगी। दोनों नेताओं ने कहा कि भारत और यूरोपीय संघ के बीच प्रस्तावित मुक्त व्यापार समझौता दोनों दिशाओं में व्यापार और निवेश के प्रवाह को बढ़ाने का मार्ग प्रशस्त करेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इटली के प्रसिद्ध चित्रकार जियांपाओलो टोमासिट्टी की भारतीय संस्कृति पर किए गए कार्यों की सराहना की है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि कलाकार ने इटली के रोम दौरे में वाराणसी पर बनी अपनी विशेष पेंटिंग प्रस्तुत की। प्रधानमंत्री ने कहा कि श्री टोमासिट्टी का भारतीय संस्कृति के प्रति प्रेम 4 दशक से अधिक पुराना है। एक अन्य पोस्ट में श्री मोदी ने भारतीय नृत्य शैलियों के प्रति 5 इतालवी कलाकारों के प्रेम की भी प्रशंसा की। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज सियोल में दक्षिण कोरिया के रक्षा मंत्री आन ग्योबैक से मुलाकात की। दोनों नेताओं ने क्षेत्रीय शांति, स्थिरता और तकनीकी सहयोग में साझा प्रतिबद्धता व्यक्त की। उन्होंने भारत दक्षिण कोरिया रक्षा, रक्षा उद्योग और रणनीतिक सहयोग को और मजबूत करने पर चर्चा की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री सिंह ने कहा कि इस अत्यंत उपयोगी बैठक में दोनों देशों ने रक्षा साइबर सहयोग को बढ़ावा देने के लिए समझौतों का आदान प्रदान किया। यह समझौता ज्ञापन भारत के राष्ट्रीय रक्षा महाविद्यालय, कोरिया राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय और संयुक्त राष्ट्र शांति स्थापना सहयोग के बीच हुआ। रक्षा मंत्री ने कहा कि वे दोनों देशों के बीच विशेष रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करने के लिए उत्सुक हैं। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध है। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। देश ने आत्मनिर्भर भारत पहल के अंतर्गत स्वदेशी रक्षा क्षमताओं को मजबूत करने की दिशा में एक और महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO ने अनमैन्ड एरियल व्हीकल लॉन्च प्रेसिजन गाइडेड मिसाइल यूएस

0: पीजीएम V3 के अंतिम विकास परीक्षण को सफलतापूर्वक किया है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि ये देश के रक्षा क्षेत्र के लिए महत्वपूर्ण उपलब्धि है।
1: ये परीक्षण आंध्र प्रदेश में कुरनूल के पास DRDO की टेस्ट रेंज में एयर टू ग्राउंड और एयर टू एयर दोनों तरह से किए गए। इस दौरान मिसाइल प्रणाली को एक एडवांस्ड इंटीग्रेटेड ग्राउंड कंट्रोल सिस्टम के माध्यम से संचालित किया गया। इन परीक्षणों से विभिन्न परिस्थितियों में मिसाइल की सटीक मारक क्षमता, विश्वसनीयता और प्रभावशीलता प्रदर्शित होती है। इस मिसाइल को हैदराबाद के रिसर्च सेंटर इमारत ने DRDO के साथ मिलकर विकसित किया है। पूरी तरह से स्वदेशी रूप से निर्मित ये मिसाइल आत्मनिर्भर भारत पहल की बढ़ती उपयोगिता को दर्शाती है। इससे देश के भीतर रक्षा प्रणाली को और सुदृढ़ करने में सहायता मिलेगी। विजयवाड़ा से अन्नू मुरली की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार बल।
0: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ULPGM V3 मिसाइल के सफल विकास परीक्षणों के लिए रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, रक्षा सह उत्पादन भागीदारों और उद्योग जगत की सराहना की है। उन्होंने टैंक रोधी भूमिका के लिए हवा से जमीन मोड और ड्रोन, हेलीकॉप्टर तथा अन्य हवाई लक्ष्यों के लिए हवा से हवा मोड में इसकी प्रभावशीलता के बारे में जानकारी दी। श्री सिंह ने इसे रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की दिशा में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि बताया। सर्वोच्च न्यायालय ने जनगणना 2027 के तहत जाति आधारित जनगणना कराने के केंद्र सरकार के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका आज खारिज कर दी। अदालत ने कहा है कि यह मुद्दा सरकार के नीतिगत अधिकार क्षेत्र में आता है। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा है कि पिछड़े वर्गों के कल्याणकारी उपाय तैयार करने के लिए सरकार को उनकी संख्या जानना जरूरी है। पेच ने कहा कि इस तरह के आंकड़े एकत्र करने में कोई बुराई नहीं है और मामले में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया। सर्वोच्च न्यायालय ने आज केंद्र तथा सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से एक जनहित याचिका पर जवाब।
2: इसमें सरकारी कानूनी पैनलों और विधि अधिकारियों की नियुक्ति महिला वकीलों के लिए 30% आरक्षण की मांग की गई है। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ ने एक ट्रस्ट की याचिका पर नोटिस जारी किया। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने कहा है कि भाजपा सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता उत्तर बंगाल का सर्वांगीण विकास है। उन्होंने कहा कि वो विकास

0: न्यायाधीश सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ ने एक ट्रस्ट की याचिका पर नोटिस जारी किया। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने कहा है कि भाजपा सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता उत्तर बंगाल का सर्वांगीण विकास है। उन्होंने कहा कि वो विकास परियोजनाओं की समीक्षा और सरकारी योजनाओं के प्रभावों की निगरानी के लिए हर महीने एक बार उत्तर बंगाल का दौरा करेंगे। उन्होंने कहा कि उत्तर बंगाल विकास मंत्री, उत्तर बंगाल सचिवालय उत्तरकन्या सिलीगुड़ी में सुबह 9 बजे से 11 बजे तक जनता दरबार का आयोजन करेंगे। उन्होंने ये भी कहा कि जनता दरबार के बाद दिन में 11 बजे से दोपहर 1 बजे तक अधिकारियों के साथ प्रशासनिक समीक्षा बैठक होगी और उसके बाद उसी दिन दोपहर 2 बजे से 4 बजे तक विकास मंत्री क्षेत्र के सभी सांसदों और विधायकों के साथ विकास कार्यों को गति देने के लिए समीक्षा बैठक करेंगे। केंद्रीय उपभोक्ता मामलों के मंत्री प्रह्लाद जोशी ने कहा है कि सरकार स्मार्ट विनियमन और उत्तरदायी शासन के माध्यम से बाजार में निष्पक्षता बढ़ाकर नियामक बोझ को कम करने के लिए प्रतिबद्ध है। विश्व मापन दिवस 2026 के अवसर पर वर्चुअल रूप से आयोजित एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए श्री जोशी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने यह परिकल्पना की है कि भारतीय उत्पादों की गुणवत्ता वैश्विक मानकों और पर्यावरण के अनुकूल होनी चाहिए। राष्ट्रीय महत्वपूर्ण सूचना अवसंरचना संरक्षण केंद्र के महानिदेशक नवीन कुमार सिंह ने आज कहा कि देश की डिजिटल अर्थव्यवस्था से वर्ष 2030 तक देश के सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी में लगभग 20% के योगदान देने की उम्मीद है। वे नई दिल्ली में फिक्की के साइबरकॉम के 7वें संस्करण के उद्घाटन सत्र को संबोधित कर रहे थे। राष्ट्रीय महिला आयोग ने मध्य प्रदेश के भोपाल में नोएडा की 33 वर्षीय महिला की संदिग्ध मौत का स्वतः संज्ञान लिया है। आयोग की अध्यक्ष विजया राहटकर ने मध्य प्रदेश के मुख्य सचिव और पुलिस महानिदेशक को पत्र लिखकर त्वरित, निष्पक्ष और समयबद्ध जांच सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है। महिला आयोग ने 7 दिन में विस्तृत कार्रवाई रिपोर्ट भी मांगी है। पंजाब पुलिस ने दुबई स्थित एक अंतर्राष्ट्रीय मादक पदार्थ तस्करी मॉड्यूल का भंडाफोड़ किया है जो सीमावर्ती राज्य पंजाब और राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में मादक पदार्थों की तस्करी के लिए अबू धाबी से काम कर रहा था। पुलिस ने 14 किलोग्राम मादक पदार्थों के साथ 2 तस्करों को गिरफ्तार किया है। उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री मेजर जनरल भुवन चंद्र खंडूड़ी का अंतिम संस्कार आज हरिद्वार में पूरे राजकीय सम्मान के साथ किया गया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उनके निधन को राज्य के लिए अपूर्णीय क्षति बताया।
1: मेजर जनरल भुवन चंद्र खंडूड़ी जी का जाना पूरे राज्य के लिए और देश के लिए बहुत अपूर्णीय क्षति है और उन्होंने सेना के अधिकारी के रूप में देश की रक्षा के लिए अपनी सेवाएं दी, अभूतपूर्व योगदान दिया। उसके बाद भारत सरकार में मंत्री के नाते और राज्य में मुख्यमंत्री के नाते उन्होंने शुचिता, पारदर्शिता और अनुशासन और समय की पाबंदी, ऐसे बहुत सारे अनुकरणीय जो कार्य हैं अपने समय में किए, वो हम सभी के लिए प्रेरणा के स्रोत रहेंगे।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @xatirnews हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। उत्तर पश्चिमी और मध्य भारत में लू का प्रकोप जारी है। मौसम विभाग ने अगले 4 दिन तक दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, ओडिशा, छत्तीसगढ़, राजस्थान, तेलंगाना और उत्तराखंड में लू की स्थिति बने रहने का अनुमान व्यक्त किया है। राजस्थान के अधिकांश जिले भी इस समय भीषण लू की चपेट में हैं। मौसम विभाग ने आज राज्य के 2 जिलों में लू की स्थिति को देखते हुए ऑरेंज अलर्ट जबकि 14 जिलों में येलो अलर्ट जारी किया है। हमारे संवाददाता की ये रिपोर्ट।
2: प्रदेश में भीषण गर्मी और गर्म हवाएं लोगों को परेशान कर रही हैं। ज्यादातर जिलों में दिन का पारा 42 से 46 डिग्री वहीं रात का तापमान 46 से 31 डिग्री सेल्सियस के बीच दर्ज किया जा रहा है। इस बीच चिकित्सा मंत्री गजेंद्र सिंह खींवसर ने अस्पतालों में हीट वेव प्रबंधन को लेकर सभी जरूरी इंतजाम करने के निर्देश दिए हैं। अस्पतालों में हीट स्ट्रोक के मरीजों के लिए अलग से बेड आरक्षित रखने, जरूरी दवाइयां उपलब्ध कराने के साथ छाया और पेयजल का प्रबंध करने को कहा गया है। जितेंद्र द्विवेदी, आकाशवाणी समाचार, जयपुर।
0: पंजाब और हरियाणा में भी भीषण गर्मी जारी है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि मौसम विभाग ने दोनों राज्यों में गर्मी का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है।
3: चंडीगढ़ स्थित मौसम विभाग के डायरेक्टर सुरेंद्र पाल ने आकाशवाणी को बताया कि आने वाले 3-4 दिनों में मौसम शुष्क रहेगा और तापमान बढ़ेगा। दोनों राज्यों के पश्चिमी जिलों में लू की स्थिति रहेगी। पंजाब में ये जिले अमृतसर, फिरोजपुर, तरनतारन, मानसा, संगरूर, बठिंडा

0: डा और मुक्सर होंगे और हरियाणा में हिसार, रोहतक, झज्जर, भिवानी, गुरुग्राम और फरीदाबाद में सबसे ज्यादा गर्मी महसूस होगी। पिछले 24 घंटों में पंजाब में फरीदकोट 47.3 डिग्री सेल्सियस और हरियाणा में रोहतक 46.9 डिग्री सेल्सियस तापमान के साथ सबसे गर्म जिले रहे। राजेश बाली, आकाशवाणी समाचार, जलंधर।
1: चीन के राष्ट्रपति शी जिनफिंग और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने आज पेइचिंग में द्विपक्षीय संबंधों, ईरान यूक्रेन संघर्ष और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार सहित प्रमुख वैश्विक मुद्दों पर बातचीत की। चीन के विदेश मंत्रालय ने कहा है कि वार्ता से पेइचिंग और मॉस्को के बीच रणनीतिक साझेदारी को मजबूती मिलेगी और संयुक्त राष्ट्र, दक्षिण अफ्रीका परिषद और ब्रिक्स जैसे मंचों के माध्यम से समन्वय बढ़ेगा। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अगले महीने फ्रांस में आयोजित होने वाले G7 शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। पश्चिम एशिया संघर्ष को लेकर अमेरिका और कई यूरोपीय सहयोगियों में बढ़ते तनाव के बीच ट्रंप इस सम्मेलन में भाग ले रहे हैं। घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक में आज मामूली गिरावट दर्ज की गई। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 101 अंक गिरकर 75,100 जबकि निफ्टी 24 अंक की गिरावट के साथ 23,594 पर कारोबार कर रहा था। आईपीएल क्रिकेट में आज कोलकाता नाइट राइडर्स का मुकाबला मुंबई इंडियंस से होगा। ये मैच कोलकाता में शाम 7:30 बजे शुरू होगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब से कुछ देर में रोम में इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी से वार्ता करेंगे। आर्थिक सहयोग को बढ़ावा देने पर चर्चा होगी। प्रधानमंत्री मोदी और जॉर्जिया मेलोनी ने एक साझा लेख में भारत इटली महत्वपूर्ण रणनीतिक साझेदारी और आर्थिक पहलुओं का उल्लेख किया। डीआरडीओ ने मानव रहित ड्रोन मिसाइल ULPGM-V3 का सफल परीक्षण किया। रक्षा मंत्री ने इसे महत्वपूर्ण उपलब्धि बताया। सर्वोच्च न्यायालय ने जाति आधारित जनगणना करने के केंद्र के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका खारिज की। उत्तर और मध्य भारत में लू का प्रकोप जारी। और आईपीएल क्रिकेट में आज शाम कोलकाता नाइट राइडर्स का मुकाबला मुंबई इंडियंस से। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। प्रस्तुत है कार्यक्रम सदाबहार नगमे। सभी सुनने वालों को राजेश का प्यार भरा नमस्कार। प्रोग्राम की शुरुआत कर रहे हैं मुकेश की आवाज में संगम फिल्म के गाने के साथ। बोल हैं हसरत जयपुरी के और तर्ज शंकर जयकिशन की।

हमारी अगली पेशकश मोहम्मद रफी की आवाज में, गीतकार हैं एस एच बिहारी और संगीतकार हैं ओपी नैयर, फिल्म का नाम कश्मीर की कली।

0: जज्बात की नरम छाव, प्यार की चुवन, अपनेपन का गांव, छाया गीत रोज रात 10 बजे सिर्फ द्विज भारती पर।
1: आलस भरे सुबह जैसे चाय में घुल जाए चीनी, आपके जीवन में घोलते हैं संगीत, भूले बिसरे गीत।
2: मैं तेरा राग, तू मेरी रागनी।
1: गुजरे दौर की आवाजें, धुनों की अनूठी परवाज, सुनहरे गानों का अंदाज, आपकी सुबह को बनाए खास, भूले बिसरे गीत। हर रोज सुबह 7 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
3: आपने ट्यून किया है भारत का नंबर 1 मनोरंजन चैनल विविध भारती और कार्यक्रम चल रहा है सदाबहार नगमे। लीजिए अब सुनिए लता मंगेशकर की आवाज में भावनी फिल्म का गाना। गीतकार है राजेंद्र कृष्ण और संगीतकार है चित्रगुप्त।

0: जैसे कि आप जानते हैं विविध भारती हर महीने करता है अपनी एक महफिल सृजन भारती। इस बार सृजन भारती लेकर आ रहा है लोक संगीत की भीमी खुशबू और कुछ दिलचस्प बातों का गुलदस्ता। और ये कार्यक्रम होगा एक मुक्ताकाशी रंगमंच पर 21 मई शाम 6:30 पर लोक संगीत और कुछ दिलचस्प बातों से सजा रंगारंग कार्यक्रम। आयोजन स्थल है ज्ञान सागर मुक्ताकाशी ऑडिटोरियम रघुनाथ टावर के सामने देवीदास लेन बोरीवली पश्चिम मुंबई। प्रवेश बिल्कुल मुफ्त, आप सभी खुद आए और अपने दोस्तों को लेकर आए।
1: भारतीय राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन से अभी आप सुने कार्यक्रम सदाबहार नगमे। लीजिए अब सुने शकील बदायनी का लिखा और नौशाद का संगीतबद्ध किया गया।

अब आज के इस प्रोग्राम की आखिरी पेशकश मुकेश की आवाज में कटी पतंग फिल्म से। गीतकार हैं आनंद बख्शी और संगीतकार हैं आरडी बर्मन। श्रोताओं, आप सुनिए ये गीत और अपने दोस्त राजेश को आज्ञा दीजिए। नमस्कार।

0: Rede. कार्यक्रम सखी सहेली में सभी सुनने वालों का तहे दिल से स्वागत है। मैं हूं आपकी दोस्त मंदाकिनी जोशी और मेरे साथ हैं
1: आरती श्रीवास्तव।
0: आप सभी को हमारा
1: और मेरा यानी कि आरती श्रीवास्तव का
0: नमस्कार। कैसी हो आरती?
1: बिल्कुल ठीक हूं, बहुत बहुत बढ़िया हूं।
0: हाँ, बिल्कुल चुस्त और दुरुस्त लग रही है और काफी खुश।

0: क्या बात है?
1: बस थोड़ा सा जब ब्रेक मिल जाता है ना, इतनी ऐसे जो रोज की हमारी दिनचर्या होती है ना, तो फिर अपना एकदम पूरे चार्ज हो जाते हैं हम लोग।
0: क्या बात है, ऐसा कौन सा ब्रेक तुमने ले लिया? हालांकि बहुत दिनों बाद मिली हूँ और मुझे एक बार तो घबराहट भी हो गई थी कि आरती मुझे कहीं दिखाई नहीं दे रही है, लेकिन जब आज जैसे ही तुम मिली तो मुझे बहुत खुशी हुई।
1: बिल्कुल, आपका प्यार है जो आपने मुझे इतना नोटिस किया। और मैं गई थी मतलब बहुत ज्यादा यात्राओं पे।
0: अच्छा,
1: यात्रा की बात तो हम लोग करते रहते हैं, मैंने सोचा जाना भी चाहिए, तो बात करने से कुछ नहीं होता। तो मैं गई थी इस बार, मैं गई मथुरा, वृंदावन और अयोध्या,
0: अरे वाह,
1: और साथ में बरसानी और आगरा, मतलब जो भी चीजें रास्ते में पड़ती गई हम लोग जाते रहे।
0: क्या बात है, क्या बात है, जबी चेहरे की चमक बता रही है
1: बिल्कुल,
0: और आपकी मुस्कुराहट और हंसी बता रही है कि आप बहुत सुंदर यात्रा करके लौटी है।
1: बिल्कुल,
0: कैसी रही यात्रा? ग्यारह
1: बहुत बहुत अच्छी रही और बहुत चीजें बदल भी रही है मंदाकिनी जी।
0: अच्छा,
1: वहां जब हम लोग गए थे तो पहले जैसे बहुत परेशानियां होती थी बरसाना साइड जाने में, कि गाड़ी करो, ये करो, उससे तब जाओ, वहां तक पहुंचो आप, एक मंदिर है जो वहां का प्रसिद्ध। तो लेकिन इस बार था रोप वे शुरू हो गया वहां पे।
0: अच्छा,
1: तो बस आप रोप वे तक पहुंचिए अपनी गाड़ी से या किसी भी ऑटो से, किसी भी चीज से, और उसके बाद बहुत ज्यादा रास्ता भी नहीं है बरसाने का। अगर मथुरा से जाते हैं आप 45 मिनट में पहुंच जाएंगे, उससे भी कम में भी कभी कभी पहुंच सकते हैं 20-25 मिनट में, अगर रास्ते में ट्रैफिक नहीं है तो। और रोप वे पकड़िए, सीधे आपको जहां मंदिर है वहीं पे ही उतारता है वो।
0: अरे वाह,
1: और बस आप मुश्किल से 10 कदम चलेंगे मंदिर आ गया।
0: अच्छा,
1: हाँ, तो बहुत अच्छा हो गया। अयोध्या भी गए तो वहां पे बहुत अच्छा इंतजाम कर रखा है, सिक्योरिटी भी उसी हिसाब से है, लेकिन बहुत अच्छा, बहुत सुंदर इंतजाम किया हुआ है।
0: आपके कहने का मतलब यह है कि अब यात्रा उतनी तकलीफ देह नहीं है। कई बार हम क्या होता है, निकलते तो हैं यात्रा पर रास्ते ही या वो सुविधाएं हमें नहीं मिलती है जिससे यात्रीगण परेशान हो जाते हैं, लेकिन अब इतनी सुविधाएं दे दी गई है कि यात्रा करने का मजा बहुत ही आता है।
1: बिल्कुल, और लेकिन आप ये भी सोच के जाइए कि जैसे अगर आप मथुरा जा रहे हैं, तो अगर आपको वहां मथुरा या वृंदावन में घूमना है तो आपको थोड़ा सा पैदल चलने की आपको आदत होनी चाहिए, क्योंकि वहां पे ट्रैफिक की वजह से गाड़ियों को तो पहले ही रोक लेते हैं और आपको पैदल ही जाना पड़ता है, क्योंकि वहां पे ऑटो रिक्शा और जो ई रिक्शा वगैरह चलते हैं उसकी वजह से बहुत भीड़ हो जाती है, ट्रैफिक हो जाता है। इस वजह से जो पैदल चलते हैं यात्री, बहुत से लोग परिक्रमा करते हैं लेट के, बैठ के, तो उनको परेशानी ना हो, इस वजह से वो रोका जाता है। तो इसलिए आप पैदल चलेंगे तो अच्छी बात है ना, जितना आप पैदल चलेंगे उतना अच्छा है,
0: वो अच्छी बात है। लेकिन ये बात हमारे दिमाग में रहनी चाहिए, जितने भी ये मठ है, तीर्थ जगह है, स्थान है, वहां पर हमें बहुत पहले रोक दिया जाता है, ताकि जो हम लोग जा रहे हैं, दर्शक जा रहे हैं या जो भक्त जा रहे हैं, कहने का मतलब वो परेशान नहीं हो और यात्रा जो है सुचारू और शांतिपूर्वक हो जाए। और इस घूमने के जो है ना आर्थिक बहुत ज्यादा फायदे भी हैं। देखो तुम्हें देखकर लग रहा कितनी फ्रेश नजर आ रही हो, तुमने खुद ही कहा कि तुम्हारा मानसिक तनाव बिल्कुल दूर हो गया होगा और एक फिजिकल फिटनेस महसूस कर रही होगी, और आत्मविश्वास बढ़ा होगा, एक नया दृष्टिकोण आया होगा यात्रा को करने के बाद, इतनी जगह घूम के आई हो,
1: इतने लोगों को देखा, सब कुछ किस तरह से लोग जा रहे हैं आ रहे हैं, सब चीजें देखी, बहुत
0: नई संस्कृतियों का अनुभव होता है, हमें नए अनुभव हमारे जीवन से जुड़ते
1: रहते हैं कि व्यंजन मिलते हैं, जो मेरा बहुत फेवरेट चीज है। मैं मुझे जगह जगह की जो क्यूजिन होते हैं, जो व्यंजन होते हैं ना, वो खाने में बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि वही चीजें हैं, एक ही चीज है जो यहाँ बनेगी और वो जो वहाँ बनेगी,
0: लेकिन फर्क होता है स्वाद का, क्योंकि पानी का, बनाने वाले का तरीके, तौर तरीके बदल जाते हैं, लेकिन हमारा जो स्वाद लेने का तरीका है वो नहीं बदलता है। तो यात्रा करके आपके दिमाग को सुकून मिला है मैं समझती हूँ, और अब जो आपने प्राकृतिक सुंदरता देख ली है आप फील गुड महसूस कर रही हैं।
1: बहुत बहुत अच्छा महसूस कर रही हूँ अपने अंदर।
0: तो चलिए सखी सहेली में आज हमारे सखी और सखा आपको सुन रहे हैं और वो भी बहुत ही अच्छा महसूस कर रहे हैं, मतलब आपकी यात्रा वृतांत सुनकर हमने मन से इस यात्रा को कर लिया है
1: जी।
0: तो अभी गीत सुनिए।
1: बिल्कुल सुनते हैं।

0: तो आरती आपके आने से भी देखो चार चांद लग गए हैं, है ना।
1: बहुत प्यारा गीत लगता है
0: जी। बताइए तो देखिए, आप यात्रा में इतनी खो गई कि आप ये बताना भूल गई हैं कि हमारे श्रोता जानना चाहते हैं आज की हमारी विषय क्या है।
1: बिल्कुल सही कह रही हैं, मुझे एकदम ही इतना ज्यादा उत्साह लग रहा था कि मैं बताने ही भूल गई। तो हम बता देते हैं, अभी आज हम बात करेंगे विश्व मधुमक्खी दिवस के ऊपर।
0: अच्छा,
1: तो जो कि बहुत ही जरूरी है हमारे लिए मधुमक्खियां।
0: बिल्कुल।
1: और हम बात करेंगे,
0: काटते बहुत बुरा है
1: और काट चुकी है मुझे, इसलिए मुझे पूरा उसका एहसास है, पूरा एक्सपीरियंस है। और हम बात करेंगे भाषाओं से किस तरह से जुड़ा हुआ है संस्कार।
0: अच्छा,
1: तो इसके बारे में तो चर्चा करेंगे, साथ ही हम चाहेंगे हमारे जो जितने भी श्रोता हैं वो सब अपने अपने विचार, अपने अपने जो भी वो सोचते हैं उसके बारे में वो लिख के भेजा, ये बताइए वो उनको कितनी भाषाएं आती हैं बोलने।
0: अच्छा ठीक है, यानी शब्द हमारा विचार आपके जो आप सेगमेंट लाई है
1: उसके अंदर हम बात करेंगे सद्भावना।
0: सद्भावना। अच्छा, भाषाओं से जुड़े संस्कार में आप बताना चाहती हैं कि जी अपनी अपनी भाषाओं के बारे में हमारे श्रोता हमसे बात करें कि वो किस भाषा को जानते हैं या कितनी भाषाओं की ज्ञाता है। तो फटाफट लिखिए, हमारे सखा और सखियों से हम अनुरोध करते हैं कि जो भाषाओं से जुड़ा संस्कार है इस पर लिखने के साथ साथ ये भी बताइए आपने अब तक कितनी भाषाएं सीखी है।
1: जी बिल्कुल। और हम बात करेंगे आज साड़ियों का संसार, साड़ियों का जो विषय है उसमें हम आज हम लेकर आए हैं तनचोई साड़ी।
0: क्या बात है, क्या बात है। तो आज मुझे पूरी उम्मीद है कि इस बार आप मेरे लिए तनचोई साड़ी लेकर आई हैं।
1: साड़ी तो मैं खैर नहीं लेकर आ पाई हूँ, लेकिन आपके लिए बहुत सारी मिठाइयां मैं लेकर आई हूँ।
0: बिल्कुल, वो हमें मिल भी गए है ना जी। और शब्द हमारा विचार आपके में आज सद्भावना पर हम बात करने वाले हैं। देखिए, सद्भावना कहने कोई बहुत सामान्य शब्द लगता है, सद्भावना होनी चाहिए, लेकिन इसकी गहरी अर्थ है। बहुत गहराई में जाकर आप इस पर अपने विचार लिखिएगा और ये भी बताइएगा कि आपके भीतर कितनी सद्भावना है दूसरों के प्रति, है ना। हम लिखते रहते हैं आरती बड़ी बड़ी बातें कि सद्भावना होनी चाहिए, बहुत जरूरी है जीवन में, लेकिन जब हमारा मौका मिलता है तो पता चलता है कि हमारे अंदर तो सद्भावना है ही नहीं, भावना ही नहीं।
1: अपने विचार लिखे,
0: हाँ,
1: जो चीजें लिखी हुई पहले से उसमें
0: उस पर मत जाइए कि सद्भावना के विषय में क्या लिखा गया। ये बताइएगा कि आप सद्भावना को लेकर क्या सोचते हैं, आपके जीवन में, आपके विचारों में, आपके व्यवहार में कितनी सद्भावना है, या सामने जो आपके लोग आते हैं उनसे आपको क्या सद्भावना रूपी विचार मिलते हैं।
1: बिल्कुल। तो हम बात एक चीज और भूल रहे हैं,
0: व्यंजन। आपका बहुत ही पॉपुलर सेगमेंट।

0: आज हम बात करेंगे ठेकुआ की और दाल पीठा की। दाल पीठा मेरा इतना फेवरेट है ना, मैं बनाती भी हूँ, मैं खाती भी बहुत।
1: चलिए तो अगली बार जब आप आएंगी तो लेकर भी आएंगी, दाल पीठा हमें खिलाएंगी भी। ठीक है, तो भाई हम बात कर रहे थे विश्व मधुमक्खी दिवस की, जिसका हमें डर भी लगता है जब मधुमक्खी पास में छत्ता बना लेती है हमारे घर के आजू बाजू में कहीं, तो हम बड़े डर जाते हैं। एक मधुमक्खी उड़ती हुई नजर आती है तो बड़ा डर लगता है कि कब काट खाएगी। लेकिन देखिए कितनी बड़ी बात है कि ये दुनिया में अगर मधुमक्खी नहीं रही तो दुनिया के लोग सिर्फ 4 साल तक जीवित रह सकते हैं, और अनाज होगा कि नहीं इस पर काफी मतलब शोध भी किए गए हैं।
0: बिल्कुल, क्योंकि बहुत ज्यादा जरूरी है अपने हमारे इकोसिस्टम, इस जो हमारे सिस्टम है पूरा पृथ्वी का, उसको चलाने के लिए।
1: बिल्कुल,
0: और हमारे जो एक श्रोता है वो लिखते हैं कि विश्व मधुमक्खी दिवस और मधुमक्खियों के बारे में खास बातें कुछ बताने हैं वो, कि दुनिया की एक तिहाई खाद्य फसलें पूरी तरह से मधुमक्खियों जैसे जो परागकों पर निर्भर है, यानी कि वो जो मधुमक्खियां हैं वो उसको पराग को जब लेती हैं और बिखेरती हैं उस पर ही निर्भर करता है।
1: बिल्कुल,
0: यदि ये ना हो तो हमारे भोजन की प्लेट से अधिकांश फल सब्जियां और मेवे गायब हो जाएंगे। मधुमक्खियां आपस में बात करने या भोजन के स्रोत का पता लगाने के लिए एक विशेष प्रकार का वेगल डांस यानी कि नृत्य करती हैं। एक पाउंड लगभग आधा किलो शहद बनाने के लिए मधुमक्खियों के पूरे झुंड को लगभग 20 लाख फूलों का दौरा करना पड़ता है, और अंत में मधुमक्खी की 5 आंखें होती हैं, 2 बड़ी मुख्य आंखें और सिर के ठीक बीच में 3 छोटी आंखें। सच में 20 लाख
1: बताइए, तब जाके हमें हाँ शुद्ध जो शहद है वो मिलता है।
0: बूंद नहीं गिराना चाहिए।
1: हाँ, बिल्कुल नहीं गिराना चाहिए। और हम सभी को ये भी पता होना चाहिए आरती कि मधुमक्खियां उन पौधों के परागण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है जिन पर हम भोजन के लिए निर्भर हैं। जैसे कि सदियों से मधुमक्खियां जो पृथ्वी पर सबसे मेहनती जीवों में गिनी जाती है, और वो मनुष्य को, पौधों को, जैसा कि अभी तुमने बताया हमारे पर्यावरण को लाभ भी पहुंचाती रही है, और एक फूल से दूसरे फूल तक वो पराग को ले जाती है, और प्रचुर मात्रा में फल, मेवा और बीज भी वो पैदा करती है।
0: जी, हमारे ये श्रोता जो है कितने जानकार है, मतलब कितने अच्छी तरीके से उन्होंने इस बात को लिखा हुआ है।
1: बिल्कुल सही कहा इन्होंने, और बल्कि उनकी जो विविधता है और गुणवत्ता में भी सुधार लाते हैं, जिससे खाद्य सुरक्षा और पोषण में योगदान होता है, वो पृथ्वी पर जीवन चलते रहने के लिए जरूरी भी होता है। और शहद के बारे में जब हम बात कर रहे थे तो शहद तो उत्पादक होने के अलावा मधुमक्खियां पौधों के निषेचन में मदद करती हैं, और अनगिनत प्रजातियों के प्रजनन को वो सुनिश्चित भी करती हैं। फलों की और सब्जियों से लेकर फूलों और पेड़ों तक हमारे द्वारा जो खाए जाने वाले कितने ही खाद्य पदार्थ हैं वो परागण के लिए मधुमक्खियों पर ही निर्भर हैं, जैसा अभी तुमने शुरू में बताया भी था।
0: जी, और मधुमक्खियों के बिना हमारे पारिस्थितिकी तंत्र को नुकसान होगा, जिससे जैव विविधता में कमी आएगी, और मनुष्यों और वन्य जीवों दोनों के लिए खाद्य सुरक्षा जो है वो खतरे में पड़ सकती है। और विश्व मधुमक्खी दिवस की स्थापना हुई थी संयुक्त राष्ट्र द्वारा 2017 में मधुमक्खियों और परागकर्ताओं के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए।
1: बिल्कुल, और हमारे एक श्रोता लिखते हैं कि काफी अच्छी जानकारी इन्होंने दी है कि विश्व मधुमक्खी दिवस 20 मई को मनाया जाता है, और इस दिन मधुमक्खी पालन के अग्रणी एंटोन जानसा को 1734 में 32वां दिया गया था। अंतर्राष्ट्रीय दिवस का उद्देश्य जो है पारिस्थितिकी तंत्र के लिए मधुमक्खियों और अन्य परागकणों की भूमिका को स्वीकार भी करना है। तो अमेरिका में ये पहली बार दिवस मनाया गया, और ये पहले मधुमक्खी पालकों, शिक्षकों और शहद प्रेमियों द्वारा मधुमक्खियों की महत्वपूर्ण भूमिका को उजागर करने के उद्देश्य से शुरू की गई थी, और उनका लक्ष्य मधुमक्खियों की दुर्दशा के बारे में जागरूकता पैदा करना था, और उनके संरक्षण को उनके महत्व पर जोर देना भी था।
0: बिल्कुल, और एक और श्रोता है हमारे जो लिखते हैं कि 20 मई विश्व मधुमक्खी दिवस संयुक्त राष्ट्र के खाद्य एवं कृषि संगठन के अनुसार दुनिया की लगभग 33% खाद्य फसलें और 90% जंगली फूलों वाले पौधे पूरी तरह या आंशिक रूप से परागकों पर निर्भर करते हैं। मधुमक्खियां इस पारिस्थितिकी तंत्र को स्वस्थ रखने का सबसे बड़ा जरिया है।
1: बिल्कुल सही कहा, और देखिए बहुत सारी जानकारी जो हम जुटा के लाए थे वही हमारे श्रोता भी बता रहे हैं काफी अच्छा मधुमक्खियों के बारे में। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो आज दिवस हम मना रहे हैं ना आरती, ये मधुमक्खियों की सुरक्षा के लिए जागरूकता बढ़ाने का एक शानदार अवसर है, और मधुमक्खियों को प्रचुर मात्रा में पराग उपलब्ध कराने के लिए मधुमक्खी अनुकूल फूल और जड़ी बूटियां हमें लगानी चाहिए, ताकि ज्यादा से ज्यादा वो अपना कार्य कर सके। अपने बगीचों की अगर हम बात करें, उन पर पौधों पर कीटनाशकों और रसायनों का उपयोग करने से हमें बचना भी चाहिए, क्योंकि मधुमक्खी और अन्य जो लाभकारी कीड़े हैं उनको नुकसान पहुंच सकता है। और साथ ही मधुमक्खी उत्पाद खरीदकर स्थानीय मधुमक्खी पालकों को हम बढ़ावा दे सकते हैं। और इस बार का जो मुख्य विषय रखा गया है वह है प्रकृति से प्रेरित मधुमक्खियां हम सभी का पोषण करती हैं।
0: बिल्कुल, हर बार एक नया विषय के साथ में आते हैं, तो इस बार का विषय यह है।

0: हमारे एक क्वेश्चन होता है जो लिखते हैं कि फूलों और फूल और फलों के फलीकरण के लिए मधुमक्खी वाहक का काम करती है, इसलिए मधुमक्खी का अस्तित्व बना रहना इस सृष्टि के लिए बेहद जरूरी है। पेड़ों की डाली के अलावा किसी घर की छत के नीचे छत्ता बना रही मधुमक्खियों से डरने की जरूरत नहीं है, सिर्फ सावधानी बरतनी चाहिए। बिल्कुल, जब तक आप उसे छेड़ेंगे नहीं तब तक
1: काटी करेगी, बिल्कुल,
0: और कि वो आपको डस न ले, हम मतलब उसको टंग न लगा दें आपको। हम भी ये कह रहे हैं अगर उसे आप छेड़ेंगे नहीं तो, अगर आप उसे छेड़ेंगे तो हमें छोड़ेगी नहीं, इसलिए पेड़ की डाली पर तेरा छता हो उस डाली के पास से गुजरना नहीं। उन्होंने बड़े मजाक के तरीके से इस चीज को लिखा है।
1: बिल्कुल सही कहा है।
0: वो कहते हैं कि 3 साल पहले हमारे घर के ओटीएस के सालियों पर छाता बनाया था, अब इस साल हमारे घर अमरूद के पेड़ के नीचे कपड़े सुखाने के तार पर एक कोने में एक महीन पहले छत्ता बनाना शुरू किया जो आज काफी बड़ा हो गया है और कुछ दिनों बाद बरसात की ऋतु में अपने आप उड़ जाएंगे, न हम उसे छेड़ते न वो हमें छेड़ती।
1: बिल्कुल सही कहा। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि विश्व मधुमक्खी दिवस पर जरूर बताना चाहूंगी कि हमारी स्कूल बिल्डिंग में अभी अप्रैल में काफी बड़ा सा छत्ता है जिसे बुलवाकर हटवाया गया था। पहले तो हमको बहुत स्थानों पर दिखाई देती थी मधुमक्खियां, अब कम दिखती हैं। बचपन में माँ बताती थी कि उस पर बिल्कुल भी पत्थर नहीं फेंकना है, नहीं तो पानी के अंदर जाकर भी वो डंक मार देती है। वो हमेशा बात हमें याद रहती है और मधुमक्खी शहद से मिठास देती है, ऐसे ही सभी के जीवन में मधुरता बनी रहे।
0: बिल्कुल,
1: तो चलिए अब एक गीत सुन लेते हैं।
0: बिल्कुल सुनते हैं।

0: तो आरती
1: नाम नहीं बताने वाली हूँ
0: नहीं, नाम तो हमारे पता ही है हमारे श्रोताओं को
1: बिल्कुल
0: तो हम बात कर रहे थे आज की भाई विश्व मधुमक्खी दिवस है और हमने बात की उनकी मिठास पर।

0: और मधुमक्खियों को किस तरह से हमें बचाना है इस पर, और भी बहुत सारी चीजें होती हैं हमारे देश में, हमारी संस्कृतियों से जुड़ी चीजें हैं, जहां पर हम बहुत सारी बातों से, बहुत सारी चीजों से, गुणों से जुड़ पाते हैं, और उनमें एक है हमारा साड़ियों का संसार।
1: अरे बहुत
0: है ना, और हम महिलाओं को सबसे ज्यादा अच्छी लगती है ये साड़ियां, और आज हम बात करने वाले हैं तंचोई साड़ी के बारे में।
1: तो तंचोई के बारे में बात करते हैं, तो तंचोई की कहानी 19वीं शताब्दी ईस्वी के मध्य से शुरू होती है और ऐसा माना जाता है कि लगभग 1856 ईस्वी में पारसी व्यापारी सर जमशेद जी जेजी भाई ने सूरत के जोशी परिवार के 3 बुनकरों को चीन भेजा ताकि वो इस विशेष ब्रोकेट रेशम की बुनाई की कला को सीख सके।
0: हाँ बिल्कुल सही कहा आरती, और वापस लौटने पर भाइयों ने अपने चीनी शिक्षक छुई का नाम अपना लिया और उन्होंने रेशम बुनाई की कला जो सिखाई थी। तन शब्द गुजराती शब्द त्रान से मिलता जुलता है जिसका अर्थ तीन होता है और इसी से तीनों भाइयों का नाम लिया जाता है। इस प्रकार जिस रेशम को उन्होंने बनाना सीखा उसे तंचोई के नाम से जाना जाने लगा है।
1: तो उनके शिक्षक का नाम और उनका जो नाम भाई

0: छोई का नाम अपना लिया और उन्होंने रेशम बुनाई की कला जो सिखाई थी। तन शब्द गुजराती शब्द त्रान से मिलता जुलता है, जिसका अर्थ तीन होता है और इसी से तीनों भाइयों का नाम लिया जाता है। इस प्रकार जिस रेशम को उन्होंने बनाना सीखा उसे तनचोई के नाम से जाना जाने लगा है।
1: तो उनके शिक्षक का नाम और उनका जो नाम भाई थे। और बम्बई में 1950 के दशक तक तनचोई साड़ियों का उत्पादन जारी रहा और जब बनारस के बुनकरों ने इन ब्रोकेट को बनाने की कला सीख ली तो उसी कपड़े का उत्पादन बहुत कम कीमत पर शुरू कर दिया गया और इसी तरह कुछ जटिल बनारसी डिजाइन तनचोई रेशम पर भी दिखाई देने लगे।
0: बिल्कुल सही कहा, तनचोई बुनाई की एक ऐसी तकनीक है जिसमें एक या दो ताने और बाने में दो से पांच रंग के होते हैं, मतलब जो अक्सर एक ही रंग के होते हैं। और तनचोई साड़ियों की एक और खास बात यह है आरती कि इनके कपड़े की सतह साटन जैसी होती है और एक जटिल और तकनीकी बुनाई तकनीक है, बहुत मतलब थोड़ा जटिल है ये तकनीक,
1: इसको टाइम लगता है सीखने में, बनाने में
0: बहुत मुश्किल है।
1: तो इसमें एक या दो ताने और दो से पांच बाने के रंगों का उपयोग होता है। ये साड़ियां बेहद हल्की और पहनने में मुलायम होती हैं। तनचोई की कई अलग अलग किस्में होती हैं, जैसे कि सैटन तनचोई जो कि एक ही रंग के सैटन कपड़े पर, जो साटन का कपड़ा होता है उस पर आधारित होती है और इसमें एक या अधिक रंगों के ताने के धागे इस्तेमाल किए जाते हैं।
0: हाँ, और अतिरिक्त ताने के रंगों को भी मुख्य ताने के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा सैटिन जरी तनचोई सैटिन तनचोई का एक विस्तारित रूप है जिसमें ताना या तो एक रेशम और एक सोने के धागे का या दो रेशम के धागे और एक सोने के धागे का, इस तरह से इसको बनाया जाता है।
1: जी, और इसके साथ एटलस या गिल्ट कपड़े की सतह शुद्ध साटन की होती है। अन्य कपड़ों की तुलना में एटलस या गिल्ट भारी होता है और जरी के अतिरिक्त उपयोग के कारण इसमें अधिक चमक भी होती है। और मुशब्बर का डिजाइन अपनी जालीदार बुनाई के कारण थोड़ा अलग सा दिखता है।
0: हाँ बिल्कुल, अलग लगती है तनचोई साड़ी और ये झाड़ी हुए पेड़ की शाखाओं जैसा भी प्रतीत होता है। मुशब्बर डिजाइन जो है अक्सर जंगल या प्रकृति की हरियाली से जुड़ी है। तो तनचोई जो वस्त्र है वो चटक रंगों से बुने जाते हैं और बुनाई की तकनीक में कई रेशमी धागों का उपयोग होता है। ब्रोकेट की साड़ियां होती है ना, उसी तरह ब्रोकेट की तरह तानचोई भी साटन बेस को ढकने वाले रंगीन बाने के रेशमी धागों के एक अतिरिक्त सेट का उपयोग करके बनाया जाता है, जिससे विशिष्ट और अनूठे पैटर्न भी बनते हैं।
1: बिल्कुल, और तानचोई साड़ियों में डिजाइन हमेशा उड़ते हुए पक्षियों, फूलों की मालाओं के बीच बैठे मुर्गों की आकृतियों से सजे होते हैं, जो पूरी साड़ी पर फूलों और फूलों से भरी टोकरियों से घिरे रहते हैं। कभी कभी पल्लू पर मोर, टोकरियां, फूलों के गुच्छे या शिकार के दृश्य अधिक सघनता से बनाए जाते हैं। तनचोई रेशमी साड़ियों को कुछ मनमोहक पुष्प, ज्यामितीय और पैसले डिजाइन से भी सजाया जाता है।
0: हाँ, बहुत ही अजीब सी एक क्लासिक डिजाइन होती है तनचोई साड़ियों में और अधिकतर डिजाइन जो है चीनी मूल की होती है, लेकिन बुनकर जो है अनूठी कलाकृतियां बनाती के लिए भारतीय रूपांकनों को इसमें शामिल कर लेते हैं। और तनचोई साड़ियों पूरे देश में औपचारिक अवसर जो है या विवाह समारोह के अवसर है या त्योहार है हमारे, उसमें बहुत ही प्यार से बहुत ही खुशियों के साथ पहनी जाती है, शौक के साथ पहनी जाती है। और तनचोई रेशम की साड़ियां अपने कपड़े की वजह से शरद ऋतु यानी सर्दी की ऋतु में और सर्दियों के ठंडे महीनों में पहनने के लिए एक अच्छी साड़ी हो सकती है। तो आरती, मैं तो अपनी सखियों से भी कहना चाहूंगी, अगर उनके पास तनचोई साड़ी है तो हमें बताइए किस रंग की तनचोई है और उन्होंने इसे कब और कहां पहना, और नहीं तो उनके पति देव बता दें कि उनकी पत्नी ने तनचोई साड़ी खरीदने के लिए कितना दिमाग खराब किया होगा।
1: बिल्कुल बिल्कुल,
0: तो लिखिए हमें फटाफट और बताइए तनचोई साड़ी से जुड़ा कोई आपका अनुभव है हमारी सखी और सखाओं का। हाँ, तो हम सब शामिल करें।
1: बिल्कुल, तब तक हम
0: सुनते हैं।

0: इस अंतराल के बाद हमारे सभी सखियों और सखाओं का स्वागत है।
1: स्वागत है
0: हार्दिक
1: जी। और अब हम क्या बात करने जा रहे हैं?
0: अब भाई बात तो हम करने वाले हैं कि भाषाओं से जुड़े संस्कार क्या हैं।
1: जी
0: है ना। तो सबसे पहले हमें जानना होगा आरती कि भाषा क्या है।
1: भाषा क्या है?
0: तो भाषा एक साधन है जिसके माध्यम से मनुष्य बोलकर लिखकर या संकेतों के द्वारा अपने मन के भावों को अपने विचारों का आदान प्रदान करता है। या दूसरे शब्दों में अगर हम कहें तो ये समाज में एक दूसरे की बात समझने और समझाने का सबसे मुख्य माध्यम है भाषा।
1: बिल्कुल। और हम लोगों ने कहा था कि अपने श्रोताओं से कि आप बताइए कितनी भाषाएं जानते हैं। तो एक हमारे श्रोता हैं जो लिखते हैं कि मुझे कम से कम 25 भाषाएं आती हैं। इससे मैं इससे अधिक भाषाओं को भी जानता हूं। मुझे 25 भाषा आती है लेकिन सबसे जो भाषा अच्छी लगती है, जो सबसे खूबसूरत है, तो वो प्यारी भाषा है हिन्दी भाषा। और हिन्दी भाषा के बराबर उनको मतलब उनको बहुत अच्छी लगती है हिन्दी बोलना। वैसे वो 25 भाषाओं को जानते हैं।
0: हाँ, लेकिन आपने 25 भाषाओं के नाम नहीं लिखे। आप बताइए हमें कि आपको कौन सी 25 भाषाएं आती हैं और उसके थोड़ा सा बताइए कैसे आपने सीखी। इतनी भाषाएं सीखना आसान नहीं होता है, क्योंकि आप जब अपने विचार हम तक भेजेंगे, अपना अनुभव हमसे साझा करेंगे, तो हो सकता है हम भी आज भी कोई भाषा सीखने के लिए चाहत हमारे मन में आ जाए, जिसका हमें डर होता है कि अरे भाई
1: और कोई आसान तरीका भी हो
0: हमें मिल जाए। तो आप थोड़ा सा बताइए कि आपने कौन कौन सी 25 भाषाएं सीखी हैं और किस तरह से सीखी है और उनका आपके जीवन में कहां कैसे उपयोग हो रहा है, इस पर थोड़ा सा बताइए। तो सबसे बड़ी बात थी आज हम बात करने वाले हैं कि भाषाओं से जो जुड़े संस्कार हैं वो क्या हैं। तो आरती, क्या कभी हमने सोचा है कि दुनिया के अलग अलग हिस्सों में बोले जाने वाली जो भाषाएं, हजारों भाषाएं, एक दूसरे से इतनी भिन्न क्यों हैं? है ना। देखने और सुनने में भले ही बिल्कुल अलग लगे, लेकिन हाल ही में एक अध्ययन हुआ, शोध हुआ, उसमें चौंकाने वाला खुलासा सामने आया कि चाहे भाषा कोई भी हो, उनकी बुनियादी संरचना और उन्हें गढ़ने वाले जो नियम हैं वो आश्चर्यजनक रूप से

0: एक समान है।
1: जी बिल्कुल, और साथ ही ये समानता इसलिए है क्योंकि इन सभी भाषाओं की उत्पत्ति हमारे मस्तिष्क की एक ही प्राकृतिक कार्य प्रणाली से हुई है। और यानी हम मनुष्य चाहे पृथ्वी के किसी भी कोने में क्यों न रहे, हमारे सोचने और अपनी भावनाओं को व्यक्त करने का मूल तरीका एक ही गहरे सांचे में ढला हुआ है। यानी अगर हमें दुख होगा तो हम रोएंगे, हमारे आंसू निकलेंगे, चाहे वो कोई अमेरिका में रहने वाला हो, चाहे वो हिन्दुस्तान में रहने वाला हो। ये खोज साबित करती है कि हमारी बोलियां भले ही अलग हो लेकिन हम सभी भीतर से एक ही मानवीय सूत्र से जुड़े हैं।
0: बहुत गहरी बातें आती है अगर हम इसे समझ पाए तो कितनी बड़ी बात है कि हम भीतर से एक मानवीय सूत्र से जुड़े हुए हैं, है ना। और भाषा का जो सीधा संबंध है वो संस्कार और सभ्यता से होता है। हम अपनी भाषा के संस्कार भूलते अगर जा रहे हैं तो गलत बात है। इसी संदर्भ में भारत के पूर्व राष्ट्रपति और वैज्ञानिक डॉक्टर अब्दुल कलाम साहब के शब्दों का अगर हम यहाँ उल्लेख करते हैं तो वो कहते हैं कि मैं अच्छा वैज्ञानिक इसलिए बना क्योंकि मैंने गणित और विज्ञान की शिक्षा मातृभाषा में प्राप्त की।
1: बिल्कुल, जो वो भाषा जानते थे समझ आता है ना, जितने की जिस भाषा को जानते हैं।
0: कितनी बड़ी बात है। और हमारे मन में क्या रहता है कि अगर हमने अंग्रेजी भाषा नहीं सीखी तो हमने कुछ भी नहीं सीखा, है ना। हम मॉडर्न नहीं कहलाएंगे, हमें सम्मान नहीं मिलेगा या हम विकास नहीं कर पाएंगे। लेकिन इतने बड़े वैज्ञानिक और राष्ट्रपति कह रहे हैं कि मैंने अपनी मातृभाषा में गणित और विज्ञान की शिक्षा ली।
1: सीखिए, आप जितनी भाषाएं हो सकती हैं उतनी सीखिए, क्योंकि इससे क्या होता है ना, जब हम सीखना शुरू करते हैं भाषाओं को अलग अलग तो हमारा जो मस्तिष्क का वो हिस्सा है ना एकदम से वो एक्टिव हो जाता है।
0: बिल्कुल।
1: और उसके बाद ना वो हमारा जो दिमाग है बहुत शार्प हो जाता है, जिसकी वजह से हम अच्छे से और भाषाओं को सीख पाते हैं, हम और चीजों को अपने अच्छे तरीके से कर पाते हैं।
0: बिल्कुल, आपने देखा कई लोग शौक या फ्रेंच भाषा सीखते हैं, उनका जीवन में उपयोग नहीं होता है लेकिन शौक होता है कि मैं भाषा सीखता हूँ।
1: बिल्कुल।
0: तो आप किसी भी भाषा के ज्ञाता हूँ, किसी भी भाषा को सीखते लेकिन मन में हीन भावना नहीं रखनी चाहिए कि मुझे वो भाषा नहीं आती है तो मुझे कुछ नहीं आता है।
1: जी बिल्कुल। और भाषाएं केवल संवाद का माध्यम ही नहीं है बल्कि हमारी संस्कृति, संस्कारों, जीवन मूल्यों और पहचान की सच्ची संवाहक है। मातृभाषा हमें अपनी जड़ों से जोड़ती है और अगली पीढ़ी तक पारंपरिक ज्ञान और संस्कार पहुंचाने का काम करती है।
0: बिल्कुल। और आज के दौर की अगर हम बात करें, हमारी युवा पीढ़ी की बात करें, तो सोशल मीडिया के प्रचलन के कारण भाषा का प्रयोग थोड़ा शॉर्टकट होने लगा है, जो कि गलत भी है ना। बिल्कुल सही नहीं है, क्योंकि शुद्ध भाषा ही समाज के संस्कार के विकास की रीढ़ होती है। और ऐसे में युवा पीढ़ी को भाषा का सही प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि शॉर्टकट भाषा की आदत जो है सोशल मीडिया में काम तो आ जाती है लेकिन जब ये आदत जीवन में आ जाती है आरती, तो इसका नुकसान परीक्षाओं से लेकर कई मंचों पर आपको झेलना पड़ता है, क्योंकि वहां आपके पास अच्छे शब्द और व्याकरण का अकाल पड़ जाता है।
1: बिल्कुल। और एक शोध बताता है कि जो ब्रेन की न्यूरोप्लास्टिसिटी यानी सीखने की जो क्षमता होती है वो जीवन भर बनी रहती है। जरूरी नहीं कि हम इस साल इतने साल के हो गए अब हम क्या सीखेंगे। ये कभी मत मन में लेकर
0: आप जब तक आपकी अंतिम सांस है आप सीख सकते हैं।
1: बिल्कुल।
0: चाहत आपके अंदर होनी चाहिए।
1: जी। और साथ ही जो व्यस्क सीखना जारी रखते हैं उनमें डेमेंशिया जो होता है मनोभ्रंश, वो उसका जोखिम जो होता है वो 46% तक कम होता है। और सीखना केवल शिक्षा नहीं है, ये मन की औषधि है। यानी पढ़ना सिर्फ डिग्री के लिए नहीं, पढ़ना जिंदगी को जीवित जिंदा रहने के लिए।
0: क्या बात है, कितनी बड़ी बात है कि केवल डिग्रियां हम धारण कर लेते हैं, मैं डबल एमए हूँ, ट्रिपल एमए हूँ, मैं पीएचडी हूँ, है ना, मैं एमफिल हूँ, ये अच्छी बात है। डिग्रियां लेते हैं, आप पढ़ते हैं, विद्वान बनते हैं, बड़ी बड़ी नौकरियों पर हम जाते हैं, वो तो है ही जिंदगी का, लेकिन इसके अलावा पढ़ना जो है वो जिंदगी को जीवित रखने के लिए कितना जरूरी है। इसलिए आपने देखा होगा बहुत जो साहित्यकार है ना वो लिखते रहते हैं अंत तक, उनके लिए कहानी लिखना, उपन्यास लिखना, कविता लिखना जिंदा रहने का माध्यम होता है।
1: बिल्कुल। आप कुछ नहीं तो डायरी लिखना शुरू कर दीजिए। आप खुद ही अपने आप को आपको लगेगा कि यार ये कितना अच्छा लिखने लगा हूं।
0: जो भीतर बदलाव आता है वो कितना सुंदर होता है ना, ये सबसे बड़ी बात है। तो देखते तो हम सभी चीजें ही आती
1: जी।
0: प्रकृति को आप भी देखती हैं, मैं भी देखती हूँ, लेकिन आप प्रकृति को किस अंदाज में देखकर क्या लिखती
1: है सबका नजर
0: मायना रखता है, है ना। तो भाषाओं को सीखना जारी रखना चाहिए, एक ऐसा निर्णय हमें लेना चाहिए कि हम भाषाएं सीखेंगे, क्योंकि ये हमारे संवाद कौशल को भी बढ़ाता है और मानसिक क्षमता में वृद्धि भी करता है। और एक से अधिक भाषाएं रोमांचक यात्रा अवसरों के द्वार आपको खोल सकता है। आप कहीं भी जाएंगे अगर आपको वहां की भाषा आती है तो आपको उस यात्रा के मजे दोगुने हो जाएंगे।
1: बिल्कुल। वहां से आप लोगों से बातचीत कर सकते हैं आराम से, जैसे कि हम गए थे तो हमने बात करी वहां ब्रिज भाषा में।
0: अच्छा लगा,
1: बहुत अच्छा लगता है। फिर अगर आप जब उनसे उनकी भाषा में बात करते हैं तो और जुड़ जाते हैं आपसे, अच्छा ये तो हमारी भाषा बोल रहे
0: हैं, तो अपने करीब पाते हैं ना आपको।
1: बिल्कुल।
0: ये हमारे ही लोग हैं और भाषा एक दूसरे को जोड़ती है।
1: बिल्कुल जोड़ती है। और इन संवादों से स्थानीय संस्कृति और परंपराओं के बारे में ज्ञान और समझ गहरी होती है। भाषा सीखने से लोगों को अन्य संस्कृतियों से परिचित होने का अवसर मिलता है। इससे किसी संस्कृति के अनूठे दृष्टिकोण, बारीकियों

0: और इतिहास उनके जो इतिहास की जो समझ है वो बढ़ती है और हम विभिन्न संस्कृतियों को पहचानते हैं और उनका सम्मान करना सीखते हैं।
1: क्या बात है। तो यानी कि भाषा हर कीमत पर हमें सीखनी चाहिए, अपनी मातृभाषा के अलावा हमें जितनी भाषाएं हम सीख सकते हो
0: बिल्कुल
1: हमें सीखनी चाहिए। इसके लिए प्रेशराइज नहीं होना, प्रेशर नहीं पालना, लेकिन शौक रखना चाहिए,
0: अपने मन से सीखिए। हाँ। आपको खुद अच्छा लगेगा कि मैं कितने अच्छी तरह से नए नए शब्द मुझे पता चल रहे हैं, नई नई चीजें,
1: आपकी वोकैबुलरी बढ़ती है, आपका व्याकरण सुधरता है, आप कॉन्फिडेंस के साथ अपनी बात कहने का दम रखते हैं। किसी मंच से जब आप अपनी बात रखती हैं तो वो भाषा ही आपके काम आती है, वो शब्द ही आपके काम आते हैं और आपकी पर्सनैलिटी को दोगुना कर देते हैं।
0: जी, जब कोई जब कहता है ना कि मुझे इतनी भाषा आती तो हम सच में एकदम से कहने से कैसे इतनी बात
1: चौंक जाते हैं और हमारी दृष्टि में उसके प्रति सम्मान और बढ़ जाता है, देखने का जो नजरिया है वो एकदम बदल जाता है जब हमें कोई बताता है कि वो इतनी भाषाओं का ज्ञाता है। तो भाषा इतना मायने रखती है जिंदगी में और इस भाषा को शॉर्टकट मत अपनाइए, इस भाषा को विकृत मत कीजिए, है ना, भाषा को शुद्ध तरीके से जानिए। हाँ, कभी कभार मजाक में हमने कोई शॉर्टकट इस्तेमाल कर लिया वो एक अलग बात है, लेकिन भाषा से तोड़ मरोड़ अच्छी नहीं होती।
0: बिल्कुल।
1: तो ये गीत सुनिए।
0: बिल्कुल, सुनते हैं।

0: हाँ तो मंदाकिनी जी, जब हम जब बात कर रहे थे मधुमक्खियों की तो उसपे एक एमबीएस शोधा जो है उन्होंने हमें लिख के भेजा है, अपने उनके साथ में जो घटना हुई वो लिख के भेजी है उन्होंने। तो वो लिखते हैं कि जब मैं प्राइमरी स्कूल में पढ़ती थी तब मेरा छोटा भाई जो मुझे लगभग 6 साल छोटा है मेरे साथ स्कूल में खेल रहा था। हमारे गांव के स्कूल में पीपल के बड़े बड़े पेड़ थे और उन पेड़ों पर मधुमक्खियों के विशाल छत्ते लगे रहते थे। खेलते समय किसी ने शरारत में एक छत्ते पर पत्थर मार दिया, इसके बाद मधुमक्खियों ने अचानक हमला कर दिया और मेरे छोटे भाई को कई मधुमक्खियों ने काट लिया और उसके बाद उसके पूरे चेहरे हाथ पैर में बहुत ज्यादा सूजन आ गई। हालत इतनी खराब हो गई कि उसे उल्टियां भी होने लगी। उस दिन का दृश्य आज भी मेरी आंखों के सामने आ जाता है और मैं अंदर से डर जाती हूँ।
1: बिल्कुल सही कहा आपने, और क्योंकि आपने उनको छेड़ दिया ना, जब आप किसी को छेड़ोगे तो वो तो अपना कुछ ना कुछ
0: तो उनको तो लगेगा ना कि हम पे हमला हो रहा है, तो
1: वो भी तो सुरक्षा महसूस करती है ना। इस बात को हम नहीं समझ पाते, हमें लगता है मधुमक्खी तो भी काट लेती है लेकिन वो क्यों काट रही है
0: जी,
1: उसके पीछे का लॉजिक समझ आया ना। आपने पत्थर मारा और उसने पलट कर बदला ले लिया।
0: बिल्कुल,
1: तो हमें इस बात का बचाव करना है कि पत्थर नहीं,
0: पानी पे भी अगर आप पत्थर मारेंगे तो
1: उछल कर आप पर आएगा, आप कीचड़ में पत्थर फेंकेंगे तो उछल कर आप पर आएगा। तो ये कहने का मतलब है कि आप कहीं भी किसी भी तरह की कोई शरारत जब करते हैं, प्यारी शरारत करिए, मीठी शरारत जैसे हम करते हैं।

0: लेकिन गलत तरीके से अब हम काम करते हैं तो उसकी थोड़ी सी दुष्परिणाम
1: और ये बहुत खतरनाक भी हो जाता है, क्योंकि अगर बहुत ज्यादा काट लिया तो बहुत ज्यादा अगर जहर फैल जाता है ना तो जान भी बनाती है।
0: बिल्कुल सही कहा आपने, ततैया होता है, मधुमक्खी होती है, सांप है, इन सब अपना रास्ते जा रहे हैं, अगर आपने इनको छेड़ दिया
1: बिल्कुल
0: ऐसे ही ततैया भी बहुत बुरा काटता है, ये रंग का होता है वो भी कहीं ना कहीं बैठ जाता है और अचानक आकर आप पर हमला कर देता है, है ना। तो चलिए भाषा पर बात कर रहे थे तो हमारे श्रोता लिखते हैं कि भाषा केवल विचारों के आदान प्रदान का माध्यम नहीं बल्कि हमारी संस्कृति, जीवन मूल्य और संस्कारों की संवाहक है। हम जिस परिवेश और भाषा में बड़े होते हैं उसी से हमारे आचरण, शिष्टाचार और सोच का निर्माण होता है। मातृभाषा हमें अपनी जड़ों से जुड़े रखती है, सिखाती है कि बड़ों से बात करते समय आदर सूचक शब्दों का प्रयोग कैसे किया जाता है।
1: जी, और एक श्रोता जैसे हमने पूछा था ना कि कितनी भाषा आती है, तो एक हमारे श्रोता जो लिखते हैं कि मुझे इंग्लिश, हिंदी और प्यार की भाषा बोलनी, लिखनी और पढ़नी आती है, और सिंधी भाषा सिर्फ बोलनी आती है, संस्कृत भाषा लिखनी और पढ़नी आती है, और सखी सहेली की सखी यानी कि मेरी धर्मपत्नी मेरे से एक कदम आगे है, उन्हें इंग्लिश, हिंदी, सिंधी और प्यार की भाषा पढ़नी, लिखनी और बोलनी आती है, और संस्कृत भाषा लिखनी और पढ़नी आती है। बहुत बहुत ही ज्यादा ज्ञानी है फिर आपकी पत्नी तो।
0: चलिए अच्छी बात है, लेकिन सबसे बड़ी बात है आपने कहा प्यार की भाषा, ये मोहब्बत है ना,
1: बहुत बड़ी भाषा है,
0: सबसे बड़ी बात है। भाषाएं तो आपने सीख ली, लेकिन अगर आपके भीतर प्यार नहीं है, मोहब्बत नहीं है, प्रेम नहीं है, तो वो सब भाषाएं भी रूखी हो जाती है,
1: बिल्कुल,
0: है ना। एक श्रोता लिखते हैं कि भाषा सिर्फ संवाद का माध्यम नहीं बल्कि संस्कार, संस्कृति और आचरण का आईना है। ये हमारे विचारों को आकार देती है, हमारे परिवेश और जीवन मूल्यों को दर्शाती है। एक सभ्य और मर्यादित भाषा का प्रयोग ही वास्तव में भाषा से जुड़े संस्कार को दर्शाता है जो व्यक्ति के व्यक्तित्व का निर्माण करता है।
1: जी, और एक और श्रोता है जो लिखते हैं कि मुझे हिंदी के अलावा गुजराती और इंग्लिश आती है और गुजराती सीखना आसान रहा। और एक और श्रोता है जो लिखते हैं कि मुझे गुजराती, मराठी, हिंदी, इंग्लिश आती है, थोड़ी बहुत पंजाबी और सिंधी आती है, वैसे दो तीन और भाषा थोड़ी थोड़ी समझ भी सकती हूँ। बहुत अच्छी बात है, कितने देखिए तभी कह रहे श्रोताओं के विचार है ना, वो विचार इस वजह से भी है कि उनको तरह तरह की भाषाओं का, शब्दों का, व्याकरण का ज्ञान है,
0: बिल्कुल
1: वो जो उनके अंदर चीजें ना वो विचार सामने आते हैं।
0: बिल्कुल, देखिए ये हम जानना भी तो चाहते हैं कि हमारे श्रोता क्या विचार अपने रखते हैं अपनी भाषाओं को लेकर, अपने विचारों को, जो उनके विचार हैं जिंदगी में। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि भाषाओं का संसार अत्यंत विशाल है, विविधतापूर्ण और जीवंत है। वर्तमान में दुनिया भर में लगभग 7,000 से अधिक जीवित भाषाएं बोली जाती है, न केवल संवाद का साधन है बल्कि संस्कृति, इतिहास और मानव पहचान को जीवित भी रखती है। और बाकी जैसा आपने लिखा कि वो लिखते हैं गुजराती, मराठी, हिंदी, इंग्लिश, पंजाबी, सिंधी, दो तीन भाषाएं थोड़ी थोड़ी समझती भी हैं और बोलती भी हैं, तो बहुत अच्छी बात है। बिल्कुल, और
1: एक और हमारे श्रोता है जो लिखते हैं कि भाषा किसी भी समाज की संस्कृति का दर्पण होती है, हमारी मातृभाषा ही हमें बड़ों का आदर करना सिखाती है, जैसे कि आप कहकर बुलाना, छोटों को प्यार देना और अतिथि देवो भव जैसे सामाजिक मूल्य सिखाती है, और साथ ही क्षेत्रीय भाषाओं और मातृभाषा में जो अपनापन और आत्मीयता होती है वो किसी अन्य विदेशी भाषा में संभव नहीं है। यही जुड़ाव हमें अपनी पारिवारिक जड़ों से बांध कर रखता है, और हमारी भाषाएं विशेष रूप से संस्कृत और हिंदी वेदों, उपनिषदों और पुराणों का ज्ञान समेटे हुए हैं। ये ग्रंथ हमें जीवन जीने की सही कला, नैतिकता और कर्म के सिद्धांत भी सिखाते हैं।
0: हाँ बिल्कुल सही कहा आपने, लेकिन हमें किसी भी भाषा के बारे में कोई भी नकारात्मक टिप्पणी नहीं करनी।
1: भाषा भाषा
0: विदेशी भाषा ऐसी है या देशी भाषा,
1: अगर आपको वो भाषा नहीं आएंगी तो अगर आपको कहीं बाहर जाना है या कोई बाहर से कोई हमारे अतिथि आता है तो हम उससे बात कैसे कर पाएंगे।
0: हाँ चलिए, जरूरी है, भाषा नहीं भी आती आप नहीं भी सीख पाए, लेकिन भाषा भाषा है, हमें हर भाषा का,
1: भाषा कभी बुरी नहीं,
0: हमें वैश्विक भाषाएं जितनी भी हैं उन सभी का सम्मान करना चाहिए।
1: जी,
0: एक गाना सुन लेते हैं।
1: बिल्कुल सुनते हैं।

0: हाँ तो आरती भाई, हमारे श्रोताओं ने तो बहुत ही अच्छे तरीके से अपनी बात कही कि किस तरह से भाषाओं से जुड़े संस्कार हमारे काम आते हैं, और इसी के साथ हमने एक और सेगमेंट रखा उनके लिए कि शब्द हमारा और विचार आपके, और आज का विषय था सद्भावना।
1: तो उस पर भी बहुत सारे हमें कमेंट्स में आए हैं। तो एक श्रोता जो लिखते हैं कि सद्भावना का अर्थ है अच्छी भावना, शुभ विचार या भलाई की चाह, और इसका मतलब किसी व्यक्ति या समाज के प्रति प्रेम, सहानुभूति, सहयोग और निष्पक्ष रहने का सच्चा इरादा रखना है जिसमें कोई द्वेष या स्वार्थ न हो।
0: बिल्कुल सही लिखा। और वहीं एक श्रोता ने लिखा है कि सद्भावना यानी अच्छी नीयत, दूसरों के प्रति शुभ भावना और परोपकार। जब किसी व्यक्ति के मन में दूसरों के लिए प्रेम, दया, सहानुभूति और सहयोग की भावना होती है तो वो किसी का बुरा नहीं सोचकर उसकी भलाई चाहता है तो उसे सद्भावना कहते हैं। और साधारण बोलचाल में किसी के साथ निष्पक्ष और मैत्रीपूर्ण व्यवहार रखना जिसमें कोई छल, कपट या द्वेष न हो, सच्चाई और ईमानदारी का इरादा, बिना किसी को धोखा देने के भाव से कोई कार्य करना इसमें आता है।
1: बिल्कुल। और श्रोता जो लिखते हैं कि सद्भावना का अर्थ है अच्छी भावना, अच्छे और उच्च विचार, मन में बसने वाली वो सुंदर भावना है जो प्रेम, सम्मान और अपनापन बढ़ाती है। जहाँ सद्भावना होती है वहाँ रिश्तों में मिठास, समाज में शांति और जीवन में खुशी बनी रहती है।
0: बिल्कुल सही कहा। और एक श्रोता लिखते हैं कि सद्भावना जीवन को सरल और रिश्तों को मधुर बनाने का एक महत्वपूर्ण मानवीय गुण है। और वहीं एक श्रोता ने लिखा है कि आज के समय में जहां समाज में विभाजन और असहिष्णुता बढ़ रही है वहां सद्भावना की प्रासंगिकता बहुत अधिक है। ये विभिन्न संस्कृतियों और विचारधाराओं को आपस में जोड़ने का काम करती है। वसुधैव कुटुंबकम, पूरी धरती ही परिवार है, इस भारतीय सोच सद्भावना पर ही टिकी है। ये जो भारतीय सोच है इसी सद्भावना पर टिकी है, और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर युद्ध और विवादों को सुलझाने के लिए देशों के बीच में भी सद्भावना का होना अनिवार्य है।
1: बिल्कुल। और श्रोता जो लिखते हैं कि एक ऐसी मानसिक अवस्था है जो ईर्ष्या, द्वेष और स्वार्थ से मुक्त होती है और मानवता, प्रेम, करुणा और भाईचारे को बढ़ावा देती है। सद्भावना केवल एक नैतिक गुण नहीं है बल्कि एक शांतिपूर्ण और प्रगतिशील समाज के निर्माण की बुनियादी जरूरत है। जब हमारे विचार शुद्ध होंगे तभी समाज का कल्याण संभव है।
0: बिल्कुल सही कहा आपने। और अभी तो हमने ये भी जानना चाहा था कि आपके अंदर सद्भावना कितनी है, ये भी बताइएगा। लिखा है हमारे श्रोताओं ने कुछ आरती, ऐसा कोई विचार आया है किसी का?
1: अभी तो सबने यही चीज लिखी है कि सद्भावना के जो
0: क्या है, हाँ, वो क्या है। हाँ, वही एक श्रोता लिखते हैं कि सद्भावना अच्छे विचार, दूसरों के प्रति भलाई की भावना, प्रेमपूर्ण व्यवहार, और ये किसी के मन में दूसरों के लिए ईर्ष्या, द्वेष या बैर का भाव नहीं रखकर आपसी भाईचारा और सहयोग बनाए रखने की एक स्थिति है। और सद्भावना जीवन को सरल और रिश्तों को मधुर बनाने का एक बहुत ही महत्वपूर्ण मानवीय गुण है।
1: बिल्कुल। एक हमारे जो श्रोता है वो लिखते हैं कि जहाँ सद्भावना होती है वहाँ झगड़े कम और प्रेम अधिक होता है, इसलिए प्रत्येक व्यक्ति को अपने जीवन में सद्भावना अपनानी चाहिए। और उन्होंने उदाहरण भी दिया है कि यदि हमारे पड़ोसी

0: पर कठिन समय आए तो हमें उसकी सहायता करनी चाहिए।
1: ये तो आपने बिल्कुल सही कहा, पर आपने ये नहीं लिखा कि क्या ऐसे कोई कठिन समय आपके पड़ोसी पर आया था और आपने कोई उनकी सेवा की थी, है ना, ध्यान दिया था उनका। ये भी लिखते तो हमें अच्छा लगता। वही एक श्रोता लिखते हैं कि दूसरों के प्रति मन में स्नेह, आदर और सहानुभूति रखना ही सद्भावना है। इसमें जाति, धर्म या वर्ग के भेदभाव के बिना सभी के कल्याण की कामना होती है और समाज में आपसी भाईचारे और शांति को बनाए रखने के लिए ये बहुत मूल्यवान है।
0: जी बिल्कुल। और आप हमें गीत सुन लेते हैं।
1: अब मूल्यवान तो ये गीत ही है
0: जी।

0: हाँ तो आरती, अब हम कार्यक्रम के बिल्कुल आखिरी सोपान तक पहुंच चुके हैं और अब हमारे श्रोता क्या कर रहे हैं, व्यंजन की प्रतीक्षा।
1: और हम बता देते हैं उनको दाल पीठा की रेसिपी क्या है। तो दाल पीठा बिहार और उत्तर प्रदेश का व्यंजन है जिसमें जो चावल के आटे और दाल आमतौर पर चना मूंग और उड़द से बनाया जाता है, भाप में पके होने के कारण ये बेहद स्वास्थ्यवर्धक और स्वादिष्ट होता है। उन्होंने बताया इसके बारे में और इसमें उन्होंने कहा है कि इसे भाप में पकाया जाता है जिसमें तेल या घी का उपयोग ना के बराबर होता है। सर्दियों के मौसम में विशेषकर पौष के महीने में बिहार के घरों में बड़े चाव से बनाया जाता है। पुजही पीठा सिर्फ दाल से ही नहीं, तरह तरह के भरावन, भूनी मूंगफली, मावा, गुड़, नारियल, इन सब चीजों से बनाया जाता है। और इन्होंने जो ठेकुआ है उसकी भेजी है रेसिपी, तो उसमें गेहूं का आटा चाहिए 2 कप, गुड़ 1 कप और बारीक कटा हुआ कद्दूकस किया हुआ होना चाहिए गुड़, घी मोयन के लिए 3-4 बड़े चम्मच सूखी नारियल, 2-3 बड़े चम्मच बारीक कटा या कद्दूकस किया हुआ होना चाहिए और सौंफ 1 छोटा चम्मच, इलायची पाउडर छोटा चम्मच एक होना चाहिए, आधा छोटा चम्मच, और पानी और आधा कप गुड़ पिघलाने के लिए और फिर तेल या घी तलने के लिए और आवश्यकता अनुसार बनाने की विधि है। एक गुड़, पहले आप गुड़ का पानी तैयार करें, एक बर्तन में गुड़ और आधा कप पानी डालकर धीमी आंच पर पिघला लीजिए उसको गुड़ को, और चाशनी नहीं बननी चाहिए उसकी, सिर्फ गुड़ को पानी में घुलने देना है और इसे ठंडा होने दीजिए और फिर छलनी में इसे छान लीजिए, जो भी गंदा होगा निकल जाएगा। आटे का मिश्रण बनाएं, एक बड़े कटोरे में गेहूं का आटा लें, उसमें सूजी कुरकुरेपन के लिए सौंफ, इलायची पाउडर और कसा हुआ नारियल डालें, मोयन डालें, अब आटे में 3-4 चम्मच पिघला हुआ घी डालें, आटे को दोनों हाथों से अच्छी तरह से रगड़ें, जब आटा मुट्ठी में बनने लगे तो समझ लीजिए मोयन जो है वो एकदम सही है। अब आटा गूंथ लीजिए और छने हुए गुड़ के पानी को थोड़ा थोड़ा डालकर सख्त आटा

0: गुनना है इसका, हाथ मुलायम नहीं होना चाहिए, इसे ज्यादा मुलायम नहीं करना है। और आटे की छोटी छोटी लोइयां बनाइए और सांचे पर थोड़ा सा तेल लगाकर लोई को दबाएं और मनचाहा डिजाइन बना लीजिए। अगर सांचा ना हो तो हाथ से भी आप कांटे की मदद से ही बना सकती हैं। और धीमी आंच पर तल लीजिए आपका जो तेल में घी में, तो सुनहरा होने तक तल लीजिए, फिर आराम से निकाल के खाइए।
1: तो आपने इतनी जल्दी में बताया, मुझे तो भाई आरती बनाना आया ही नहीं। मुझे लगता है हमारे श्रोता जिनको ठेकू और दाल पीठा बनाना आता है वो आराम से बनाएंगे।
0: बिल्कुल, और रेसिपी आपको वहाँ फेसबुक पेज पर मिली जाएगी
1: जाएगी, तो बनाने की मेरी कोशिश करूंगी
0: की वजह से हमें थोड़ा सा जल्दी
1: बताना पड़ा। तो चलिए अब सखी सहेली कार्यक्रम से मंदाकिनी जोशी
0: और आतिश श्रीवास्तव को दीजिए इजाजत। नमस्कार। सखी सहेली की प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक।
2: सखी सहेली।

0: आज के मेहमान कार्यक्रम में श्रोताओं आज लीजिए सुनिए जाने माने शायर और विविध भारती के भूतपूर्व केंद्र निदेशक राजेश रेड्डी से यूनुस खान की बातचीत का दूसरा और अंतिम भाग।
1: राजेश रेड्डी एक जाने माने शायर जिनकी गजलों का हर शेर खड़ा होता है। वो लिखते हैं, शाम को जिस वक्त खाली हाथ घर जाता हूं मैं, मुस्कुरा देते हैं बच्चे और मर जाता हूं मैं। राजेश रेड्डी अपने समय और समाज की आवाज भी बन जाते हैं। जुबां खामोश है डर बोलते हैं, अब इस बस्ती में खंजर बोलते हैं। राजेश रेड्डी की शायरी में जिंदगी का फलसफा छलक छलक पड़ता है। वो लिखते हैं, ये जो जिंदगी की किताब है ये किताब भी क्या किताब है, कहीं एक हसीन सा ख्वाब है कहीं जानलेवा अजाब है। जिंदगी के डर जिंदगी की उदासी और जुल्मतों को वो अपनी लेखनी में पिरो देते हैं। घर से निकले थे हौसला करके लौट आए खुदा खुदा करके। जिंदगी की नाकामियां उदासियां और विडंबनाएं भी राजेश रेड्डी की लेखनी में नजर आती हैं। जिंदगी तूने लहू लेके दिया कुछ भी नहीं, तेरे दामन में मेरे वास्ते क्या कुछ भी नहीं। राजेश रेड्डी वो शायर है जिन्होंने बड़ी ही मशहूर गजल लिखी जिसे पंकज उधास ने गाया, यहाँ हर शख्स हर पल हादसा होने से डरता है, खिलौना है जो मिट्टी का फना होने से डरता है। कई वर्षों तक राजेश रेड्डी विविध भारती के हेड रहे। उन्होंने विविध भारती को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया। जाने माने शायर और विविध भारती के हमारे पुराने साथी राजेश रेड्डी विविध भारती के स्टूडियो में मौजूद हैं और मैं उनका बहुत बहुत स्वागत कर रहा हूं।
2: बहुत बहुत शुक्रिया न्यूरस और विविध भारती पूरे परिवार को। इस पूरे परिवार से बरसों बाद 13-14 साल बाद एक मुलाकात हो रही है, बहुत अच्छा लग रहा है और विविध भारती के श्रोताओं से भी इस बहाने मिलना होगा। बहुत बहुत शुक्रिया यूनुस विविध भारती परिवार को।
1: मुझे ऐसा लग रहा है जैसे अब

0: भी वो जमाना लौट आया जब आप विविध भारती के मुखिया हुआ करते थे और ढेर सारे काम हम लोग मिलकर एक साथ किया करते थे।
1: जो वो बहुत प्यारा जमाना था और एकदम तुमसे मिलके और विविध भारती में आने के बाद वो जमाना फिर एकदम तरोताजा हो गया और वो ऊर्जा, वो उत्साह, वो उमंग और श्रोताओं के साथ वो लगाव एकदम आंखों के सामने आ गया। जी खुश हुआ जी।
0: क्या बात है सर, बातें हो रही जयपुर के जमाने की और आपने बताया कि न केवल आपने नाटक किया बल्कि वहां एक कंपोजिशन वाला मामला भी लगातार चलता रहा और अलग अलग कार्यक्रमों की अपनी योजना भी चलती रही, तो एक तरह से आपका वो रचनात्मक उत्कर्ष का पूरा दौर था। जयपुर के बाद आप यात्रा जीवन की आपको कहां ले गई?
1: जयपुर के बाद मेरा ट्रांसफर जो है 5 साल पूरे हो जाने के बाद
0: जी
1: अल्मोड़ा हुआ।
0: अरे गजब, पहाड़ों पर
1: पहाड़ों पर। और मेरे जीवन का वो सबसे कष्टप्रद, मतलब यू नहीं
0: जी,
1: मतलब मुझे अल्मोड़ा स्टेशन शुरू होने वाला था उस वक्त।
0: अच्छा,
1: तब तक शुरू नहीं हुआ था कि जो शुरुआती स्टाफ भेजा जाता है ना, तो उनमें से मैं प्रोग्राम की तरफ से मैं था, फिर इंजीनियर्स थे, तो सेंटर तब तक शुरू नहीं हुआ था, हम भी जाना था। तो लेकिन मैं मैदान पे रह इतना आदि था और होमसिक तो मैंने बताया था शुरू से था, तो वो पहाड़ों की जिंदगी मेरे लिए बहुत कठिन थी, मतलब और परिवार भी था, बच्चे बच्ची छोटी थी तब, तो अब लगता है कि यार मूर्ख था कि तुम जल्दी चले आए वहां से। अच्छा था वो एक अलग अनुभव था। तो एक तो ये कि स्टेशन शुरू नहीं हुआ था, काम भी उतना नहीं था, आपको सिर्फ जाना है और प्लानिंग करनी है और तो कब होगा ये सब तय होना है सारा कुछ। लेकिन वो वहां चलते चले जाओ, चलते चले जाओ, उतरते जाओ, चढ़ते जाओ, तो ये सब था। और जो आदमी पहली बार गया हो तो उसके लिए बहुत मुश्किल है, जब भूलने जाओ तो अलग बात है
0: जी।
1: लेकिन आपको रहना हो और जो कभी रहा ना हो, कभी रहा ना हो, तो वो उसके लिए तो वो कठिन दौर था, लेकिन गुजरा। और मैं एक साल के बाद ही वापस आ गया वहां से, उसके बाद फिर बॉम्बे आया।
0: अच्छा,
1: 86 में।
0: क्या बात है, तो ये तो पंत जी का शहर था, पंत जी का इलाका था, तो वो तमाम चीजें
1: और वो सब... भी सब भी देखा हमने, पंत जी, अज्ञेय जी वहां पर है और रविशंकर जी का वहां पर वो था, है ना?
0: यस।
1: तो ये सब भी
0: उदयशंकर जी का,
1: उदयशंकर जी का, तो वो सब भी देखा, घूमा फिरा भी, सब अच्छा भी लगा वो सब
0: जी।
1: सब को, लेकिन मैं तो हैरान होता था कि यहाँ ये लोग कैसे
0: रहते कैसे,
1: उस वक्त वाकई हैरान होता था मैं, जो लगता था कि जिंदगी तो मैदान में ही है।
0: बिल्कुल।
1: तो ये था
0: मुंबई, 80 के दशक की मुंबई बहुत ही अलग तरह का मामला था। आप जैसे जयपुर शहर से आ रहे थे क्योंकि वहां के पले बढ़े पैदाइश नागपुर के, तो मुंबई आपके लिए एक बहुत बड़ा दायरा था, बहुत बड़ा क्षितिज था। पहला अनुभव क्या था मुंबई का?
1: नहीं, पहला अनुभव तो यही था कि एक तो ये तो सपनों की नगरी थी
0: जी,
1: फिल्मों में देखा ही देखा था और सब कुछ था। आज तो खैर हालत ही खराब है, उस वक्त 86 में जब हम आए रहे थे तो अच्छी खासी भीड़ तो मुंबई में हमेशा रही है।
0: बिल्कुल, बिल्कुल।
1: ये भीड़ भाड़ वाला शहर है, तो हर सपना देखने वाला यहाँ आता है और काम ढूंढने वाला यहाँ आता है। तो फिर यहाँ आने के बाद वो बसों का सफर, लोकल ट्रेनों का सफर, एक अलग ही दुनिया थी। लेकिन था कि कुछ लगा था कि मुंबई में कुछ होगा और अच्छा लगेगा, और वो धीरे धीरे जिंदगी ढलती चली गई। उस हिसाब से हम शुरू में टॉपिल में रहे, गवर्नमेंट कॉलोनी वहां पे थे, तो 11-11 महीने का जो किराया होता है उसपे वो उस पैटर्न पे रहे और अलॉट होने वाले साल उठते हम तो फ्रेश थे एकदम।
0: बिल्कुल, और तब तो लंबी लाइनें हुआ करती,
1: लंबी लाइनें हुआ करती थी। तो जीजस कॉलोनी जो टॉपिल की थी वहां रहे और फिर वहां से बस पकड़ना, फिर इधर आना एंटापिल से किंग सर्कल आना, वहां तो पैदल
0: जी,
1: फिर ट्रेन पकड़ना, फिर चर्च गेट, तो ये सब सिलसिला चलता रहा। लेकिन थोड़ा उस सब शुरुआत में लगा, लेकिन फिर औरों की तरह से फिर हमको भी वो जिस दिशा में उतरना उस दिशा में खड़े होने की आदत हो गई।
0: मुंबई शहर आपको अपने हिसाब से ढाल लेता है,
1: तो फिर वो लोग अपने आप आपको उतार देते हैं
0: जी, जी।
1: तो ट्रेन में हुआ कि उस दिशा में मुंह करके खड़े हो जाओ
0: जी,
1: उतार देंगे लोग
0: उतार देंगे
1: उतार
0: जी। तो मुंबई शहर में एक बड़ा आकाश आपको मिला, और जाहिर है कि उस समय तक तो कवि सम्मेलन भी हो रहे थे, रेडियो भी चल रहा था, तो जिंदगी किस तरह से बदली और यहाँ लिखने पढ़ने का दौर किस तरह से आगे बढ़ा?
1: यहाँ जो जिंदगी बदली वो मेरी उस वक्त गजल गायकी
0: चरम पर थी,
1: चरम पर। फिल्म संगीत जितनी पॉपुलर थी
0: जी,
1: वो जगजीत सिंह, पंकज दास, मेहंदी हसन, गुलाम अली, ये सब सुपर हीरो हुआ करते थे, मतलब अनुज जलोटा, इनके कैसेट जो है घरों घरों में चलते थे, बजाए जाते थे, मोहल्लों में मतलब चलते थे, शादियों फंक्शनों में ये उस वक्त

0: बजाया करते थे लोग, इतनी पॉपुलर नॉन फिल्म म्यूजिक कहना चाहिए। तो वो दौर था जिस वक्त मैं बॉम्बे में एंटर हुआ था, और नजर जो गजल का शायर होगा उसकी पहली ख्वाहिश होगी कि जगजीत सिंह तक किस तरह से पहुंचो,
1: बिल्कुल,
0: और वो उन तक मेरे शब्द भी पहुंचे। तो जाने के बाद तो वो सिलसिला चलता रहा, और लेकिन जगजीत सिंह साहब से पहले मेरी भूपेंद्र जी से बात हुई।
1: अच्छा, अरे वाह वाह, मुझे ये पता है क्योंकि अब हमने साथ में काम किया है और मैं आपके करीब भी रहा हूँ कि भूपेंद्र सिंह की आवाज से आपको बेपनाह प्यार रहा है,
0: बहुत प्यार,
1: बल्कि हमने उनको बुलाने की बहुत भरसक कोशिश की थी। आपकी इच्छा ये थी कि वो इंटरव्यू मैं लूं, तब मैं था नहीं शहर में।
0: तो भूपी जी मतलब पहले थे जिन्होंने एल्बम में जो चीज, और जैसे मैं जयपुर में आकाशवाणी में युवाणी में जो अपनी आवाज पहली बार मैंने रिकॉर्ड की
1: जी,
0: तो घर में जिस ढंग से मैंने खुशी का इजहार किया था और अपने आप की आवाज को आकाशवाणी में सुनकर
1: जी
0: तो खुशी हुई थी, तो वो खुशी मुझे यहाँ पे भूपेंद्र सिंह की आवाज में अपनी गजल सुन के हुई थी।
1: क्या बात है,
0: तो वो किसी गजल सिंगर ने, और मेरे फेवरेट गजल सिंगर ने या गायक ने जो इतना बड़ा सिंगर थे, तो ये हुआ। तो उसके बाद फिर जगजीत जी से बात हुई तो मैं मिलना चाहता हूँ, तो उन्होंने कहा आ जाओ वो
1: पेडर रोड,
0: हाँ पुष्प मिलन 25 उनका एड्रेस था
1: जी।
0: तो मैं गया और उस समय का वक्त था। तो मैं बताना चाहूंगा अपने श्रोताओं को, अपने सुनने वालों को कि बड़ा आदमी ऐसे ही नहीं बनता है। जगजीत सिंह साहब रोज सुबह उनका वो रियाज का वक्त होता था, इतने बड़े आर्टिस्ट जो थे वैसे नहीं थे, रोज रियाज करना उनका काम था। जब मुंबई में होते थे तो तानपुरा चल रहा है और वो सब कुछ, और मिलने जुलने वाले भी अगर आते हैं तो बीच में आते हैं और बातचीत होती है, और वो उनका सिलसिला फिर रियाज पे। तो मैं पहली बार गया तो वो तानपुरा चल ही रहा था, वो अपने बैठे हुए थे और फिर उन्होंने वो गजल देखी। मेरी खुशकिस्मती कि बड़ा अक्सर होता है कि इतने बड़े लोग आपका मिलना ही बड़ी बात थी उनसे
1: जी,
0: हाँ वो उनका मिल जाना। फिर उन्होंने कहा गजल देखे तो सरसरी निगाह से जब उन्होंने देखी तो ये मेरा सौभाग्य था कि मैंने पहली ही उसमें कहा ये मैं कर रहा हूँ।
1: वाह वाह,
0: अक्सर होता है कि रख के जाओ, देखता हूँ, मैं करता हूँ, सोचता हूँ, बताता हूँ, है ना
1: जी।
0: लेकिन उस वक्त उन्होंने उसी वक्त कह दिया ये मैं कर रहा हूँ।
1: वो कौन सी गजल थी, घर से निकले थे?
0: नहीं, ये जो जिंदगी की किताब,
1: ये जो जिंदगी की किताब है। वाह वाह वाह,
0: ये वो पहली गजल थी जो जगजीत जी ने गाई।
1: और भूपी जी ने क्या गाया था?
0: वो हैरानी होगी कि उस वक्त पंडित जी वगैरह सब ये शराब और हल्की फुल्की गजलों का दौर था। भूपी जी ने कहा कि यार मुझे गजलें बहुत है, मुझे हल्की फुल्की गजल चाहिए।
1: अच्छा
0: हाँ, तो मैंने पहली गजल जो डिमांड पे लिखी, डिमांड पे,
1: हाँ हाँ,
0: वो ये गजल थी, और जिसको मैं न कहीं पढ़ाता हूँ न सुनाता हूँ, और वो गजल जो मेरे कभी आज तक छुई नहीं।
1: अच्छा,
0: वो गजल शराब पड़ती। तो वो गजल लेकिन उनको पसंद आई, उन्होंने गाई और चलिए
1: जी जी जी। ये जो जिंदगी की किताब है ये भी आपकी पहचान के साथ पूरी तरह से जुड़ गई है, और ये कहना चाहिए कि एक तरह से आपकी प्रतिनिधि गजल है। तो जगजीत साहब ने तो सुनाई, वो भी हम सुनेंगे, लेकिन हम आपसे भी सुनना चाहते हैं इसको।
0: ये गजल है जिसकी धुन मैंने खुद ने नहीं बनाई
1: जी,
0: तो मैं जगजीत जी की आवाज में जो धुन है कंपोज है
1: वो
0: हाँ वो पढ़ देता हूँ।
1: जरूर जरूर।
0: ये जो जिंदगी की किताब है, ये जो जिंदगी की किताब

किताब है ये किताब भी क्या किताब है, कहीं एक हसीन सा ख्वाब।

0: क्या बात है। और जगजीत जी ने जब इसे गाया और ये कैसेट रिलीज हुआ तो जाहिर है कि एक बहुत ही ख्वाब पूरा होने जैसी बात
1: बिल्कुल
0: थी
1: सही,
0: और
1: बिल्कुल
0: ये
1: सही।
0: बहुत लोकप्रिय हुआ। आपके जहन में क्या चल रहा था?
1: नहीं, मेरे लिए तो एक सपना सचिव ने ऐसा तो वही बात है। और फिर जिस ढंग से मैंने गाया,
0: जी
1: और
0: जी
1: ये कंसर्ट शो भी अक्सर गाया करते थे,
0: खूब
1: और सोशल मीडिया तो अब आया है, लेकिन कभी कभी मैं देख लेता हूँ और लोग बताते हैं इस गजल की जो लिसनिंग हुई है, जो व्यूअरशिप है, और वो नहीं है कि पूछ, मतलब मैं तो खूब है।
0: बिल्कुल
1: और उसके जो
0: बिल्कुल
1: कमेंट्स हैं लोगों के, ये गजल वो गजल, और ये जगजीत जी ने बहुत अच्छी गाई है, और ये वो शायरी बहुत अच्छी है, सब कुछ है। और पूरी दुनिया से, पाकिस्तान, लंदन, अमेरिका, यहां से कमेंट्स हैं उस गजल पे। तो ये गजल जिसने मुझे दुनिया भर में पहुंचा दिया, यूं कह लीजिए मुझे।
0: बिल्कुल बिल्कुल। और जब आपको फोन करें तो
1: जी
0: आपकी
1: जी
0: रिंगटोन में भी ये गजल बजती
1: जी
0: है।
1: जी
0: जगजीत जी ने गा लिया, भूपी जी ने गा लिया, पंकज जी ने भी उस दौर में गा लिया था
1: पंकज जी, उसके बाद
0: जी।
1: ये गजल जगजीत जी ने गाई, उससे पहले पंकज जी, हाँ नहीं, पंकज जी पहले थे, ये गजल थी वो जो यहाँ सड़क पर हादसा होने से, तो पंकज जी से भी जब मिला तो हृदय को खुश हुए। और ये गजल पहली नजर में सबको ये अलग लग जाती है कि ये होने से डरता है ना। तो इस गजल से जो है एक और भी किस्सा कि ये गजल जब आई तो मतलब उस पूरे एल्बम में ये अलग सी गजल थी, लोगों ने बहुत पसंद की, सब
0: नबील
1: जगह।
0: था,
1: हाँ,
0: नबील
1: नबील,
0: था
1: नबील,
0: जी।
1: तो इसकी खूब लोगों ने प्रशंसा की, पसंद किया, सब कुछ किया। तो इससे जुड़े दो किस्से हैं।
0: जी
1: तो एक तो ये कि उन दिनों दूरदर्शन पे भी जब ये पूरा कमर्शियल नहीं हुआ था, तो बड़ा अच्छा सुबह कार्यक्रम आता था वो गजल का, जिसमें सुरेश वाडकर, हरिहरन, जो पंकज जी, कभी कभी जगजीत जी, छाया जी, बहुत अच्छा नाम था, दूरदर्शन पे आता था गजल का, आरोही। हाँ,
0: आरोही
1: तो ये गजल पंकज जी ने गाई उसमें, आरोही में।
0: जी
1: अच्छा, उन दिनों पता नहीं क्यों या एक नहीं हुआ, तो इसमें राइटर का नाम, शायर का नाम नहीं था,
0: अरे
1: नीचे
0: बाप रे।
1: नहीं था, तो उन्होंने गा दी गजल। तो ये गजल घर घर में सुनी, मतलब उस वक्त दूरदर्शन भी था।
0: तो आपके संपर्क से गई या उन्हें यह गजल कहीं मिली?
1: नहीं, ये तो रिकॉर्ड होने के बाद की बात है,
0: अच्छा है, ओके।
1: एल्बम आने के बाद में, उसके बाद तो
0: आरोही
1: मुझे
0: में
1: पता था।
0: गाया।
1: हाँ, तो ये एल्बम तो हो गया था, लोग पसंद भी कर चुके सब कुछ, तो ये दूरदर्शन पे ये गजल दिखाई जा रही थी, सुनाई जा रही थी। और उस वक्त दूरदर्शन ही था जिसपे लोग अच्छे सीरियल देखते थे, अच्छे प्रोग्राम देखते थे, और वो ही बहुत पॉपुलर था, तो ये चल रहा था और लोग सुन रहे। तो मेरा एक जयपुर का दोस्त है, तो अपने परिवार में बैठ के जैसे सुनते थे, तो ये जब गजल आई तो उसने कहा, यार ये पाकिस्तानी शायर क्या खा के गजल लिखते हैं।
0: आपके अपने दोस्त ने ये बात
1: ये
0: कही
1: मेरे उस, और तब तक हमारा संपर्क भी नहीं था, वो है बॉम्बे में, वो हम
0: जी
1: बहुत अरसे से नहीं मिले थे। तो
0: जी
1: पाकिस्तानी शायर क्या खा के गजल लिखते हैं, है ना।
0: ओहो
1: तो वो कल्पना नहीं कर सकता था कि ये हिंदुस्तान का शायर है और
0: जी
1: ये यही की गजल है। तो ये उसने मुझे बाद में बताया जब हम मिले और सब कुछ। तो उसका नाम है अजय कार्तिक, जो ये जो है जिंदगी का राइटर था,
0: हाँ, बिल्कुल
1: सीरियल
0: बिल्कुल, बड़ा
1: रनर।
0: नाम है
1: और
0: अजय
1: हाँ,
0: कार्तिक जी।
1: तो वो तो जब बाद में मिले तो उसने कहा कि ये यार ये गजल तो हम सुन रहे थे और हमने, मेरा ये कमेंट था।
0: जी
1: अच्छा, दूसरी बात ये कि ये गजल पंकज दास साहब ने सूरत में एक शेख अबू आदम आदम वाला को, एक शायर रहे हैं गुजराती के, बड़े
0: जी
1: शायर रहे हैं, तो उनकी पुण्यतिथि पर सूरत में कंसर्ट था। हाँ, तो पंकज जी वहां पे, उन्होंने कंसर्ट किया वहां, घर गए, मजरू सुल्तानपुरी वहां पे चीफ गेस्ट थे। तो मजरू साहब बैठे थे सामने, तो पंकज जी ने ये गजल सुनाई, तो फिर ये जब शेर सुनाया तो फिर मजरू साहब ऑडियंस में बोलते हैं, हाँ पंकज फिर सुनाओ। तो जब जो कहते हैं ना, फिर सुनाओ फिर सुनाओ, तो शायद मुशायरा हो या म्यूजिक प्रो हो, तो लगता है कुछ गलत तो नहीं हो गया,
0: हाँ बिल्कुल
1: कुछ तलफ़ुज़ गलत हो गया या कुछ मिसरा गलत हो गया है, कुछ मैंने कुछ कमजारा तो नहीं कर बोल दिया या सुना दिया। हाँ, ये सुर का इधर उधर, फिर सुनाओ, फिर एक बार, फिर उन्होंने 3 बार ये सुना। और हाँ, वाह, तो ये हुआ। फिर जब ग्रीन रूम में आए बजरू साहब, उनसे मिले, तो बोले कि ये किसकी गजल थी है। तो उन्होंने बताया कि ये उस वक्त मैं नौजवान हुआ करता था,
0: जी
1: तो नौजवान शायर बॉम्बे के राजेश रेड्डी, तो ये बहुत अच्छी गजल है, अलग गजल है, उसको मेरी तरफ से मुबारकबाद देना।
0: वाह वाह वाह
1: तो ये
0: वाह,
1: बजरू
0: मजरू जैसे
1: सुल्तानपुरी साहब का
0: बड़े
1: आशीर्वाद था,
0: शायर की बात
1: है ना।
0: है।
1: तो इस गजल से जुड़ी एक दो बातें हैं, तो ये मैं शेयर करना चाह रहा था।
0: क्या बात है, पंकज जी की आवाज में ये गजल सुनते हैं हम।
1: जी।

0: मुंबई के अपने सफर के बारे में कुछ और बातें बताइए।
1: मुंबई में फिर सफर तो मेरा ज्यादातर तो शायरी का ही रहा,
0: जी
1: और जगजीत जी वाला मैं सिलसिला एक और बहुत महत्वपूर्ण इंसिडेंट है वो सुनाता हूँ। उससे पहले एक मेरी शायरी और मुशायरों में कैसी वो एक सिलसिला शुरू हुआ, बड़ा सिलसिला जो है।
0: जी
1: तो नेहरू सेंटर का एक ऑल इंडिया मुशायरा होता है सालाना,
0: बिल्कुल बहुत ही
1: मशहूर।
0: जी
1: आज तो वो दौर नहीं है,
0: जी
1: लेकिन एक जमाना था मतलब उसके सुनने वालों में। और जब मैंने ये पहला मुशायरा पढ़ा तो उस वक्त स्टेज पे अली सरदार जाफरी
0: जी,
1: नजरुल सुल्तानपुरी,
0: कैफी आजमी,
1: मुमताज राशिद, ये सब बड़े बड़े नाम है ना, बकी बद्र, निगाह साहब, निगाह साहब उसके संचालन कर रहे थे।
0: जी
1: अली सरदार जाफरी उसके वो थे, सदारत कर रहे थे। और सुनने वालों में दिलीप कुमार,
0: बाप रे,
1: अजीत एक्टर
0: जी,
1: और भी और कई थे फिल्म से काफी लोग थे। तो वो दौर था जब बिहार जो नेहरू सेंटर
0: के
1: अलग ही हुआ करता था
0: जी,
1: हॉल खचाखच भरा हुआ। तो और मेरा पहला बड़ा मुशायरा मुंबई का,
0: क्या बात है,
1: मेरा पहला मुशायरा, तो बड़ा मुशायरा। तो निगाह साहब ने मुझे उसकी ओपनिंग के लिए, बल्कि यूं कह लीजिए
0: अरे बाप
1: तो शुरुआत के एक दो मुशायरों में,
0: और निगाह साहब की अपनी अदा थी, वो बहुत रेफरेंसेस के साथ बुलाया करते थे।
1: तो उन्होंने मुझे माइक पर बुलाया कि मेरा पहला मुशायरा और ये ऑडियंस, ये लोग
0: जी
1: है ना, भरपूर ऑडियंस, पूरा हॉल। तो मैंने गजल पढ़ी, तो वो गजल जो पढ़ता गया तो सब हर शेर को दोबारा पढ़ना पड़ा, ये सब कुछ हुआ। और जब मैं पढ़ के आया हूं तो मुमताज राशिद और जफर गोरखपुरी,
0: हाँ हाँ,
1: तो उस वक्त दाद देने का एक ये भी होता था, ये बड़े लोग जो दाद देते थे, जफर गोरखपुरी साहब मेरे बराबर में बैठे थे मैं होता, तो मतलब अगर किसी को बहुत अच्छा लगा, प्यार हुआ ना, तो मुशायरा तो हो गया।
0: अरे हाँ, हाँ, हाँ, हाँ, अब तो शुरुआत कर रहे थे जब,
1: हाँ,
0: जी
1: मुशायरा तो हो गया।
0: अरे बाप रे, बहुत बड़ी बात है,
1: ये बड़ी बात थी
0: जी।
1: तो जो मैंने बताया कि उधर नीरज जी का वो हार पहनाना, माला पहनाना
0: जी,
1: तो ये तो हो गया, मुशायरा तो हो गया। और ये से फिर अजीत साहब ने मुझे हैदराबाद बुलाया,
0: गजब,
1: अपने घर पर
0: जी,
1: उनसे वहां से मिलना हुआ, सुना सुनाना हुआ। तो ये हुआ, ये गजल मैं सुन मुझे बता रहा हूँ जिसके बारे में
0: जी।
1: ये गजल जगजीत सिंह साहब को बहुत पसंद थी,
0: हाँ हाँ,
1: और जगजीत सिंह साहब ने इसको धुन भी बनाई, रिकॉर्ड भी किया, उसका आखिरी एल्बम था ये।
0: ओहो हो,
1: और वो एल्बम रिलीज होने से पहले वो नहीं रहे दुनिया में,
0: जी, जी,
1: वो चले गए
0: जी।
1: वो एल्बम रिलीज हुआ, चित्रा जी पता नहीं कब करेंगे नहीं करेंगे
0: जी।
1: तो ये गजल उन्होंने गाई भी और सुनाई भी। लेकिन इस गजल से मैं एक और जो जगजीत जी के साथ जुड़ा, मैं बता रहा हूँ कि मेरी दूसरी किताब पहली उड़ान
0: जी
1: और दूसरी आसमान से आगे,
0: बिल्कुल।
1: तो जब आसमान से आगे की किताब के लोकार्पण की बात हुई और मैं चाह रहा था, तो मैं उनको अपने चाह रहा था कि जगजीत जी इसका तो करें, हाँ, मैं उनको इन्वाइट करने गया और बोला कि मैं चाह रहा हूं कि आप करें, तो इसके लिए अलग से प्रोग्राम क्यों करते हो, मेरा कंसर्ट है केयर का जो है नेहरू सेंटर में, तो उसमें कर देते, तुम तो उसको किताब लेके आ जाना, फिर अपन कर लेंगे। तो मैं चला गया, मुझे उम्मीद नहीं थी कि जो हुआ वो ऐसा होगा
0: जी जी जी
1: तो किताब लेके रैपर वैपर सबके रिबन में सब लेके भी चला गया। तो मैं मिला वहां पे, तो उन्होंने कहा कि ठीक है तुम ऑडियंस में बैठो, मैं तुम्हें बुलाऊंगा और वहां उसको कर देंगे सब ठीक है। तो मैं बैठ गया, फिर उन्होंने वो गजल गाई दूसरी गजल, जिंदगी तूने लहू लेके दिया कुछ भी नहीं, तेरे दामन में मेरे वास्ते क्या कुछ भी नहीं। तो जगजीत जी ने यह गजल गाई और उसके बाद श्रोताओं से कहा कि ये गजल जो मैंने अभी गाई ये हमारे प्यारे शायर राजेश रेड्डी की लिखी हुई है, और आज इत्तेफाक है कि वो हमारे ऑडियंस में मौजूद है, तो मैं चाहता हूं कि वो ऊपर आए और आज उनकी किताब का भी वो है, वो लेके आए किताब। तो फिर मैं ऊपर गया और वो नमस्ते और तक क्लैपिंग में सब कुछ हुआ, फिर जगजीत जी ने वो उसका
0: रिबन खोला,
1: ऑडियंस के सामने ये सब हो गया और तालियां सब हो गई और मैं स्टेज से उतरने लगा
0: जी।
1: तो बोले नहीं राजेश रुके, तो मैं आया तो उनका कंसर्ट है, देखिए स्टेज है पूरा,
0: पूरा हॉल
1: है, म्यूजिक का पूरा सेटिंग है, घर है वो, बीच में उन्होंने बुलाया हुआ है। फिर उन्होंने कहा कि भाई एक माइक इधर लगाइए, सेटिंग माइक दीजिए, हाँ, तो ये इसकी म्यूजिक कोई भी नहीं कल्पना नहीं, और तो वो दिया उन्होंने। तो अब वो गजल पढ़िए, जाने कितनी उड़ान बाकी है।
0: अरे बाप रे,
1: वो उससे पहले महफिलों में गा चुके थे, मतलब
0: मुझे
1: पसंद थी गजल, तो सारे तो वो गजल पढ़ी जाने की उड़ान बाकी। तो बात वही खत्म हुई, मैंने पढ़ा जाने कितनी उड़ान बाकी है, इस परिंदे में जान बाकी
0: जी।
1: हो ये रहा है कि मैं मतलब मैंने पढ़ा शुरुआत की और जगजीत जी म्यूजिक के साथ

0: अरे गजब,
1: ये किसी शायर के साथ नहीं हुआ,
0: जी जी
1: आज तक किसी शायर के साथ नहीं हुआ,
0: गजब गजब,
1: ऐसा विमोचन और ऐसी ऐसा सम्मान, ऐसा प्यार। तो मैं पढ़ रहा हूँ और उसे गा रहे हैं, मैं पढ़ रहा हूँ और उसे गा रहे हैं,
0: अद्भुत अद्भुत
1: अद्भुत अद्भुत। और जब घर पे मैंने श्रीमती जी को बताया कि ऐसा हुआ, तो वो मुझे क्यों नहीं ले गया,
0: अरे
1: क्यों
0: नहीं ले गए,
1: और आपको मालूम था कि ऐसा होगा वैसा होगा, तो मेरे का ऐसा नहीं समझा। तो ये था उनका प्यार, ये था उनका शायर को सम्मान देने का तरीका। तो इस वजह के साथ ये जुड़ाव है, इसलिए मैंने बताया।
0: क्या बात है, ये आपसे सुनेंगे।
1: हाँ।

0: बन। और ये शेर खास तौर से यूनुस
1: स्वागत है।
0: जितनी बटनी थी बट चुकी ये जमीन,
1: बाबा
0: जितनी बटनी थी बट चुकी ये जमीन, अब तो बस आसमान
1: क्या बात है, बाकी

0: रसूल का एक और शेर खास मैं सुनाना चाह रहा हूं।
1: स्वागत है।
0: सर कलम होंगे कल यहां उनके,
1: वाह,
0: सर कलम होंगे कल यहां उनके जिन

0: क्या बात है, क्या बात है, शानदार शानदार। विविध भारती के आपके इस दौर की बात करनी बहुत जरूरी है, क्योंकि एक बहुत प्यारा वक्त आपने विविध भारती में दो बार गुजारा है। और मुझे याद है कि आपके जमाने में जो कार्यक्रम आपने शुरू किए, उसमें सरगम के सितारे उजाले
1: उनकी
0: यादों के मंथन जैसे कार्यक्रम थे। मुझे लगता है कुछ और भी गुलदस्ता एक कार्यक्रम था जो आपने शुरू किया है। सखी सहेली आपके दौर में शुरू हुआ है, तो ये तमाम चीजें हैं, इस दौर को याद कीजिए।
1: नहीं, वो मेरे पूरे करियर का पीक भी था और स्वर्णिम दौर था हर तरह से। मतलब ये नहीं कि वो मेरी आखिरी वो पोस्टिंग थी कहना चाहिए, या मेरा करियर का आखिरी पीरियड था, उस लिहाज से नहीं। मेरे क्रिएटिव एक्सप्रेशन का भी और लोगों से जुड़ाव का भी और चीजों को एक्सप्लोर करने का भी वो बेस्ट पीरियड था। और उस टीम का जवाब नहीं जिसने मुझे इतने अच्छे से इन चीजों को संवारने और उसको साकार करने का अवसर दिया, जिसमें मैं बार बार नाम लूंगा, तो सबसे पहले यूनुस,
0: राकेश जोशी,
1: उस वक्त हमारे जो साथी लोग थे, लोकेंद्र जी, महेंद्र मोदी, ममता, कांचन प्रकाश संगीत, कमलेश और शेट्टी जी जो हमारे मैनेजर हुआ करते थे,
0: सब चीजों को संभालते
1: थे। तो एक अच्छी टीम थी जो हर तरह से जो जिस चीज का एक्सपर्ट था वो था, और वो अपने को भरपूर सहयोग के साथ, भरपूर इन्वॉल्वमेंट के साथ, भरपूर पोटेंशियलिटी के साथ
0: जी,
1: मतलब हर आदमी ने अपना बेस्ट दिया
0: बिल्कुल, और हर रोज आप एक नई चुनौती सामने रखते
1: होता है
0: जी।
1: तो मैं हमने तो ऐसे ऐसे वो दौर देखा और किया है कि कोई बड़ी हस्ती है,
0: कयाम साहब
1: आ गए, लक्ष्मीचंद के आगे प्रहलाद जी आए
0: जी,
1: आनंद जी आए
0: बिल्कुल,
1: है ना, अनु मलिक भी आए, कौन कौन भी आए यहाँ पे,
0: बिल्कुल
1: सारे, और संगीतकारों में भी बड़े बड़े लोग,
0: रवि जी आए,
1: हाँ
0: बिल्कुल,
1: खयाम साहब
0: आए, और बातों का सिलसिला खत्म ही नहीं हो रहा है।
1: तो बड़े बड़े लोगों के बड़े बड़े इंटरव्यूज
0: मुझे याद है, खयाम साहब, नौशाद साहब आए हैं और हम उनको छोड़ने नीचे गाड़ी तक गए हैं और वही एक घंटे बात हो रही है।
1: उनको नौशाद साहब तो ऐसे थे कि वो उनको बोलने का बहुत वो था
0: जी,
1: वो अच्छा भी बोलते थे और इतना था उनके पास बोलने का
0: बिल्कुल,
1: और उनको शौक भी था, तो बहुत अच्छी बातें करते थे, देर तक बातें करते थे। कैफी आजमी साहब, तो मतलब ऐसे ऐसे बड़ी बड़ी हस्तियों के भी हमने ये भी किया कि इनको

0: हम तो जाया नहीं कर रहे हैं कि एक घंटे में बांध लिया, दो घंटे में बांध लिया, उनको कभी सरगम के सितारे, कभी हमारे मेहमान, कभी इसमें उसमें, जितना उनके ले सकते हैं उनका श्रोताओं के लिए, क्योंकि ये लोग बार बार नहीं मिलते हैं, ये लोग कहाँ आएंगे अब इस दुनिया में, तो इनका जो है वह है, जो विविध भारती के पास है वो किसी के पास नहीं,
1: किसी के पास,
0: किसी के पास नहीं है। वो आर्काइवल रिकॉर्डिंग और स्टेशन पे है
1: जी,
0: लेकिन इस तरह की जो रिकॉर्डिंग्स जो है, इतनी लाइवली रिकॉर्डिंग्स जो है, वो संस्मरणात्मक रिकॉर्डिंग है सारी की सारी, जो गाने पे बातें हो रही हैं, या वो गाने कैसे बने उस पर बातें हो रही हैं
1: जी,
0: है ना, आपका फेवरेट क्या है, आप वो सारा कुछ, पूरी इनकी यात्रा
1: एक से बढ़कर
0: एक से बढ़कर एक प्रोग्राम जो है वो हुए, प्लस कहीं कहीं कोई चला गया अचानक, तो उसके लिए छुट्टी भी हो तो सब लोग एक फोन पर, पूरी टीम विविध भारती की स्टूडियो में हाजिर, पूरा प्रोग्राम शुरू हो गया, तो ये सब वो एक अनुभव जो है वो विविध भारती में हुआ और कहीं नहीं हो सका।
1: बिल्कुल बिल्कुल, तो विविध भारती में वो जोश, वो जुनून, वो जज्बा हमेशा रहा कि चाहे मौजूदा कलाकार हो चाहे ट्रिब्यूट्स हो, जी जान के साथ लोगों ने काम किया। एक चीज जो क्रिकेट का आपका शौक, उसकी भी मैं बात करना चाहूंगा, एक बहुत जुनून रहा है आपको क्रिकेट का। मुझे याद है कि वर्ल्ड कप हो रहा है तो आपने स्पेशल प्रोग्राम शुरू कर दिया था और मैंने वो चुनौती निभाई थी कि रोज सुबह एक बुलेटिन देना है।
0: ये क्रिकेट का शौक बहुत अरसे से रहा और शायद ये हमारा राष्ट्रीय खेल शुरू से रहा है
1: जी,
0: तो थोड़ा बहुत खेला भी, लेकिन देखने का शौक जो है वो, ये तो वो जमाना था, वो दीवानगी का वो आलम था कि इसके लिए मैंने ऑफिस से छुट्टी तक ली है मैच देखने के लिए
1: जी जी,
0: तो ये भी हुआ है। और खासतौर से जब हम वर्ल्ड कप जीते 83 में,
1: बिल्कुल,
0: उसके बाद तो कोई कमाल ही हो गया मतलब। और जब जयपुर में आकाशवाणी में प्रोग्राम एग्जिट था, स्पोर्ट्स भी था, देखता था
1: जी,
0: तो पाकिस्तान इंडिया का मैच, इंडिया इंग्लैंड का मैच, ये सब देखा और आनंद आया।
1: बिल्कुल, विविध भारती के दौर में भी क्रिकेट पर हमने बहुत कार्यक्रम किए आपके दौर में, और मंथन किया जब पाकिस्तान गई थी इंडिया की टीम, और ऐतिहासिक दौरा था, दिलीप साहब को रिकॉर्ड किया उस जमाने में, और उन्होंने शुभकामनाएं भेजी इंडिया की टीम को, तो एक जुनून उससे मैं वाकिफ हूँ।

0: एक जरूरी बात रह गई है और वो है रेखा जी से आपकी मुलाकात की बात।
1: रेखा का यू है कि वो हम लोग एमए में साथ थे,
0: जी जी
1: एमए हिंदी लिटरेचर में नासा यूनिवर्सिटी में, तो एक ही क्लास में थे और हम दोनों का बैकग्राउंड बिल्कुल अलग था। मैं जैसे मैंने बताया हमारे पिताजी पीटी डिपार्टमेंट में काम करते थे, तो एक लोअर मिडिल क्लास फैमिली, सरकारी मुलाजिम के बेटे बेटा, उस तरह से परिवार में पला बड़ा, लेकिन सांस्कृतिक रूप से हम लोग बहुत समृद्ध थे। लेकिन जो रेखा की जो फैमिली है वो सिंधी कम्युनिटी है, वो लालवाड़ी रहे हैं है, मतलब तो वो बिजनेस में थे जापान में, हमारे फादर इन लॉ दोनों ब्रदर इन लॉ हांगकांग मनीला, तो वो उनका बैकग्राउंड ही अलग था, मतलब उनका आर्थिक स्तर भी बहुत अलग था
0: जी।
1: तो कोई संभावना नहीं थी इसकी, लेकिन वो जो होता है वो होता है। तो जब उस वक्त मेरी थोड़ी बहुत पहचान गीतकार के रूप में, थोड़े पत्रकार के रूप में सब होने लगी थी लिखने वाले के, तो और अट्रैक्शन भी हो ही गया था और हम लोगों में मिलना जुलना सब कुछ। लेकिन शादी तक की बात, ये उनका साहस था
0: जी जी,
1: प्रपोज तो नेचुरली मैंने किया था, लेकिन हमारा बैकग्राउंड बिल्कुल अलग था और विलोम था एक तरह से, तो उसके बावजूद उन्होंने हिम्मत दिखाई, उनका ठीक है। और ये कहानी बड़ी दिलचस्प है
0: जी,
1: तो घर में बता के तो उन्होंने कहा कि संभव नहीं है।
0: ओके,
1: घर में तो वहां तो राजी होने का सवाल ही नहीं उठता कि वो बांध जाए। तो अच्छा, उस वक्त हमारे फादर इन लॉ जापान में रह रहे थे, ये हमारी जो सास है मदर इन लॉ जो है वो उनके साथ ये रह रही थी, सब कुछ दोनों भाई बाहर थे, तो घर का कोई पुरुष यहां मौजूद नहीं था और माँ को भी ये बताने की और इस हालत में उम्मीद नहीं थी कि हो जाएगा। तो ठीक है, तो हमने कहा कि हमारे समाज में शादी करते हैं।
0: अरे बाप रे।
1: तो आर्य समाज में तय हुआ शादी, हम मेरे को निकट के मित्र 5-7, और उस वक्त भी मतलब मैं क्योंकि अपने कॉलेज के जमाने से अपनी एक्टिविटीज की वजह से लिखने पढ़ने और थिएटर का जो माहौल था, तो अपने लेक्चरर्स का चहेता बन गया था, मतलब ये था
0: जी,
1: तो वो
0: जी।
1: सब आगे आगे करते थे, तो मेरे 2-3 जो लेक्चरर्स थे वो शादी में आए।
0: अरे वाह,
1: आर्य समाज की शादी में
0: क्या बात है।
1: तो उन्होंने संभाला और सब कुछ हुआ। अच्छा हुआ ये कि मैं शादी के बाद वो अपने घर चली गई।
0: अरे
1: मैं अपने घर चला आया।
0: जी जी जी।
1: तो उन्होंने कहा कि अब मैं बता सकती हूँ।
0: हाँ।

0: मैंने शादी कर ली है
1: हाँ
0: और तो अब तो
1: कुछ हो नहीं
0: मुश्किल ही
1: सकता
0: होगी
1: था।
0: नहीं कि सबकी, तो हमारे जो लेक्चरर्स थे तो
1: हाँ
0: नेचुरली वहां से रेजिस्टेंस हो रहा था कि नहीं नहीं तुम्हारे पिताजी को बुलाते हैं वो करते हैं, तो उन्होंने दौड़ दौड़ जापान से लौट के आए, फिर
1: हाँ
0: उन्होंने सब बता दिया सब कुछ, तो बोले हाँ हाँ क्यों नहीं, हम उनसे बात करेंगे, उनको बुलाते हैं सब कुछ करते हैं, लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं ये मुझे लग नहीं रहा कि वो मानेंगे, तो
1: हाँ
0: मुझे यहां से ले जाओ,
1: अरे बाप रे।
0: ये इनकी हिम्मत बता रहा हूं मैं अब, तो
1: हाँ।
0: मुझे ले जाओ यहां से। तो मैं अपने दो लेक्चरर्स के साथ घर गया उनके, और
1: गजब।
0: हाँ और हमारे फादर इन लॉ जो हुआ जी फिर
1: हाँ
0: तो कहा हाँ ये बेटी चाय वाय पी सब कुछ कुछ, तो उन्होंने वही कहा कि थोड़ा हमें वक्त दीजिए ना,
1: हाँ
0: हम इसको ढंग से करते हैं, इसको करेंगे
1: हाँ
0: उसको पूछे, लेकिन ये फिर मुझे अलग ले गई, बोले नहीं
1: ये नहीं हो रहा
0: ये
1: है।
0: नहीं होने देंगे,
1: हाँ
0: मैं भी चलूंगी
1: गजब
0: मैं भी चलूंगी। तो
1: बाप रे।
0: फिर उन्हीं के साथ हम लोग बाहर आ गए और हम लोग निकल आए, और फिर मैंने अपने घर वालों को भी तब बताया
1: जी
0: जब उनको लेके आया कि मेरी शादी हो गई है,
1: और
0: तो बोले
1: ये
0: हाँ। तो इस तरह से ये पूरी कहानी हुई, और इसके पीछे मेरी तो जो है सो है,
1: हाँ
0: सारा साहस इनका है
1: क्या बात है
0: ये उस जमाने में।
1: जी। शानदार शानदार। तो ये अद्भुत कहानी रही है और ये हमारे सुनने वालों के साथ शेयर हुई, तो यही एक दिलचस्प है। सबसे अच्छी मुलाकातें वो होती हैं जिनमें आगे की गुंजाइश छूट जाए। तो बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारी बातें हैं, दो एपिसोड में उनको समेटना बड़ा मुश्किल था। आगे फिर मिलेंगे और कुछ बहुत सारी बातें आपके साथ की जाएंगी।
0: जरूर।
1: चलते चलते आपसे कुछ सुनना चाहेंगे।
0: मैं दो तीन शेर सुनाता हूं,
1: जी जरूर इरशाद।
0: ये रोजमर्रा का सच हम सबके साथ। किसी दिन जिंदगानी में
1: किसी दिन
0: करिश्मा क्यों
1: जिंदगानी।
0: नहीं होता,
1: वाह
0: किसी दिन जिंदगानी में करिश्मा क्यों नहीं होता, मैं हर दिन जाग तो जाता हूं जिंदा क्यों नहीं होता,
1: वाह वाह वाह वाह वाह
0: किसी दिन जिंदगानी में करिश्मा क्यों नहीं होता, मैं हर दिन जाग तो जाता हूं जिंदा क्यों नहीं होता,
1: वाह वाह
0: मेरी जिंदगी के कितने हिस्सेदार हैं लेकिन, मेरी जिंदगी के कितने
1: कितने हिस्सेदार हैं।
0: हिस्सेदार हैं लेकिन, किसी की जिंदगी में मेरा हिस्सा क्यों नहीं होता,
1: वाह वाह वाह
0: मेरी
1: वाह
0: जिंदगी के कितने हिस्सेदार हैं लेकिन, किसी की जिंदगी में मेरा हिस्सा क्यों नहीं होता। और दो छोटी छोटी बहन के शेर,
1: इरशाद।
0: एक तो ये शेर के, एक आंसू
1: एक आंसू
0: कोरे कागज पर गिरा,
1: वाह
0: एक आंसू
1: कोरी कागज पर गिरा।
0: कोरे कागज पर गिरा और अधूरा खत मुकम्मल हो गया,
1: वाह वाह वाह वाह वाह वाह क्या
0: एक
1: बात है
0: आंसू कोरे कागज पर गिरा और अधूरा खत मुकम्मल हो गया।
1: क्या बात है।
0: और ये शेर आखिर में, गम छुपाना
1: गम छुपाना
0: कोई मजाक नहीं, गम छुपाना कोई मजाक नहीं, देर तक मुस्कुराना पड़ता है,
1: वाह वाह वाह वाह वाह वाह वाह वाह वाह क्या बात क्या
0: गम
1: बात क्या
0: छुपाना
1: बात
0: कोई
1: है
0: मजाक नहीं, देर तक मुस्कुराना पड़ता है।
1: क्या बात है क्या बात
0: क्या
1: है। सर इतनी सारी बातें हुई, मैं चाहता हूं कि एक ऐसी गजल सुनाएं जो आपके इस पूरे रचनात्मक सफर की रिप्रेजेंटेटिव हो, जो आपके मन की हो, जिसे आप जरूर सुनाना चाहें।
0: यूनुस, ये गजल मैं इसलिए खास महसूस करता हूं अपने क्रिएटिव सफर की, कि रामपुर की बहुत मशहूर लाइब्रेरी है रजा लाइब्रेरी,
1: जी जी बिल्कुल
0: तो उसमें रिसर्च का नामी गिरामी लोग तो आए, बहुत अच्छी महफिल थी, तो उसमें ये गजल जो मैंने पढ़ी
1: जी
0: तो इतना प्यार मिला, तरह मुशायरा था जो मेरा पहला अनुभव था,
1: जी जी
0: मतलब किसी
1: डिफिकल्ट
0: लाइन को
1: होता है
0: हाँ,
1: ये
0: लेकिन ये गजल मुझे वहां दो बार पढ़नी पड़ी,
1: क्या बात है।
0: इतना प्यार मिला, इतना प्यार मिला, तो वो हासिल मुशायरा साबित हो गई,
1: वाह
0: तो इसलिए मेरे लिए वो जो है बड़ी यादगार गजल रही, तो मैं उसके कुछ शेर पढ़ देता हूं।
1: इरशाद इरशाद।
0: अब क्या बताएं टूटे

0: से हूँ।
1: क्या बात है, क्या बात है। तो आगे की बातचीत के लिए प्रयास बाकी है। बहुत बहुत शुक्रिया आप विविध भारती के स्टूडियो में आए और इतनी बातें की।
2: बहुत बहुत शुक्रिया यूनुस, और पूरे विविध भारती परिवार को मेरी तरफ से धन्यवाद, आभार, और अपने पूरे परिवार में फिर एक बार अपने पुराने दोस्तों से मिलने के लिए और पुराने श्रोताओं से मिलने के लिए, मिलाने के लिए मैं हमारी हूँ। बहुत बहुत शुभकामनाएं, धन्यवाद।
1: शुक्रिया सर, शुक्रिया।
3: ये था जाने माने शायर और विविध भारती के भूतपूर्व केंद्र निदेशक राजेश रेड्डी से यूनुस खान की बातचीत का दूसरा और अंतिम भाग। रिकॉर्डिंग इंजीनियर भावना सिंदल, संपादन सहयोग रीमा जोशिका। विविध भारती की ओर से इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता जुबैर खान। अब आज के मेहमान कार्यक्रम समाप्त होता है। आज के

जिंदगी छाया गीत के श्रोताओं को रेडियो सखी ममता सिंह का नमस्कार। ख्वाबों को मुट्ठी में बटोरे वो बेख्याली में जिंदगी की राहों पर सरपट भागती जा रही थी कि अचानक राह पर पड़े पत्थर से टकरा गई। मुट्ठी में बंद ख्वाबों के जुगनू इधर उधर बिखर गए। उसका एक भला सा नाम था, लेकिन उसकी पहचान नाम से नहीं बल्कि उसके हुनर से थी।

उसके ख्वाबों के मोती राह पर गिरकर टूट टूट कर बिखर गए तो उसका दिल भी टूट गया। उसे दिल के टूटने की आहट हो गई। उसने टूटे हुए दिल से दूसरे ख्वाब बुनने शुरू कर दिए। बहुत जल्द उसके ख्वाबों की एक नई दुशाला बनकर तैयार हो गई। बस वो ख्वाबों की रेशमी दुशाला पहन रात के सन्नाटे में चांद से बतियाती अपना सफर पूरा करने लगी।

ख्वाबों की रेशमी दुशाला ओढ़े वो खेतों मेड़ों से जा रही थी, तभी उसे कहीं से रेडियो की आवाज आई। रेडियो पर बज रहा था मोहब्बत का गीत, प्यार का राग। बस उसे उस गीत से प्यार हो गया और उसके कदम ठिठक गए। पहली बार उसे एहसास हुआ कि उसके ख्वाबों से भी खूबसूरत होता है प्यार का राग।

0: दोस्तों, विविध भारती से इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम छाया गीत। रेडियो की आवाज की डोर पकड़े वो खेतों से बाग की ओर चल पड़ी, जहां आम और जामुन के पेड़ों के बीच इत्र की खुशबू बिखरी थी। इत्र की खुशबू में अजब सा सम्मोहन था। उस खुशबू की ओर वो बढ़ती चली गई, फिर सुबह की उगी नरम धूप सी किसी का मुस्कुराता चेहरा था। वो कोई शख्स था या था सपनों का शहजादा? बस वो उस तिलिस्मी शख्स को भर आंखों देखती रही।
1: मैंने एक ख्वाब सा देखा है।
2: जरा मैं भी सुनूं।
1: सुन के शर्मा तो न जाऊंगी
2: तुमसे? नहीं,
1: मैंने

वो दौड़ती फुदकती तितली भौरों के पीछे भागती, कोयल सरीखी मीठी आवाज में कुछ गाती गुनगुनाती, ख्वाबों का सुंदर पिटारा लिए चली जा रही थी। नरम नरम धूप के मैदान से लगी हुई फुलवारी पर उसकी आंखें ठिठक गईं। सुर्ख रंग की पोशाक में वही वो शख्स मुस्कुरा रहा था, शायद ये वही शहजादा था, ख्वाबों वाला शहजादा।

उस शहजादे ने पलकों की पंखड़ी पर फूलों का झुरमुट धर दिया। फिर एक दिन उसने मुट्ठी में एक बीज थमा दिया। उस बीज से प्रेम का अंकुर फूट गया। सुबह के उजास में प्रेम का पौधा जगमग होने लगा। तब से अब तक वो गा रही है प्रेम गीत, फूलों की माला में पिरोती है प्यार के मन के।

0: आप सुन रहे हैं विविध भारती, देश की सुरीली धड़कन।
1: FM वेव 103.1 MHz पर यह आकाशवाणी का बैतूल केंद्र है। शाम के 5:30 हुए हैं। प्रस्तुत है युवाओं का मनपसंद कार्यक्रम युववाणी।

नमस्कार दोस्तों, आप सभी सुन रहे हैं आपका अपना मनपसंद कार्यक्रम युववाणी, जहां होती है युवाओं की बात, सपनों की बात और नए विचारों की शुरुआत, जिसमें आज मैं हूं आपका अपना रेडियो दोस्त दिव्यांश पल्हेवार। तो दोस्तों, चलिए एक नजर डालते हैं आज हमारे शो में क्या क्या खास है उस पर। आज हमारी आज की बात में हम बात करेंगे छायावाद के आधार कवि सुमित्रा नंदन पंत इस विषय पर। फिर उसके बाद हमारे विशेष क्रम इनसे मिलिए होगा, जिसमें हम आपको मिलवाएंगे एनसीसी कमांडर श्री रितेश साहू जी से, जो हमें एनसीसी से जुड़ी हुई जरूरी जानकारियां बताएंगे। उसके बाद क्रम वसुंधरा में हम आपको पर्यावरण संतुलन में मधुमक्खियों की भूमिका इस विषय पर जानकारी देंगे। पर श्रोताओं, कार्यक्रम में आगे बढ़े उससे पहले वक्त है आपके मनोरंजन का, तो लीजिए पेश है फिल्म राज से अभिजीत और अलका याग्निक की आवाजों में ये खूबसूरत गीत।

दोस्तों आप सुन रहे हैं हमारा विशेष कार्यक्रम युववाणी, जिसमें अब वक्त है हमारी आज की बात का, जिसमें आज हम हिंदी साहित्य के एक ऐसे महान कवि के बारे में बात करने जा रहे हैं, जिनका नाम सुनते ही प्रकृति की सुंदरता, कोमल भावनाएं और मधुर कविता हमारे मन में उतर आती है। हमारा आज का विषय है छायावाद के आधार कवि सुमित्रा नंदन पंत। दोस्तों सुमित्रा नंदन पंत हिंदी साहित्य के उन महान कवियों में गिने जाते हैं जिन्होंने अपनी रचनाओं से हिंदी कविता को नई ऊंचाइयां दी। उनका जन्म आज ही के दिन यानी 20 मई को 1900 को उत्तराखंड के सुंदर पर्वतीय क्षेत्र कोसानी में हुआ था। प्रकृति की गोद में पले बड़े होने के कारण उनके मन में बचपन से ही प्रकृति के प्रति गहरा प्रेम था और यही प्रेम उनकी कविताओं में साफ दिखाई देता है। दोस्तों हिंदी साहित्य के इतिहास में छायावाद एक महत्वपूर्ण काव्यधारा मानी जाती है। छायावाद में प्रकृति, प्रेम, सौंदर्य, भावनाएं और कल्पनाओं को बहुत सुंदर तरीके से प्रस्तुत किया जाता है। इस काव्यधारा के चार प्रमुख स्तंभ माने जाते हैं जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, महादेवी वर्मा और सुमित्रा नंदन पंत। पर पंत जी को छायावाद का आधार कवि इसलिए कहा जाता है क्योंकि उनकी कविताओं में प्रकृति और सौंदर्य का अत्यंत मधुर और जीवंत चित्रण मिलता है। उनकी रचनाएं पढ़ते समय ऐसा लगता है जैसे पहाड़, झरने, फूल, बादल और हवाएं हमारे सामने जीवित हो उठी हो। दोस्तों पंत जी की भाषा बहुत सरल, कोमल और संगीत जैसी मधुर थी। उनकी कविताओं में भावनाओं की गहराई और शब्दों की सुंदरता दोनों दिखाई देती है। उन्होंने प्रकृति को केवल देखा ही नहीं बल्कि उसे महसूस भी किया और अपने शब्दों के माध्यम से लोगों तक पहुंचाया। इसलिए उन्हें प्रकृति का सुकुमार कवि भी कहा जाता है। उनकी कविताएं हमें प्रकृति से प्रेम करना और जीवन की सुंदरता को महसूस करना सिखाती है। दोस्तों सुमित्रा नंदन पंत केवल प्रकृति के कवि ही नहीं थे बल्कि वे समाज और मानवता के प्रति भी संवेदनशील थे। समय के साथ उनकी रचनाओं में सामाजिक चेतना और मानव कल्याण की भावना भी दिखाई देने लगी। उन्होंने अपने साहित्य के माध्यम से लोगों को जागरूक करने का कार्य भी किया। उनकी प्रमुख रचनाओं में पल्लव, वीणा, गुंजन, युगांत और ग्राम्य जैसी प्रसिद्ध कृतियां शामिल है। हिंदी साहित्य में उन्हें उनके महान योगदान के लिए उन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार सहित कई बड़े सम्मानों से भी सम्मानित किया गया है। दोस्तों पंत जी का साहित्य आज भी लोगों को प्रेरणा देता है। उनकी कविताएं हमें प्रकृति के करीब ले जाती है और यह संदेश देती है कि जीवन में सुंदरता, संवेदनशीलता और प्रेम कितना महत्वपूर्ण है। आज के आधुनिक और व्यस्त जीवन में भी उनकी कविताएं मन को शांति और सुकून देती है। श्रोताओं सुमित्रा नंदन पंत हिंदी साहित्य के ऐसे अनमोल रत्न हैं जिनकी कविताएं आने वाली पीढ़ियों को हमेशा प्रेरित करती रहेंगी। आइए हम भी उनके साहित्य से प्रेरणा लें, प्रकृति से प्रेम करें और अपनी भाषा तथा संस्कृति का सम्मान करें। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की बात और अब वक्त है फिल्म ब्रह्मास्त्र के इस गीत का, जिसमें आवाज है अरिजीत सिंह की।

0: श्रोताओं, इस गीत के बाद अब वक्त है हमारे विशेष अंक इनसे मिलिए का। तो चलिए आपको मिलवाते हैं हमारे मेहमान से। श्रोताओं, आज हम आपको मिलवाने जा रहे हैं एनसीसी कमांडर रितेश साहू जी से। रितेश जी नमस्कार।
1: जी नमस्कार और सभी श्रोताओं को जय हिंद।
0: हम आपका हमारे कार्यक्रम युववाणी में बहुत बहुत स्वागत करते हैं।
1: जी धन्यवाद।
0: रितेश जी, सबसे पहले आप हमारे श्रोताओं को बताइए कि एनसीसी क्या है और इसकी शुरुआत कैसे हुई।
1: जी, एनसीसी का मतलब होता है राष्ट्रीय कैडेट कोर, जिसका मोटो है एकता और अनुशासन, जिसकी सर्वप्रथम स्थापना जर्मनी में की गई थी और हमारे देश में देश के प्रथम प्रधानमंत्री श्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के कहने पर एक समिति बनाई गई, जिसके तहत 16 जुलाई 1948 को राष्ट्रीय कैडेट कोर की स्थापना की गई, जिसका वर्तमान मुख्यालय नई दिल्ली में। यह एक ऐसी त्रिकोणीय संगठन है जिसके अंतर्गत हमारी भारत की तीनों सेनाओं, थल, जल और वायु सेनाओं द्वारा अपने अपने स्तर पर स्कूल और कॉलेज के छात्रों को सैन्य प्रशिक्षण दिया जाता है। ऐसा कहना गलत नहीं होगा, एनसीसी हमारे तीनों सेना का एक महत्वपूर्ण भाग है।

0: रितेश जी, अब आप हमारे युवा साथियों को बताइए कि जो हमारे युवा साथी है जो एनसीसी ज्वाइन करना चाहते हैं, वो एनसीसी कैसे ज्वाइन कर सकते हैं?
1: देखिए, एनसीसी को मुख्य रूप से दो भागों में बांट सकते हैं, एक स्कूल स्तर पर, दूसरा कॉलेज स्तर पर। स्कूल स्तर के जो एनसीसी कैडेट है, जिसे हम जूनियर डिवीजन कहते हैं, और जो कॉलेज स्तर के एनसीसी कैडेट है, हम उन्हें सीनियर डिवीजन कहते हैं। आपको ऐसे स्कूल या ऐसे कॉलेज में प्रवेश लेना होगा जहां पर एनसीसी की मान्यता प्राप्त हो, या किसी नजदीकी ओपन यूनिट में आप शामिल हो सकते हैं। साथ ही आपको अपने स्कूल व कॉलेज के जो सीनियर है या फिर आपके जो एनसीसी के प्रभारी है, एनओ सर, प्रिंसिपल सर से आप संपर्क करिए, आप वहां पे पूरी जानकारी लीजिए। इसके बाद में आपके डॉक्यूमेंट चेक होंगे। लेकिन स्कूल स्तर पे जो एनसीसी के लिए ज्वाइनिंग करते बच्चे, उनकी जो आयु है 13 साल से 17 साल के बीच होना चाहिए, और कॉलेज स्तर पे जो एनसीसी कैडेट है उनकी 26 साल के अंदर में एज होना चाहिए। इसके बाद आपकी होंगी हाइट, फिर इसके बाद होंगी आपकी 800 से लेके 1600 मीटर की रनिंग, फिर आपकी होंगी 10 पुलअप और 45 से 50 तक की पुशअप होंगी। ये सभी जो गतिविधियां है निर्धारित टाइम पर की जाएंगी। आपको सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जो छात्र है उनके मानसिक और शारीरिक स्थिति मजबूत होना चाहिए, और ये जो सभी गतिविधियां है ये वहां पे जो एनसीसी के जो स्टाफ आएगा, या ऐसे कह सकते हैं आर्मी रेजिमेंट से जो भी अधिकारी आएंगे, उनकी निगरानी में की जाएंगी। इसके बाद में आपके रिटर्न एग्जाम होंगे। इसके बाद आपकी आएंगी मेरिट लिस्ट, जिसमें आपका नाम होना अनिवार्य है। इसके बाद से आपकी एनसीसी की ट्रेनिंग शुरू हो जाएंगी।
0: रितेश जी, अब आप हमारे श्रोताओं को बताइए कि जो एनसीसी कैडेट्स होते हैं, उन्हें प्रशिक्षण कैसे दिया जाता है?
1: जी, ये आपका बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए, जब आप एनसीसी में ज्वाइन हो जाते हैं, इसके बाद में स्कूल और कॉलेज में सीनियर और प्रिंसिपल और एनओ सर के बीच में एक मीटिंग होती है। वो डिसाइड करते हैं कि आप हफ्ते में कौन से 2 दिन चुने जिस दिन आपकी ट्रेनिंग की जाए। तो आपके स्कूल और कॉलेज की जो ट्रेनिंग है, बेसिक जो ट्रेनिंग है, आपके जो सीनियर ही करवाते हैं, साथ ही आर्मी के स्टाफ आते हैं। इसके बाद में आपका जो पहला साल है तो आपको कॉलेज में ही ट्रेनिंग में चले जाते हैं। इसका जो दूसरा साल होता है, आपको कैंप भेज दिया जाता है। जो कैंप होता है 10-10 दिन के होते हैं, कई कुछ कैंप ऐसे होते हैं जो 15 दिन के भी होते हैं और 1 महीने के भी होते हैं, जिसमें आपको आर्मी वाले उनके द्वारा ट्रेनिंग दी जाती है। जैसे उसमें मैप रीडिंग होंगी, जो मिनी राइफल है उससे आपको फायरिंग सिखाई जाएंगी, साथ ही आपको फील्ड क्राफ्ट, बैटल क्राफ्ट सिखाया जाएगा, टीम मैनेजमेंट सिखाया जाएगा, टाइम मैनेजमेंट सिखाया जाएगा, ये सबकी गतिविधि कराते हैं। साथ ही जो आर्मी की जो और भी बटालियन है ना, जैसे आप आर्मी की जो अपनी सेना, थल सेना, वायु सेना, जल सेना, ये अपने अपने स्तर पर ट्रेनिंग देती है।
0: रितेश जी, एनसीसी करने के क्या फायदे होते हैं, यह आप हमारे श्रोताओं को बताइए।
1: जी, एनसीसी के जो फायदे हैं, दो प्रकार से बांट सकते हैं अपने से। एक होता है व्यक्तिगत, दूसरा है कंपटीशन एग्जाम के थ्रू। तो व्यक्तिगत की बात करें जाए तो यह कैडेट के आत्मविकास और आत्म व्यक्तित्व का विकास करने में बहुत भागीदारी निभाता है। साथ ही इसमें लीडरशिप क्वालिटी, एकता और अनुशासन, टीम मैनेजमेंट के साथ साथ यह आपको बहुत सारे कैंप प्रोवाइड करवाता है, जैसे कि RDC कैंप, TSC कैंप, IMA कैंप और ऑल इंडिया लीडरशिप कैंप, जिसमें आपको बहुत सारे बेनिफिट दिए जाते हैं। बात करें जाए कंपटीशन एग्जाम के थ्रू में, तो एनसीसी की एक स्पेशल एंट्री होती है जिसमें कैडेट को केवल SSB देना पड़ता है। साथ ही CDS के जो एग्जाम होते हैं, इसमें भी सीट रिजर्व रहती है, और जो अभी SSC के जो एग्जाम होते हैं, जिसमें एक निर्धारित छूट दी जाती है एनसीसी कैडेट को। इसके बाद वर्तमान स्थिति में जो अग्निवीर की भर्ती आ रही है, उसमें भी एनसीसी के जो कैडेट्स हैं उनको बहुत छूट दी जाती है। जैसे कि ए सर्टिफिकेट वाले कैडेट्स को GD, क्लर्क, ट्रेडमैन और टेक्निकल में 5 अंक दिए जाते हैं, बी सर्टिफिकेट वाले को 10 अंक दिए जाते हैं, और सी सर्टिफिकेट वाले कैडेट्स को GD, ट्रेडमैन में एग्जाम देने की जरूरत नहीं, वो ऐसे ही पास हो जाते हैं। इसके बाद टेक्निकल में उनको 15 अंक दिए जाते हैं। साथ ही हमारे जो वायु सेना है और जो नौ सेना है, इसमें ए सर्टिफिकेट वाले को 2 अंक, बी सर्टिफिकेट वाले को 4 अंक और सी सर्टिफिकेट वाले को 6 अंक तक प्रदान किए जाते हैं। साथ ही आप कोई कॉलेज में या किसी अदर जगह आप एडमिशन लेते हो, तो आपको एक उसमें एनसीसी कैडेट को अलग से छूट दी जाती है, एक निर्धारित अंक दिए जाते हैं ताकि उनको पहले लिया जा सके।
0: रितेश जी, अभी आपने हमारे श्रोताओं को एनसीसी के इतने अच्छे फायदे बताए, अब आप हमें बताइए कि एनसीसी के उद्देश्य क्या है?
1: जी, एनसीसी के बहुत ही बेसिक उद्देश्य है, जो हमारे देश के युवा है, जो कैडेट्स है, उनके मध्य आत्म विकास, व्यक्तित्व का विकास के लिए महत्वपूर्ण है। साथ ही उनके मध्य में एकता और अनुशासन को स्थापित करने के लिए, फिर इसमें बात

0: करें जाए तो एनसीसी के जो कैडेट हैं उनमें देशभक्ति की भावना, बलिदान त्याग की भावना को प्रेरित करने के लिए और उनमें शारीरिक और मानसिक स्थिति को मजबूत करने के लिए एनसीसी ज्वाइन करना अति आवश्यक है।
1: और रितेश जी, हमने सुना है कि एनसीसी के जो कैडेट्स होते हैं वो समाज सेवा के लिए भी कार्य करते हैं, तो वो क्या कार्य करते हैं?
0: जी, आपने बहुत सही सुना है। एनसीसी के जो कैडेट्स हैं वो समाज सेवा की बात करें जाए तो एनसीसी कैडेट अपने रक्तदान कैंप लगाते हैं और लोगों को रक्तदान करने के लिए प्रेरित करते हैं। साथ ही वृक्षारोपण जैसे कार्यक्रम भी निर्धारित करते हैं। हमारे जो जनता है इनके मध्य मतदान के लिए जागरूक करना, उन्हें प्रेरित करना, साथ ही यातायात नियमों का पालन करने के लिए भी जागरूक करते हैं। साथ ही एनसीसी के कैडेट स्वच्छ भारत स्वच्छ मिशन में अपनी अहम भागीदारी दी है और समय समय पे रैली द्वारा लोगों को जागरूक करते हैं कि स्वच्छता हमारे लिए कितना जरूरी है। जैसे देश में कभी कोई आपदा आ जाती है या कोई आतंकवाद आ जाता है तो एनसीसी हमारे जो जनता है उसमें से जो छात्र है जिसको ट्रेनिंग देता है वो एक अलग बंदा बनाता है, अलग उनसे एक भिन्न बनाता है। वो इसी आपदा और आतंकवाद में वो अपने आप को भी बचा सकता है, साथ में अपने आसपास के जो जन है, जन भागीदारी है, उनको भी बचा सके।
1: रितेश जी, आपने हमारे श्रोताओं को एनसीसी के क्षेत्र की इतनी अच्छी और महत्वपूर्ण जानकारी बताई और अपना इतना कीमती समय हमें दिया, उसके लिए आपका धन्यवाद।
0: जी, धन्यवाद।
1: तो दोस्तों, चलिए अब आपको सुनाते हैं ये गीत।

दोस्तों, आप सभी सुन रहे हैं हमारा विशेष कार्यक्रम युववाणी, जिसमें अब वक्त है हमारे खास अंक वसुंधरा का, जिसमें हमारा आज का विषय है पर्यावरण संतुलन में मधुमक्खियों की भूमिका। श्रोताओं, आज हम एक ऐसे छोटे से जीव के बारे में बात करने जा रहे हैं जिसका योगदान हमारे पर्यावरण और जीवन के लिए बहुत बड़ा है। दोस्तों, मधुमक्खियाँ देखने में भले ही छोटी होती है, लेकिन प्रकृति के संतुलन को बनाए रखने में उनकी भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है। वे केवल शहद ही नहीं बनाती, बल्कि पेड़ पौधों और फसलों के विकास में भी बड़ा योगदान देती है। मधुमक्खियाँ फूलों से रस यानी नेक्टर इकट्ठा करती है, और इसी दौरान वे एक फूल का पराग दूसरे फूल तक पहुँचाती है। इसी प्रक्रिया को परागण कहा जाता है। दोस्तों, परागण के कारण पौधों में फल, बीज और नई फसलें तैयार होती हैं। वैज्ञानिकों के अनुसार दुनिया की बहुत सी खाद्य फसलें मधुमक्खियों के परागण पर ही निर्भर करती हैं। दोस्तों, यदि मधुमक्खियां न हो तो कई पौधों और फसलों का उत्पादन प्रभावित हो सकता है। इसका असर सीधे हमारे भोजन और पर्यावरण पर पड़ेगा। इसलिए मधुमक्खियाँ कृषि और जैव विविधता दोनों के लिए बेहद जरूरी है। मधुमक्खियाँ पर्यावरण को संतुलित बनाए रखने में भी मदद करती है। वे पेड़ पौधों की संख्या बढ़ाने में सहायक होती है, जिससे हरियाली बनी रहती है और वातावरण शुद्ध रहता है। इस प्रकार वे प्रकृति के चक्र को सही ढंग से चलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। पर दोस्तों, आज प्रदूषण, कीटनाशकों का अत्यधिक उपयोग और जंगलों की कटाई के कारण मधुमक्खियों की संख्या धीरे धीरे कम होती जा रही है। यह पर्यावरण के लिए चिंता का विषय है। हमें पेड़ पौधे लगाकर, रसायनों का कम उपयोग करके और प्रकृति की रक्षा करके मधुमक्खियों को सुरक्षित रखना होगा। आइए हम सभी पर्यावरण संरक्षण का संकल्प लें और प्रकृति के इन महत्वपूर्ण जीवों की रक्षा करें, क्योंकि स्वस्थ पर्यावरण ही स्वस्थ जीवन की नींव है। तो दोस्तों, अभी हमने मधुमक्खियों की भूमिका के बारे में जाना, और अब वक्त है आपको कल के आकर्षण बताने का। तो दोस्तों, कल हम इसी समय यानी ठीक शाम 5:30 पर आपके लिए उपस्थित होंगे और करेंगे चर्चा सांस्कृतिक विविधता, भारत की पहचान इस विषय पर। फिर उसके बाद होगी खेल परिक्रमा। फिर आपको स्तंभ इस सप्ताह का इतिहास बताएंगे। साथ ही होगा आपका मनोरंजन फिल्मी गीतों के साथ। तो दोस्तों, इसके लिए आपको कल का इंतजार करना होगा। तो तब तक के लिए दीजिए अनुमति आपके अपने रेडियो दोस्त दिव्यांश पहलेवार को। नमस्कार, शुभ संध्या।

श्रोताओं, अभी शाम के ठीक 6 बजे हैं और समय है आपको आज के और कल के कुछ मुख्य कार्यक्रमों से अवगत कराने का। अब से थोड़ी देर बाद यानी 6:05 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम गोधुली। कलाकार होगी नीला भागवत। 6:30 होगा कार्यक्रम फिल्म संगीत और 6:50 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम सबरस। 7:10 पर भोपाल से आप सुन पाएंगे प्रादेशिक समाचार और 7:20 पर प्रस्तुत किया जाएगा किसान भाइयों का मनपसंद कार्यक्रम ग्राम सभा। इस कार्यक्रम में आज की बात का विषय होगा छोटी छोटी बातों पर क्रोध ना करें। साथ ही सामयिक कृषि चर्चा का विषय होगा पपीते की खेती से दोहरा फायदा होता है। सुनेंगे भेंट वार्ता और लोकगीत। रात 8 बजे आप सुन पाएंगे कार्यक्रम सेहत की बात गीत के साथ और 8:15 पर मध्य प्रदेश के माननीय राज्यपाल श्री मंगू भाई पटेल के बैतूल प्रवास पर आधारित कार्यक्रमों की रेडियो रिपोर्ट आप सुनेंगे। साढ़े 8 बजे प्रस्तुत किया जाएगा कार्यक्रम साज और आवाज। रात 10 बजे होगा कार्यक्रम मेरी पसंद और 10:30 बजे कार्यक्रम सुगम संगीत। कलाकार होंगे जगजीत सिंह।

रात 11 बजे हिंदी में समाचार, 11:05 पर अंग्रेजी में समाचार। सभा का समापन होगा रोज की तरह रात 11:10 पर। श्रोताओं, ये थे आज की सभा के शेष कार्यक्रम। अब नजर डालते हैं कल यानी गुरुवार प्रसारित होने वाले कुछ मुख्य आकर्षणों पर। हमारी सभा आरंभ होगी सुबह 5:53 पर। 6 बजे होगा भक्ति संगीत का कार्यक्रम भक्ति धारा। 6:30 बजे कार्यक्रम चिंतन और 6:35 पर श्री रामचरित मानस गान। कार्यक्रम लोक रंजनी आप सुन पाएंगे सुबह 6:45 पर। कलाकार होगी गंगाबाई मौर्य और साथी। सात बजकर 20 मिनट पर प्रस्तुत किया जाएगा क्लासिक फिल्मी गीतों का कार्यक्रम यादों के झरोके से। 7:50 पर कार्यक्रम सुबह सवेरे। 8:30 आकाशवाणी भोपाल से आप सुनेंगे प्रायोजित कार्यक्रम वतन का राग और 10 बजे आकाशवाणी भोपाल से ही कार्यक्रम जिले की चिट्ठी। 10:05 पर होगा प्रायोजित कार्यक्रम उमंग और महिलाओं का मनपसंद कार्यक्रम महिला जगत आप सुनेंगे सुबह 10:35 पर। इस कार्यक्रम में आज की बात का विषय होगा विविधता और महिला नेतृत्व, वर्ल्ड डे फॉर कल्चरल डाइवर्सिटी फॉर डायलॉग एंड डेवलपमेंट। साथ ही मुलाकात श्रृंखला के अंतर्गत कल आप सुनेंगे वन उपज और महिलाओं की आजीविका, इस विषय पर वन उपज संग्राहक आदिवासी महिलाओं के साथ बातचीत। पांच बजकर 30 मिनट पर आप सुनेंगे कार्यक्रम युववाणी जिसमें आज की बात का विषय सांस्कृतिक विविधता भारत की पहचान। साथ ही श्रृंखला होगी खेल परिक्रमा। 6:05 पर कार्यक्रम माटी के स्वर, लखनलाल यादव कलाकार होंगे। 6:30 बजे कार्यक्रम फिल्म संगीत और 6:50 पर कार्यक्रम सबरस। अन्नदाताओं पर आधारित कार्यक्रम किसान वाणी आप सुनेंगे कल शाम 7:20।

जिसमें आज की बात का विषय होगा राष्ट्रीय आतंकवाद विरोधी दिवस। साथ ही सामयिक कृषि चर्चा का विषय अनाज भंडारण में सावधानियां। रात 8 बजे गाने नए पुराने, 8:30 बजे कार्यक्रम युगल गीत और रात 10 बजे कार्यक्रम आपकी फरमाइश। श्रोताओं, आपको याद दिला दे, आज शाम 8:15 पर आप सुनेंगे मध्य प्रदेश के माननीय राज्यपाल श्री मंगू भाई पटेल के बैतूल प्रवास पर आधारित कार्यक्रमों की रेडियो रिपोर्ट। श्रोताओं, ये थे आज की सभा के और कल की सभा के कुछ मुख्य आकर्षण। ये आकाशवाणी का बैतूल केंद्र है। प्रस्तुत है कार्यक्रम गोधुली। कलाकार है नीला भागवत।

होता है। यह आकाशवाणी का बैतूल केंद्र है। प्रस्तुत है कार्यक्रम फिल्म संगीत। कार्यक्रम का आगाज कर रहे हैं सचिन राघव, चैतन्य, वरुण जैन और सचिन जिगर की आवाज में गाए इस प्यारे से गीत के साथ। गीत को लिखा है इंद्रनील ने और संगीतकार सचिन जिगर। फिल्म का नाम तेरी बातों में ऐसा उलझा जिया।

आपने ट्यून किया है कार्यक्रम फिल्म संगीत आकाशवाणी के बैतूल केंद्र से। आइए सुनते हैं धुन की फिल्म का गीत। इस गीत के संगीतकार है प्रीतम, बोल है इरशाद कमल के और आवाज अरिजीत सिंह की।

आइए सुनते हैं पुष्पा 2 फिल्म का गीत। बोल है रकीब आलम के, संगीतकार है देवी श्री प्रसाद और गायिका श्रेया घोषाल।

आपने ट्यून किया है कार्यक्रम फिल्म संगीत आकाशवाणी के बैतूल केंद्र से। अगला गीत आपको सुना रहे हैं अरिजीत सिंह की आवाज में। लापता लेडी से गीत हम सुन रहे हैं, बोल है प्रशांत पांडे के संगीत राम संपत का।

सईद क्वादरी के बोल, संगीत मिथुन का, आवाज अरिजीत सिंह की और फिल्म का नाम गदर 2। इस प्यारे से गीत के साथ ही कार्यक्रम फिल्म संगीत यही संपन्न होता है। यह आकाशवाणी का बैतूल केंद्र है, प्रस्तुत है कार्यक्रम सबरस। कार्यक्रम में सबसे पहले सुनते हैं ये भक्तिमय रचना, आवाज

अभिलाष की रचना और आवाज अशोक खोसला की। अभी आपने सुना ये भक्तिमय गीत। आइए सुनते हैं अब गजल अनूप जलोटा की आवाज में।

इस कव्वाली के साथ ही कार्यक्रम सब रस यही संपन्न होता है। आकाशवाणी का ये बैतूल केंद्र है। शाम के 7:10 होने को है। कुछ ही पलों में आकाशवाणी भोपाल से आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार।

0: मेरा एक जिद्दी पड़ोसी है, पूरी कॉलोनी ने सोलर पैनल लगवा लिए हैं, पर वो मानने को तैयार ही नहीं था कि सच में बिल जीरो आ सकता है। मैंने कहा, बेटा नाम ही है पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। फिर एक एक करके सबका बिजली बिल जीरो आने लगा, तब बोला अब लगवा ही लेता हूँ। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
1: हर घर सूर्य घर।
2: आकाशवाणी मध्य प्रदेश से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार।

नमस्कार, समाचारों के साथ मैं दीपा सिंह। सबसे पहले मुख्य समाचार। रोम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इटली की पीएम जॉर्जिया मेलोनी के बीच शिखर वार्ता। प्रदेश कैबिनेट ने 30,000 करोड़ रुपए से अधिक की योजनाओं को दी मंजूरी। तबादला नीति 2026 भी पास। राज्यपाल मंगूभाई पटेल ने बैतूल के भीमपुर में लॉन्च किया अत्याधुनिक गजेल मशीन। 10 मिनट में होगी सिकल सेल की जांच। और कुछ ही देर में ईडन गार्डन्स में आमने सामने होंगे कोलकाता नाइट राइडर्स और मुंबई इंडियंस। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने

0: कॉन्फ्रेंस रूम में इटली की पीएम जियोर्जिया मेलोनी के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की बातचीत की। दोनों नेताओं ने संयुक्त बयान में भारत इटली संबंधों को विशेष रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक ले जाने की घोषणा की। इस दौरान व्यापार, रक्षा, टेक्नोलॉजी और स्वच्छ ऊर्जा में सहयोग बढ़ाने पर खास जोर दिया गया। दोनों देश भारत इटली नवाचार केंद्र स्थापित करने और रक्षा साजो सामान के सह उत्पादन पर भी काम करेंगे। जहाजरानी, बंदरगाह आधुनिकीकरण और समुद्री अर्थव्यवस्था में भी मिलकर काम करने का फैसला हुआ है।
1: इटली विश्व में डिजाइन और प्रिसिशन के लिए जाना जाता है। भारत की पहचान स्केल, टैलेंट और एफोर्डेबल इनोवेशन के पावर हाउस की है। इसलिए हम डिजाइन एंड डेवलप इन इंडिया एंड इटली एंड डिलीवर फॉर द वर्ल्ड के सिद्धांत पर आगे बढ़ेंगे। फैशन से लेकर फिनटेक तक, लेदर से लेकर लॉजिस्टिक तक, मोबिलिटी से लेकर मैन्युफैक्चरिंग तक, हर क्षेत्र में हम अपनी ताकतों को जोड़कर पूरी मानवता की भलाई के लिए काम करेंगे।
0: मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में आज हुई कैबिनेट बैठक में 30,055 करोड़ रुपए की वित्तीय स्वीकृतियां दी गई। बुजुर्गों, विधवाओं और दिव्यांगों की पेंशन के लिए 15,184 करोड़ और किसानों की फसल बीमा योजना के लिए 11,608 करोड़ रुपए मंजूर किए गए। कैबिनेट बैठक के संबंध में जानकारी देते हुए एमएसएमई मंत्री चैतन्य कश्यप ने मीडिया को बताया,
2: आज करीब करीब 30,000 करोड़ के निरंतरता के कार्य, जिनमें प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना और वृद्धजनों के कल्याणी, महिलाओं, दिव्यांगजनों की पेंशन योजना और महिला बाल सुरक्षा की कई योजनाएं, लोक सेवा गारंटी अधिनियम, श्रमिक कल्याण अधिनियम, अटल बिहारी सुशासन नीति एवं विश्लेषण संस्थान की निरंतरता के सारे प्रस्तावों को स्वीकृति दी गई। सिवनी की बंडोल और देवास की नेमावर समूह जल प्रदाय योजना का रिवाइज एस्टीमेट जो आया था
0: स्वीकृति
2: दी गई।
0: कैबिनेट बैठक में तबादला नीति 2026 को भी मंजूरी मिल गई है। इस नीति के तहत 1 जून से 15 जून के बीच तबादले किए जा सकेंगे। तृतीय और चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के तबादले प्रभारी मंत्री की मंजूरी से होंगे, जबकि प्रथम श्रेणी अधिकारियों के लिए मुख्यमंत्री की स्वीकृति जरूरी रहेगी। भोपाल के जम्बूरी मैदान में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की मौजूदगी में ग्राम रोजगार सहायकों का राज्यस्तरीय महासम्मेलन हुआ। महासम्मेलन में प्रदेश भर से हजारों रोजगार सहायक अपनी मांगों को लेकर एकजुट हुए। सहायक लंबे समय से नियमितीकरण और वेतन वृद्धि की मांग कर रहे हैं। मुख्यमंत्री ने मातृत्व, पितृत्व और ऐच्छिक अवकाश देने के साथ सेवा की आयु सीमा 62 साल करने और निर्दोष साबित होने पर नौकरी वापस लेने की घोषणा की। इसके अलावा उन्होंने एमएसपी पर गेहूं खरीदी की तारीख बढ़ाने का भी ऐलान किया।
3: हमने रोजगार सहायकों की आयु भी बढ़ाई 62 साल। ऐसे में माता बहने भी जो आपके रोजगार सहायक है, उनके जीवन में भी प्रसूति अवकाश, मातृत्व अवकाश, ऐच्छिक अवकाश, पुरुष ग्राम रोजगार सहायक को भी 15 दिन का पिता बनने का भी अवकाश, कोई कारण से आपराधिक प्रकरण भी बन जाए किसी रोजगार सहायक पे और वो निर्दोष सिद्ध हो तो पुनः सर्विस में लेने की गारंटी भी हमारी सरकार के माध्यम से हम देने की घोषणा कर रहे हैं।
0: राज्यपाल मंगूभाई पटेल ने आज बैतूल के भीमपुर में सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन मिशन कार्यक्रम में अत्याधुनिक जांच मशीन गजेल का शुभारंभ किया। ये मशीन सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र भीमपुर में लगाई जाएगी, जहां सिकल सेल और थैलेसीमिया की जांच महज 10 मिनट में हो सकेगी। भोपाल में त्रिशा शर्मा की मौत के मामले में आज उनके परिजनों ने मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव से मुलाकात की। मुख्यमंत्री ने पीड़ित परिवार को भरोसा दिलाया है कि राज्य सरकार इस मामले में परिवार की पूरी मदद करेगी। वहीं दूसरी तरफ फरार पति समर्थ के खिलाफ पुलिस ने लुकआउट नोटिस जारी कर दिया है और एसआईटी हर एंगल से जांच कर रही है। इसके अलावा इस मामले में राष्ट्रीय महिला आयोग ने स्वतः संज्ञान लेते हुए प्रदेश सरकार से 7 दिन में जवाब मांगा है।
4: ये समाचार आप आकाशवाणी मध्य प्रदेश से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन यूट्यूब पर मध्य प्रदेश न्यूज ऑल इंडिया रेडियो चैनल पर और फेसबुक साथ ही एक्स प्लेटफॉर्म पर AIR न्यूज भोपाल पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर अथवा न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं।
0: संघ प्रमुख डॉ. मोहन भागवत आज कड़ी सुरक्षा घेरे के बीच शहडोल पहुंचे। वे 3 दिन के प्रवास पर रहेंगे। यहां सरस्वती स्कूल में 18 मई से 8 जून तक चल रहे कार्यकर्ता विकास वर्ग में 4 प्रांतों के 383 स्वयं

सेवक प्रशिक्षण ले रहे हैं। इस वर्ग में बौद्धिक सत्र, शारीरिक प्रशिक्षण और संगठनात्मक गतिविधियां शामिल हैं। डॉ भागवत अपने प्रवास के दौरान राष्ट्र निर्माण, सामाजिक समरसता और सांस्कृतिक मूल्यों जैसे विषयों पर स्वयं सेवकों का मार्गदर्शन करेंगे। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने आज नई दिल्ली में सुरक्षा और खुफिया एजेंसियों के साथ उच्चस्तरीय बैठक कर नीट यूजी पुनर्परीक्षा को सुरक्षित और निष्पक्ष तरीके से कराने पर जोर दिया। बैठक में ऑनलाइन गुमनाम समूहों के जरिए परीक्षा से जुड़ी फर्जी सूचनाएं फैलाने पर गहरी चिंता जताई गई। गुजरात के कच्छ जिले को राजस्थान और दिल्ली से जोड़ने वाली नई रेल सेवा इस शुक्रवार से शुरू होगी। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव भुज से ट्रेन को हरी झंडी दिखाएंगे। प्रदेश में आज हजारों दवा दुकानें बंद रहीं। ऑल इंडिया ऑर्गेनाइजेशन ऑफ केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट ने ऑनलाइन दवा बिक्री के विरोध में एक दिवसीय हड़ताल बुलाई थी। हड़ताल को प्रदेश के ज्यादातर रिटेल और थोक दवा व्यवसायियों ने समर्थन दिया। भोपाल में केमिस्टों ने ऑनलाइन सिस्टम का पुतला भी दहन किया। व्यापारियों का आरोप है कि ऑनलाइन दवाओं की गुणवत्ता और निगरानी को लेकर अभी कोई स्पष्ट सिस्टम नहीं है, जो सीधे आम लोगों की सेहत के लिए खतरनाक है। जनजातीय कार्य मंत्री डॉ विजय शाह ने आज खंडवा के ग्राम रोशनी में 1,36,00,000 रूपये की लागत से बने इंटीग्रेटेड फार्मिंग क्लस्टर का लोकार्पण किया। सीहोर जिले के बुधनी के पारंपरिक लकड़ी के खिलौने अब राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में अपनी खास जगह बना रहे हैं। G20 सम्मेलन में विदेशी प्रतिनिधियों को यहां के कारीगरों द्वारा बनाए गए 500 चरखे भेंट किए गए थे। वहीं दुबई के अंतर्राष्ट्रीय हस्तकला बाजार में भी इन्हें खूब सराहा जा चुका है। बुधनी में 29 करोड़ रूपये की लागत से अत्याधुनिक खिलौना क्लस्टर बनाया जा रहा है। यह 51 शेड में कारीगर बड़े पैमाने पर उत्पादन कर सकेंगे। सर्वोच्च न्यायालय ने 2027 की जनगणना में जाति गणना कराने के केंद्र सरकार के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका खारिज कर दी है। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा है कि मामला सरकार के नीतिगत अधिकार क्षेत्र में आता है। कोर्ट ने यह भी कहा है कि पिछले वर्गों के लिए कल्याणकारी योजनाएं बनाने के लिए उनकी संख्या जानना जरूरी है। आईपीएल का 63वां मैच अब से कुछ देर बाद ईडन गार्डन्स में कोलकाता नाइट राइडर्स और मुंबई इंडियंस के बीच खेला जाएगा। प्लेऑफ की दौड़ में बने रहने के लिए कोलकाता को हर हाल में मैच जीतना होगा। वे 12 मैचों में 11 पॉइंट्स के साथ 8वें स्थान पर हैं। मुंबई पहले ही टूर्नामेंट से बाहर हो चुकी और 8 पॉइंट्स के साथ 9वें स्थान पर है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। देवास में जनगणना 2027 के प्रथम चरण के अंतर्गत मकान सूचीकरण और मकानों की गणना का कार्य प्रगति पर है। गुना में अनुविभागीय अधिकारी द्वारा बेनागंज स्थित फैंसी पटाखा दुकान और गोडाउन का औचक निरीक्षण किया गया। आगर मालवा कलेक्टर ने आज स्कूल शिक्षा विभाग की समीक्षा बैठक में कहा कि ड्रॉप आउट विद्यार्थियों को पुनः शिक्षा से जोड़ा जाए। जबलपुर में भारतीय रेल द्वारा विश्व पर्यावरण दिवस 2026 अभियान के तहत पश्चिम मध्य रेल के तीनों मंडलों में 15 मई से 15 जून तक पर्यावरण संरक्षण कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। सीहोर जिले में नौतपा से पहले ही भीषण गर्मी और गहरा जल संकट लोगों की परेशानी बढ़ा रहा है। राजगढ़ जिले में राष्ट्रीय डेंगू दिवस के अवसर पर व्यापक जन जागरूकता अभियान और सेमिनार का आयोजन किया गया। शिवपुरी में यातायात व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए कलेक्टर की अध्यक्षता में जिला सड़क सुरक्षा समिति की बैठक हुई। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगला बुलेटिन कल सुबह 7:10 पर। नमस्कार।

श्रोताओं, कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आइए भाइयों, अब हम बात करते हैं आज के हमारे आज की बात के बारे में। और आज की बात का हमारा आज का विषय है, छोटी छोटी बातों पर क्रोध ना करें। श्रोताओं, छोटी छोटी बातों पर क्रोध यानी गुस्सा ना करना मानसिक शांति और बेहतर रिश्तों के लिए बेहद जरूरी है। तो आइए भाइयों, जानते हैं कि छोटी छोटी बातों पर गुस्सा क्यों आता है और इसे कैसे नियंत्रित किया जा सकता है। आइए जानते हैं भाइयों, पहले कारण की हम बात करें तो तनाव और थकान, अत्यधिक काम का बोझ या शारीरिक थकान सहनशीलता की कम कर देती है, सहनशीलता को। अवास्तविक अपेक्षाएं, दूसरी यदि हम बात करें तो जब चीजें आपकी योजना या उम्मीद के अनुसार नहीं होती है तो झुंझलाहट इससे होती है। असुरक्षा की भावना, कई बार दबे हुए डर या असुरक्षा के कारण लोग जो है छोटी छोटी बातों पर प्रतिक्रिया देते हैं। भाइयों, क्रोध को नियंत्रित करने के उपाय की हम बात करें तो गहरी सांस लें। भाइयों, जब भी गुस्सा आने लगे तो 5 से 10 बार गहरी सांस लें। इससे मस्तिष्क में ऑक्सीजन का प्रवाह बढ़ता है और गुस्से का स्तर कम होता है। और एक और उपाय, यदि हम दूसरे उपाय की बात करें तो 10 तक गिने। प्रतिक्रिया देने से पहले 1 से 10 तक गिनती गिने। इससे आपको सोचने का समय मिल जाएगा। भाइयों, बातचीत का नजरिया भी आप बदलें। खुद को सामने वाले की जगह रखकर स्थिति को समझने का प्रयास करें, यानी सहानुभूति रखें। भाइयों, परिस्थिति से दूर हटें। यदि किसी बात पर बहुत अधिक गुस्सा आ रहा है तो कुछ देर के लिए उस जगह या उस माहौल से आप जो है बाहर आ जाएं। इसके अलावा नियमित व्यायाम और ध्यान, भाइयों योग और ध्यान करने से मन शांत रहता है और छोटी-छोटी बातों पर चिड़चिड़ापन कम होता है। तो किसान भाइयों, ये थी छोटी ही चर्चा, छोटी-छोटी बातों पर क्रोध ना करें विषय पर बातचीत। और अब कार्यक्रम में समय है मनोरंजन का, तो आइए सुनते हैं मुकेश सरयाम और साथियों के स्वर में ये आदिवासी गोंडी लोकगीत।

0: और यहाँ पर एक किसान भाई हमारे साथ मौजूद है, तो आइए उनसे मुलाकात करते हैं और जानते हैं उनके अपने कृषि कार्यों का अनुभव। तो भैया, सबसे पहले हम आपका हमारे इस कार्यक्रम किसानवाड़ी में बहुत बहुत स्वागत करते हैं। जय राम जी की।
1: जय राम जी की। भैया
0: भैया, सबसे पहले हम आपका परिचय जानना चाहेंगे।
1: सर, मेरा नाम है भीम सिंह इरपाचे और ग्राम मलशिनी का हूँ मैं, और मैं काफी सालों से कृषि में कार्य कर रहा हूँ।
0: जी, तो आपको खेती किसानी करना कैसा लगता है वैसे भैया?
1: भैया, ये तो हमारे पहले से ही परंपरागत चल रहा है, और
0: जी
1: अभी तो आधुनिक चीजें, बहुत सारी मशीनें और ये उन्नत किस्म के बीज, ये
0: जी जी
1: सारे किए जाते हैं।
0: जी जी तो
1: तो
0: आपको मतलब बहुत अच्छा लगता है खेती करना।
1: जी जी जी
0: जी,
1: जी
0: तो सही बात है, आपने बहुत सही बात कही कि वर्तमान समय में आधुनिक कृषि यंत्रों के आने से अब खेती जो है और भी अधिक उन्नत तरीके से की जाने लगी है। तो आप पहले के समय में जो पुरातन अनुसार खेती की जाती थी और वर्तमान में आधुनिक कृषि यंत्रों द्वारा उन्नत खेती की जा रही है, तो इसमें आप वैसे क्या अंतर महसूस करते हैं? और इसमें बहुत सी सहूलियत और सुविधाएं भी हमारे किसान भाइयों को हुई है, तो इसमें आप क्या अंतर महसूस करते हैं भैया कि पहले के समय में किस प्रकार परेशानियां होती थी खेती करने में किसान भाइयों को, क्योंकि बैलों द्वारा खेती की जाती थी और वर्तमान समय में कृषि यंत्रों द्वारा खेती किसान भाई कर रहे हैं, तो आप इसमें किस प्रकार का अनुभव बताना चाहेंगे आपका?
1: सर, इसमें ऐसा है कि पहले जो परंपरागत कृषि करते थे
0: जी
1: जैसे बैलों से,
0: जी
1: तो उसमें बहुत ज्यादा समय लगता था।
0: जी
1: अभी
0: जी
1: आधुनिक मशीनें आने से जैसे एक सप्ताह का जो लगता था टाइम या घंटों में हो जाता है,
0: जी
1: सर,
0: जी जी
1: है
0: अब
1: ना?
0: ट्रैक्टर वगैरह आ गए हैं कृषि यंत्र, तो इससे हमारा काम भी आसानी से हो जाता है और कम समय में।
1: कम समय में सर।
0: जी,
1: और इसमें क्या है, पहले कम उत्पादन होता था, नई तकनीकी आने के कारण और उन्नत बीज, इसमें तो बहुत सारा मतलब फायदा हो रहा है।
0: जी,
1: उसमें
0: परिवर्तन भी बहुत कुछ
1: बहुत
0: हो।
1: ज्यादा परिवर्तन है इसमें।
0: पहले बैलों के माध्यम से खेती की जाती थी तो रकबा भी जो है इतना अधिक अधिक रकबे पे जो है खेती नहीं होती थी, अब रकबा भी बढ़ गया है मतलब
1: हाँ
0: किसान भाइयों का।
1: बिल्कुल, अभी तो ऐसा है कि कहीं जमीन छूटी नहीं पा रही है।
0: जी,
1: पहले मतलब 25% ही कृषि उपयोग में होता था,
0: अच्छा,
1: पूरा वैसे ही रहता था, लेकिन अब
0: हाँ
1: तो मतलब साल में 3 फसल लिया जाता है
0: जी,
1: कृषि यंत्र आने के इससे।
0: जी, और फिर क्या है, अब जो है वर्तमान समय में पानी का साधन भी पर्याप्त होने से जो है आपने जैसे बताया कि साल में 3 फसलें ली जा रही है, तो ये सब बिजली पानी सबकी सुविधा होने के कारण ही जो है ये संभव हो पाया है।
1: जी, इसमें क्या है, बहुत सारे उपकरण भी आ गए, और दूसरी सरकार ने कई योजनाएं चलाई हैं, जैसे नलकूप के लिए, फिर सोलर पैनल, फिर बिजली विभाग से भी सारी सुविधाएं मिल रही है, जगह जगह
0: सब्सिडी से लेकर।
1: ट्रांसफार्मर तो ये वो, और
0: जी,
1: सौर ऊर्जा, कई उपकरण मिल रहे हैं, तो इसमें बहुत आसानी है, और दूसरा कृषि में काफी सुविधाएं मिल रही
0: जी,
1: है
0: और
1: इसमें।
0: पहले के समय में सिंचाई का इतना साधन भी नहीं था।
1: जी, बिल्कुल, जिनके पास कुआं था। और दूसरी चीज, उस समय क्या ये मोड वगैरह चलता था, रेहेड बोलते थे जिसे, और दूसरी चीज क्या है, जिनके पास लाइट था वही कर पाते थे, नहीं तो फिर गर्मी की फसल नहीं हो पाती थी इससे। जी
0: अच्छा भैया, मोट की आपने बात की, तो मोट के बारे में हम आपसे विस्तार से जानना चाहेंगे कि मोट के द्वारा पानी किस प्रकार निकाला जाता था अपने खेतों में सिंचाई के लिए, थोड़ा इस बारे में हम आपसे विस्तार से जानना चाहेंगे।
1: जी पहले जमाने में क्या होता था कि ग्रामीण क्षेत्र में जो मोची लोग हुआ करते थे, ये बनाते थे एक चमड़े का, एक पानी निकालने के लिए कुएं
0: थैला,
1: से, हाँ, और
0: बड़ा
1: उससे,
0: सा थैला।
1: हाँ, बड़ा सा थैला था, और उसमें रस्सी और ये बैलों के द्वारा निकालते थे पानी पानी,
0: अच्छे,
1: और एक कर्मचारी भी लगता था उसमें,
0: बैल चलाने
1: हाँ,
0: के लिए,
1: बैल चलाने के लिए। वो फिर एक पाइप, वो लाइन निकालते थे, पाइप तो हुआ नहीं करते थे,
0: नाली।
1: नाली जिसको
0: जी,
1: बोलते थे, उससे सिंचाई कुछ ही मतलब मुश्किल से आधा एकड़ ऐसा होता था उस समय।
0: अच्छा,
1: हाँ, अब तो भैया जितना कर रहे उतना कम पड़ रहा है, ये मशीनों का युग आ गया है तो।
0: जी,
1: हाँ जी,
0: और बिजली और पानी का साधन पर्याप्त होने की वजह से अब जो है रकबा पूरी तरह से पूरा ही उठ चुका है और सभी तरह जो रकबे में है खेती की जा रही है।
1: जी, इसमें क्या नई नई किस्म की, और हर साल कुछ ना कुछ चेंजेस आ रहा है टेक्नोलॉजी, दूसरा साइंस का जो जमाना है, उन्नत किस्म की बीजें भी आने लगी, कई प्रकार की फसलें, और सब पूरा चेंजेस ही आ गया पूरा खेती में।
0: तो खैर, ये तो आपने पहले के समय में किस प्रकार खेती की जाती थी और वर्तमान में किस प्रकार परिवर्तन आया है, खेती में किस प्रकार की क्रांति आई है, इस बारे में आपने बताया भैया जी। लेकिन अब हम आपसे जानना चाहेंगे कि चूंकि इस समय गर्मी का सीजन चल रहा है और इस समय आपके यहाँ पर खेती बाड़ी में कौन कौन से कार्य किए जा रहे हैं हम आपसे जानना चाहेंगे।
1: अभी तो सर जो खाली खेत हैं इसमें

किसान भाइयों, अभी आप मुकेश शर्याम और साथियों के सुर में सुन रहे थे ये आदिवासी गोंडी लोकगीत। और अब किसान भाइयों, समय है आज के हमारे मेहमान से आपको मिलवाने का। तो आइए मिलवाते हैं आज के हमारे मेहमान से आपको। और आज के हमारे मेहमान है ग्राम मलशिवनी के कृषक श्री भीम सिंह इरपाचे। तो आइए सुनते हैं उनसे की गई ये बातचीत। किसान भाइयों, आज हम आए हैं ग्राम मलशिवनी और

0: में तैयारियां चल रही है आने वाले फसल के लिए।
1: अच्छा, आगामी सीजन के
0: हाँ,
1: लिए।
0: आगामी सीजन के लिए, बारिश के फसल के लिए। तो अभी कल्टीवेटर चल रहे हैं, प्लाऊ चल रहे हैं,
1: जी,
0: और जो जिनके पास मवेशी हैं, तो
1: जी
0: जैसे अभी खाली क्षेत्र है, तो जो गोबर का खाद है, अभी खुला टाइम है, तो पूरा खेतों में गोबर का चल रहा है सर
1: जी, गोबर खाद
0: जी।
1: भी डाला जा रहा है
0: हाँ,
1: खेतों में।
0: और बाकी ये जो गर्मी की जो फसल है, जैसे मूंग है हो गया, उड़दा हो गया,
1: जी
0: और गन्ने का फसल है, इनमें पानी भी चालू है अभी
1: जी जी जी
0: जी। और अभी कुछ ही दिन में, एक आध सप्ताह में मूंग की फसल भी कट जाएगी,
1: जी
0: मूंग
1: जी
0: और उड़द का
1: जी जी
0: जी।
1: अच्छा, गर्मी की जो फसलें होती है, मूंग और मूंग के साथ साथ जो गन्ना फसल है, ये भी आपके यहाँ अभी लगी है क्या?
0: जी जी बिल्कुल, मूंग और उड़द की खेती है
1: अच्छा,
0: हमारे
1: मूंग और
0: यहाँ
1: उड़द अभी बोए हैं इस
0: जी
1: बार,
0: जी जी
1: इस जायद के सीजन में।
0: जी जी अभी बस एक सप्ताह में हमारा मूंग कटने वाला है सर
1: अच्छा,
0: जी।
1: तो आपने कितने रकबे में आपने बोई है वैसे उड़द और मूंग की फसल?
0: सर हमारे यहाँ 2 एकड़ में बोए हैं अभी
1: अच्छा, दोनों फसल मिला के।
0: हाँ, दोनों मिला के।
1: अच्छा, लगभग एक एक एकड़ में
0: जी बराबर ही है, मतलब मूंग का भी और उड़द का भी,
1: तो दोनों फसल मिला के 2 एकड़ में।
0: 2 एकड़ में सर।
1: अच्छा, तो फसल बढ़िया है वैसे।
0: बिल्कुल सर, इस बार बढ़िया है।
1: जी,
0: और इस बार थोड़ा सा क्या है, मौसम का भी वो सही है, 1 महीने से कंटिन्यू बादल और
1: जी, इस
0: ठंडा गर्म के वजह से थोड़ा सा दिक्कत आया है
1: जी
0: फसल
1: प्रभाव
0: में
1: पड़ा है
0: जी
1: मतलब।
0: जी अभी मतलब फूल चालू ही है, और
1: अच्छा
0: बाकी
1: जी
0: जैसे तोड़ने लायक भी हो चुका है मूंग।
1: जी,
0: हाँ
1: वैसे ये जो उड़द और मूंग जो है गर्मी की फसलें होती है, तो इनको इस बार पर्याप्त गर्मी मिल नहीं पा रही है।
0: जी बिल्कुल, अभी क्या है, ये ठंडा गर्म, कभी
1: जी
0: बारिश होना, कभी बदल छाया रहना, तो इसमें
1: इस
0: काफी इफेक्ट पड़ा फसल को।
1: जी इस साल तो
0: खेती
1: लगभग
0: में अधिकतर गुड़ बनाने का कार्य होता था, लेकिन
1: जी
0: हमारे यहाँ शायद 4 शुगर मिल हो चुकी
1: जी
0: हैं।
1: अपने जिले में।
0: हाँ, बैतूल जिले में तो
1: जी
0: सबसे ज्यादा मतलब मिलों में जा रहा है, और बिल्कुल किसान परेशान नहीं हो रहा। दूसरी
1: जी
0: चीज, कई चीजें भी मतलब कंपनी वाले उपकरण उपलब्ध करवा रहे हैं,
1: जी
0: जैसे
1: जी
0: ट्रॉली वगैरह, गन्ने लगाने के लिए
1: जी
0: वो यंत्र,
1: जी और गन्ने
0: और
1: लगाने की विधि से लेके नई नई तकनीक भी सब बताते
0: जी
1: हैं।
0: बिल्कुल, वो कंपनी वाले उन लोग बीज भी प्रोवाइड कर रहे हैं,
1: जी,
0: और नर्सरी तैयार करवाते हैं, नर्सरी विधि द्वारा भी वो प्लांटेशन तैयार करवा के, तो उसका बहुत मतलब उत्पादन ज्यादा है। और दूसरी चीज, ड्रिप सिस्टम भी चलाए हैं उन लोग,
1: जी,
0: तो काफी चीजें दे रहे हैं कंपनी वाले,
1: उन्नत तरीके से जो गन्ने लगाए जा रहे हैं उसमें उत्पादन बढ़िया है।
0: बहुत बढ़िया है।
1: जी,
0: मतलब शायद ऐसा सुनने में आया था, हमारे नीम पंचायत के एक तुमड़ाम जी हैं कृषक, उनके खेत में बहुत अच्छा मतलब इसी साल, पिछले साल लगवाए थे, तो इस साल बहुत अच्छा उत्पादन मिला उन लोगों को
1: जी,
0: जी।
1: ये बिल्कुल आंखों देखा आपके पास जो है उदाहरण मौजूद है
0: जी जी
1: मतलब।
0: जी बिल्कुल, वो हमारे मित्र हैं, तो हम एक दूसरे से मिलते हैं और शेयर करते हैं हर चीज, तो बताते हैं कि बहुत, और इस साल उन लोगों ने और मतलब रकबा बढ़ाए,
1: अच्छा
0: मतलब ड्रिप सिस्टम, दूसरी चीज वो नर्सरी तैयार करके जो बीज तैयार करते
1: जी
0: हैं
1: जी
0: वही विधि से फिर इस बार लगवाए हैं वो
1: जी
0: गन्ना।
1: अच्छा भैया, हमने सुना है कि जो नर्सरी तैयार की हुई उसके जो बीज रहते हैं गन्ने के, और उसको यदि हम लगाते हैं तो बहुत कम मात्रा में गन्ने का बीज अधिक से अधिक रकबे में जाता है, ऐसा भी सुना है। तो ये भी आपको बताया गया होगा आपके मित्र द्वारा,
0: हमारे मित्र द्वारा बताया गया था कि इसमें जो है,
1: पैरों से जो पहले पुरानी पद्धति में जो
0: हाँ
1: खूंदा जाता था उसमें बहुत ज्यादा बीज जाता
0: हाँ
1: था।
0: उसमें क्या होता था सर कि बीज बहुत लॉस होता था,
1: जी
0: दूसरी चीज उत्पादन भी कम है,
1: जी
0: और पैसा ज्यादा लग जाता, लागत
1: जी
0: बहुत ज्यादा लग जाता था
1: जी
0: सर उसमें।
1: जी
0: उसमें क्या है कि, और दूसरी चीज ड्रिप सिस्टम जो चला है,
1: जी
0: क्योंकि जितना खाद और जो पानी है
1: जी
0: डायरेक्ट प्लांट को मिलता है,
1: जी जी
0: तो उसमें,
1: पौधे को
0: हाँ पौधे को,
1: जी
0: उसमें और उत्पादन बढ़ जाता
1: जी
0: है,
1: जी
0: और उसमें नुकसान नहीं है सर,
1: जी
0: है
1: जी
0: ना।
1: जी
0: नहीं तो जो अपन पहले पुरानी पद्धति से लगाते थे, तो
1: जी
0: उसमें वेस्टेज ज्यादा होता था, खाद
1: जी
0: का भी, बीज का भी,
1: जी जी
0: और समय भी ज्यादा लगता था,
1: जी
0: तो इसमें क्या नुकसान ज्यादा होता था,
1: जी
0: और
1: जी
0: उत्पादन मतलब जो रेशो था बहुत अंतर आ जाता था। लेकिन अभी
1: जी
0: नई टेक्नोलॉजी के हिसाब से किया जाता, तो इसमें काफी चीजें बेनिफिट्स मिल रही हैं सर
1: जी
0: इसमें
1: जी
0: जी।
1: तो इस प्रकार हमारे किसान भाइयों को भी आधुनिक तकनीकों को ध्यान में रखते हुए आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल करना चाहिए हमारे किसान भाइयों को
0: जी बिल्कुल, आजकल कई नई योजनाएं चलाई है,
1: खेती के
0: तो
1: मामले में,
0: खेती के
1: कृषि
0: मामले,
1: क्षेत्र में।
0: कृषि क्षेत्र में। दूसरी चीज, किसान को जो कृषि विस्तार अधिकारी होता है उनसे संपर्क करना चाहिए, नई नई जानकारियां मिलती है। दूसरी चीज, सरकार ने कई योजनाएं, मशीन हुए या तो फिर और भी बिजली से संबंधित उपकरण, तो उसमें प्रोवाइड करवाती है
1: तो इसके लिए हमारे किसान भाइयों को भी जागरूक रहना पड़ेगा।
0: बिल्कुल बिल्कुल जागरूक होना पड़ेगा, या तो फिर
1: तब जो है कृषि विस्तार अधिकारियों से संपर्क बनाए रखना पड़ेगा
0: करके, और दूसरी चीज मेरे हिसाब से हर पंचायत पे ऐसा मीटिंग प्रोवाइड होना चाहिए कि कृषक को हर चीज की जानकारी मिले।
1: खासकर जो कृषि विभाग है उसके माध्यम से ग्राम पंचायतों में भी जो है इस प्रकार मीटिंग होनी चाहिए।
0: जी बिल्कुल, उसमें क्या है कि कृषि विस्तार अधिकारी, कृषि वैज्ञानिक सब एक दूसरे से जुड़े होते हैं, तो इसमें सब नई नई पद्धतियां जो कृषि के हैं वो बताते हैं, और दूसरी चीज इसमें नई नई जानकारी, दूसरे कई प्रकार के बीज विकसित हुए हैं, तो भूमि का जो होता है उर्वरक का, इसका जो भूमि पर मिट्टी परीक्षण जिसको बोलते हैं, तो वो करवाना चाहिए। तो ये सब ये कृषि विस्तार अधिकारी के थ्रू होते हैं।
1: अच्छा, एक आपने नई बात बताई, बहुत अच्छी बात बताई भैया जी कि मिट्टी परीक्षण, तो मिट्टी परीक्षण वैसे इसके क्या क्या लाभ है हमारे किसान भाइयों को, कुछ आपके पास यदि जानकारी हो तो इस बारे में हम आपसे जानना चाहेंगे कि मिट्टी परीक्षण क्यों आवश्यक है हमारे किसान भाइयों के लिए।
0: मिट्टी परीक्षण इसलिए जरूरी है सर, कई लोगों को ये पता ही नहीं है, जैसे अपना एक शरीर है, अपने को किस चीज की कमी है, पूरे जांच नहीं होंगे कि हमारे शरीर में क्या कमी है, वैसे अपने शरीर जैसा ये भूमि भी है, तो इसमें अपने मिट्टी परीक्षण यदि करवाते हैं तो उसमें जितने मिनरल्स हैं, क्या तत्व हैं, वो कम किस चीज का है, तो उस हिसाब से अपन उस चीज को खेत में डालेंगे।
1: यानी कि हमारी जमीन में कौन कौन से तत्व पहले से मौजूद है और कौन कौन से तत्वों की कमी है, ये जानकारी हमें हो जाती है।
0: हाँ, मिट्टी परीक्षण करने से अपने को पता चल जाएगा, तो उस हिसाब से यदि अपन खाद डालेंगे तो रेशो अपना एक सही रहेगा, उसमें उत्पादन बढ़ेगा अपना।
1: जी जी, और लागत भी अपनी बढ़िया उसमें बनी रहेगी।
0: हाँ, लागत भी, कि भाई अपने को पता ही नहीं चलेगा और उसमें उर्वरक वो ज्यादा है और उसको डालते जा रहे हैं तो फसल को नुकसान होगा।
1: पता चला फास्फोरस पहले से पर्याप्त मात्रा में मौजूद है अपने खेतों में और अपन उसी को दिए जा रहे हैं।
0: जी बिल्कुल, तो इससे पता चलेगा अपने को भूमि, मतलब मिट्टी परीक्षण करने से। जी,
1: तो जो तत्वों की कमी है उन्हीं तत्वों को हम उसकी पूर्ति की जाए, और जिनकी मौजूदगी है उन्हें अपन ना डाले।
0: हाँ बिल्कुल, बढ़िया रहेगा। और तो इससे के लिए बहुत जरूरी है कृषि विस्तार अधिकारी से संपर्क करना। दूसरी चीज, आजकल कई पंचायतों में कृषि मित्र करके उनको बनाए हैं, तो उनसे भी जानकारी मिल सकती है।
1: ये तो हमारे किसान भाई इनसे भी जानकारी ले सकते।
0: जी, और उर्वरक के बारे में और नई उन्नत किस्म की बीजों के बारे में वो जानकारी देंगे इसके लिए।
1: यदि किसान भाइयों को उन्नत तरीके से खेती करना है तो उन्हें भी जो है जिज्ञासु बने रहना पड़ेगा, क्यों भैया?
0: जी बिल्कुल,
1: उसमें आने वाले समय में क्या करना है, क्या नहीं करना है, नई तकनीक से किस प्रकार खेती करना है, तो यदि उनके अंदर कुछ ललक रहेगी, जिज्ञासा बना रहेगा, तो नई नई जानकारियां वे लोग कृषि विस्तार अधिकारियों से और वैज्ञानिकों से लेते रहेंगे।
0: जी, इसमें उत्पादन, दूसरी चीज अपने को अधिक पैसा चाहिए।
1: जी,
0: तो इसमें इसके लिए ये सब चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा। जी, जैसे कृषि विस्तार अधिकारी नई खादे, नई बीजे, तो इसमें आमदनी अच्छी होगी।
1: जी, जी,
0: नहीं तो ये यदि अपन नहीं करते हैं
1: जी,
0: तो फिर अपन घाटे का सौदा फिर खेती।
1: जी, इसलिए समय के अनुसार हमें चलना पड़ेगा
0: और टाइम और समय, दूसरी चीज नया जो टेक्नोलॉजी है इसको ध्यान रखना पड़ेगा।
1: बिल्कुल बिल्कुल, और खेती में सबसे महत्वपूर्ण स्थान रखता है समय का जो है विशेष ध्यान। हाँ, रखा
0: विशेष ध्यान, जो टाइम गाइडलाइन है कितने समय से इतने टाइम तक फसल
1: बोनी
0: होना चाहिए।
1: जी, जी,
0: तो उस हिसाब से समय को देखते हुए करना बहुत जरूरी है।
1: जी जी जी, तो ये तो हमने तकनीक के बारे में बातचीत की भैया, लेकिन हम जानना चाहेंगे आपसे कि आगामी जो खरीफ सीजन अभी नजदीक है, बरसात का सीजन जो आने वाला है, तो उस बरसात के सीजन में आप विशेषकर इस बार कौन कौन सी फसलें बोने की योजना बना रखे हैं इस बार आपने?
0: सर, हम लोग प्रायतः तैयारी किए हैं, अधिकतर हमारा रकबा मक्के के लिए रहता है।
1: अच्छा, हाँ,
0: क्योंकि काफी सालों से सोयाबीन हमें काफी धोखा दिया, मतलब हुआ नहीं।
1: अच्छा,
0: फसल कुल मिला के जो लागत लगाते थे वो भी नहीं निकलता था, इसलिए चेंज कर दिए। अधिकतर हमारे क्षेत्र में किसान भाई जो हैं मक्के का फसल ज्यादा, और दूसरी चीज फिर अभी दलहन का, जैसे तुअर हो गया है और उड़द हो गया है और बरबटी, ये सब कर रहे हैं।
1: जी, जी, जी।
0: और मैं किसान भाइयों से यही बोलना चाहूंगा कि जो पुराना जो था कृषि पद्धति, हालांकि टेक्नोलॉजी चेंज करना चाहिए, लेकिन जो कोदो कुटकी
1: जी जी
0: बोते थे
1: जी जी
0: वो करना चाहिए,
1: करना चाहिए।
0: और दूसरी चीज मैं कहना चाहूंगा कि फर्टिलाइजर जितना हो सके कम करना चाहिए,
1: रासायनिक खादों की मात्रा को।
0: हाँ, रासायनिक खाद और जैविक के तरफ जाना चाहिए
1: जी जी। तो जैविक यदि खाद का इस्तेमाल हमारे किसान भाई को करना है तो उसके लिए तो पशुधन भी अधिक पालना पड़ेगा।
0: जी जी जी मैं अपने इधर मतलब

0: किसान छोटे हैं
1: जी,
0: लेकिन पशुधन नहीं पाल रहे हैं। पहले था लेकिन अब कम कर दिए हैं।
1: जी जी
0: मैं उधर एक ट्रेनिंग पे गया था, मैं पंजाब साइड,
1: जी जी
0: मैं देखा कि उधर एक करोड़पति इंसान भी है तो उसके पास गाय भैंस है
1: जी जी
0: हर
1: जी।
0: घर में, वो कितना
1: बड़े
0: भी
1: से बड़े सक्षम व्यक्ति
0: हाँ
1: क्यों ना रहे।
0: हाँ तो उधर का चेंजेस भी आप देखना कि उधर के जो लोग हैं लंबे चौड़े भी है, हेल्दी भी है,
1: क्योंकि घर पे दूध दही घी मक्खन
0: ये
1: खाने के लिए।
0: हाँ बहुत जरूरी है। दूसरी चीज मैं ये बोलना चाहूंगा, बीमारियों से यदि बचना है तो चेंजेस लाना पड़ेगा।
1: जी
0: पहले रासायनिक खाद नहीं थे
1: जी
0: तो इतने बीमारियां नहीं थी सर,
1: बिल्कुल।
0: लेकिन अब जितना उर्वरक रासायनिक बढ़ रहा है
1: जी
0: तो बीमारियां भी नई नई, और मैं बिल्कुल चाहूंगा कि समाज में ये जागरूकता आए और जो नेचुरल खाद है इस पे आए अब, क्योंकि आने वाले समय पे बहुत ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा।
1: जी
0: क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि अधिकतर मतलब हर गांव में आप कैंसर पेशेंट मिलेंगे अब
1: जी जी वर्तमान समय में,
0: वर्तमान समय
1: ये स्थिति आ गई है,
0: ये स्थिति आ गई। आने वाले 2-3 साल में देखना कि इसका रेशो और ज्यादा बढ़ जाएगा इसका।
1: और इसका कारण यही है कि हमने हमारी खेती में रासायनिक खादों से लेकर रासायनिक दवाओं का इस्तेमाल बहुत अधिक मात्रा में हम कर रहे हैं।
0: बिल्कुल बिल्कुल, ये जो रासायनिक तत्व हैं बहुत ज्यादा नुकसान कर रहे हैं, और इसको उत्पादन के लिए किसान बहुत ज्यादा उपयोग कर रहे हैं, लेकिन इसके जो साइड इफेक्ट है बिल्कुल किसान अभी नहीं,
1: परिणाम
0: बहुत घातक है।
1: इस पर भी हमारे किसान भाइयों को थोड़ा विचार करना पड़ेगा।
0: जी बिल्कुल, चेंजेस करना पड़ेगा। मैं ये नहीं बोलूंगा कि भाई आप तुरंत ही चेंज करो, लेकिन धीरे धीरे चेंज करना होगा, क्योंकि एक चीज यदि किसी चीज में अप्लाई कर देते हैं तो उसको छूटने में टाइम लगता है। ये या तो वो शरीर हो
1: या जमीन हो,
0: जमीन हो। किसी चीज का आदत पड़ जाता तो छूटने में टाइम लगता है, लेकिन मैं यही चाहूंगा कि नेचुरल खेती हो।
1: यदि हम एकदम से उन्हें बंद कर देंगे खेती में डालना तो हमारा उत्पादन भी प्रभावित हो जाएगा।
0: जी बिल्कुल, मतलब आप यदि चेंज करेंगे, मैं बिल्कुल एक साल पहले ही मैं नेचुरल खाद डाला था गेहूँ में,
1: जी जी,
0: तो हमारे यहाँ भैया मुझे डांटे भी थे कि उत्पादन कम रहा अपना आपके चक्कर में, लेकिन मैं सोच रहा हूँ कि 1-2 एकड़ पे हम लोग खाने के लिए नेचुरल तरीके से ही कर रहे हैं।
1: तो वैसे तो भैया जो नेचुरल तरीके से जैविक खेती यदि हम करते हैं तो उसमें उत्पादन में तो थोड़ी कमी आती है, लेकिन वो हमारे परिवार के लिए खासकर खाने के लिए हर किसान भाई ने कुछ ना कुछ, जैसे आपने कहा कि हमने थोड़ी बहुत जगह पे बोई थी, तो इस प्रकार हर किसान भाई यदि अपने परिवार के लिए खाने लायक अनाज, शुद्ध अनाज उत्पादित करते हैं तो वो अपना परिवार को भी स्वस्थ रख पाएंगे और बढ़िया रह पाएंगे।
0: बिल्कुल सर, मैं यही बोलूंगा कि कम से कम 1-1.5 एकड़ में। दूसरी चीज जो बारिश की सब्जियां होती है बिगर केमिकल के बच नहीं पा रही है, तो मैं ये चाहूंगा कि नेचुरल तरीके से किया जाए। कुछ सब्जियां यदि बीमारियों से बीमारियों से बचना है तो हर मतलब कुछ पौधे लगा देना चाहिए, जैसे सब्जी के बेले हो गए हैं, तरह तरह के, मतलब ज्यादा नहीं, घरेलू जितना जरूरत उतना लगा के और घर से उत्पादन लेना चाहिए और उपयोग करना चाहिए। जितने भी आ रहे हैं आजकल फर्टिलाइजर वाले, तो इसके बहुत दुष्परिणाम है इसके।
1: इस प्रकार यदि हमारे किसान भाई अधिक पशुपालन करते हैं तो उससे बढ़िया जो है गोबर खाद पर्याप्त मात्रा में हमारे किसान भाइयों को मिलेगा, तो अधिक से अधिक हमारे खेतों में उपयोग कर पाएंगे गोबर खाद को। तो आप पशुपालन के बारे में हमारे किसान भाइयों को और क्या कहना चाहेंगे, उन्हें पशुपालन करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, पशुपालन की ओर मुड़ना चाहिए कि नहीं हमारे किसान भाइयों को?
0: मैं ये बोलना चाहूंगा कि जो पुराने जो पद्धति पशुपालन का, कुछ ना कुछ चेंजेस होना चाहिए। नए नए उन्नत किस्म के आ रहे हैं, मतलब नस्ल
1: जी,
0: तो उन्हें रखना चाहिए। दूसरी चीज यदि आप खेती के साथ साथ पशुपालन यदि करते हैं तो बहुत फायदेमंद होगा, क्योंकि इससे अपने घरेलू जैसे घी हो गया, मक्खन हो गया, मठा वगैरह, तो ये सब घर की चीजें। दूसरी चीज अपन दूध बेच भी सकते हैं जरूरत के हिसाब से, जितना रखना है आय भी बढ़ेगी सर इससे। और दूसरी चीज खेती में भी चेंजेस आएगा, नेचुरल खेती होगा, जैविक खेती।
1: अच्छा भैया, हम आपसे जानना चाहेंगे कि आप भी अपने घर में पशुपालन करते होंगे, आपके यहाँ भी मवेशी होंगे?
0: सर ये तो हमारे समाज में नेचुरल मतलब कई बरसों से परंपरागत है, हमले आदिवासी समाज में जानवर रखना कंपलसरी है, लेकिन अब कुछ सालों से मशीन का युग आ गया तो कई लोग मतलब, लेकिन हमारे घर में अभी भैंस भी है, गाय भी है।
1: अच्छा,
0: बकरी भी है,
1: अभी भी मौजूद है
0: जी, बकरी भी है, गाय भी, भैंस भी, मुर्गियां भी, सारा चीज।
1: अच्छा अच्छा अच्छा,
0: जी बिल्कुल बिल्कुल,
1: मतलब सभी प्रकार के आपने जो है पशु वगैरह आपके घर में रखे हैं?
0: बिल्कुल सर,
1: सब पूरे मिला के फिर भी कितनी संख्या में होंगे?

0: सर हमारे यहाँ दो भैंस हैं
1: जी
0: और चार एक गाय हैं सर,
1: जी जी जी
0: दो बैल हैं
1: जी जी
0: और तीन बकरी हैं,
1: जी जी
0: बाकी
1: जी
0: मुर्गियां हैं सर
1: जी जी बहुत
0: जी।
1: बढ़िया।
0: तो सब घर का ही हो जाता सर,
1: जी
0: कहीं जाने की
1: बिल्कुल
0: जरूरत नहीं।
1: बिल्कुल बिल्कुल। तो घर पे घर के लिए जो है दूध दही घी ये भी हो जाता
0: जी
1: है
0: जी बाहर से जरूरत नहीं पड़ता सर हम
1: जी।
0: लोग।
1: और अपनी खेती के लिए गोबर खाद भी हो ही जाता है।
0: बिल्कुल सर, पर्याप्त हो जाता गोबर का। हम लोग बिल्कुल अभी गोबर का खाद जमा था, तो अभी हमारे भाई साहब ने सब खेतों में प्लाऊ कर दिए हैं, ऊपर से खाद भी डल
1: खाद
0: चुका है
1: भी
0: हमारा
1: फैला दिए हैं मतलब
0: जी।
1: खेत पे।
0: बिल्कुल अब आएगा पानी तो कल्टीवेटर चला के
1: जी बोने की
0: और
1: तैयारी रहेगी।
0: बोने की बिल्कुल तैयारी है
1: जी जी जी
0: जी जी जी
1: जी तो इस बार मतलब आप मक्के की ही फसल बोने वाले हैं अधिक जो है।
0: हाँ बिल्कुल। हम अधिकतर मतलब मक्का बोएंगे, सेकेंडरी अरहर का फसल
1: जी जी
0: तुअर
1: जी
0: बोलते हैं,
1: जी जी जी
0: वो बोएंगे सर हम
1: जी
0: लोग।
1: जी तो बहुत बहुत धन्यवाद भैया कि आपने आपके कृषि कार्यों का अनुभव हमारे साथ साझा किए और इतनी अच्छी जानकारी दी कृषि संबंधित। इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय राम जी की।
0: जय राम जी की भैया।
2: किसान भाइयों, अभी आप ग्राम मलसिउनी के कृषक श्री भीम सिंह इरपाचे से की गई बातचीत सुन रहे थे। और अब किसान भाइयों आइए अब हम बात करते हैं कृषि चर्चा का। आज का हमारा विषय जो है पपीते की खेती से दोहरा फायदा। आइए बातचीत करते हैं इस बारे में। किसान भाइयों, पपीते की खेती से दोहरा फायदा मुख्य रूप से इसकी अंतर फसल प्रणाली और इसके दोहरे उपयोग यानी कच्चे और पक्के फल से होता है। इसके अलावा एक ही फसल चक्र में कम समय में अतिरिक्त मुनाफा इससे कमाया जा सकता है। किसान भाइयों, मुख्य फसल के साथ अंतर फसल से जो है अतिरिक्त आय की बात करें तो इसमें पपीते के पौधे शुरू में काफी दूर लगाए जाते हैं। खाली जगह का उपयोग करने के लिए आप पहले साल कम अवधि वाली फसलें लें जिनमें आप हरी मिर्च, टमाटर, धनिया, पालक या गेंदा फूल उगा सकते हैं। इससे मुख्य फसल पपीते के बड़े होने तक आपको अतिरिक्त आय मिलती रहती है और खेत की निंदाई गुड़ाई भी हो जाती है। कच्चे और पक्के फलों के रूप में दोहरा उपयोग की बात करें भाइयों, तो कच्चा पपीता बाजार में हरी अवस्था में कच्चे पपीते की भारी मांग होती है। सब्जी, सलाद और पपेन पाउडर बनाने के लिए आप जो है 6 से 8 महीने के कच्चे फल को जो है तोड़कर बेच सकते हैं। भाइयों, पक्का पपीता पकने के बाद मीठे फलों के रूप में बाजार में इसकी कीमत बहुत अधिक मिलती है और बहुत बढ़िया अच्छी मिलती है। भाइयों, इससे पपेन का उत्पादन की बात करें तो कच्चे पपीते के फलों पर जो है चीरे लगाकर दूध निकाला जाता है जिसे सुखाकर पपेन बनता है। इसका उपयोग दवाइयों, पाचन पाउडर और कॉस्मेटिक उत्पादों में किया जाता है। पपेन निकालने के बाद भी फल खराब नहीं होते हैं और बाद में उन्हें सब्जी या पकने के बाद बेचा जा सकता है जो कि एक अतिरिक्त लाभ है। और भाइयों, पपीते में जो है लागत कम और मुनाफा ज्यादा इसकी यदि हम बात करें तो एक बार बोएं और कई साल तक आप इससे कमाई कर सकते हैं। आप जो है आय ले सकते हैं लंबे समय तक। पपीते का पेड़ करीब 2 से 3 साल तक फल देता है। एक बार की मेहनत और लागत में आपको कई बार फसल मिलती है। साल भर उत्पादन इससे आपको मिलता है। पपीता जो है एक ऐसा फल है जो पूरे साल बाजार में बिकता है जिससे किसानों को साल भर नियमित आय प्राप्त होती है। किसान भाइयों, भूमि की उर्वरकता और अतिरिक्त लाभ की यदि हम बात करें तो खाद का सही उपयोग जिसमें अंतर फसल में जब आप फलियों जैसे मूंग या चना जैसी फसलें उगाते हैं तो वे मिट्टी में नाइट्रोजन की मात्रा को बढ़ाती हैं जिससे पपीते के पौधों को भी पोषण मिलता है। पपीते की उन्नत किस्मों और वैज्ञानिक खेती की अधिक जानकारी के लिए आप जो है कृषि

अपने नजदीकी जो कृषि वैज्ञानिक है उनसे आप संपर्क कर सकते हैं और बढ़िया तरीके से जो है आप पपीते की खेती कर सकते हैं। तो किसान भाइयों, ये थी छोटी ही चर्चा, पपीते की खेती से दोहरा फायदा हम कैसे ले सकते हैं इस विषय में। और अब हम समय है आज एक और लोकगीत सुनने का, तो आइए सुनते हैं रामचरण यादव और साथियों के स्वर में ये लोक भजन।

किसान भाइयों, अभी आप रामचरण यादव और साथियों के स्वर में सुन रहे थे ये लोक भजन। और अब किसान भाइयों, समय हो गया है आज के कार्यक्रम से आप सभी से विदा लेने का। तो दीजिए अनुमति छोटे लाल धुर्वे को। जय राम जी की, जय जवान, जय किसान।

अभी आप सुन रहे थे किसान भाइयों का मनपसंद कार्यक्रम ग्राम सभा। यह आकाशवाणी का बैतूल केंद्र है। रात्रि के 8 बजे हैं। पेशे खिदमत है कार्यक्रम सेहत के बाद गीतों के साथ, जहां बात होगी आपकी सेहत की और साथ होगा कुछ दिल छू लेने वाले गीतों का। दोस्तों, जिंदगी में पैसा, काम, सपने सब जरूरी है, लेकिन अगर सेहत साथ न दे तो हर खुशी अधूरी सी लगती है। इसलिए कहते हैं हेल्दी माइंड एंड हेल्दी बॉडी आर द रियल वेल्थ ऑफ लाइफ, यानी खूबसूरत जिंदगी के लिए हेल्दी माइंड और हेल्दी बॉडी का साथ होना बहुत जरूरी है। तो आइए कुछ काम की बातें, कुछ प्यारे एहसास और कुछ शानदार गीतों के साथ आज का ये सफर, खूबसूरत सफर शुरू करते हैं। और शुरुआत करते हैं एक ऐसे खूबसूरत गीत से जो जिंदगी को खुलकर जीने की बात करता है।

आप सुन रहे हैं आपका मनपसंद कार्यक्रम सेहत की बात गीतों के साथ। दोस्तों, आज की भाग दौड़ भरी जिंदगी में हम रात को देर तक मोबाइल चलाते हैं और सुबह उठते ही सबसे पहले स्क्रीन देखते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं, सुबह उठने के बाद पहले 20 मिनट अगर मोबाइल से दूरी रखी जाए तो दिमाग ज्यादा शांत और पॉजिटिव महसूस करता है। सुबह की फ्रेश एयर, हल्का एक्सरसाइज और एक गिलास गुनगुना पानी पूरे दिन को एनर्जेटिक बना के रखता है। तो क्यों ना हर सुबह खुद को थोड़ा सा वक्त दिया जाए, क्योंकि खुद का ख्याल रखना भी तो जरूरी है। और इसी प्यारे एहसास के साथ सुनते हैं ये प्यारा सा सूदिंग सॉन्ग। फिल्म का नाम वेकअप सिड, आवाज कविता सेठ की।

आपने ट्यून किया है कार्यक्रम सेहत की बात गीतों के साथ। दोस्तों, कई बार हम काम में इतने बिजी होते हैं कि पानी ही पीना भूल जाते हैं, लेकिन शरीर में पानी की कमी थकान, सिर दर्द और स्किन प्रॉब्लम तक का कारण बन जाती है। एक आसान सी आदत अपनाइए, हर एक घंटे में थोड़ा पानी जरूर पीजिए। अगर सादा पानी अच्छा ना लगे तो उसमें नींबू, पुदीना या खीरा डालकर डिटेक्स वाटर भी बना सकते हैं। छोटी छोटी अच्छी आदतें लंबे समय तक अच्छी सेहत देती है। और इसी फ्रेशनेस के साथ हम आपको एक और बात बताना चाहते हैं कि अक्सर शरीर की सेहत का ध्यान रखते रखते हम हमारी मेंटल हेल्थ का ध्यान रखना भूल जाते हैं, हम उसे नजरअंदाज कर देते हैं। हर समय स्ट्रांग रहना जरूरी नहीं, कभी कभी थोड़ा रुकना, खुद से बात करना और अपने मन की बात किसी अपने से शेयर करना भी बहुत जरूरी होता है। याद रखिए, इट्स ओके टू टेक अ ब्रेक समटाइम्स, यानी खुद के लिए थोड़ा टाइम निकालना बहुत जरूरी है। तो खुद को थोड़ा आराम दीजिए, थोड़ा मुस्कुराइए और जिंदगी को महसूस कीजिए। अब आइए सुनते हैं ये जिंदगी से भरा हुआ प्यारा सा खूबसूरत गीत।

0: तो दोस्तों आज के लिए आज का ये सफर बस इतना ही। उम्मीद है सेहत के बाद गीतों के साथ का ये सफर आपको पसंद आया होगा। अपना और अपनों का ख्याल रखिए, थोड़ा हंसिए, थोड़ा गुनगुनाइए और हमेशा हेल्दी रहिए। मैं हूं आपकी दोस्त नमिता, आपसे इजाजत चाहूंगी। फिर मिलेंगे नई शाम, नई जानकारी और नए गीतों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। यह आकाशवाणी का बैतूल केंद्र है। प्रस्तुत है मध्य प्रदेश के माननीय राज्यपाल श्री मंगू भाई पटेल के बैतूल प्रवास पर आधारित कार्यक्रमों की रेडियो रिपोर्ट।
1: श्रोताओं, आज दिनांक 20 मई 2026 को मध्य प्रदेश के माननीय राज्यपाल श्री मंगू भाई पटेल बैतूल जिले के सुदूर आदिवासी बहुल ग्राम भीमपुर पहुंचे। प्रातः लगभग 10:15 बजे माननीय राज्यपाल का हेलीपैड पर अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों द्वारा गर्म जोशी से स्वागत किया गया। पुलिस परेड मैदान पर माननीय राज्यपाल महोदय का आगमन होते ही पारंपरिक वेशभूषा में सुसज्जित लोक कलाकारों ने लोक नृत्य से उनका अभिवादन किया। भीमपुर पुलिस ग्राउंड में आयोजित राष्ट्रीय सिकल सेल उन्मूलन मिशन 2047 के जांच जागरूकता एवं जन भागीदारी महाभियान कार्यक्रम में सम्मिलित होकर उन्होंने लोगों से इस बीमारी से लड़ने का आह्वान किया। इस दौरान सिकल सेल एवं थैलेसीमिया जांच मशीन का उद्घाटन भी किया गया। कार्यक्रम स्थल पर लगाए गए विभिन्न स्टॉलों का निरीक्षण भी किया गया, साथ ही प्रदर्शित उत्पादों की सराहना भी की गई। इस क्रम में स्व सहायता समूह की महिला

0: द्वारा बनाए गए उत्पाद, आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं तथा वन विभाग के उत्पादों की जानकारी प्राप्त की गई। इसके अलावा स्वास्थ्य विभाग, कृषि विभाग एवं उद्यानिकी विभाग द्वारा दी जा रही सेवाओं और उत्पादों का अवलोकन भी किया गया। राज्यपाल महोदय के मंचासीन होने पर वंदे मातरम एवं राष्ट्रगान का सामूहिक गायन संपन्न हुआ। तदुपरांत उनके द्वारा दीप प्रज्वलन से कार्यक्रम का शुभारंभ हुआ। इस मौके पर मंच पर कई गणमान्य अतिथि उपस्थित थे, जिनमें प्रमुख रूप से केंद्रीय राज्य मंत्री जनजातीय कार्य मंत्रालय श्री डीडी उइके, भेजदे विधायक श्री महेंद्र सिंह चौहान, घोड़ाडोंगरी विधायक श्रीमती गंगाबाई उइके, जन अभियान परिषद के उपाध्यक्ष श्री मोहन नागर, अनुसूचित जनजाति आयोग के सदस्य श्री मंगल सिंह दुर्वे, नर्मदापुरम संभागायुक्त श्रीयुत श्रीकांत बानोट, पुलिस महानिरीक्षक श्री मिथिलेश कुमार शुक्ला, जिला पंचायत उपाध्यक्ष श्री हंसराज ध्रुवे, भीमपुर जनपद पंचायत अध्यक्ष श्री भैयालाल इरपाचे और उपाध्यक्ष श्रीमती प्रेमलता काजदे, ग्राम पंचायत भीमपुर के सरपंच श्री मान सिंह नर्रे आदि उपस्थित थे। इस अवसर पर माननीय केंद्रीय राज्य मंत्री जनजातीय मामले भारत सरकार अध्यक्ष जिला पंचायत बैतूल और विधायक भैंसदे तथा आयुक्त नर्मदापुरम संभाग द्वारा उनका पुष्प गुच्छ देकर स्वागत किया गया तथा भरेवा आर्ट की कलाकृति भी उन्हें भेंट की गई। अपने स्वागत उद्बोधन में माननीय विधायक भैते श्री महेंद्र सिंह चौहान ने कहा,
1: सबसे पहले मैं महामहिम राज्यपाल जी का, जो हमारे भैंसदे विधानसभा के आदिवासी अंचल भीमपुर में आज उपस्थित हुए है, मैं भीमपुर की ओर से और भैंसदे की ओर से उनका बहुत बहुत अभिनंदन और स्वागत करता हूँ। अधिकांश उन क्षेत्रों में आपने देखा होगा कि सिकल सेल की जो बीमारी होती है वो बचपन से, जब बच्चा छोटा रहता है, जब से ही वो हो जाता है, तो कहीं ना कहीं आपने भी और हमने भी अनुभव किया होगा कि अधिकांश परिवार के लोग उस पर उतना ज्यादा ध्यान नहीं दे पाते और उसी का परिणाम होता है कई बार 18 और 20 और 22 साल की उम्र के आते आते तक हमारे बीच से ऐसे जिनको सिकल सेल की शिकायत रहती है ऐसे बच्चे हमारे बीच में नहीं रह पाते। मैं पुनः माननीय राज्यपाल जी का हमारे क्षेत्र में पहुंचने के लिए और विशेष करके जो हमारे ट्राइबल क्षेत्र में जो हमारे आदिवासी बच्चों को सिकल सेल की जो अधिकांश शिकायत होती है उसके लिए जो यहाँ पे उन्होंने आज हमारे भीमपुर में पहुंचे, क्योंकि शासन और प्रशासन अपनी तरफ से तो पूरी कोशिश करते हैं, लेकिन उसके बाद भी विशेष करके राज्यपाल महोदय जी का जो विशेष ध्यान हमारे पूरे मध्य प्रदेश में रहता है, कहीं ना कहीं इसके लिए मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा।
0: सिकल सेल कार्यक्रम की नोडल अधिकारी डॉक्टर अंकिता सीते द्वारा कार्यक्रम की संक्षिप्त रूपरेखा का प्रस्तुतीकरण किया गया।
2: बैतूल जिला एक आदिवासी बाहुल जिला है, जहां पे अभी तक हम 8.5 लाख से ज्यादा लोगों की सिकल सेल एनीमिया की स्क्रीनिंग कर चुके हैं, जिसमें हमारे पास 7,124 लोग सिकल सेल वाहक हैं और 1,067 लोग जो है सिकल सेल डिसीज है। इन लोगों के लिए हमारे शासन द्वारा जो राष्ट्रीय सिकल सेल उन्मूलन मिशन कार्यक्रम चलाया जा रहा है, उसके माध्यम से हम लोग निशुल्क दवाइयां और साथ ही में रिप्लेसमेंट फ्री ब्लड भी उपलब्ध कराते हैं। 1 जुलाई 2025 से जो 125 दिवसीय सिकल सेल एनीमिया कार्यक्रम चला था, उसमें बैतूल जिले ने पूरे प्रदेश में द्वितीय स्थान प्राप्त कर माननीय राज्यपाल जी द्वारा सम्मान ग्रहण किया था। आज हम यहाँ पे विशेष रूप से सिकल सेल और थैलेसीमिया जांच मशीन के उद्घाटन के लिए उपस्थित हुए हैं। मैं माननीय राज्यपाल जी का दिल से धन्यवाद देना चाहती हूँ, जिन्होंने भीमपुर की धरती पे यहाँ पे लोगों को ये सौगात दी है कि वो सिकल सेल एनीमिया की हम जांच करा पाए।
0: इसके पश्चात स्वास्थ्य विभाग द्वारा सिकल सेल एनीमिया पर शॉर्ट फिल्म का प्रदर्शन किया गया, जिसे सभी ने सराहा।
3: लड़के और लड़की की कुंडली तो बहुत बढ़िया मिली है।
4: बधाई हो।
3: बधाई आपको। बधाई। लड़का लड़की के विचार भी मिल गए हैं।
5: अरे रुको, विचार, कुंडली, परिवार ये सब तो मिला लिया, पर सबसे जरूरी चीज वो तो अब तक मिला ही नहीं, क्या रह गया?
3: इनका सिकल सेल कार्ड नहीं मिला है।
5: अब ये क्या चीज है?
3: ये सिकल सेल कार्ड एक विशेष प्रकार का काउंसलिंग कार्ड है, जो कि आने वाली पीढ़ी को अनुवांशिक रक्त विकार जैसे सिकल सेल एनीमिया रोग से बचाने के लिए मध्य प्रदेश सरकार की ओर से तैयार किए गए।
5: ऐसे सब मौके पर ये बीमारी वाली बात करना जरूरी है क्या?
3: अरे ऐसे मौके पर ये तो बात करना जरूरी है,

0: जिससे आने वाली पीढ़ी को सिकल सेल जैसे असाध्य अनुवांशिक रोग से बचाया जा सके और एक स्वस्थ और खुशहाल परिवार बन सके, जिससे आने वाली पीढ़ी भी स्वस्थ हो। सिकल सेल कार्ड लड़के और लड़की की जांच के बाद बनाया जाएगा। अगर दोनों टेस्ट में सिकल सेल रोगी या वाहक निकलते हैं तो कार्ड मिलाकर ये पता चल जाएगा कि उनके होने वाले बच्चों में सिकल सेल रोग होने की आशंका है या नहीं।
1: और अगर दोनों में से किसी एक को ये बीमारी हुई तो तब तो कोई परेशानी नहीं है, फिर तो सबसे पहले हम यही जांच करवाएंगे।
2: बिल्कुल सही कह रही हो तुम।
3: इस अवसर पर माननीय राज्यपाल महोदय द्वारा मिशन रानी कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया।
4: जोरदार तालियों से अभिनंदन करें।
3: माननीय केंद्रीय राज्य मंत्री जनजातीय कार्य मंत्रालय भारत सरकार श्री दुर्गादास उइके ने अपने वक्तव्य में कहा,
5: भाइयों बहनों, मैं सबसे पहले मध्य प्रदेश के माननीय राज्यपाल श्री मंगू भाई पटेल जी का हृदय से पूरे बैतूल जिले के भाइयों और बहनों की ओर से हृदय से अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। माननीय राज्यपाल जी ने मध्य प्रदेश में सिकल सेल जागरूकता एवं उन्मूलन मिशन का श्री गणेश किया और आज भीमपुर में सिकल सेल जाँच की मशीन का लोकार्पण कर एक ऐतिहासिक पहल की है, जिसका प्रभाव राज्य के विशेषकर जनजाति और वंचित समुदायों के स्वास्थ्य पर दूरगामी रूप से उसका प्रभाव पड़ेगा। यह माननीय राज्यपाल जी की उस करुणामय दृष्टि को दर्शाता है जो केवल प्रशासनिक नहीं बल्कि मानवीय सरोकारों से प्रेरित है। महामहिम राज्यपाल जी का यह प्रयास जनजाति समाज की पीड़ा को समझने और उसे दूर करने की दिशा में एक संवेदनशील और प्रभावी कदम है।
3: माननीय केंद्रीय मंत्री ने अपने संबोधन में शासन की विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं का उल्लेख किया।
5: आदमी भाइयों बहनों, 15 नवंबर को भगवान बिरसा मुंडा जनजाति गौरव दिवस के रूप में घोषित किया है। भोपाल के हबीबगंज रेलवे स्टेशन को गोंड रानी कमलापति के नाम से नामांकित किया है। एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय, पीएम श्री स्कूल, उत्कृष्ट विद्यालय जैसे शिक्षा के क्षेत्र में कार्य चल रहे। जनजाति क्षेत्र में पलायन को रोकने के लिए भाइयों बहनों, यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने संसदीय संकुल विकास परियोजना के माध्यम से ऐसे गांवों को पूरे देश में चिन्हित किया है जहाँ से हमारे जनजाति भाई बहन पलायन करते हैं, रोजगार की तलाश में निकटवर्ती प्रदेशों में निकटवर्ती जिलों में जाते हैं, जिसकी वजह से शारीरिक मानसिक आर्थिक विविध प्रकार का उनका शोषण होता था, बच्चों की पढ़ाई लिखाई नहीं होती थी। देश के संवेदनशील प्रधानमंत्री जी ने भाइयों बहनों संसदीय संकुल विकास परियोजना के माध्यम से विविध प्रकार की कल्याणकारी योजनाएं प्रारंभ करके उनके जीवन में खुशियां भरने का प्रयत्न किया है। कृषि उपज को सम्मान और उचित मूल्य प्रदान किया है। कभी ज्वार बाजरा मक्का कोदो कुटकी, ये हमारे गरीब जनजाति समाज के भाइयों और बहनों का भोजन था। हमारे जनजाति समाज के किसानों के द्वारा उत्पादित अन्न का कोई मूल्य नहीं होता था, किन्तु देश के प्रधानमंत्री जी ने जनजाति समाज और हमारे पीछे रह गए जो भाई बहन वहाँ उत्पादित अन्न को श्री अन्न नाम देकर भाइयों बहनों सम्मानित किया और आज 5 स्टार और 7 स्टार होटलों का सबसे महंगा भोजन ज्वार की रोटी बाजरा। भाइयों बहनों, इतनी लंबी फहरिस्त है ये, मैं आपको कुछ चुनिंदा। जल जंगल जमीन के लिए दीर्घावधि तक जनजाति समाज के भाई बहन संघर्ष करते थे। देश के प्रधानमंत्री जी ने भाइयों बहनों पेशा एक्ट लागू करके जनजाति समाज को उनके नैसर्गिक और संवैधानिक अधिकार दिलाने का काम देश के प्रधानमंत्री जी ने किया है। मित्रों, 112 पिछड़े जिलों को आकांक्षी जिलों के रूप में चयनित कर उनके विकास पर जोर दिया जा रहा है। धरती आबा जनजाति ग्राम उत्कर्ष योजना, जिसमें भाइयों बहनों 63,843 गाँव को कवर किया है, इसमें पूरे हमारे 5 करोड़ से अधिक जनजाति समाज के भाई और बहन उसमें लाभान्वित होंगे। जहाँ पर बुनियादी विकास की दृष्टि से जो हमारे गांव पीछे रह गए हैं, उनके लिए देश के प्रधानमंत्री जी ने 80,000 करोड़ रुपए की भाइयों बहनों बजट घोषित करके उन सारी बुनियादी जरूरतों को पूरा करने की दिशा में ठोस पहल की है।
3: तदुपरांत माननीय राज्यपाल महोदय द्वारा हित लाभ वितरण और संवाद का कार्यक्रम सम्पन्न हुआ। इसके अंतर्गत विभिन्न हितग्राहियों को प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया गया। इसी तारतम्य में लवकेश मोर्से और उषा ढिकारे को सिकल मित्र प्रमाण पत्र, रेखा उइके को UDID कार्ड, ऋषि झरबड़े को जेनेरिक कार्ड, दिव्या उइके को फूड बास्केट का वितरण किया गया। स्व सहायता समूह भीमपुर की अध्यक्ष श्रीमती रुखमा नर्रे एवं सचिव श्रीमती सरिता नर्रे को 6 लाख रूपए की CCL राशि का चेक दिया गया। CBSE कक्षा 12वीं में 94% अंक लाने वाली छात्रा सेजल उइके को प्रमाण पत्र, राष्ट्रीय कबड्डी खिलाड़ी शिवानी उइके को उत्कृष्ट प्रदर्शन हेतु प्रमाण पत्र।

0: क्षेत्र और कराते में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उत्कृष्ट प्रदर्शन हेतु कल्याणी कोडपे को प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में उपस्थित जन समूह अब माननीय राज्यपाल की वाणी सुनने के लिए आतुर हो चला था। जब मध्य प्रदेश के माननीय राज्यपाल श्री मंगूभाई पटेल लोगों से रूबरू हुए, तब लोगों ने करतल ध्वनि से उनका स्वागत किया। राज्यपाल महोदय ने सिकल सेल एनीमिया की जांच के महत्व पर बल देते हुए कहा,
1: बैतूल में कुल जांच हुई है 8,65,109, मगर उसमें कैरियर निकले हैं 7,162 और डिसीज वाले जो है 1,681। जो डिसीज वाले हैं उसको हाइड्रिक एरिया देते हैं और जो कैरियर है उसको पोलिक एसिड देते हैं। बहुत सी बात यहाँ अधिकारी ने आपको बताई सिकल सेल की। ये अनुवांशिक रोग है, माँ बाप को होगा

0: जो कैरियर है उसको पोलिक एसिड देते हैं। बहुत सी बात यहां अधिकारी ने आपको बताई सिकल सेल की, ये अनुवांशिक रोग है, मां बाप को होगा तो बच्चे में आने वाला ही है। अगर तीन बच्चे हैं तो दो बच्चे में तो आएगा ही, नसीब करे तीसरे में नहीं आए। मगर हमारी जांच हो गई तो बाद में उसका अच्छी तरह हम ट्रीटमेंट करें, सरकार की ओर से तो ट्रीटमेंट करेंगे, मगर मरीज जो है और मरीज अच्छी तरह दवाई खाए, और बहुत जरूरी है।
1: उन्होंने अपने संबोधन में विवाह पूर्व स्वास्थ्य कुंडली मिलाने की भी सलाह दी।
0: यह डिजिटल कार्ड भी बनाए हैं, कार्ड भी दिए हैं, 7,87,785 जितने कार्ड भी दिए हैं। मगर जो 7,162 है वो कैरियर है, तो कैरियर कैरियर भी शादी मत करें, तो दोनों कैरियर हो गए तो उसमें से भी डिसीज वाला बच्चा पैदा हो सकता है, मैंने मध्य प्रदेश में ही देखा है। एक होगा तो चलेगा, और दूसरा है डिसीज 1586, और दोनों डिसीज है तो शादी मत करे, माँ बाप को मैं खास करके कहूंगा। और जो पैसा एक्ट वाला 89 जो ब्लॉक है वहां हमने ऐसे ठहराव भी किया है कि जब भी कोई विवाह का समय आए तो समिति का कोई भी सदस्य जाकर और माँ बाप को समझाए कि डिजिटल कार्ड है, कार्ड मिलाकर पढ़े लिखे लोग क्या करते हैं कि जन्मोत्री बताते हैं। पहले माँ बाप देखते हैं कि बच्ची है अच्छी, मगर हमारे घर में रहेगी, हमारा मान सम्मान रखेगी क्या? बेटा है, दामाद है, तो माँ बाप सोचते हैं कि दामाद है, हमारी बच्ची को अच्छी तरह रखेगा क्या? बेटी कितनी भी सुंदर हो, दामाद कितने भी पैसे वाला हो, मगर वो सोचना है हमको कि ये कैरियर दोनों तो नहीं है ने, दोनों डिसीज तो नहीं है ने, और सोचकर आगे चलना चाहिए, मैं समझता हूँ। तो ये बहुत अच्छा केंद्र सरकार और राज्य सरकार इसमें काम कर रही है, दोनों को बहुत मैं धन्यवाद देता हूँ कि सिकल सेल जैसे रोग को निर्मूल करने में दोनों सरकार काम कर रही है। और प्राइम मिनिस्टर ने बोला है कि 2047 में एक भी बच्चा सिकल सेल वाला नहीं हो, ऐसा अभियान हम चलाएंगे, आप उसमें सब जुड़ेंगे, ऐसा मेरा आग्रह।
1: टीबी उन्मूलन के प्रयासों को लेकर उन्होंने कहा,
0: यहाँ टीबी के भी पेशेंट आए और बच्ची को हमने किट दिया। ये टीबी भी ऐसा है कि 6 महीने में अच्छा हो सकता है, मगर दवाइयाँ पूरी खाए। मैं टीबी के पेशेंट पे कहता हूँ कि कायम मास्क लगाते रहिए, और जहाँ सोने का है वहाँ बाल बच्चे ऐसे खेलने नहीं आए उसे दूर रखे, क्योंकि बाल बच्चे को जल्दी पकड़ लेता है। इसलिए जहाँ अपना खटिया है वो उसे दूर, बच्चे से दूर रखे, और घर को भी उसको संभाल के बच्चे को रखे के दूसरे को नहीं हो, मगर 6 महीना अच्छी तरह आप दवाइयाँ जो खाएंगे और विटामिन वाला खुराक लेंगे तो मैं समझता हूँ कि अच्छे से हम जल्दी टीबी से भी मुक्त हो सकेंगे।
1: इस अवसर पर माननीय राज्यपाल महोदय ने पीएम जनमन योजना, पीएम आवास योजना के सफल क्रियान्वयन की जानकारी दी, साथ ही धरती आवा ग्राम उत्कर्ष अभियान के बारे में बताते हुए कहा,
0: धरती आवा ग्राम उत्कर्ष योजना 80,000 करोड़ रुपए का प्रावधान है, और 18 डिपार्टमेंट है, उसका संचालन दुर्गादास राज्य कक्षा के मिनिस्टर होते वो कर रहे हैं। मैं समझता हूँ सारे हिंदुस्तान के जो ट्राइबल पॉपुलेशन है उसमें ये योजना पहली बार मैंने सुना इतने साल में कि सारे आदिवासी के लिए 80,000 करोड़ रुपए का केंद्र सरकार ने प्रावधान किया है, और राज्य सरकार उसका पहले शुरुआत किया है।
1: सरकार द्वारा महिला सशक्तिकरण के लिए चलाई जा रही लखपति दीदी, लाडली लक्ष्मी और लाडली बहना योजना को उन्होंने विशेष रूप से

0: रेखन की किया।
1: बैतूल में 36,775 जितनी महिला का लक्ष्य था, जिनमें 32,677 यानी 90% तक हम महिला को भी जो लखपति दीदी बनाने का जो हमारा केंद्र सरकार का जो अभियान है उसमें भी हम पहुंच गए हैं। जिले में बेटियों के भविष्य के सुरक्षित और मजबूत बनाने के लिए के मुख्यमंत्री लाडली, उसमें भी लाडली लक्ष्मी 1,28,314 जितनी बालिका है। लाडली लक्ष्मी की जो राज्य सरकार की जो है हमारे डिस्ट्रिक्ट में कितना काम हुआ है वो आपकी जानकारी के लिए बोलता हूँ, 1,28,314 जितनी बालिका को मिला है। और लाडली बहना को 2,68,801 बहने को हर महीने 1,500 की सहाय राशि दी जा रही है।
0: अपने संबोधन में राज्यपाल महोदय ने पढ़ाई के महत्व पर विशेष बल दिया,
1: मगर सभी को मैं बोलूंगा कि अपने बच्चे को अच्छी तरह पढ़ाओ। पढ़ाई बिना कुछ हम कर सकेंगे? नए नए टेक्नोलॉजी का जमाना है, आगे जाकर ये बच्चे के समझ में क्या आएगा? अभी तो AI भी आ गया, आगे जाकर क्या आएगा तो मालूम नहीं, मगर हमारा बच्चा पढ़ा लिखा होगा तो कोई भी क्षेत्र में जा सकेगा। मैं यह देख रहा था कि ट्राइबल में पॉपुलेशन में एजुकेशन कितना है, तो देखा तो मैंने 76% पुरुषों में शिक्षा है और महिला में 60% है। कितना गाढ़ा है? 16% का बीच में गाढ़ा है। घर में पुरुष पढ़ा लिखा हो और बहन जो पढ़ी लिखी नहीं हो तो आगस में क्या क्या होता है। मगर हमको अभी नई पीढ़ी जो है, नई पीढ़ी को ऐसा बनाना है, अगर 80% पुरुष है तो 80% हमारी बच्ची भी पढ़ेगी। शिक्षित का जो सरेराश है उसमें हमको जाना है। यहाँ सभी बैठे हुए ट्राइबल जो पेरेंट्स है, वडील है, वो सबको मैं आह्वान करता हूँ, बच्ची को भी पढ़ाओ।
0: और अंत में श्री अन्न का महत्व बताते हुए कहा,
1: यह मैंने देखा मिलेट का कहीं ऐसा स्टॉल बना हुआ है, कभी कभी बच्चे का भी जाते हैं कॉलेज वाले बच्चे तो क्या खाते हैं? पिज्जा खाते हैं, मगर साथ में थम्सअप का बॉटल लेके बैठते हैं। पिज्जा खाओ पचा नहीं पाता और थम्सअप पीना पड़ता है, तो 40 साल के ऊपर वाले तो कैसे पचा सकेंगे? पर मगर मिलेट का जो खाना है वो पचने में भी और शक्ति वर्धक भी है। तो बच्चों को भी मैं बोलता हूँ पिज्जा मत खाओ, मिलेट का खाओ, व्यायाम करो, क्योंकि आप पे प्राइम मिनिस्टर भरोसा करते हैं कि देश के 65% जितने युवा है उसका भविष्य अच्छा होना चाहिए और 2047 में युवा भारत जो है उसको विकसित भारत उनकी सोच हम करेंगे, ऐसी अपेक्षा के साथ ये धूप में, इतनी बड़ी धूप में अभी तो चल रहा है 44-45 डिग्री, उसमें भी आप सब बैठ रहे, इसके लिए आप सबका मैं आभार मानते हुए सबको बहुत बहुत बधाई देते हुए मैं मेरी बात पूरी करता हूँ। आभार, भारत माता की जय।
0: कार्यक्रम के अंत में कलेक्टर बैतूल द्वारा माननीय राज्यपाल महोदय का कार्यक्रम में उपस्थित होने और सभी का मार्गदर्शन करने के लिए आभार व्यक्त किया गया।
2: आज राष्ट्रीय सिकल सेल अनिमिया उन्मूलन मिशन 2047 जांच जागरूकता एवं जन भागीदारी महाअभियान के कार्यक्रम में अपनी गरिमामयी उपस्थिति प्रदान कर कार्यक्रम को गौरवान्वित करने के लिए माननीय राज्यपाल महोदय का जिला प्रशासन एवं समस्त जिले वासियों की तरफ से मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। माननीय महोदय, आज सिकल सेल अनिमिया जैसी गंभीर अनुवंशिक बीमारी के प्रति जन जागरूकता, समय पर जांच तथा जन भागीदारी पर दिए गए प्रेरणादायी संदेश के निश्चित रूप से हम सकारात्मक चेतना का एक संचार मुझे लगता है कि सब जगह पर हो जाएगा। आपके मार्गदर्शन एवं प्रेरणा से यह अभियान जन आंदोलन के रूप में आगे बढ़ेगा तथा मिशन 2047 के उद्देश्य को पूर्ति में एक महत्वपूर्ण योगदान भी साबित होगा। मैं इस अवसर पर समस्त जन प्रतिनिधिगण, स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी कर्मचारी, विभिन्न विभागों के अमले, यहाँ उपस्थित सभी सामाजिक संगठन, मीडिया प्रतिनिधि, उपस्थित सभी नागरिक, आज यहाँ पर आप उपस्थित रहे इसलिए मैं आपका आभार व्यक्त करता हूँ और ये अपेक्षा माननीय राज्यपाल महोदय की ओर से व्यक्त करता हूँ कि इस महाअभियान को आप सफल बनाने में पूरी तरीके से प्रयास करेंगे। अतः मैं पुनः माननीय राज्यपाल महोदय का बैतूल आगमन एवं मार्गदर्शन हेतु कोटि कोटि आभार ज्ञापित करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।
0: इसके पश्चात वंदे मातरम और राष्ट्रगान का सामूहिक गायन सम्पन्न हुआ। इस प्रवास के दौरान राज्यपाल महोदय द्वारा स्वास्थ्य शिविर तथा दिव्यांग शिविर का भी अवलोकन किया गया। अपने दौरे के अंतिम

0: चरण में राज्यपाल महोदय ने बैतूल नगर आकर कुछ देर विश्राम के पल भी गुजारे और अपने गंतव्य की ओर प्रस्थान किया। ये थी मध्य प्रदेश के माननीय राज्यपाल श्री मंगू भाई पटेल के एक दिवसीय बैतूल प्रवास पर आधारित रेडियो रिपोर्ट। आलेख योगेश्वर, तकनीकी सहयोग कांता प्रसाद टिकारे और अशोक सोनारे, संकलन प्रवीण चौरे और प्रस्तुतकर्ता सचिन भागवत।
1: ये आकाशवाणी का बैतूल केंद्र है। प्रस्तुत है कार्यक्रम साज और आवाज़।

आइए सुनते हैं इस धुन पर आधारित ये प्यारा सा गीत। आवाज है लता मंगेशकर की, बोल है शैलेंद्र के, संगीत SD वर्मन का और फिल्म का नाम गाइड।

0: साथ साथ दोनों देशों के रक्षा उद्योगों के बीच भी सहयोग बढ़ रहा है। मैरिटाइम पावर्स के रूप में भारत और इटली के बीच करीबी सहयोग स्वाभाविक है। हम मिलकर शिपिंग, पोर्ट्स मॉडर्नाइजेशन, लॉजिस्टिक और ब्लू इकोनॉमी पर काम करेंगे।
1: प्रधानमंत्री ने बताया कि दोनों देश जहाजरानी, बंदरगाहों के आधुनिकीकरण, लॉजिस्टिक्स और समुद्री अर्थव्यवस्था के क्षेत्रों में भी मिलकर काम करेंगे। श्री मोदी ने कहा कि दोनों देश आतंकवाद को मानवता के लिए गंभीर खतरा मानते हैं।
0: भारत और इटली एकमत है कि आतंकवाद मानवता के लिए गंभीर चुनौती है। टेरर फाइनेंसिंग के खिलाफ हमारी साझा पहल ने पूरे विश्व के सामने एक महत्वपूर्ण उदाहरण प्रस्तुत किया है। यूक्रेन, पश्चिम एशिया तथा अन्य तनावों को लेकर हम लगातार संपर्क में रहे हैं। भारत का मत स्पष्ट है कि सभी समस्याओं का समाधान डायलॉग और डिप्लोमेसी के माध्यम से होना चाहिए।
1: सुश्री जॉर्जिया मेलोनी ने कहा कि दोनों देशों के बीच की दोस्ती सम्मान और आपसी विश्वास पर आधारित है। इसके बाद रोम में प्रधानमंत्री मोदी को संयुक्त राष्ट्र खाद्य और कृषि संगठन का सर्वोच्च सम्मान एग्रीकोला मेडल से सम्मानित किया गया। उन्होंने इस सम्मान को भारत के लाखों किसानों, पशुपालकों, मछली पालकों, कृषि वैज्ञानिकों और श्रमिकों को समर्पित किया।
0: ये भारत के करोड़ों किसानों, पशुपालकों, मत्स्य पालकों, कृषि वैज्ञानिकों और हमारे श्रमिकों का सम्मान है। यह भारत की कल्याण, खाद्य सुरक्षा और सस्टेनेबल डेवलपमेंट है। मैं इस मेडल को अत्यंत विनम्रता के साथ स्वीकार करते हुए भारत के अन्नदाताओं को यह मेडल समर्पित करता हूँ।
1: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ऑपरेशन सिंदूर को भारत के एक मजबूत, आत्मविश्वासी और सक्षम राष्ट्र में परिवर्तन का प्रमाण बताया है। दक्षिण कोरिया में प्रवासी भारतीयों से बातचीत में रक्षा मंत्री ने कहा कि ऑपरेशन इस बात का प्रमाण है कि भारत किसी भी रूप में आतंकवाद को कतई बर्दाश्त नहीं करेगा। श्री सिंह ने रक्षा विनिर्माण में आत्मनिर्भरता हासिल करने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई।
2: 12 वर्षों के अंदर ही हम 40,000 करोड़ से ज्यादा का इस समय हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं, नहीं तो 2 साल के अंदर 50,000 करोड़ के एक्सपोर्ट, डिफेंस आइटम्स के एक्सपोर्ट की जानकारी आपको मिल जाएगी। और हमारी गवर्नमेंट के रहते डिफेंस सेक्टर में एक मेजर चेंज आया है। भारत की पॉलिसी आज रिएक्टिव नहीं बल्कि प्रोएक्टिव है। और मेरा भी यह व्यक्तिगत रूप से मानना है कि राष्ट्रीय सुरक्षा की किसी कीमत पर किसी भी सूरत में समझौता नहीं किया जाएगा। और इसी सोच के साथ भारत इंडिजिनस डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग को तेजी के साथ बढ़ावा दे रहा है।
1: रक्षा मंत्री ने सोल में भारत दक्षिण कोरिया रक्षा उद्योग व्यापार गोलमेज सम्मेलन की अध्यक्षता भी की। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

सुरक्षा स्कीम के टेलीलॉ न्याय बंधु कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेलीलॉ के टॉक फ्री नंबर 1454 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।

0: पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने नागरिकता संशोधन अधिनियम CAA के अंतर्गत अवैध बांग्लादेशी घुसपैठियों को देश से निकालने की प्रक्रिया तुरंत शुरू करने की घोषणा की है। सीमा पर बाड़ लगाने के लिए सीमा सुरक्षा बल को जमीन सौंपने के एक समारोह के दौरान नाबन्ना में उन्होंने कहा कि अब घुसपैठियों को सीधे सीमा सुरक्षा बल के हवाले कर दिया जाएगा, वहां से उन्हें देश से निकालने के लिए BDR के साथ इंतजाम किए जाएंगे। उन्होंने इसे नए तरीके को पहचानो हटाओ और देश से निकालो बताया। गुजरात सरकार ने एक राष्ट्र एक चुनाव विधेयक का समर्थन किया है। एक राष्ट्र एक चुनाव पर बनी संयुक्त संसदीय समिति ने आज गुजरात के गांधीनगर में विभिन्न राजनीतिक दलों के प्रतिनिधिमंडल के साथ चर्चा की। उप मुख्यमंत्री हर्ष संघवी ने कहा कि विधेयक को जल्द से जल्द लागू करना चाहिए।
2: हमने आज JPC को गुजरात सरकार की ओर से खास तौर पे ये नम्र निवेदन किया है कि वन नेशन वन इलेक्शन जल्द से पास हो, सभी राज्य के नागरिकों को एक समान हित मिले, सभी लोगों के काम जल्द हो पाए, मशीनरी सरकारी जो है उसका कम से कम समय बिगड़े, वही हित में आज हमने वन नेशन वन इलेक्शन को हमने हमारा सहयोग दिया है और हमने ये खास तौर पे विनती की है इसको जल्द से जल्द लागू किया जाए।
1: इस बीच कांग्रेस सहित अन्य राजनीतिक दलों ने एक राष्ट्र एक चुनाव का विरोध किया। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने NEET UG पुनर्परीक्षा के सुरक्षित, निष्पक्ष और सुचारू संचालन के लिए कड़ी निगरानी और पुख्ता सुरक्षा व्यवस्था की आवश्यकता पर बल दिया है। श्री प्रधान ने आज नई दिल्ली में केंद्रीय सुरक्षा खुफिया एजेंसियों के साथ उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक में ये बात कही। इस दौरान गुमनाम ऑनलाइन समूहों के माध्यम से प्रतियोगी परीक्षाओं से संबंधित गलत सूचनाओं के बढ़ते प्रसार पर चिंता व्यक्त की गई। इस बीच दिल्ली की एक अदालत ने नीट परीक्षा के प्रश्न पत्र लीक मामले में 5 आरोपियों को 2 जून तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। अदालत ने एक अन्य आरोपी की CBI हिरासत भी बढ़ा दी है। नीति आयोग के अटल इनोवेशन मिशन ने जम्मू कश्मीर में एक सशक्त नवाचार इकोसिस्टम के निर्माण के लिए 500 नई अटल टिंकरिंग लैब स्थापित करने के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी है। नई लैब अटल नवाचार मिशन के व्यापक सीमावर्ती क्षेत्र कार्यक्रम का एक प्रमुख घटक है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: ये आकाशवाणी है। ईरान संघर्ष के कारण वैश्विक अनिश्चितता के बावजूद संयुक्त राष्ट्र ने इस वर्ष भारत की विकास दर 6.4% रहने का अनुमान लगाया है। इससे भारत विश्व की सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था बना रहेगा। संयुक्त राष्ट्र के वरिष्ठ अर्थशास्त्री इंगो पिटले ने कहा कि भारत की मजबूत उपभोक्ता मांग, सार्वजनिक निवेश और सेवा निर्यात में वृद्धि इसकी अर्थव्यवस्था को सहारा दे रही है। और अब आर्थिक जगत की खबरों के साथ हैं प्राची प्रिया।
2: बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स 118 अंक बढ़कर 75,318 पर बंद हुआ, जबकि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 41 अंक की बढ़त के साथ 23,659 पर आ गया। अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में रुपया $1 के मुकाबले 30 पैसे कमजोर होकर अपने सबसे निचले स्तर यानी ₹96.83 पर बंद हुआ।
1: और अब जानकारी मौसम की। मौसम विभाग ने अगले 2 से 3 दिन के लिए उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और विदर्भ में भीषण लू की स्थिति के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, पंजाब, बिहार, छत्तीसगढ़, तटीय आंध्र प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, ओडिशा, राजस्थान, तेलंगाना और उत्तराखंड में भी कल तक ऐसी ही स्थिति रहने की संभावना है। विभाग ने अगले 2 दिन के लिए पश्चिम बंगाल के गांगेय क्षेत्र, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकल में भी गर्म और उमस भरे मौसम का अनुमान व्यक्त किया है। विभाग ने कल राजधानी में लू की स्थिति के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। एक रिपोर्ट।
3: मौसम विभाग के अनुसार कल दिल्ली में अधिकतम तापमान 45 से 47 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की संभावना है, जबकि न्यूनतम तापमान 29 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहेगा। पिछले 24 घंटों में राष्ट्रीय राजधानी में अधिकतम तापमान 44.5 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 28 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। मौसम विभाग ने बताया कि कल दिन के समय राष्ट्रीय राजधानी में 15 से 20 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दक्षिण पश्चिमी हवाएं चलने की संभावना है। सौम्य के साथ शिवांग मिश्रा, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: इस बीच विभाग ने कल अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, केरलम, माहे, दक्षिण आंतरिक कर्नाटक, पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्रों और सिक्किम में भारी वर्षा का पूर्वानुमान लगाया है। सर्वोच्च न्यायालय ने जनगणना 2027 के अंतर्गत जाति गणना कराने के केंद्र सरकार के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका को खारिज कर दिया है। अदालत ने कहा है कि ये मुद्दा सरकार के नीतिगत अधिकार क्षेत्र में आता है। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा

0: कहा है कि पिछड़े वर्गों के लिए कल्याणकारी उपाय तैयार करने के लिए सरकार को उनकी संख्या जानना जरूरी है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने आज नई दिल्ली में मंत्रालय की हिंदी सलाहकार समिति की बैठक की अध्यक्षता की। श्री गडकरी ने कहा कि हिंदी केवल एक भाषा नहीं बल्कि ये राष्ट्र को एकजुट करने का सशक्त माध्यम है। आईपीएल क्रिकेट में कोलकाता के ईडन गार्डन्स में कोलकाता नाइट राइडर्स का मुकाबला मुंबई इंडियंस से हो रहा है। फिलहाल बारिश के कारण मैच रुका हुआ है। मैच रुकने तक मुंबई इंडियंस ने 8 ओवर में 4 विकेट पर 57 रन बना लिए थे। उधर मलेशिया मास्टर्स बैडमिंटन सुपर 500 में आज अश्मिता चलिहा, देविका सिहाग और मालविका बंसोड महिला सिंगल्स के प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए हैं। संस्कृति मंत्रालय ने वंदे मातरम फ्रेम्स राष्ट्रीय फिल्म निर्माण प्रतियोगिता के लिए प्रविष्टियां जमा करने की अंतिम तिथि 7 मई से बढ़ाकर 31 मई कर दी है। प्रतियोगिता 3 श्रेणियों में आयोजित की जा रही है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत और इटली अपने संबंधों को विशेष रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक बढ़ाने पर सहमत। दोनों पक्षों ने महत्वपूर्ण खनिजों, रक्षा, कृषि सहित प्रमुख क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग को बढ़ावा देने के लिए 15 समझौते किए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को संयुक्त राष्ट्र खाद्य कृषि संगठन का सर्वोच्च सम्मान एग्रीकोला मेडल दिया गया। उन्होंने ये पुरस्कार भारत के किसानों को समर्पित किया। पश्चिम बंगाल सरकार ने नागरिकता संशोधन अधिनियम के अंतर्गत अवैध बांग्लादेशी घुसपैठियों को तत्काल वापस भेजने की कार्यवाही शुरू करने की घोषणा की। संयुक्त राष्ट्र की एक रिपोर्ट के अनुसार पश्चिम एशिया संघर्ष के बावजूद भारत इस वर्ष 6.4% की वृद्धि के साथ विश्व की सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था बना रहेगा। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: ये विविध भारती है, देश की सुरीली धड़कन। प्रस्तुत है कार्यक्रम आपके लिए। कार्यक्रम की शुरुआत कर रहे हैं जूली फिल्म के गाने से, जिसे गाए लता मंगेशकर और किशोर कुमार ने, संगीत राजेश रोशन का, बोल आनंद बख्शी के।

0: जैसे कि आप जानते हैं विविध भारती हर महीने करता है अपनी एक महफिल सृजन भारती। इस बार सृजन भारती लेकर आ रहा है लोक संगीत की भीनी खुशबू और कुछ दिलचस्प बातों का गुलदस्ता। और ये कार्यक्रम होगा एक मुक्ताकाशी रंगमंच पर 21 मई शाम 6:30 पर। लोक संगीत और कुछ दिलचस्प बातों से सजा रंगारंग कार्यक्रम। आयोजन स्थल है ज्ञान सागर मुक्ताकाशी ऑडिटोरियम रघुनाथ टावर के सामने देवीदास लेन बोरीवली पश्चिम मुंबई। प्रवेश बिल्कुल मुफ्त। आप सभी खुद आएं और अपने दोस्तों को लेकर आएं।
1: लीजिए सुनिए अनिरुद्ध फिल्म में किशोर कुमार को। तर्ज बनाई है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने, बोल लिखे हैं आनंद बख्शी ने।

0: रात में आसमान चांद सितारों से फूल काटता है, रात हौले हौले धरती पर अपना आंचल फैलाती है।
1: अपनी आप रातों में चिमनी सरकती है।
0: जब नींद कहीं दूर भाग जाती है तब विविध भारती बन जाती है एकाकीपन की साथी।
2: एक तेरा साथ हमको दो जहां से प्यारा।
0: विविध भारती से गूंजते हैं कुछ अनमोल नगमे।
2: तेरा जवाब नहीं,
0: छिड़ता है मोहब्बत का राग,
2: प्यार का राग सुनो रे।
0: बजता है छाया गीत विविध भारती से।
2: सदा रही है, सदा रहेगी।
0: तो सुनिए रोज रात 10 बजे छाया गीत सिर्फ विविध भारती पर।

अभी आपने एसडी वर्मन के संगीत निर्देशन में आनंद बख्शी का लिखा गीत सुना। आवाज किशोर कुमार की थी, फिल्म का नाम था आराधना।

0: संगीत के स्वर्णिम युग की एक संगीतमय यात्रा। पुराने दिनों की मनमोहक धुनों में गोता लगाएं, सुरों के पंख लगाकर आसमान में उड़ जाएं।
1: भीगी भीगी रातों में, मीठी मीठी बातों में।
0: याद रहे, ये वो कैप्सूल है जो धुनों को, आवाज को और यादों को जीवंत रखता है।

खामोशी द म्यूजिकल। अभी आपने इस फिल्म में अलका याग्निक और हरिहरन को सुना। मजरू सुल्तानपुरी के लिखे इस गीत की धुन बनाई थी जतिन ललित ने। और यह है कार्यक्रम की अंतिम पेशकश।

एसपी बाला सुब्रमण्यम के गाय इस गीत के साथ ही आपके लिए कार्यक्रम अब यहीं समाप्त होता है। ये विविध भारती है, देश की सुरीली धड़कन।

0: भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना। जरा सुनिए कैसे बना ये गाना।
1: कमाल साहब कह रहे थे खयाम साहब जो मेरा हीरो है वो सिंगर नहीं है, उसने गाना सीखा नहीं, मुझे ऐसी आवाज।
0: संगीतकार खयाम।
1: पूरे हिंदुस्तान भर से आवाजें इकट्ठी की गई, यहाँ बुलाया गया। सजेशन आई के साहब एक आवाज है कब्बन मिर्जा साहब, बुलाया उनको, सुना आवाज तो यही है जो चाहिए कमाल साहब को, बेमिसाल गा गए वो। आई जंजीर की झनकार खुदा खैर, तो उसमें जो रिदम है जंजीरों का।
0: ऐसी अद्भुत यादें आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती

कुछ कलाकार ऐसे होते हैं जिनका कार्य उन्हें जीते जी अमर कर देता है। फिल्मों में गिरीश कर्नाड को हमने चरित्र अभिनेता के रूप में देखा, निशांत, स्वामी, मंथन, अपने पराये, मेरी जंग, सुर संगम के तो वे नायक थे, परंतु मूलतः गिरीश सच्चे साहित्यकार और रंगकर्मी थे। गिरीश कर्नाड का जन्म 19 मई 1938 को महाराष्ट्र के पर्यटन स्थल माथेरान में हुआ था, मगर उनकी मां कृष्णाबाई और पिता डॉ. रघुनाथ कर्नाड कन्नड़िगा थे, अर्थात कर्नाटक के रहने वाले थे। प्राथमिक शिक्षा मराठी में हुई। आगे जब वो परिवार कर्नाटक के सिरसी गांव में रहने लगा, तब गिरीश नाटक मंडलियों के संपर्क में आए। वहां के लोक नाट्य यक्षगान के तो वे जबरदस्त प्रशंसक थे। गिरीश जब 14 बरस के थे, तब उनका परिवार धारवाड़ में आ बसा, जहां उन्होंने बीए तक की पढ़ाई पूरी की और फिर वे इंग्लैंड चले गए। ऑक्सफोर्ड के मैग्डलेन शहर में रहकर उन्होंने फिलॉसफी, पॉलिटिकल साइंस और इकोनॉमिक्स विषयों को लेकर एमए की डिग्री हासिल की।

1963 में भारत लौटने के बाद गिरीश कर्नाड चेन्नई में ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस के लिए काम करने लगे। अब भी नाटकों और लोक कलाओं के प्रति उनका आकर्षण कम नहीं हुआ था। चेन्नई में रहते हुए गिरीश कर्नाड द मद्रास प्लेयर्स नामक नाटक मंडली से जुड़ गए। विदेश जाने से पहले ही 1961 में गिरीश कर्नाड ने जब लिखना शुरू किया था, ये वो समय था जब कन्नड़ साहित्य पर यूरोपीय साहित्य की छाप देखने को मिलती थी। कमोबेश सभी भारतीय भाषाओं के साहित्य की स्थिति यही थी। सी राजगोपालाचारी द्वारा रचित महाभारत का संस्करण गिरीश कर्नाड ने पढ़ा और उन्होंने अनुभव किया कि महाभारत के पात्र उनके मस्तिष्क में विचरण कर रहे हैं और उन पात्रों के संवाद कानों में गूंज रहे हैं। आगे एक साक्षात्कार में उन्होंने बताया कि मैं तो मात्र लेखनी हूं, एक एक कर सभी पात्र मेरे कानों में बोलते गए और मैं लिखता गया। नाटक तैयार हुआ ययाति। पांडवों के पूर्वज ययाति

जाति पर केंद्रित ये नाटक बहुत सफल हुआ और अन्य भाषाओं में इसके अनुवाद भी हुए। 1964 में गिरीश कर्नाड ने अपना अगला नाटक लिखा तुगलक। 14वीं सदी के दिल्ली के इस सुल्तान की कहानी के माध्यम से तत्कालीन प्रशासन के महत्वाकांक्षी आदर्शवाद का बुलबुला बड़ी सहजता से दर्शाया गया था इस नाटक में। गिरीश कर्नाड को एक नजरिया मिल गया था, कहानी के स्रोत इतिहास या पुराणों से लेना और समकालीन विषयों तथा आधुनिक मानव की अस्तित्व के लिए चल रही लड़ाई के साथ उसे जोड़ देना। मात्र 26 वर्ष की आयु में गिरीश कर्नाड एक उदीयमान प्रतिभाशाली लेखक के रूप में स्थापित हो चुके थे। सन 1971 गिरीश कर्नाड के कला जीवन की दो महत्वपूर्ण घटनाएं, एक और 11वीं सदी के संस्कृत ग्रंथ कथा सरित सागर से ली गई एक कहानी पर आधारित नाटक हैवदन का निर्माण और दूसरी ओर SL भैरप्पा के उपन्यास पर बनी फिल्म वंश वृक्ष का निर्देशन। लोकनाट्य यक्षगान के सांचे में ढलकर नाटक हैवदन का सफल मंचन हुआ और खूब सराहना मिली। ये नाटक जर्मन भाषा में भी अनुवादित हुआ, उसका निर्देशन किया जानी मानी निर्देशिका विजया मेहता ने। यूं तो 1970 में ही गिरीश कर्नाड का पदार्पण हो चुका था फिल्म संस्कार के पटकथा लेखक के रूप में। इस फिल्म को राष्ट्रपति के स्वर्ण कमल से सम्मानित किया गया था। निर्देशक के रूप में गिरीश कर्नाड की पहली फिल्म थी वंश वृक्ष, जिसके लिए राष्ट्रीय फिल्म समारोह में सर्वोत्कृष्ट निर्देशक का पुरस्कार उन्होंने साझा किया BV कारंत के साथ। आगे कई कन्नड़ फिल्मों का उन्होंने निर्देशन किया। जहां तक हिंदी फिल्मों की बात है, 1977 में गिरीश कर्नाड ने जिस फिल्म का निर्देशन किया वो फिल्म थी गोधूली और 1984 में शशि कपूर निर्मित फिल्म उत्सव।

जी हाँ, क्यों न बजे मृदंग मन में और क्यों न खनके मंजीरा अंग अंग में, जब लेखन और निर्देशन के साथ साथ गिरीश कर्नाड के नाम का डंका अभिनय के क्षेत्र में भी बजने लगा। तब्बलियु नीनदे मगने, ओंदनंदु कलदल्ली, चेलुवी, काडू, कोन्नुरु हेगदित्ती, ये हैं कुछ प्रमुख कन्नड़ फिल्मों के नाम जिनमें गिरीश कर्नाड ने अभिनय किया है। उनके अभिनय से सजी हिंदी फिल्मों की तो एक लंबी फहरिस्त है। जादू का शंख, निशांत, मंथन, स्वामी, जीवन मुक्त, संपर्क, रत्नदीप, बेकसूर, आशा, मनपसंद, अपने पराए, क्षमा, तेरी कसम, आनंद भैरवी, एक बार चले आओ, तराना, जमाना, मेरी जंग, सुरसंगम, सूत्रधार, आकर्षण, मिल गई मंजिल मुझे, चैतन्य, ब्रह्म, अंतरनाद, गुना, प्राणदाता, आतंक, चाइना गेट, AK-47, पुकार, इकबाल, डोर, 8x10 तस्वीर, आशाएं, लाइफ गोज ऑन, एक था टाइगर, शिवाय, चौक एंड डस्टर और टाइगर जिंदा है। फिल्म सुरसंगम, जो तेलुगु में शंकरा भरणम के नाम से बनी थी, इसके नायक पंडित शिवशंकर शास्त्री की भूमिका में थे गिरीश कर्नाड। वो जानदार शानदार अभिनय कैसे भुलाया जा सकता है।

0: 1980 के दशक में कलाकारों के लिए एक और मार्ग प्रशस्त हुआ, दूरदर्शन का। नई नई श्रृंखलाएं बनने लगी। अंग्रेजी के मशहूर साहित्यकार आर के नारायण की कहानियों पर आधारित हिंदी सीरियल बना मालगुड़ी डेज, जिसका नायक था एक नन्हा सा नटखट बालक स्वामी। इस श्रृंखला में स्वामी के पिता की भूमिका की थी गिरीश कर्नाड ने।
1: पिताजी काफी, मुझे आपका कमरा चाहिए।
2: किस लिए?
1: मेरा एक दोस्त आ रहा है।
2: तो तुम्हारा अपना कमरा है, वही ले।
1: राजम को वहाँ कैसे ले जाऊँ?
2: ये राजम है कौन, इतना बड़ा आदमी?
1: डीएसपी का बेटा है, बहुत बड़ा आदमी है वो।
2: अच्छा ठीक है, तुम ये कमरा ले सकते हो, लेकिन मेज पर रखी हुई चीजों को हिलाना नहीं।
1: बिल्कुल नहीं हिलाऊंगा पिताजी, आप अच्छे पिताजी हैं।

1971 से लेकर 1990 तक गिरीश कर्नाड द्वारा लिखित नागमंडल, अग्निमट्टू माले और तालेदंड, इन नाटकों को अनुवादित रूप में राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपार सफलता मिली। भाषा साहित्य की सेवा के लिए गिरीश कर्नाड को 1972 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार, 1974 में पद्मश्री पुरस्कार, 1992 में पद्मभूषण पुरस्कार से गौरवान्वित किया गया। 1992 में ही उन्हें कन्नड़ साहित्य परिषद का पुरस्कार प्रदान किया गया। 1994 में साहित्य अकादमी अवार्ड दिया गया। 1998 में कालिदास सम्मान तथा ज्ञानपीठ पुरस्कार से गिरीश कर्नाड को सम्मानित किया गया। फिल्मों में उनके योगदान को अन्यान्य पुरस्कारों से प्रतिष्ठा मिली। 1971 में बेस्ट डायरेक्टर फिल्म वंश वृक्ष के लिए, 1977 में बेस्ट फीचर फिल्म इन कन्नड़ा तब्बलियु नीनदे मगने के लिए, फिल्म भूमिका की पटकथा के लिए 1978 में बेस्ट स्क्रीन प्ले का पुरस्कार उन्होंने साझा किया श्याम बेनेगल और सत्यदेव दुबे के

नंदू कलदल्ली। कन्नड़ भाषा में बनी इस फिल्म के लिए बेस्ट फीचर फिल्म का उन्हें पुरस्कार मिला 1978 में। कन्नड़ भाषा के एक संत कवि कनक पुरंदर पर उन्होंने एक वृत्त चित्र का निर्माण किया था। इसके लिए बेस्ट डॉक्यूमेंट्री का पुरस्कार उन्हें दिया गया 1989 में। साथ ही साथ कर्नाटक राज्य सरकार के कई सम्मान उन्हें मिले तथा कई अंतर्राष्ट्रीय सम्मान भी गिरीश कर्नाड को मिले साहित्य एवं फिल्म

10 जून 2019 भारतीय रंगमंच और सिनेमा तथा कन्नड़ साहित्य जगत के आकाश से एक चमकता सितारा अस्त हुआ।

0: आज के फनकार कार्यक्रम आज केंद्रित था लेखक निर्देशक एवं अभिनेता गिरीश कर्नाड पर।
1: आज के फनकार।

एफएम वेव 103.1 मेगाहर्ट्ज पर यह आकाशवाणी का बैतूल केंद्र है। प्रस्तुत है कार्यक्रम मेरी पसंद। आइए सबसे पहले सुनते हैं 1942 अ लव स्टोरी का ये प्यारा सा गीत, आवाज कुमार सानू की।

अभी आपने सुना फिल्म रंग का गीत। इस गीत को गाया था कुमार सानू और अलका याग्निक ने।

अभी आपने फिर सुना फिल्म साजन का गीत, आवाजें थी कुमार सानू और अलका याग्निक की, बोल समीर के संगीत नदीम श्रवण का। आइए सुनते हैं सड़क फिल्म का गीत, आवाजें अनुराधा पौडवाल और मनहर उदास की।

सड़क मूवी के इस गीत के साथ ही कार्यक्रम मेरी पसंद यही संपन्न होता है। यह आकाशवाणी का बैतूल केंद्र है। प्रस्तुत है कार्यक्रम सुगम संगीत। कार्यक्रम में आज के फनकार हैं जगजीत सिंह।

प्रेमी थे लोग, तो शादी करना चाहते थे, तो अपने माँ बाप के पास ले गया लड़का, लड़की को मिलवाया कि सब मैं इससे शादी करना चाहता हूँ। बोले ठीक है, इसकी जन्म पत्री मैच कर ले। वो बोले भाई ये शादी तो नहीं हो सकती। क्यों क्यों नहीं हो सकती? वो लड़की तुम्हारे से बड़ी है 2 साल, तो इसमें क्या है, 2 साल के बाद शादी करेंगे। एक भाई साहब ने एड निकाला पेपर में, अच्छे थे एग्रीकल्चरिस्ट थे, कि आई वांट टू गेट मैरिड, और एक ही शर्त है कि टवरी में आई वांट ए ट्रैक्टर, और नीचे जो है अंडरलाइन किया हुआ था, प्लीज सेंड द फोटोग्राफ ऑफ द ट्रैक्टर इमीजिएटली।

0: روزی. भारत और इटली ने आज कृषि, दुर्लभ खनिजों, आयुर्वेद, विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी, समुद्री परिवहन और बंदरगाह के क्षेत्र में सहयोग को और बढ़ाने के लिए 15 महत्वपूर्ण समझौते किए. इन समझौतों पर आज रोम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी के बीच प्रतिनिधि मंडल स्तर की बातचीत के बाद हस्ताक्षर किए गए. दोनों देशों ने भारतीय नर्सों के इटली आने जाने को आसान बनाने के लिए भी एक समझौता किया. एक अन्य समझौता लोथल में राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर के विकास पर केंद्रित है. दोनों देशों ने कर से जुड़े अपराधों, धन शोधन और आतंकवाद के लिए पैसे जुटाने के खिलाफ तालमेल को मजबूत करने पर भी सहमति व्यक्त की है. वार्ता के बाद संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में श्री मोदी ने घोषणा की कि भारत और इटली ने संबंधों को विशेष रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक ले जाने का फैसला किया है.
1: तुमने हमारी भावी साझेदारी को और सशक्त बनाने के लिए विस्तृत रूप से चर्चा की. भारत इटली ज्वाइंट स्ट्रेटेजिक एक्शन प्लान 2025-2029 हमारी साझेदारी को एक प्रैक्टिकल और फ्यूचरिस्टिक ढांचा प्रदान करता है. हम इस पर समयबद्ध तरीके से आगे बढ़ रहे हैं. हमारे साझा प्रयासों में द्विपक्षीय व्यापार 20 बिलियन यूरो के लक्ष्य की ओर तेजी से बढ़ रहा है.
0: श्री मोदी ने कहा कि दोनों देश भारत इटली नवाचार केंद्र स्थापित करने पर काम कर रहे हैं. उन्होंने बताया कि दोनों देश जहाजरानी, बंदरगाहों के आधुनिकीकरण, लॉजिस्टिक्स और समुद्री अर्थव्यवस्था के क्षेत्रों में भी मिलकर काम करेंगे. श्री मोदी ने कहा कि दोनों देश आतंकवाद को मानवता के लिए गंभीर खतरा मानते हैं.
1: भारत और इटली एकमत है कि आतंकवाद मानवता के लिए गंभीर चुनौती है. टेरर फाइनेंसिंग के खिलाफ हमारी साझा पहल ने पूरे विश्व के सामने एक महत्वपूर्ण उदाहरण प्रस्तुत किया है. यूक्रेन, पश्चिम एशिया तथा अन्य तनावों को लेकर हम लगातार संपर्क में रहे हैं. भारत का मत स्पष्ट है कि सभी समस्याओं का समाधान डायलॉग और डिप्लोमेसी के माध्यम से होना चाहिए.
0: इटली की प्रधानमंत्री ने कहा कि दोनों देशों के बीच की दोस्ती सम्मान और आपसी विश्वास पर आधारित है. इसके बाद रोम में प्रधानमंत्री मोदी को संयुक्त राष्ट्र खाद्य और कृषि संगठन का सर्वोच्च सम्मान एग्रीकोला मेडल से सम्मानित किया गया. उन्होंने इस सम्मान को भारत के लाखों किसानों, पशुपालकों, मछली पालकों, कृषि वैज्ञानिकों और श्रमिकों को समर्पित किया. वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल और वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एग्रीकोला पदक से सम्मानित किए जाने पर बधाई दी. सोशल मीडिया पोस्ट में श्री गोयल ने कहा कि ये सम्मान भारत के किसानों, मछुआरों, वैज्ञानिकों और कृषि क्षेत्र से जुड़े अन्य कर्मियों के योगदान की पहचान है. वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा कि मोदी सरकार ने कृषि और इससे जुड़े क्षेत्रों के विकास के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं. रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ऑपरेशन सिंदूर को भारत के एक मजबूत, आत्मविश्वासी और सक्षम राष्ट्र में परिवर्तन का प्रमाण बताया है. दक्षिण कोरिया में प्रवासी भारतीयों से बातचीत में रक्षा मंत्री ने कहा कि ये ऑपरेशन इस बात का प्रमाण है कि भारत किसी भी रूप में आतंकवाद को कतई बर्दाश्त नहीं करेगा. रक्षा मंत्री ने सोल में भारत दक्षिण कोरिया रक्षा उद्योग व्यापार गोलमेज सम्मेलन की अध्यक्षता भी की. पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने नागरिकता संशोधन अधिनियम के अंतर्गत अवैध बांग्लादेशी घुसपैठियों को देश से निकालने की प्रक्रिया तुरंत शुरू करने की घोषणा की है. सीमा पर बाड़ लगाने के लिए सीमा सुरक्षा बल को जमीन सौंपने के एक समारोह के दौरान नाबन्ना में उन्होंने कहा कि अब घुसपैठियों को सीधे सीमा सुरक्षा बल के हवाले कर दिया जाएगा. सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने आज नई दिल्ली में असम में 4000 किलोमीटर से अधिक राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं की गुणवत्ता और रखरखाव कार्यों की समीक्षा की. आईपीएल क्रिकेट में आज कोलकाता नाइट राइडर्स और मुंबई इंडियंस के बीच मुकाबला जारी है. कोलकाता ने टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला किया था. इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ. दिस इज आकाशवाणी तुम्हें शर्पाए अपराजिता नायर। India and Italy today finalized 15 outcomes across diverse sectors. The agreements were signed following delegation level talks between Prime Minister Narendra Modi and his Italian counterpart Giorgia Meloni in Rome today. The outcomes marked the elevation of bilateral relations to a special strategic partnership. Both sides also inked several memorandums of understanding to deepen cooperation in key areas including critical minerals, defense, agriculture, Ayurveda, science and technology, maritime transport and ports. India and Italy also agreed to strengthen coordination against tax crimes, money laundering and terror financing. In a press statement after the talks, Prime Minister Modi said, India-Italy Joint Strategic Action Plan 2025-2029 will provide a practical and futuristic framework for bilateral ties. He said, both sides are working towards establishing an India-Italy Innovation Centre and noted that the India-Italy Defence Industrial Roadmap has opened new avenues for co-development and co-production in the defence sector. Later in the day, Prime Minister Modi was conferred the prestigious Agricola Medal by the Food and Agriculture Organisation at its headquarters in Rome. The medal was presented by FAO Director General Ki Dong-gyu. Speaking on the occasion, the Prime Minister said the award reflects India's unwavering commitment to food security, sustainable development and human welfare.
1: ये भारत के करोड़ों किसानों, पशुपालकों, मत्स्य पालकों, कृषि वैज्ञानिकों और हमारे श्रमिकों का सम्मान है। यह भारत की उस अटूट प्रतिबद्धता का भी सम्मान है जिसके केंद्र में मानव कल्याण, खाद्य सुरक्षा और सस्टेनेबल डेवलपमेंट है। मैं इस मेडल को अत्यंत विनम्रता के साथ स्वीकार करते हुए भारत के अन्नदाताओं को यह मेडल समर्पित करता हूं।
0: Union Minister for Commerce and Industry Piyush Goyal has congratulated Prime Minister Narendra Modi for being honoured with the Food and Agriculture Organization's Agricola Medal. In a social media post, Mr. Goyal said, "This is an acknowledgement of the immense contributions of India's farmers, fisherfolk, scientists and other workers in the agriculture sector." Union Finance Minister Nirmala Sitharaman has also expressed happiness over the conferment of FAO's honour to Prime Minister Modi. West Bengal Chief Minister Suvendu Adhikari today announced immediate initiation of deportation proceedings against illegal Bangladeshi infiltrators under the Citizenship Amendment Act or CAA. The Chief Minister made the announcement at State Secretary

0: Was 137 runs for the loss of 8 wickets in the allotted 20 overs. Earlier, Kolkata Knight Riders won the toss and opted to bowl. Tomorrow, Gujarat Titans and Chennai Super Kings will clash at Narendra Modi Stadium, Ahmedabad at 7:30 p.m. local time. And that is the end of this news bulletin.
1: FM वेव 103.1 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी का बैतूल केंद्र है। इस समय रात्रि के 11:10 हुए हैं। अब हमारी आज की प्रसारण सभा यहीं संपन्न होती है। कल की प्रसारण सभा में सुबह 5:55 पर हम आपकी सेवा में फिर उपस्थित होंगे। अब आज्ञा दीजिए, शुभ रात्रि, जय हिंद।